0: पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई घटना पुरानी बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का यही लेटेस्ट वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाका होने से इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवान हाथ में बैनर लिए हुए कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का लेटेस्ट वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
3: अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि चीन की सेना ने भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। वीडियो में किसी पहाड़ी रास्ते पर हथियारबंद

0: दर कब्जा कर लिया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवानों को देखा जा सकता है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का ये लेटेस्ट वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें एक बैनर नजर आया, इसमें नेपाली भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अगर वीडियो चीनी सेना का है तो फिर इसमें नेपाली भाषा में लिखा हुआ बैनर क्यों नजर आ रहा है, यह हमें थोड़ा अटपटा लगा। इसके अलावा सेना के जवानों के साथ कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वीडियो अगर घुसपैठ का है तो फिर इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वायरल हो रहा वीडियो चीनी घुसपैठ का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर चीनी घुसपैठ के साथ जोड़ते हुए वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस वीडियो में जानिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई। वीडियो का सच झूठ जानने के लिए इसकी तहकीकात में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम नेपाल

0: भी देखने को मिले। यहाँ नेपाल की भाषा में दी गई जानकारी को हमने ट्रांसलेट किया। इससे पता चला कि ये तस्वीर गोरखा जितगड़ी यात्रा की है। जितगड़ी में बैसाख 7 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत 1872 में नेपाल से हारने के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की याद में ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल के एक दूसरे न्यूज पोर्टल में भी इस वीडियो से संबंधित खबर देखने को मिली। इसमें वीडियो की कीफ्रेम का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक नेपाली सेना की ऐतिहासिक एकीकरण यात्रा गोरखा दरबार से जीतगढ़ी तक शुरू हो गई है। रुद्रध्वज गण के गणपति विरोध रिजाल ने बताया कि ये यात्रा बैसाख की 6 तारीख को जीतगढ़ी पहुँचेगी और अगले दिन जीत के जश्न में शामिल होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई लड़ाई में मिली जीत को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। एक और न्यूज पोर्टल में भी इस बारे में खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें भी से नेपाली सेना की यात्रा की तस्वीर बताया गया है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि ये वीडियो नेपाली सेना का है जो गोरखा से जितगढ़ी एक समारोह में शामिल होने जा रही थी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो पोस्ट कर दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर चुकी है। सरकार और सेना की तरफ से इसके दावे का खंडन किया गया है। भारतीय सेना के मुताबिक हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी जिनमें आरोप लगाया गया है कि हाल ही में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं। ये रिपोर्ट गलत है, इनका कोई आधार नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इन दावों को खारिज कर दिया कि चीन की पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों की ओर से सीमा पार करने की घटनाएं होती रही हैं, क्योंकि सीमा स्पष्ट रूप से तय नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजिजू ने साफ कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। सीमा तय न होने की वजह से दोनों तरफ से सीमा पार करने की घटनाएं होती रहती हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो नेपाल का है। वहां नेपाली सेना ने गोरखा से जितगढ़ी तक समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से चीन की किसी भी घुसपैठ से इनकार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी में अचानक धमाका होता है। उसे चला रहा युवक उछलकर दूर कहीं गिर जाता है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
0: इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने और धमाके की खबर अक्सर सामने आती रहती है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 66 में एक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने से एक इमारत में आग लग गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों स्कूटर ब्लास्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक चलते हुए स्कूटर में जोरदार धमाका होता है और इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटर की सीट निकलकर अलग हो जाती है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि चलती ईवी स्कूटी की बैटरी में धमाका, चालक कई फीट दूर जा गिरा। चलती हुई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक तेज धमाका होने के बाद वाहन अनियंत्रित हो गया। हादसे में चालक सड़क किनारे पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत चालक की मदद की। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका होने के बाद सवार आदमी हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटी की सीट निकलकर अलग हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि वीडियो भारत का नहीं है। इसके अलावा वायरल वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखने पर इसमें ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। धमाका होने से पहले ही धमाके जैसी रोशनी नजर आने लगती है और स्क्रीन पर पीला रंग नजर आता है। धमाके के बाद आदमी की बॉडी हवा में अजीब सी दिखाई देती है, मानो उसके शरीर को धमाके से नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगले ही पल बॉडी बिल्कुल सही सलामत नजर आ रही है। धमाके के बाद स्कूटर अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे घूमता हुआ नजर आता है, जो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा था। धमाके के वक्त स्कूटी की सीट हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद अचानक से पेड़ों के बीच से सामने आ जाती है। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर ये दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है, ये वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो से जुड़ी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूटी में धमाका होने से कुछ सेकंड पहले ही इस पर सवार आदमी अपनी सीट से ऊपर उठ जाता है। लिहाजा ऐसे में हमने वीडियो को हाई मॉडरेशन टूल की मदद से सर्च किया। इस टूल ने फोटो के करीब 62% तक AI से बने होने की संभावना जताई। इस टूल ने सिडान्स 2 की मदद से वीडियो के बने होने के संकेत दिए। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वीडियो के कई की फ्रेम निकाले और उन्हें दूसरे AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से सर्च किया। हमने साइट इंजन की मदद से की फ्रेम को सर्च किया। इस टूल ने 99% तक की फ्रेम के AI की मदद से बने होने की संभावना जताई। AI डिटेक्शन टूल अनडिटेक्टेबल ने भी की फ्रेम को AI की मदद से बना हुआ बताया। सर्च के दौरान हमें वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 10 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो को व्यंग के उद्देश्य से शेयर किया गया। इस अकाउंट को खंगालने पर हमने पाया कि इसके बायो में बताया गया है कि इस पेज पर AI और VFX से जुड़े वीडियोस शेयर किए जाते हैं। यहाँ वायरल वीडियो से मिलते जुलते ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें गाड़ियों में धमाका होते और लोगों को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। साफ है इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके का वीडियो फर्जी है। असल में वायरल हो रहे इस वीडियो को AI की मदद से ही बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्चर में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: गाइडेड बाय अ शेयर्ड पर्पस एंड अ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन, एमरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पुश ईच अदर टू थिंक क्रिएटिवली एंड वर्क कोऑपरेटिवली, नोइंग दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लीड टू न्यू आइडियाज।
5: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
4: Learn more at emory.edu.
3: Good news today is really good. In this, there is a lot of news.
1: वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
6: सोशल मीडिया पर ये प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भाई बहन के स्नेह से भरा ये मासूम पल लोगों को अपना बचपन याद दिला रहा है और खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में एक स्कूल का सीन दिखाई देता है। लंच ब्रेक के दौरान कुछ छोटे छोटे बच्चे जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर बड़े आराम से खाना खाने में लगे हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसी बीच कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो जाता है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में एक भाई बहन भी बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन बहन अपने छोटे भाई का जिस तरह से ध्यान रखती है वो हर किसी को भावुक कर देता है। पहले वो खुद अपने टिफिन से एक निवाला खाती है और फिर उसी हाथ से अपने छोटे भाई को प्यार से खाना खिलाती है। भाई भी बड़े आराम से अपनी बहन के हाथ से खाना खाता रहता है। दोनों के चेहरे पर मासूमियत साफ नजर आती है और यही मासूम रिश्ता लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात ये है कि इसमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता, ना किसी तरह की स्क्रिप्ट नजर आती है और ना ही कैमरे के लिए कोई दिखावा। ऐसा लगता है जैसे स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया हो। शायद यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को आसानी से जोड़ पा रहे हैं। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा देता है। वो खुद के लिए कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पर शिकन नहीं आने देता। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के संघर्षों को समझते हैं और उन्हें कोई खूबसूरत तोहफा देते हैं, तो वो पल बेहद खास बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी ने अपने पिता को उनके 50वें जन्मदिन पर एक चमचमाती बाइक गिफ्ट की है। इस प्यारे सरप्राइज को देखकर पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए और वीडियो देखने वाले लाखों लोग भी भावुक हो गए। अचानक मिले सरप्राइज से पिता इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया, जिसने इस पूरे प्लान को अंजाम देने में बहन की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर जुड़ी अपनी बेटी से बात की और खुशी के आंसू बहाते हुए उसे इस शानदार तोहफे के लिए धन्यवाद किया।
7: हैप्पी बर्थडे डैडी।
6: सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोस खूब पसंद किए जाते हैं, जो ये याद दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने दिव्यांग कुत्ते की मदद कर लोगों की खूब तारीफ बटोरी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं। इसी दौरान एक दिव्यांग कुत्ता सड़क पार करने की कोशिश करता है, लेकिन भारी ट्रैफिक की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तभी वहाँ मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की नज़र उस कुत्ते पे पड़ती है। वो बिना देर किए सड़क के बीच पहुँच जाता है और आने वाली गाड़ियों को रोकने का इशारा करता है। कुछ ही सेकंड्स में वाहन रुक जाते हैं और पुलिस कर्मी कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराने में मदद करता है। इसके बाद कुत्ता आराम से दूसरी ओर पहुँच जाता है। ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे पाकिस्तान के सिंध इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक चाय पकौड़े वाले का देसी जुगाड़ देखकर हर कोई बोल रहा है, भाई ये बंदा तो जीनियस है। वीडियो में दिखता है कि एक दुकानदार सड़क किनारे अपनी बड़ी सी कढ़ाई में पकौड़े तल रहा है। कढ़ाई में तेल खूब गर्म है और पकौड़े छन छन कर तले जा रहे हैं। अभी तक तो सब नॉर्मल लगता है, ट्विस्ट तब आता है जब कैमरा थोड़ा जूम होता है। उसी कढ़ाई के अंदर गरम तेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्टील का बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में चाय उबल रही है। एक ही कढ़ाई में नीचे पकौड़े तले जा रहे हैं और ऊपर रखे बर्तन में चाय पक रही है। देखने वाला पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन दुकानदार का लॉजिक एकदम साफ है। वो सीधे तेल में चाय नहीं बना रहा है, वो तेल की गर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। कढ़ाई का तेल इतना गर्म है कि उसके ऊपर रखा बर्तन अपने आप गर्म हो जाता है और उसी हीट से अंदर चाय उबलने लगती है। मतलब अलग से गैस जलाने की जरूरत ही नहीं, एक चूल्हे पर दो काम, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च के। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और जमकर इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक खेत दिखाई देता है, जहां सामान्य तौर पर ट्रैक्टर से होने वाला काम ई रिक्शा की मदद से किया जा रहा है। आमतौर पर खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती है कि वो मिट्टी को आसानी से पलट सके। लेकिन इस वीडियो में लोगों ने ई रिक्शा के साथ ऐसा जुगाड़ किया है कि वो भी खेत जोतने का काम करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक सुकून भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक रात में पहाड़ों के बीच गिटार पर धुन बजाता दिख रहा है। बिना शब्दों की ये धुन सीधे दिल को छू रही है। नेचर और म्यूजिक के इस जादू को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे धुन बजती है, लगता है मानो पहाड़ भी उसे सुन रहे हैं। वो म्यूजिक इतना सॉफ्ट और इमोशनल है कि सुनते ही मन एकदम शांत हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या ट्रेंड कर जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब बात अपने भारतीय गानों और डांस की हो तो भैया दुनिया के किसी भी कोने में लोग पैर थिरकाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक ऐसा ही दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ के एक व्यस्त बाजार में एक भारतीय लड़की ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर गाने पर ऐसा रंग जमाया कि वहाँ मौजूद विदेशी गोरे भी उसके साथ भांगड़ा करने पर मजबूर हो गए।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
8: ऑल अक्रॉस अमेरिका स्पेक्ट्रम बिजनेस इज कमिटेड टू डिलीवरिंग फास्ट रिलायबल इंटरनेट फॉर $50 अ मंथ। That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
9: One more, let's go.
8: Without paying more. Get Spectrum Business Internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: Sachi khabar.
3: Gunni chudi isliye acha lagta hai, iske andar na वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: आइए बात करेंगे गणेश उत्सव की तैयारियों की। देखिए भले ही अभी बप्पा के आगमन में लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बप्पा के दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे में गुड न्यूज स्टूडियो की टीम पहुंची है मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा पंडाल के ठीक बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में, जहां पर बप्पा के बैठने के लिए एक से बढ़कर एक भव्य और अनोखे आसन मौजूद हैं। अलग अलग डिजाइन के ये सभी आसन पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं।

0: बप्पा के स्वागत की रंगत अभी से दिखने लगी है। बाजार में गणपति उत्सव की तैयारियों की रौनक उमड़ने लगी है। गणेश चतुर्थी में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बप्पा के स्वागत का रंग मुंबई में कुछ अलग ही होता है। इसका अंदाज आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां लगभग 2 महीने पहले ही गणेश जी के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए। लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर बहते झरने जैसा वाटरफॉल आसन यहाँ मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से लेकर महाराजा सिंहासन और माता लक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बप्पा के इस आसन को चुन रहे हैं।
2: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए।
3: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे है। उसमें से मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विठल का है वो अच्छा लगा। ये 3 डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
4: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: हर साल बप्पा के स्वागत के लिए भक्त जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहे तो वो भी मुमकिन है। इस सहेली कार्यशाला में भक्त रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से बप्पा के लिए आसन तैयार कर सकते हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।

0: हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे बल्कि बप्पा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स, उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं।
1: सिर्फ यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
2: हमारे यहाँ देखो समझो, अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप किए जो रिसाइकलिंग भी है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकल आइटम
1: है, इको फ्रेंडली है, सारी
2: पुट्टा फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रो मटर चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर चाहिए कि देख जाओ वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल जाएगा। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपकी खुद की आर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी हमारे यहाँ रो मटर मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
2: जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यू आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगा हुए वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे,
1: लाइटिंग्स
2: मिलेंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
1: अच्छा खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
2: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
1: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
2: सवाल ये, साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबाग के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
0: इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाला सारा सामान जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। इस बार देश भर में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होगा। ऐसे में गणपति उत्सव की रौनक अभी से चारों तरफ दिखने लगी है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक। रोघड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी। गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी। असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पहले कदम की। कहते हैं हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, एक कदम सैकड़ों और फिर हजारों में बदलकर मंजिल तक का सफर तय करते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है वो पहला कदम। आज दिन है उसी पहले कदम को सेलिब्रेट करने का। एक कदम जो 57 साल पहले आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद पर रखा था, और दूसरा कदम स्पेस में भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर रॉकेट का। ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये दोनों तस्वीरें एक लंबे सफर के पहले कदम को सेलिब्रेट करती हैं। 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची थी। सोवियत संघ अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक और पहले इंसान यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर बढ़त बना चुका था। तब इसके जवाब में अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजने के महत्वाकांक्षी प्लान का आगाज किया और शुरुआत हुई अपोलो मिशन की। इसी के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स वाले अपोलो 11 मिशन को रवाना किया गया था, जो 4 दिन की यात्रा के बाद चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। चांद पर उतरने का अंतिम चरण बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक था। लैंडिंग के समय यान का कंप्यूटर ओवरलोड हो गया था और ईंधन भी तेजी से कम हो रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने सूझबूझ दिखाते हुए यान को चांद की सतह पर लैंड करवाया और मिशन कंट्रोल को संदेश भेजा, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल इज लैंडेड। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धूल भरी सतह पर अपना बायां पैर रखा और इतिहास रच दिया। इस मौके पर उनके कहे शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए। ये एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। अब वैसी ही एक विशाल छलांग भारत ने भी लगाई है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट ने मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी। आइए पहले आपको दिखाते हैं आखिर विक्रम 1 ने हमारी उम्मीदों को लेकर किस तरह अनंत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी और क्यों ये मिशन भारत की स्पेस जर्नी में एक माइलस्टोन साबित हुआ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांग कर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह।
3: My opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about.
4: एक विक्रम वो जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और एक विक्रम ये जो अंतरिक्ष के आंगन का नवजात है। लेकिन कभी जो भारत के एक विक्रम ने कहा था, वो आज दूसरे विक्रम ने सच कर दिखाया है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी क्षमता, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है विक्रम 1 ने। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के शुभ आगमन का प्रतीक बन गया है।
5: देखिए, ये मिशन आगमन है। अब आगमन को तो

0: लिफ्ट ऑफ।
1: देश में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी की ओर से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया। रॉकेट भी वो जिसे नाम मिला है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर।
2: विक्रम बनने
1: इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया।
0: एंड वी हैव लिफ्ट ऑफ ऑफ विक्रम 1, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च।
1: विक्रम 1 की लॉन्चिंग का समय 18 जुलाई सुबह 11:30 पर तय था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते 12:05 पर रॉकेट की लॉन्चिंग की गई।
3: लगभग 16:20 के बाद उसने जो सैटेलाइट थे वो सही कक्षा में, सही ऑर्बिट में पहुंचा दिए हैं, और 450 किलोमीटर की जो ऑर्बिट निर्धारित की गई थी, और लगभग 7.5 किलोमीटर/सेकंड की स्पीड से, तो सैटेलाइट बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च होके अपनी कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो यह एक बहुत ही स्वर्ण अवसर है भारत के स्पेस हिस्ट्री में, स्पेस के इतिहास में।
1: इसके लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। श्रीहरिकोटा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तमाम आला अधिकारी और वैज्ञानिक इस लॉन्चिंग के इंतजार में थे। आखिरकार फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ और सफलता पूर्वक विक्रम 1 की लॉन्चिंग हो गई। कंट्रोल रूम से लेकर व्यूइंग गैलरी तक सभी के चेहरे हिल उठे। सालों की मेहनत को मुकाम मिल रहा था। स्काई रूट के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था।
0: पेलोड फेयरिंग, वी हैव सक्सेसफुल पेलोड।
4: दल काफी उत्साहित है इस समय, और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है, और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है।
1: विक्रम 1 लॉन्चिंग का एक एक चरण पूरा करता जा रहा था। हर दहलीज लांघने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी।
0: 50 किलोमीटर,
4: और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है।
5: This is quite a major achievement for the nation, with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well.
1: कुछ ही मिनट्स में विक्रम 1 आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कार्मन लाइन को पार कर गया। धरती और स्पेस के बीच की यह काल्पनिक रेखा अंतरिक्ष की दहलीज मानी जाती है। कार्मन लाइन लांघने के साथ ही विक्रम 1 अंतरिक्ष में दाखिल हो गया।
5: And we have reached space, guys.
0: Congratulations, Vikram 1 is in space.
4: हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है।
0: And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation.
1: अगर विक्रम 1 अंतरिक्ष की ऊंचाई पर पहुंच रहा था, तो यूं समझिए कि श्रीहरिकोटा के स्टेशन पर जोश, खुशी और उत्साह भी लगभग उसी ऊंचाई को छू रहा था। देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका था। स्काई रूट के लिए ये उपलब्धि अभूतपूर्व थी। गर्व और खुशी के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने स्काई रूट कंपनी के CEO और COO समेत पूरी टीम को फोन करके शुभकामना संदेश दिया।
6: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं, और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है, जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी, और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था।
1: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था, और अब विक्रम 1 धरती के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। विक्रम 1 ने लॉन्च से लेकर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट तक सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए, और करीब 450 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।
7: ये जो विक्रम वन था ये केवल 350 kg ये एलईओ में यानी के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स डाल सकता था। अभी जो विक्रम इसके बाद जो आएगा विक्रम टू वो और थोड़ा ज्यादा होगा और फिर विक्रम थ्री में और ज्यादा होगा। तो ये धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि उनका कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और ये पूरा जो था ये इसरो ने स्काई रूट को हैंड होल्ड किया है, उनको टेक्नोलॉजी दिया है, हैंड होल्ड मतलब उनको गाइड किया है।
1: प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत विक्रम वन रॉकेट को तैयार किया है। इस रॉकेट के साथ 6 खास पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की जांच करने वाला स्कोप सैटेलाइट है, तो स्पेस का कचरा हटाने वाला कॉस्मो सर्व स्पेस का मिशन एम्ब्रेस रोबोटिक सिस्टम भी है। इसके अलावा ग्रह स्पेस का एक छोटा सैटेलाइट सोलोरास भी इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया और जर्मनी के 2 टेक्नोलॉजी पेलोड इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम और एक खास माइक्रो आर्ट पीस भी रॉकेट में भेजा गया। ये माइक्रो आर्ट पीस 18 कैरेट सोने से बना छोटा सा रॉकेट है। इस पर वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की छोटी छोटी छवियां उकेरी गई हैं। जो पेलोड इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए, इनका मकसद नई तकनीक को परखना, स्पेस ट्रेवल को सुरक्षित बनाना और आने वाले मिशंस को बेहतर बनाना है। रॉकेट विक्रम वन स्काई रूट के 3 डेवलपमेंटल मिशंस में पहला मिशन है। इसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। हैदराबाद में स्काई रूट के युवा इंजीनियर्स की टीम ने इस रॉकेट को बनाया है। ये 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। इसे पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
8: The space sector reform what is announced and encouraging the startup system is excellent. And today we had a very very important launch. I think let us congratulate the Skyroot team for this great achievement.
1: ये अपने आप में बेहद अहम है कि ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है और इसे पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया।
7: अगर आप देखें कि अमेरिका में अभी स्पेसएक्स है जो प्राइवेट कंपनी है, बोइंग है अगेन प्राइवेट कंपनी, ब्लू ओरिजिन, ऐसे कई ऐसे वो हैं और पूरे यूरोप में भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं। तो हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो एकदम सही है और इसी मार्ग पे हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि इसरो हैंडहोल्ड नहीं करेगा, अपना डेटा नहीं देगा। लेकिन अभी एकदम बदल गया। अभी इसरो ऐसे स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड कर रहा है।
1: आपको बता दें कि विक्रम वन में भेजे गए पेलोड के साथ ही पीएम मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी भेजा गया है जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। मातृभूमि का जय घोष करते ये शब्द भी भारतवासियों की असीम उम्मीदों की तरह आज अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये जय घोष कर रहे हैं कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां प्राइवेट कंपनी के रॉकेट अंतरिक्ष में कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। श्रीहरिकोटा से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: और चलिए अब आपको विक्रम वन के बारे में बताते हैं, आखिर क्यों इस रॉकेट की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और क्या खासियत है इस रॉकेट की, उसे समझिए जरा। विक्रम वन पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर के साथ बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना ये हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है जिससे इसकी ईंधन दक्षता काफी बढ़ जाती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और 1 लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी इसमें दिया गया है। अब इसके बाद देखिए बारी आती है इसको समझने की। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे तीन बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का ठोस केमिकल भरा होता है। रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में बहुत भारी ताकत की जरूरत होती है। ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं और रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देते हैं। ये रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन वाला छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। यहां लिक्विड मॉड्यूल काम आता है। ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसकी तय की गई कक्षा में एडजस्ट यानी स्थापित करने का काम भी करता है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि विक्रम 1 में भेजे गए पेलोड के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्टकार्ड भेजा जिस पर वंदे मातरम लिखा गया। रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के बाद पीएम ने स्काई रूट की टीम को बधाई देने के लिए फोन किया तो कंपनी के सीईओ ने उन्हें ये बात बताई और तब ये भेद खुला कि आखिर क्यों अंतरिक्ष में भेजे जा रहे उस पोस्टकार्ड पर पीएम ने वंदे मातरम ही लिखा था।
10: आपका कार्ड जो आप भेजे थे that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit.
6: लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा, उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाए और वंदे मातरम ही था जिससे देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देती, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, इन हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी
9: तो वंदे मातरम क्यों लिखा था प्रधानमंत्री ने, उसके दो कारण प्रधानमंत्री ने आपको बताए। अब आपको समझाते हैं विक्रम 1 और विक्रम एस में डिफरेंस क्या है, उस अंतर को आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए विशेषता मिशन का प्रकार है सब ऑर्बिटल, विक्रम एस होता है और विक्रम 1 जो है वो ऑर्बिटल होता है। ये मुख्य अंतर आपको समझा रहे हैं विक्रम एस और विक्रम 1 में। अधिकतम ऊंचाई जो होती है विक्रम एस की वो होती है 89.5 किलोमीटर और विक्रम 1 की जो ऊंचाई होती है वो होती है 450 किलोमीटर। ये बेसिक अंतर जो है वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। इसके बाद केवल टेस्ट पेलोड के तौर पर इसको जाना जाता है, ये इसकी खास विशेषता है। पेलोड क्षमता कितनी होती है वो आपको समझा रहे हैं। 350 किलोग्राम तक की इसकी क्षमता होती है। सिंगल स्टेज मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका सिंगल स्टेज होता है, तीन सॉलिड स्टेज प्लस लिक्विड मॉड्यूल इसकी ये विशेषता होती है। इसके अलावा विक्रम एस और विक्रम 1 में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लीजिए। विक्रम एस जो है वो रेगुलर कंपोजिट के तौर पर काम करता है, मटेरियल जो होता है उसमें रेगुलर कंपोजिट होता है, और जो विक्रम 1 होता है उसमें कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये है इन दोनों में विशेष अंतर।

0: था 2020 का, जब भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले थे। इसके साथ ही स्पेस सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में उभरने लगे थे। इस घटना को 6 साल गुजर चुके हैं और भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में लगभग 400 स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हैं, जो अपने अपने लॉन्च व्हीकल से लेकर सैटेलाइट, प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण कर रहे हैं। इस बदलाव के चलते आज भारत की स्पेस इकोनॉमी 8.4 बिलियन यानी लगभग 800 करोड़ की हो चुकी है। स्पेस स्टार्टअप्स की इस बाढ़ के बीच हाल के सालों में बुलबुले की तरह बेहद तेजी से एक नाम उभरा है, स्काई रूट एरोस्पेस। अपने नाम जैसा ही काम ये स्पेस स्टार्टअप पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है। अंतरिक्ष के आंगन में भारत की जड़े जमाने के मिशन में स्काई रूट एरोस्पेस अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कंपनी की टकसाल से निकला है भारत का नायाब रॉकेट विक्रम 1।
1: श्रीहरिकोटा से इससे पहले तमाम सैटेलाइट और स्पेस मिशंस लॉन्च किए गए हैं, लेकिन विक्रम 1 बेहद खास इसलिए है क्योंकि इसे निजी स्पेस कंपनी ने बनाया है। स्काई रूट जो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। 2020 में जब सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, उसके बाद लगातार उस पर काम तेज हो गया।
0: स्काईरूट की शुरुआत करीब 8 साल पहले 2018 में हुई थी। स्काईरूट की स्थापना इसरो के पूर्व साइंटिस्ट नागा भरत डाका और पवन कुमार चंदना ने मिलकर की थी। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में ही बेहद किफायती और भरोसेमंद रॉकेट्स का निर्माण करना रहा, ताकि दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड और बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग सॉल्यूशंस दिए जा सके। हाल ही में ये कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी थी, यानी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गया था।
2: Globally, very few companies are able to achieve it. So I think doing it from India, we're very proud, and it's a great milestone for Skyroot, for India, and also for globally as well, because the world requires more access to space.
0: क्योंकि डॉक्टर सारा भाई ने ही देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी, इसलिए स्काईरूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है। साल 2022 में लॉन्च किया गया पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस भी इसी सम्मान श्रृंखला का हिस्सा था। 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट के सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस ने श्रीहरिकोटा से अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। विक्रम एस रॉकेट ने 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर ये बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया।
3: And in India, we have good space access solution capacity already developed by ISRO. But the commercial market of launch captured by Indian launch vehicles is very less. And now, with that objective, like now that we have good manufacturing ecosystem that can manufacture aerospace grade rockets, what private companies like us bring to the table is the design engineering and the system engineering capability, where we can build end-to-end systems and develop. So India is also well known for affordable space missions, and that cost effectiveness naturally translates to the private sector in India. So successfully building a reliable rocket from India will naturally place us as an affordable launch solution from India to the world.
0: इसके बाद अब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भारत के स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और नई तकनीक की शानदार मिसाल बन गया है। लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। दरअसल भारत में अब तक सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन रही हैं। इसके कई फायदे हैं। स्काईरूट जैसी घरेलू प्राइवेट कंपनियों के आने से विदेशी सैटेलाइट कंपनियों को भारत में बेहद सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड लॉन्चिंग विकल्प मिलेंगे। इससे देश की स्पेस इकोनॉमी और मजबूत होगी, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के मौके पैदा होंगे।
4: ये जो स्पेस इकोनॉमी है और जहां तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन जैसे मैंने कहा बढ़ रहा जहां तक स्पेस इकोनॉमी है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए भारत का जो योगदान है इसमें 2-3% अभी ये तो ठीक नहीं क्योंकि हमारा इसरो इतना काम कर रहा है हम इतने आगे बढ़ चुके हैं हम मंगलयान अभी यहाँ पर चंद्रयान फिर अभी हम स्पेस स्टेशन डालेंगे स्पेस पे तो हम इतने आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए जो हम कर रहे हैं जो मोदी जी और उनके गवर्नमेंट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना।
0: बता दें कि भारत ने भले ही अंतरिक्ष में प्राइवेट उड़ान का माइलस्टोन अब हासिल किया है लेकिन इससे पहले भी दुनिया की कई कंपनियां इस ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। खासतौर पर अमेरिका में स्पेसएक्स, ब्लू ऑरिजिन और रॉकेट लैब जैसी दिग्गज प्राइवेट स्पेस कंपनियां स्पेस ट्रेवल में नए युग की शुरुआत काफी पहले कर चुकी हैं। यहाँ तक कि एलन मस्क की स्पेसएक्स तो अब दुनिया को भविष्य में स्पेस टूरिज्म का सपना भी दिखा रही है।
4: चीन कुछ 70-80 फ्लाइट्स यानी के लॉन्चेस वो करता है एक साल में और अमेरिका तो इनके प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ वो स्पेसएक्स और बोइंग और ये सब करते हैं 190-180 हर साल में और हमारे यहाँ पर इतने सारे नहीं होते कुछ 4 या 5 होते हैं 4-5 भी नहीं होते हमारा अभी जो विजन है वो तो 13 सैटेलाइट्स का था इस साल में अभी तक देखिए 1 या 2 ही हुए हैं तो कोई नहीं हम कर रहे हैं।
5: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
8: One more, let's go.
7: Without paying more. Get Spectrum Business Internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: Good news today is really अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
10: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ने की समीक्षा बैठक ओगड़नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का किया जलाभिषेक पुरी में हेरा पंचमी के पावन अवसर पर उमड़े लाखों श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के साथ पालकी में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी गर्मी से राहत के लिए भक्तों पर किया गया पानी का छिड़काव उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां देहरादून हरिद्वार और टेहरी में मौसम विभाग का अलर्ट प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर तक पहुंचा चमसा नदी का पानी असम में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। 4 साल से 60 साल वर्ष की उम्र वालों को लगेगी 2 डोज। टीकाकरण से पहले नहीं होगी किसी तरह की जांच की जरूरत।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
8: नमस्कार, मैं हूँ नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई घटना पुरानी बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का ये लेटेस्ट वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा ये किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाका होने से इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवान हाथ में बैनर लिए हुए कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का लेटेस्ट वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
11: अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की घुसपैठ के दावे से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि चीन की सेना ने भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। वीडियो में किसी पहाड़ी रास्ते पर हथियारबंद सैनिकों को देखा जा रहा है।

0: अंदर कब्जा कर लिया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में सेना के जवानों को देखा जा सकता है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का ये लेटेस्ट वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें एक बैनर नजर आया, इसमें नेपाली भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अगर वीडियो चीनी सेना का है तो फिर इसमें नेपाली भाषा में लिखा हुआ बैनर क्यों नजर आ रहा है, ये हमें थोड़ा अटपटा लगा। इसके अलावा सेना के जवानों के साथ कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वीडियो अगर घुसपैठ का है तो फिर इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वायरल हो रहा वीडियो चीनी घुसपैठ का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर चीनी घुसपैठ के साथ जोड़ते हुए वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस वीडियो में जानिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई, वीडियो का सच झूठ जानने के लिए इसकी तहकीकात में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम नेपाल के न्यूज पोर्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंचे, जहां पर 10 अप्रैल 2026 को नेपाली सेना की यात्रा से संबंधित जानकारी को पोस्ट किया गया था। इससे वीडियो के की फ्रेम भी देखने को मिले। यहां नेपाल की भाषा में दी गई जानकारी को हमने ट्रांसलेट किया। इससे पता चला कि ये तस्वीर गोरखा जितगढ़ी यात्रा की है। जितगढ़ी में बैसाख 7 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत 1872 में नेपाल से हारने के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की याद में ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल के एक दूसरे न्यूज पोर्टल में भी इस वीडियो से संबंधित खबर देखने को मिली। इसमें वीडियो के की फ्रेम का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक नेपाली सेना की ऐतिहासिक एकीकरण यात्रा गोरखा दरबार से जीतगढ़ी तक शुरू हो गई है। रुद्रध्वज गण के गणपति विरोध रिजाल ने बताया कि ये यात्रा बैसाख की 6 तारीख को जितगढ़ी पहुंचेगी और अगले दिन जीत के जश्न में शामिल होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई लड़ाई में मिली जीत को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। एक और न्यूज पोर्टल में भी इस बारे में खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें भी से नेपाली सेना की यात्रा की तस्वीर बताया गया है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि ये वीडियो नेपाली सेना का है, जो गोरखा से जितगढ़ी एक समारोह में शामिल होने जा रही थी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो पोस्ट कर दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर चुकी है। सरकार और सेना की तरफ से इसके दावे का खंडन किया गया है। भारतीय सेना के मुताबिक हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी, जिनमें आरोप लगाया गया है कि हाल ही में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं। ये रिपोर्ट गलत है, इनका कोई आधार नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इन दावों को खारिज कर दिया कि चीन की पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों की ओर से सीमा पार करने की घटनाएं होती रही हैं, क्योंकि सीमा स्पष्ट रूप से तय नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजिजू ने साफ कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, सीमा तय न होने की वजह से दोनों तरफ से सीमा पार करने की घटनाएं होती रहती हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो नेपाल का है। वहाँ नेपाली सेना ने गोरखा से जितगढ़ी तक समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से चीन की किसी भी घुसपैठ से इनकार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी में अचानक धमाका होता है, उसे चला रहा युवक उछलकर दूर कहीं गिर जाता है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
0: इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने और धमाके की खबर अक्सर सामने आती रहती है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 66 में एक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने से एक इमारत में आग लग गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों स्कूटर ब्लास्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक चलते हुए स्कूटर में जोरदार धमाका होता है और इस पर सवार व्यक्ति कई फीट ऊपर हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटर की सीट निकलकर अलग हो जाती है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि चलती ईवी स्कूटी की बैटरी में धमाका, चालक कई फीट दूर जा गिरा। चलती हुई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक तेज धमाका होने के बाद वाहन अनियंत्रित हो गया। हादसे में चालक सड़क किनारे पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत चालक की मदद की। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका होने के बाद सवार आदमी हवा में उछल जाता है। धमाके में स्कूटी की सीट निकलकर अलग हो जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि वीडियो भारत का नहीं है। इसके अलावा वायरल वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखने पर इसमें ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। धमाका होने से पहले ही धमाके जैसी रोशनी नजर आने लगती है और स्क्रीन पर पीला रंग नजर आता है। धमाके के बाद आदमी की बॉडी हवा में अजीब से दिखाई देती है, मानो उसके शरीर को धमाके से नुकसान पहुंचा है, लेकिन अगले ही पल बॉडी बिल्कुल सही सलामत नजर आ रही है। धमाके के बाद स्कूटर अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे घूमता हुआ नजर आता है, जो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा था। धमाके के वक्त स्कूटी की सीट हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद अचानक से पेड़ों के बीच से सामने आ जाती है। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि अगर ये दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है, ये वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। हमने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें वीडियो से जुड़ी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूटी में धमाका होने से कुछ सेकंड पहले ही इस पर सवार आदमी अपनी सीट से ऊपर उठ जाता है, लिहाजा ऐसे में हमने वीडियो को हाई मॉडरेशन टूल की मदद से सर्च किया। इस टूल ने फोटो के करीब 62% तक AI से बने होने की संभावना जताई। इस टूल ने सिडांस 2 की मदद से वीडियो के बने होने के संकेत दिए। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वीडियो के कई की फ्रेम निकाले और उन्हें दूसरे AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से सर्च किया। हमने साइट इंजन की मदद से की फ्रेम को सर्च किया। इस टूल ने 99% तक की फ्रेम के AI की मदद से बने होने की संभावना जताई। AI डिटेक्शन टूल अनडिटेक्टेबल ने भी की फ्रेम को AI की मदद से बना हुआ बताया। सर्च के दौरान हमें वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 10 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो को व्यंग के उद्देश्य से शेयर किया गया। इस अकाउंट को खंगालने पर हमने पाया कि इसके बायो में बताया गया है कि इस पेज पर AI और VFX से जुड़े वीडियोस शेयर किए जाते हैं। यहाँ वायरल वीडियो से मिलते जुलते ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं। जिनमें गाड़ियों में धमाका होते और लोगों को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। साफ है इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके का वीडियो फर्जी है। असल में वायरल हो रहे इस वीडियो को एआई की मदद से ही बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
4: सोशल मीडिया पर ये प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भाई बहन के स्नेह से भरा ये मासूम पल लोगों को अपना बचपन याद दिला रहा है और खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में एक स्कूल का सीन दिखाई देता है। लंच ब्रेक के दौरान कुछ छोटे छोटे बच्चे जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर बड़े आराम से खाना खाने में लगे हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसी बीच कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो जाता है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में एक भाई बहन भी बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन बहन अपने छोटे भाई का जिस तरह से ध्यान रखती है वो हर किसी को भावुक कर देता है। पहले वो खुद अपने टिफिन से एक निवाला खाती है और फिर उसी हाथ से अपने छोटे भाई को प्यार से खाना खिलाती है। भाई भी बड़े आराम से अपनी बहन के हाथ से खाना खाता रहता है। दोनों के चेहरे पर मासूमियत साफ नजर आती है और यही मासूम रिश्ता लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात ये है कि इसमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता, ना किसी तरह की स्क्रिप्ट नजर आती है और ना ही कैमरे के लिए कोई दिखावा। ऐसा लगता है जैसे स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया हो। शायद यही वजह है कि लोग इस वीडियो से खुद को आसानी से जोड़ पा रहे हैं। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा देता है। वो खुद के लिए कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पर शिकन नहीं आने देता। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के संघर्षों को समझते हैं और उन्हें कोई खूबसूरत तोहफा देते हैं, तो वो पल बेहद खास बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी ने अपने पिता को उनके 50वें जन्मदिन पर एक चमचमाती बाइक गिफ्ट की है। इस प्यारे सरप्राइज को देखकर पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए और वीडियो देखने वाले लाखों लोग भी भावुक हो गए। अचानक मिले सरप्राइज से पिता इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया, जिसने इस पूरे प्लान को अंजाम देने में बहन की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर जुड़ी अपनी बेटी से बात की और खुशी के आंसू बहाते हुए उसे इस शानदार तोहफे के लिए धन्यवाद किया।
5: हैप्पी बर्थडे डैडी।
4: सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोस खूब पसंद किए जाते हैं जो ये याद दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने दिव्यांग कुत्ते की मदद कर लोगों की खूब तारीफ बटोरी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं। इसी दौरान एक दिव्यांग कुत्ता सड़क पार करने की कोशिश करता है, लेकिन भारी ट्रैफिक की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तभी वहाँ मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की नज़र उस कुत्ते पे पड़ती है। वो बिना देर किए सड़क के बीच पहुँच जाता है और आने वाली गाड़ियों को रोकने का इशारा करता है। कुछ ही सेकंड में वाहन रुक जाते हैं और पुलिस कर्मी कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराने में मदद करता है। इसके बाद कुत्ता आराम से दूसरी ओर पहुँच जाता है। ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे पाकिस्तान के सिंध इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक चाय पकौड़े वाले का देसी जुगाड़ देखकर हर कोई बोल रहा है, भाई ये बंदा तो जीनियस है। वीडियो में दिखता है कि एक दुकानदार सड़क किनारे अपनी बड़ी सी कढ़ाई में पकौड़े तल रहा है। कढ़ाई में तेल खूब गर्म है और पकौड़े छन छन कर तले जा रहे हैं। अभी तक तो सब नॉर्मल लगता है, ट्विस्ट तब आता है जब कैमरा थोड़ा जूम होता है। उसी कढ़ाई के अंदर गरम तेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्टील का बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में चाय उबल रही है। एक ही कढ़ाई में नीचे पकौड़े तले जा रहे हैं और ऊपर रखे बर्तन में चाय पक रही है। देखने वाला पहली बार में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन दुकानदार का लॉजिक एकदम साफ है। वो सीधे तेल में चाय नहीं बना रहा है, वो तेल की गर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। कढ़ाई का तेल इतना गर्म है कि उसके ऊपर रखा बर्तन अपने आप गर्म हो जाता है और उसी हीट से अंदर चाय उबलने लगती है। मतलब अलग से गैस जलाने की जरूरत ही नहीं, एक चूल्हे पर दो काम, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च के। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और जमकर इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक खेत दिखाई देता है जहां सामान्य तौर पर ट्रैक्टर से होने वाला काम ई रिक्शा की मदद से किया जा रहा है। आमतौर पर खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती है कि वो मिट्टी को आसानी से पलट सके। लेकिन इस वीडियो में लोगों ने ई रिक्शा के साथ ऐसा जुगाड़ किया है कि वो भी खेत जोतने का काम करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक सुकून भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक रात में पहाड़ों के बीच गिटार पर धुन बजाता दिख रहा है। बिना शब्दों की ये धुन सीधे दिल को छू रही है। नेचर और म्यूजिक के इस जादू को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे धुन बजती है लगता है मानो पहाड़ भी उसे सुन रहे हैं। वो म्यूजिक इतना सॉफ्ट और इमोशनल है कि सुनते ही मन एकदम शांत हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या ट्रेंड कर जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब बात अपने भारतीय गानों और डांस की हो तो भैया दुनिया के किसी भी कोने में लोग पैर थिरकाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक ऐसा ही दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ के एक व्यस्त बाजार में एक भारतीय लड़की ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर गाने पर ऐसा रंग जमाया कि वहाँ मौजूद विदेशी गोरे भी उसके साथ भांगड़ा करने पर मजबूर हो गए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom. Yikes. You could hire the guy your neighbor recommended, but I'm pretty sure that's just his cousin. Do we know if he's licensed, or does he just own a ladder?
7: Listen to your home. Go with Thumbtack. Upload a photo or voice note, and we'll diagnose your project and match you with the right pro for the job. Thumbtack. We know homes. Hire the right pro today.
8: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: आइए बात करेंगे गणेश उत्सव की तैयारियों की। देखिए, भले ही अभी बप्पा के आगमन में लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बप्पा के दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे में गुड न्यूज स्टूडियो की टीम पहुंची है मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा पंडाल के ठीक बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में, जहां पर बप्पा के बैठने के लिए एक से बढ़कर एक भव्य और अनोखे आसन मौजूद है। अलग अलग डिजाइन के ये सभी आसन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।

0: बप्पा के स्वागत की रंगत अभी से दिखने लगी है। बाजार में गणपति उत्सव की तैयारियों की रौनक उमड़ने लगी है। गणेश चतुर्थी में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बप्पा के स्वागत का रंग मुंबई में कुछ अलग ही होता है। इसका अंदाज आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां लगभग 2 महीने पहले ही गणेश जी के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए, लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृति जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर बहते झरने जैसा वाटरफॉल आसन यहाँ मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से लेकर महाराजा सिंहासन और माता लक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बप्पा के इस आसन को चुन रहे हैं।
2: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए हैं।
3: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे हैं। उसमें से मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विठल का है वो अच्छा लगा। ये 3 डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
4: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: हर साल बप्पा के स्वागत के लिए भक्त जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहे तो वो भी मुमकिन है। इस सहेली कार्यशाला में भक्त रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से बप्पा के लिए आसन तैयार कर सकते हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
0: जब मौका बप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बप्पा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स, उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं।
1: सिर्फ यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
5: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर

0: या रोमोटर मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
0: जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफी जो न्यूड आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगा है वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
1: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
0: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
1: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
0: साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबाग के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
2: इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाला सारा सामान जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। इस बार देश भर में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होगा। ऐसे में गणपति उत्सव की रौनक अभी से चारों तरफ दिखने लगी है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
4: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक रहेगा बादलों का डेरा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। यूपी और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
7: बैठे कहां हैं? एक बात और मेरे पागलों याद रखना, बैठने की तो बड़ी महिमा, स्थान की तो महिमा है ही है। आप कथा में बैठ गए तो आप श्रद्धालु हो गए, श्रोता हो गए। कौन हो गए? बोलो बोलो। जो कथा में बैठ गए वो कौन हो गए? श्रोता हो गए, श्रद्धालु हो गए। कितनी अद्भुत बात है, भगवान ने कृपा की आप कथा में आ गए। पर एक बात हम निवेदन करें, कथा कहने के पहले, कथा में तो आप बैठ गए ये बड़ी बात नहीं है, कथा आपके अंदर बैठ जाए ये बड़ी बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, यहां भी बैठे, चार दो पंडाल सामने लगे, दो पंडाल तीन बगल में लगे, सब पंडालों में लोग बैठे, पीछे भी कुछ लोग घर बैठ करके कथा सुन रहे, यूट्यूब पर सुन रहे, बागेश्वर धाम चैनल पर सुन रहे, सब लोग सुन रहे। पर भैया, कथा पंडाल में बैठना या कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए यह बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न उठता है कि दिल में कथा बैठे कैसे? सावधान से, जब तक कथा में बैठे ना तब तक सिर्फ कथा सुने, केवल कथा, सावधान होकर के बैठे। कथा सुनने का नियम क्या है? कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाए, कथा जब तक विराम ना हो तब तक भगवान को पीठ दिखा कर ना जाए, कोशिश भर। अब कोई जरूरी काम आ गया तो बात अलग है, पर बहुत जरूरी नहीं है ना, तो पूरी कथा विराम हो तब जाए, श्रोता सुन ले, यजमान जी। दूसरा नियम क्या है? इन 7 दिनों में वैसे तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर 7 दिन

तो छोड़ा ही देना, 7 दिन में तो ना बोलना, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है भूमि पर शयन करना। चौथा नियम ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा नियम, हो सके तो दिन में फलाहार रहो, रात को फुलाहार लो। पर मान लो कुछ गड़बड़ी है तो ठीक है, खा के आओ, पर इतना ही खा के आओ कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, प्रसाद तो पाके आओ पर थोड़ा कम, हाँ कम आहार, ताकि नींद भी ना आए। डिस्टर्ब कई प्रकार से होता है, केवल इससे नहीं, कई प्रकार से होता है। नींद आ जाए, ज्यादा पाने से नींद भी तो आती है, तो थोड़ा नींद भी ना आए, थोड़ा चैतन्यता बनी रहे, क्योंकि शरीर में जब भोजन जाता ना तो पूरा भोजन उसको पचाने में लग जाता, फिर कथा कौन सुनेगा, पड़ोसी। इसलिए कम आहार पाके आओ। पांचवा नियम, वो भी बहुत अच्छा नियम है, इन 7 दिनों में स्वस्ति तिलक मस्तक पर लगाना और वैष्णव मंत्र का जप करना। गुरु जी का कोई मंत्र दिया हो, राम नाम, या आपको जो मंत्र प्रिय लगता हो, आप जिनके उपासक हो, वो मंत्र जप करना। छठवां नियम, आहार पाएं पर वही आहार भोजन खाएं जिस जो ठाकुर जी को जिसका भोग लगाया जा सके। हम दरबार में बैठे थे तो एक बार हमसे गलती हो गई, हमने एक चेला को कहा बेटा लहसुन प्याज नहीं करना, बाकी आगे का नहीं बोल पाए। तो एक साल बाद हमारे पास आया, बोले गुरुजी 2 काम तो हो गए पर एक नहीं हो रहा। हमका नियम पूरा किया, अरे बोले लहसुन प्याज आज तक छुआ नहीं। तो हमने अपने गुरुजी से वाईफाई में सिग्नल मिलाया कि 1 साल से आ रहा है और हमने इसको वचन दे दिया था, इसका काम क्यों नहीं हो रहा। बोले इससे कहो पौवा बंद क्यों नहीं किया। तो हमने कहा ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा, तो पौवा पीता रहा 6 दिन और मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करता रहा, अब कहां से तुझ पे कृपा हो जाए। बोले गुरुजी आपने कहा था लहसुन प्याज नहीं खाना, भगवान कसम लहसुन प्याज नहीं खाया। हमका मूसर चंदा लहसुन प्याज नहीं खाया, बाकी सब। बोले बाकी रोका ही नहीं आप। इसलिए हम ये छठवां नियम बता रहे स्पेशल, वही पाए जिससे जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके। आहार में भी सात्विक आहार। 7वां नियम, यजमान खास करके सुने, 7वां नियम है कथा सुनने का, 7 दिन की कथा है, 7 नियम। 7वां नियम है इन 7 दिनों में दुश्मन भी आ जाए तो भी मन में ईर्ष्या ना लाना। यही सोचना इतने बड़े पंडाल में लगता है हनुमान जी कोई ना कोई रूप बना करके कथा सुनने आए, क्योंकि हर कथा में कोई पहुंचे या ना पहुंचे, हमारे हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं, पूछो क्यों।

0: राम लखन
1: सीता मन बसिया।
0: हनुमान जी को कथा प्रिय है, हम लोगों को वृथा प्रिय है। पूछो क्या प्रिय है? हाँ, कथा होत के बीच में हम लोगों की बात, हमारी नहीं, तुम सुनो अपनी भी 50-50। कथा होत के बीच में पाप उठे या कुलाए, या सोवे या लड़ पड़े, या उठ के भग जाए। कथा के बीच में ना पाप बड़े अकुलाते, क्योंकि जब कथा की वाणी कानों से अंदर जाती ना तो भीतर खलबली मचती है। जैसे बहुत नींबू पी लेने से पेट में खलबली मचती ना, वैसे ही कथा सुनने से पापों को खलबली मचती है कि ये क्या हो गया। लगता है ये जो बार बार कानों से आ रहा ना, हम लोगों को हाउस खाली करना पड़ेगा। तो पाप अकुलाते हैं। अब पाप अकुलाते हैं तो क्या करते हैं वो? दो तीन काम। जैसे ही कथा में बैठेंगे तुरंत नींद आएगी, और कई लोगों को इतनी गहरी नींद आती है कि लास्ट ही में जय बोलते हैं। हाँ, और हमने ऐसे भी श्रोता देखे, वो लोग फिक्स है, वो कथा में सबसे आगे आएंगे, ऐसी जगह देखेंगे जहां टिक जाए। हाँ, फिर बड़ा आनंद लेते हैं। बोलो सीताराम। त्यागी कौन है? पूछो कौन? तजो पिता पहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत व्रज नंदन भय मुद मंगल कारी। कौन है त्यागी? तजो पिता पहलाद। प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया, किसके कारण? भगवान के कारण। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, किसके कारण? भगवान के कारण। और सबसे बड़ा रिश्ता मां का होता, पर भरत महतारी, किसके कारण? भगवान के कारण। बलि गुरु तजो, गुरु का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ है। सबकी आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता, पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन बलि महाराज ने गुरु का परित्याग कर दिया, किसके कारण? बोलो बोलो बोलो, भगवान के कारण। कंत ब्रज नंदन भय मुद मंगलकारी। जो राम का नहीं वो किसी, तो भागवत का अर्थ है भक्ति, भागवत का अर्थ है ज्ञान, भागवत का अर्थ है वैराग्य, भागवत का अर्थ है त्याग। पर भक्ति हो भगवान युक्त, ज्ञान हो भगवान युक्त, वैराग्य हो भगवान युक्त, त्याग भी हो वो भी भगवान युक्त। जो केवल भगवान के लिए जो करे वही भागवत का सच्चा श्रोता है। बोलो सीताराम। इसलिए तो भागवत जी के प्रारंभ में ही बड़ा मधुर श्लोक आया, सच्ची

भागवत जी के महात्म्य में ही भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया। बोले कौन कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाया, जो सत है, चित है और आनंद से परिपूर्ण है, वो है सच्चिदानंद। कौन कृष्ण? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, हेतु है, वो कृष्ण। बोले कौन कृष्ण? बोले भैया जो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हो, जिनका नाम लेने से तीनों ताप मिट जाते हो। बोले कौन कौन से ताप?

0: बोले कौन कृष्ण?
1: श्री कृष्णाय वयम नमः।
0: बोले कौन? तापत्रे विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो किसी ने कहा महाराज भागवत जी की महिमा क्या है? सुखदेव जी महाराज की एक चर्चा बहुत अच्छी बहु प्रचलित है कि जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की ना, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता बोले महाराज ये अमृत है। सुखदेव जी बोले हम क्या करें? बोले देवता बोले महाराज परीक्षित जी को श्राप है, सातवें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे नहीं। तो सुखदेव जी बोले ये तो हो गया हमारा फायदा, तुम अपना बताओ तुम्हें क्या फायदा अमृत पिलाने से? बोले फायदा तो कुछ नहीं है, ये जो भागवत आप इन्हें पिला रहा है ये हमारे यहां ले चलो। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी बताओ अमृत पियोगे या कथा अमृत पियोगे? बताओ महाराज अमृत पियोगे या कथा अमृत? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात बताओ फायदा किसमें है, फायदा किसमें है? बोले देखो दो में से एक कुछ मिलेगा, या तो कथा अमृत या ये देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन से निकला ये अमृत। पर फायदे की बात सुनो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, कहां कथा कहां ये अमृत? अरे परीक्षित जी कहां मणि और कहां कांच? ये अमृत जो देवता लेके आए ये कांच है और ये जो कथा है ना ये मणि है मणि। बोले महाराज कैसे? सुखदेव जी समझाने लगे राजन ये मणि इसलिए है कि आप अमृत पियोगे तो मरोगे तो नहीं ये पक्का है, लेकिन पिट गए तो दर्द में पड़े रहोगे, दर्द नहीं जाएगा। भाई हुआ क्या? यही तो हुआ, देवताओं को रावण खूब रगड़ रगड़ के मारता था और जैसे ही रावण घर से निकले और देवताओं को पता लगे कि इस तरफ एम्बुलेंस आ गई, मतलब रावण आ गया, सब देवता भाग जाते थे। तो किसी ने कहा देवताओं से कि तुम क्यों भागते हो, तुम क्यों रावण से डरते हो, तुम तो अमर हो अमर। देवता बोले अमर तो है, ये तो पक्का है मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कितने दिन पिटना है। और बोले पिटना भी बुरी बात थोड़ी है, बोले पिटने के बाद जो सिकाई होती है कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ रहा जाता है, ऐसी हालत होती है, इसलिए बोले बहुत बुरी हालत होती है, इसलिए हम लोग बचते ही हैं। तो देवता बचते कैसे थे? रावण जैसे ही आवे सो भाग जाए और सब देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाए। तो किसी ने कहा कि तुम छोटी गुफाओं में क्यों घुसते हो? देवता बोले रावण की आदत है, रावण झुकता नहीं है, घमंडी है, झुकता नहीं है, वो बड़े दरवाजों में तो आ जाता है छोटे दरवाजे में नहीं आता, इसलिए देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस के रावण से कहे दम हो तो आ आ। तो रावण कहे अब तुम अंदर हो, अब हम सिर नहीं झुका सकते, तुम में दम हो तो इधर तक आओ, फिर बताते हैं। उस बालक को आने देना, बेटे तुम आ जाओ लेके।

0: क्या आपके पर्स को ठीक से रखने से पैसा आ सकता है? पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे पैसा आता रहे? पर्स के रंग पर, पर्स के पैसों पर किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? क्या रखें अपने पर्स में आता रहे धन? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Thumbtack presents. Uncertainty strikes. I was surrounded. The aisle and the options were closing in. There were paint rollers, satin and matte finish, angle brushes and natural bristles. There were too many choices. What if I never got my living room painted? What if I couldn't figure out what type of paint to use? What if I just used Thumbtack? I can hire a top-rated pro that knows everything about interior paint, easily compare prices, and read reviews. Thumbtack knows homes. Download the app today.
2: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
3: Lee looks for someone, finds the right someone. And Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
2: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
4: Because people who all watch games, they hear the voice.
2: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
5: लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक रहेगा बादलों का डेरा। हिमाचल उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, यूपी और बिहार के भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। अमरनाथ यात्रा पर भी बादलों का साया, भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। पुरी में बारिश के दौरान भी रथ यात्रा उत्सव आस्था और उत्साह के साथ जारी, अडपा मंडप में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नेपाल की त्रिवेणी नदी से बहकर आई डॉल्फिन के लिए चला विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन, बनाया गया 52 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, 26 जुलाई तक बारिश का दौर बने रहने की संभावना। देश के कई राज्यों में मॉनसून हुआ एक्टिव, मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद, बारिश से प्रभावित 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना, असम और मेघालय के लिए भी मौसम का रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र कोंकण और गोवा के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा और बीकानेर संभाग में हो सकती है भारी बारिश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 4 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों और बाजारों तक पानी भर गया, अस्पताल परिसर में भी जलभराव होने से मरीज हुए प्रभावित। भारी बारिश के कारण असम के कई जिलों में भरा बाढ़ का पानी, 16 जिलों के 3,62,000 लोग हुए प्रभावित, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के चलते शहर की कई सड़कें अचानक पानी में डूबी, सिटी मजिस्ट्रेट ने जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। तमिलनाडु के वेल्लोर में जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से अचानक निचले इलाकों में आया मलबा, प्रशासन और राहत टीमें अलर्ट पर। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन टनल में करीब 17 मजदूर फंसे, समरडोंग मामरिंग टनल में बचाव अभियान जारी। मूसलाधार बारिश के बाद टिहरी जिले में चारधाम यात्रा मार्ग पर आई चट्टाने और मलबा, प्रशासन ने कई घंटे में मशीनों के जरिए मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। लैंडस्लाइड के चलते देहरादून मसूरी हाईवे को हुआ नुकसान, प्रशासन ने हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया। पटना में बारिश की वजह से बेकाबू हुई कार नाले में गिरी, हादसे में बाल बाल बची ड्राइवर की जान। भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी अमरनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बाढ़ बारिश के बीच सीआरपीएफ के जवान बने देवदूत, सीआरपीएफ जवानों ने रेस्क्यू कर महिला को पहुंचाया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के रजौरी में भारी बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न, पुल क्षतिग्रस्त, लोगों के घरों में घुसा पानी। लगातार बारिश के कारण रजौरी के नौशेरा में मुनवार नदी उफान पर, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पुंछ में एलओसी से सटे माल्टी में फ्लैश फ्लड, घरों शेड और राशन की दुकानों तक पहुंचा नुकसान। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का छठा दिन, अड़पा मंडप में दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। पुरी में बारिश के दौरान भी रथ यात्रा उत्सव आस्था और उत्साह के साथ जारी, तापमान में कमी आने से लोगों को राहत मिली। रथ यात्रा उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का होता है विशेष श्रृंगार, संध्या काल में निभाई जाती है संध्या धूप, विशेष आरती और भोग की परंपरा। पुरी में अड़पा मंडप में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं लाखों श्रद्धालु, मान्यता के मुताबिक अड़पा मंडप दर्शन से कई गुना मिलता है पुण्य। सात दिन मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में रहते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, 24 जुलाई को होगी वापसी रथ। अकोला में जीवंत हुई जगन्नाथपुरी की सदियों पुरानी प्रसाद की मटकी परंपरा, आषाढ़ अमावस्या के बाद पहले सोमवार को भरी गई भगवान जगन्नाथ की प्रसाद मटकी। गुड़ के गुलगुले, मीठी रोटी, पूड़ी, गुजिया और मीठे भात से भरी गई विशेष प्रसाद की मटकी, 24 घंटे भगवान को अर्पित रहने के बाद श्रद्धालु में बांटा जाता है महाप्रसाद। भगवान जगन्नाथ के दर्शन और महाप्रसाद के लिए उमड़े श्रद्धालु, परंपरा श्रद्धा और संस्कृति का अनूठा संगम बना कोला। मान्यता है कि जो पुरी नहीं जाते उन्हें अकोला में ही मिलता है महाप्रसाद का पुण्य, चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। जगन्नाथ भक्ति की सदियों पुरानी परंपरा आज भी अटूट, पूर्वजों और विरासत को आज भी पूरे श्रद्धा भाव से निभा रहा है गुप्ता परिवार। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज। गणपति बप्पा के आसनों से सजे हैं बाजार। सहेली कार्यशाला में इको फ्रेंडली गणेश आसन की धूम। बप्पा के लिए साई रूप, महादेव, शिवलिंग और महाराजा आसन बने आकर्षण का केंद्र। लालबाग में गणपति के सिंहासन और सजावट के सामान की बड़ी मांग। गणेशोत्सव से पहले मुंबई के बाजारों में दिखने लगी उत्सव की रौनक। गणेश दरबार सजाने के लिए फूल मालाएं, लड़ी, मुकुट और आरती की थाली की खरीदारी तेज। भक्तों के लिए तैयार है मोरिया, वक्रतुंडो और मंगल मूर्ति जैसे खास सिंहासन। कार्यशाला में कच्चा सामान भी उपलब्ध। घर पर बना सकते हैं बप्पा का आसन। बप्पा के स्वागत में मुंबई का बाजार पूरी तरह से तैयार। 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश महाउत्सव को लेकर मुंबई में उत्साह चरम पर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नेपाल की त्रिवेणी नदी से बहकर आई डॉल्फिन मछली के लिए चला विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन। बताया गया 52 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर। महराजगंज जिले की नहर में बहकर पहुंची थी 60 फीट की डॉल्फिन मछली। वन विभाग की टीम ने विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर डॉल्फिन को सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ा। तीन दिन से फंसी थी डॉल्फिन मछली के रेस्क्यू के लिए दो दिन तक चली नहर से निकालने की कोशिश। डॉल्फिन की जान बचाने के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री साय ने छोटे स्कूली बच्चों को मिठाई खिलाकर किया स्वागत। छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव के जरिए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। बड़े स्तर पर चला जा रहा है शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान। श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन। नई पीढ़ी को किताबों और रचनात्मक सोच के प्रति प्रेरित करने का संदेश। बुक फेस्टिवल में कई भाषाओं और संस्कृति की किताबों का प्रदर्शन। छात्रों के साथ साथ हर उम्र के लोगों ने किताबों के प्रति दिखाई दिलचस्पी। देश में स्वच्छता के लिए मशहूर इंदौर में सफाई मित्रों की ईमानदारी और मेहनत बनी मिसाल। सैकड़ों टन कचरे के बीच 24 घंटे में खोज निकाला 2 किलो चांदी का लोटा। एक परिवार ने अनजाने में कचरे में फेंक दिया था 2 किलो चांदी का लोटा। नगर निगम की टीम ने ट्रैचिंग ग्राउंड में घंटों तक कचरे की छटाई कर कीमती लोटे को खोज निकाला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सड़क पर बाइक से स्टंट करना युवक को पड़ा भारी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार करके की कार्रवाई। पुलिस ने लोगों से सड़क पर स्टंट ना करने की अपील की। महाराष्ट्र के अमरावती में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। इस्कॉन की शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। फूलों से सजे रथ पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मनमोहक प्रतिमाएं विराजमान। श्रद्धालुओं ने पूरे मार्ग में रथ खींचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। जूनागढ़ में गिरनार निर्माण लड्डू महोत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। गिरनार तीर्थ यात्रा मार्ग पर 500 से ज्यादा जवान तैनात। गुजरात के भावनगर में ड्रैगन फ्रूट की खेती ने जिले के किसानों की किस्मत बदली। पारंपरिक फसलों के मुकाबले आमदनी में हुई बढ़ोतरी। भावनगर में 30 से भी ज्यादा किसान कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती। आमदनी बढ़ने से परिवारों की आर्थिक स्थिति हो रही है बेहतर। जम्मू कश्मीर में 37 साल बाद विचारनाग मंदिर फिर से खोला गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मरम्मत किए गए ऐतिहासिक विचारनाग मंदिर का उद्घाटन किया। कश्मीरी पंडितों ने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मंदिर के फिर से खुलने का स्वागत किया। विचारनाग स्थापन ट्रस्ट ने मंदिर की मरम्मत के काम में निभाई अहम भूमिका। बिहार में महादेव के भक्तों को मिली सौगात। सोमनाथ धाम दर्शन के लिए विशेष ट्रेन को पाटलिपुत्र स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। बिहार सरकार ने श्रद्धालुओं को फ्री तीर्थ यात्रा का तोहफा दिया। विशेष ट्रेन में मेडिकल टीम भी श्रद्धालुओं के साथ भेजी गई। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन तथा प्रशासनिक तैयारियों पर हुई चर्चा। फिल्म रामायण में जटायु के किरदार में नजर आएंगे अनुपम खेर, रावण के साथ करेंगे युद्ध। आठ अगस्त को बेंगलुरु में होगा फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर जारी, 26 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। द ओडिसी का बॉक्स ऑफिस पर उठा तूफान, तीसरे दिन भी डबल डिजिट में कमाई, 60 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन। आप लोगों की तबीयत कैसी है? 60 साल के सलमान खान ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, बीमार होने की खबरें का किया खंडन। तारक मेहता के निर्माता असित मोदी त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंचे, शिव पार्वती व्यास स्थल पर की विशेष पूजा, पुत्र के विवाह के लिए पौराणिक स्थल भी देखा। एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट क्षेत्र में उभरते चीन का दावा, दुनिया के आधे से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट मॉडल अब चीन में विकसित। MIIT के मुताबिक चीन ने 400 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट मॉडल तैयार किए, चार पैरों वाले रोबोट की करीब 70% बिक्री चीनी कंपनियों की। इंटेलिजेंट रोबोटिक्स सेक्टर में चीन ने दुनिया में बनाई मजबूत बढ़त, चीन के बड़े उद्योगों में AI उपयोग 30% के पार। रोबोटिक्स और AI के दम पर चीन की टेक इंडस्ट्री ने पकड़ी तेज रफ्तार, ह्यूमनॉइड रोबोट निर्माण में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा। रोबोटिक्स में चीन का वैश्विक दबदबा बढ़ा, ओपन सोर्स AI लार्ज मॉडल के 10 अरब से ज्यादा वैश्विक डाउनलोड का किया दावा। AI और रोबोटिक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है चीन, दुनिया के आधे से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट प्रोडक्ट चीन में विकसित। नई ऊर्जा और बायोमेडिसिन सेक्टर में चीन की यूनिकॉर्न कंपनी का उभार, रोबोटिक्स और AI में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है चीन। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन, AI के ग्लोबल पार्टनर के रूप में चीन की बढ़ती भूमिका पर जोर। चीनी AI मेडिकल समाधानों ने दुनिया भर का खींचा ध्यान, AI एजेंट अब MRI स्कैन से 74 तरह की बीमारियों की पहचान करने में सक्षम। शंघाई में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के 18 सफल ऑपरेशन पूरे, BCI टेक्निक से लक वाग्रस्त मरीज सिर्फ सोच के व्हीलचेयर चलाने में सफल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
2: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
3: सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि व्रत और उपवास रखने के फायदे क्या हैं और कौन सा व्रत रखने से आप अपने जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं व्रत और उपवास के बारे में। व्रत और उपवास का महत्व क्या है? देखिए, व्रत या उपवास जो रखा जाता है वो वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना होता है और आध्यात्मिक रूप से व्रत रखने से मन और आत्मा को नियंत्रित किया जाता है। ये जो अलग अलग तिथियां हैं और अलग अलग दिन हैं, ये अलग तरीके से मन पर और शरीर पर असर डालती हैं। इसको ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों और दिनों को उपवास रखा जाता है या व्रत रखा जाता है कि आपके मन पर इसका सही प्रभाव पड़े। विशेष तिथियां जैसे एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष, अमावस्या या विशेष दिन सोमवार, मंगलवार, रविवार, इनमें जब आप सोच समझ कर व्रत उपवास रखते हैं तो शरीर और मन शुद्ध होता है, मनचाही इच्छाएं भी आपकी पूरी होती हैं। यानी व्रत उपवास का जो नियम बनाया गया है वो इस आधार पर बनाया गया है कि अलग अलग तिथियों का, अलग अलग दिनों का आपके ऊपर अच्छा और सही प्रभाव पड़ सके। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, वैसे तो साल भर में बहुत सारे व्रत आते हैं, बहुत सारे उपवास आते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि कौन से व्रत सबसे महत्वपूर्ण हैं और इनके फायदे क्या हैं। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष और नवरात्रि के माने जाते हैं। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है,
धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का या अमावस्या का व्रत रखने से हार्मोन की समस्या ठीक होती है और आपके मनोरोग, आपकी मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। वर्ष में दो बार संधियां पड़ती हैं जब ऋतुओं में बड़ा परिवर्तन होता है। उस समय शरीर की धातुओं को ठीक रखने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नवरात्रि के व्रत का नियम बनाया गया है। वर्ष में केवल दोनों नवरात्रि का उपवास रखने से आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और साल भर स्वस्थ रह सकते हैं। महीने में दो एकादशी, दो प्रदोष, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है। तो या तो दोनों एकादशी का व्रत रखें, या दोनों प्रदोष का व्रत रखें, या एक पूर्णिमा और एक अमावस्या का व्रत रखें। और अगर हर महीने ऐसा नहीं कर पाते तो पूरी नवरात्रि में, चैत्र वाली में यानी अप्रैल वाली में, और आश्विन वाली यानी अक्टूबर वाली नवरात्रि में 9-9 दिन का अगर आप व्रत रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि आप कोई भी व्रत रखते हैं उसके नियम क्या हैं। देखिए, व्रत दो तरीके से रखा जाता है। एक है निर्जल व्रत, यानी जिसमें पानी की एक घूंट भी नहीं पिएंगे, और एक है फलाहारी व्रत, फल खाकर या जल पीकर व्रत रखना। सामान्यतः निर्जल व्रत जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को, जल पीकर, लिक्विड लेकर या फल खाकर उपवास रखना चाहिए। देखिए, उपवास का मतलब होता है उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। तो व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उपासना में आप लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खान पान में रस वाले फल, कंद, मूल, जल, दूध या दही का सेवन करें। अब ऐसा नहीं कि कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी, शामक के चावल, बाकला की दाल, ये सब मत खाइए, फिर व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि केवल नींबू पानी पीकर या फलों का लिक्विड रस पीकर व्रत रखिए और पूरा समय भगवान की पूजा में लगाइए। शाम के समय जब आप पूजा कर लेते हैं या शाम के समय जब आप अर्घ दे लेते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फल खाना चाहिए। व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पी करके करना चाहिए, और अगर संभव हो तो अगले दिन व्रत समाप्त करने के पहले,
भोजन या अन्न का दान करना चाहिए, उसके बाद अनाज खा करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। अब जानते हैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, धन के लिए कौन सा व्रत अच्छा है। देखिए, एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में सबसे ज्यादा अच्छा है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करें या अपने इष्ट देव की पूजा करें। नमक और अन्न का सेवन ना करें। जहां तक हो सके जल वाले आहार, लिक्विड डाइट लेना चाहिए। और एकादशी के व्रत में अगर गुरु मंत्र मिला है तो अपने गुरु मंत्र का जप करें या विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, व्रत और उपवास में दो बातें आपको जरूर समझनी हैं, तभी आपको व्रत और

लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है तो चांदी का एक गिलास खरीद लें, जब भी पानी पिएं, जब भी लिक्विड लें, चांदी के गिलास से पिएं तो अच्छा होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक रहेगा बादलों का डेरा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। यूपी और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। अमरनाथ यात्रा पर भी बादलों का साया। भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी यात्रा। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। पुरी में बारिश के दौरान भी रथ यात्रा उत्सव आस्था और उत्साह के साथ जारी। अड्डपा मंडप में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नेपाल की त्रिवेणी नदी से बहकर आई डॉल्फिन के लिए चला विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन। बनाया गया 52 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: तो चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं आज के विषय के बारे में। आज हम पंडित जी के साथ चर्चा करने वाले हैं कि पर्स में कौन कौन सी ऐसी आवश्यक चीजें आपको रखनी चाहिए जिससे धन का संचार लगातार आपके जीवन में बना रहे। पर्स में कौन सी 5 ऐसी जरूरी चीजें आपको रखनी चाहिए जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पंडित जी विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और साथ ही महाउपाय भी बताएंगे। आपके सवाल भी इस शो में हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
4: अपने राशि के अनुसार अगर राशि के अनुकूल रंग का आप पर्स रखें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राशि के अनुकूल रंग का पर्स रखने से जीवन में निरंतर धन का आगमन होता रहता है।
3: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 21 जुलाई 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
4: दिनांक 21 जुलाई

0: 26 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात के 8:49 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:54 तक, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी कि आपके पर्स में, वॉलेट में कौन कौन सी चीजें आप रख सकते हैं जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है, पैसा आपके पास आ सकता है। पर्स का किस्मत के साथ कनेक्शन क्या होता है पंडित जी, पहले वही जानते हैं आपसे।
0: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पर्स में ऐसी कौन कौन सी चीजें रखें जिसको रखने से आपका भाग्य चमके, आपका भाग्य बेहतर हो। पर्स का आपके भाग्य के साथ क्या संबंध है? देखिए, पर्स सामान्यतः धन रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर आपका पर्स भी धन रखने का स्थान ही है, इसीलिए पर्स का प्रयोग करने में कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए। अगर आप सोच समझकर पर्स रखेंगे, पर्स में वस्तुएं रखेंगे, तो इससे धन का आगमन सरलता से हो पाएगा और आपको धन की कमी नहीं होगी, आपको धन का अभाव नहीं होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि अपने पर्स में 5 ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको रखना चाहिए, या 5 ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके पर्स में निरंतर धन आता रहे।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के साथ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले राशिफल की तरफ बढ़ते हैं और पहली 3 राशियों का हालचाल पंडित जी आपको बताएंगे। मेष, वृष और मिथुन वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से जानते हैं।
0: मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए पंडित जी से हमने प्रश्न किया था कि पर्स में कौन कौन सी आवश्यक चीजें रख सकते हैं जिससे धन की कमी आपको जीवन में कभी नहीं खलेगी, तो पर्स में पहली ऐसी कौन सी चीज रखना इंपॉर्टेंट होता है पंडित जी?
0: पर्स में पहली चीज आपको क्या अवश्य रखनी चाहिए आपको बताते हैं। देखिए, पर्स में अपने गुरु या देवी देवताओं के चित्र सामान्य स्थितियों में नहीं रखने चाहिए। आप अपने पर्स में अपने परिवार का चित्र चाहें तो रख सकते हैं और चाहें तो अपने पर्स में ओम का या स्वस्तिक का प्रतीक भी रख सकते हैं। आप अपने पर्स में लाल रंग का ओम या लाल रंग का स्वस्तिक रखें तो बहुत अच्छा होगा। जो भी चित्र या प्रतीक आप अपने पर्स में रखें वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ और सुंदर होना चाहिए। फटा हुआ चित्र रखने से आपको पैसों का नुकसान हो सकता है।
1: चलिए पहली चीज तो पंडित जी ने आपको बता दी कि पर्स में आपको क्या नहीं रखना चाहिए, कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं और कौन सी नहीं। अब दूसरी ऐसी कौन सी चीज हमें पर्स में रखनी चाहिए जिसका फायदा हमें मिले पंडित जी?
0: देखिए, पर्स में रुपए और पैसे तो आप रखते ही हैं, वो तो उसका मुख्य काम है, लेकिन पर्स में रुपए और पैसे ठीक से रखिए। मोड़ कर, ठूंस कर, उल्टे सीधे तरीके से पैसे और रुपए मत रखिएगा। सिक्कों को नोट से अलग रखिए, रुपए अलग रखिए और सिक्के अलग रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर पर्स में आप रुपए और पैसे को सलीके से रखेंगे, मोड़ कर ठूंस कर नहीं रखेंगे तो धन का अपव्यय नहीं होगा। तो आप आराम से अपना पर्स एक दिन सेट करिए, पैसों और रुपयों को तरीके से रखिए और सिक्कों को अलग रखिए, रुपयों को अलग रखिए। अगर आप इस तरीके से अपना पर्स रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए और भी सवाल पंडित जी से जानेंगे और पूछेंगे जिसके जवाब पंडित जी आपको देंगे। अब बारी आती है राशिफल पर वापस आने की और कर्क सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह सिंह राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए बढ़ते हैं आप सबके प्रश्नों की तरफ। इससे पहले कि पहले प्रश्न की तरफ बढ़ें, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका भी, कोई भी परेशानी है उसका आप जवाब जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है बताइए जरा।
0: जी, आज का पहला प्रश्न अभय जी ने हमें लिखा है और अभय जी हमें मेरठ उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 सितंबर 1990, जन्म का समय शाम के 7:10, जन्म स्थान है मेरठ। अभय कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्या मेरा ये वैवाहिक जीवन चल सकेगा और आगे का जीवन मेरा कैसा रहेगा। अभय, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आपका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा, कुछ समय तक शांति बनाए रखने की जरूरत अवश्य है। अक्टूबर 2026 तक शांति बनाए रखें, इसके बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। एक मोती बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का वक्त हो चला है और जानते हैं पंडित जी से ही कि आप में से कौन से दर्शक का है अगला सवाल।
0: जी, अगला प्रश्न सावित्री जी ने हमें लिखा है और सावित्री जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 मार्च 1994, जन्म का समय सुबह के 8:15, जन्म स्थान है भागलपुर बिहार। मेल लिखती हैं पटना से। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरी बेटी का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सावित्री जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इस समय उनका विवाह तय होने की संभावना बन रही है और साल 2027 के आरंभ तक इनका विवाह होना चाहिए, लेकिन जब भी इनका विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा ताकि इनका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। एक मोती बनवा के इनको पहनाइए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से पहली और दूसरी चीज के बारे में तो आपने समझ लिया, पर्स में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, पर्स में तीसरी ऐसी कौन सी आवश्यक चीज है जो रखने से हमें भरपूर फायदा होगा पंडित जी?
0: तो पर्स में दो बातें कौन सी हैं महत्वपूर्ण वो आपने समझा क्या रखना है, अब पर्स में तीसरी किस बात का ध्यान रखना है, कौन सी चीज रखनी है? अपने पर्स में एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा यानी वर्ग आपको रखना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए सोने या पीतल का। इसको गंगा जल से धो करके अपने पर्स में बृहस्पति वार को रख लीजिए और हर महीने में इसको निकाल करके गंगा जल से धो करके शुद्ध करते रहिए। अगर आप अपने पर्स में सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा रखेंगे तो आपके पर्स में स्थायी धन परमानेंट पैसा बना रहेगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है वापस राशिफल पर आने की और तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से विस्तार से जानते हैं।
0: तुला राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में शांति बनाए रखें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जानते हैं पहली दूसरी तीसरी चीज के बारे में आपने समझा, अब चौथी चीज के बारे में समझेंगे कि पर्स में ऐसी कौन सी चौथी चीज हमें रखनी चाहिए जिसका फायदा हमें मिले पंडित जी?
0: तो पर्स में चौथी चीज क्या रखें या चौथी किस बात का ध्यान रखें? देखिए पर्स में अगर आपको कागज रखने हैं तो बहुत थोड़े जो बड़े महत्वपूर्ण कागज हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी है या एकाद कोई रसीद है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने पर्स में रख सकते हैं। पर्स में बहुत ज्यादा कागज ठूस करके मत रखिए। बहुत लोगों के पर्स में पैसा नहीं होता, कागज ठूस ठूस कर पर्स में रखे रहते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप अपने पर्स में कागज रखेंगे तो इससे धन का अपव्यय होगा, धन की बर्बादी होगी। और अगर पर्स में ज्यादा कागज ठूस कर रखेंगे तो पर्स के गायब हो जाने का खतरा बना रहेगा। इसलिए पर्स में जो बहुत जरूरी कागज हैं, एकाध दो वही कागज रखिए। पर्स में अनावश्यक कागज ठूस करके इकट्ठा मत करिएगा।
1: चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि पर्स में ऐसी कौन सी पांचवी चीज हमें रखनी चाहिए जिसका एक तो हमें ख्याल भी रखना चाहिए और ऊपर से उसका फायदा भी हमें जीवन में मिले। पंडित जी,
0: पर्स में पांचवी कौन सी चीज रखें, किस बात का ध्यान रखें ताकि धन निरंतर आता रहे, धन की बर्बादी ना हो, पर्स गायब ना हो। पांचवी चीज क्या है? अपने पर्स में अपनी राशि की छोटी सी वस्तु आपको जरूर रखनी चाहिए। जो चीज आपकी राशि से संबंधित है उसका छोटा सा प्रतीक, उसका छोटा सा सिंबल आपको अपने पर्स में रखना चाहिए। आप चाहें तो अपने राशि से संबंधित रंग की कोई भी वस्तु अपने पर्स में रख सकते हैं। जैसे अगर आपकी कुंभ राशि है, मकर राशि है, तो आपका रंग है नीला या काला, तो नीले या काले रंग की छोटी सी चीज आप अपने पर्स में रख लें। अगर अपने राशि से संबंधित वस्तु आप अपने पर्स में रखेंगे तो इससे धन की प्राप्ति सरलता से होती रहेगी। और अगर आपको अपने राशि की वस्तु समझ में नहीं आ रही तो पहले ही आपको बताया है कि सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा ये आपको अपने पर्स में जरूर रखना है ताकि धन निरंतर आपके पास आता रहे।
1: और चलिए इसी के साथ बढ़ चले हैं अंतिम तीन राशियों की तरफ। पंडित जी से ही जान लेते हैं कि इनका वक्त कैसे रहने वाला है। अभी बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: करेगी। ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और दर्शकों का ही अगला सवाल लेते हैं। पंडित जी से जानते हैं कि कौन सा है अगला प्रश्न। पंडित जी
0: जी, अगला प्रश्न हमें अपूर्वा ने लिखा है और अपूर्वा हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर सन 2000। जन्म का समय शाम के 6:40। जन्म स्थान है मुंबई। अपूर्वा कह रही हैं कि मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और आगे मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहती हूँ। क्या मैनेजमेंट करना मेरे लिए बेहतर होगा या मुझे टीचिंग सेक्टर के लिए कोशिश करनी चाहिए? अपूर्वा, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैनेजमेंट की शिक्षा में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, बाद में फाइनेंस में, मार्केटिंग में, अकाउंटिंग में, ऑडिट में अगर आप अपना करियर बनाएं तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का। इससे पहले आपको एक बार फिर से सूचित कर देती हूँ कि कोई भी प्रश्न है आपका भी, आप ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। तो पंडित जी, अंतिम सवाल किसका है?
0: जी, अंतिम प्रश्न हमें अनूप जी ने लिखा है और अनूप जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 अक्टूबर 1994। जन्म का समय शाम के 7:00। जन्म का स्थान है बूंदी, राजस्थान। अनूप जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अनूप, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर बेहतर रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। सवाल पंडित जी ये है कि आपने तमाम चीजों के बारे में हमें बताया कि कौन सी चीजें आवश्यक हैं पर्स में रखने के लिए, जिसका किस्मत के साथ कनेक्शन है और जिसका फायदा होगा। अब ये बताइए कि पर्स खरीदते वक्त पर्स के कलर का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि इस कलर का पर्स ही हमें स्पेसिफिकली लेना चाहिए, उसका फायदा होता है?
0: जी देखिए, पर्स में कौन सी 5 चीजें आप रखें और आपको लाभ हो वो तो हमने आपको बता दिया। पर्स का रंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबके लिए एक ही रंग नहीं चलेगा। एक आजकल एक फैशन चल गया है कि सब लोग हरे रंग का पर्स ले लो, हरे रंग के पर्स में पैसे आते हैं। ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली का जो धन स्थान का स्वामी ग्रह है या जो भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह है, उससे संबंधित रंग का पर्स लेने पर आपको लाभ होगा। जैसे मेष लग्न वालों को सफेद, क्रीम या पीले रंग का पर्स लेना चाहिए, वृष लग्न वालों को हरे रंग का या नीले रंग का पर्स, मिथुन लग्न वालों को सफेद रंग का या नीले रंग का पर्स, कर्क लग्न वालों को लाल, भूरा या पीले रंग का पर्स, सिंह लग्न वालों को हरे रंग का या लाल रंग का पर्स, कन्या लग्न वालों को क्रीम, गुलाबी, सफेद रंग का पर्स, तुला लग्न वालों को काला नीला पर्स भी सूट करता है, इसके अलावा ऑरेंज कलर का पर्स भी ले सकते हैं। वृश्चिक लग्न वाले पीले या सफेद रंग का पर्स इस्तेमाल करें, धनु लग्न वाले लाल रंग का, भूरे रंग का, नीले या काले रंग का पर्स इस्तेमाल करें, मकर लग्न वाले जो हैं वो काला नीला पर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या क्रीम या वाइट शेड का पर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मकर लग्न वाले काला नीला पर्स इस्तेमाल करें या हरे रंग का पर्स इस्तेमाल करें। कुंभ लग्न वाले पीले रंग का पर्स, क्रीम कलर का, बिस्किट कलर का, लाइट ब्राउन कलर का पर्स इस्तेमाल करें। और मीन लग्न वाले लाल, भूरा या सफेद रंग का या ऑरेंज कलर का पर्स इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। यूनिवर्सली सबके लिए क्रीम और सफेद रंग का पर्स बहुत अच्छा रहता है, वो इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। और एक बात समझें कि काले रंग का पर्स इस्तेमाल करने में सावधानी रखें, क्योंकि काले रंग का पर्स हर व्यक्ति को सूट करे ये जरूरी नहीं है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अब जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 21 जुलाई को, सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, आपका हैप्पी बर्थडे, आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 21 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए वर्ष अनुकूल होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या अपने गुरु का चित्र पूजा स्थान पर रखा जा सकता है? देखिए, गुरु और आपका संबंध ईश्वर से भी ज्यादा ऊपर है। आप निश्चित रूप से अपने पूजा स्थान पर गुरु का चित्र रख सकते हैं। और आप कोई भी पूजा करने जा रहे हैं, कोई भी ध्यान करने जा रहे हैं, इसके पहले अपने गुरु की पूजा अवश्य करिएगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 21 जुलाई 2026 मंगलवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 21 जुलाई मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में, तो आज के शो की गुडलक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है, पंडित जी से जानते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है तुला। इनको बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं से बचाव होगा।
1: चलिए तमाम उपाय और शो से जुड़ी हुई जानकारियां तो पंडित जी ने आपको दे दी हैं, अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय पंडित जी क्या है।
0: जी अगर आप मनचाही नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और मनचाही नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है तो क्या करेंगे, रोज सवेरे जल में काले तिल डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करिएगा और हर शनिवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करिएगा। ये उपाय लगातार 1.25 महीने तक करें, आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी।
1: तो पंडित जी इस उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।
2: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Right field, and it will...
1: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सलमान खान हमेशा अपने दमदार और पावरफुल लुक से फैंस को हैरान करते हैं, लेकिन बीते दिनों सलमान की कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस वायरल हुए जिसे देखकर सलमान खान की सेहत खराब होने की अफवाह उड़ी। अब बीती रात को सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की, साथ ही पूछा आप लोगों की तबीयत कैसी है। क्या है सलमान खान के इस पोस्ट के मायने और क्या है वायरल तस्वीर का सच, चलिए आपको दिखाते हैं।
2: रविवार आधी रात को सलमान खान ने एक के बाद एक पांच तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिनमें वो अलग अलग लुक में नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने हल्की दाढ़ी रखी है और काफी फिट, लेकिन पहले से थोड़े दुबले दिख रहे हैं। सारी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं, जिनमें सलमान ने तरह तरह के स्टाइलिश हैट पहने हुए हैं। एक में उन्होंने कावर लुक कैरी किया है, बावजूद इसके जारी तस्वीरों में उनका सादगी भरा अंदाज साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ ही सलमान खान ने कैप्शन में लिखा आप लोगों की तबीयत कैसी है। सलमान खान बेवजह कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करते, उनकी बातों में कोई ना कोई मतलब छिपा होता है, लिहाजा फैंस तरह तरह के कयास लगाने लगे। एक यूजर ने लिखा आप ठीक है तो हम सब ठीक है सर। दूसरे यूजर ने लिखा तुम हो तो मूवीज है, तुम नहीं तो सिनेमा खत्म। किसी और ने लिखा कि सर मैं आपको देखते ही ठीक हो जाता हूँ, लाइफ की प्रॉब्लम कम होती दिखती है। वह एक यूजर ने लिखा भाई आपकी नई फोटोज ने तो डरा ही दिया था, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। माना जा रहा है कि सलमान खान ने उन तमाम लोगों को इशारों में जवाब दिया है जो उनकी हालिया तस्वीरें देखकर कमेंट कर रहे थे और उनकी सेहत पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल बीते दिनों एक पब्लिक इवेंट में सलमान खान की मौजूदगी की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। सलमान मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की ओर से कराए गए एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अथॉरिटी के नए डेटा कलेक्शन आईटी सर्वर रूम का उद्घाटन किया। इस दौरान सलमान ने कई लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। इवेंट में सलमान ब्राउन रंग की लूज शर्ट और पैंट पहनकर पहुंचे थे, चेहरा मुरझाया सा लग रहा था, स्माइल गायब थी, थोड़े दुबले थोड़े कमजोर दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि सलमान पहले से ज्यादा पतले और थके नजर आ रहे हैं, शायद उम्र का असर है। सलमान खान 60 साल के हो चुके हैं, ऐसे में उम्र का थोड़ा बहुत असर होना लाजमी है। मुमकिन है सलमान की तबीयत तब नासाज हो, लेकिन कमिटमेंट की वजह से वो इवेंट में आने से इनकार ना कर सके हो, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिटनेस फ्रीक सलमान इस उम्र में भी काफी फिट है। इसका सबूत उन्होंने कई तस्वीरों के साथ दे दिया है, साथ ही इन लोगों को जवाब भी दे दिया जो उनकी सेहत पर सवाल उठा रहे थे। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बटवारा 1947 का नया टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में सनी देओल का हमेशा की तरह दमदार अंदाज दिखाई दे रहा है। करीब एक मिनट का ये टीजर है जो काफी इंप्रेसिव है, और इस टीजर में सनी देओल का किरदार डर और नफरत के ऊपर साहस चुनता नजर आता है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। देश के विभाजन पर बेस्ड इस फिल्म में बंटवारे का अनदेखा दर्द देखने को मिलेगा। फिल्म इस साल 14 अगस्त को रिलीज हो रही है।
3: मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा।
4: एक्शन और इमोशन, साहस और बलिदान, शुरुआत से आखिर तक रोमांच से भरा बंटवारा 1947 का ये टीजर देश के बंटवारे के उस दौर की कहानी को सामने लाता है जो खौफ और दहशत से भरी है। जुल्मों सितम से भरे इस माहौल में एक शख्स ऐसा है जो बुझती हुई लौ के बीच उम्मीद बनकर खड़ा है, हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने परिवार की रक्षा के लिए डट कर खड़ा है। हमेशा की तरह सनी देओल का ये किरदार जोश और जुनून से भरा है।
3: जीते जी मरना नहीं चाहता।
4: बंटवारा 1947 का ये दूसरा टीजर है। करीब एक मिनट के इस टीजर में सनी देओल का किरदार डर और नफरत के ऊपर साहस चुनता है। एक ऐसा किरदार जो असाधारण बहादुरी की मिसाल बनता है। सनी देओल इस फिल्म में सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं और उनका इंटेंस अंदाज अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब दिख रहा है। टीजर में काफी इमोशनल सीन भी दिखाए गए हैं, जो आपकी आंखों को नम कर सकते हैं। इमोशन के साथ टीजर में दमदार एक्शन भी देखने को मिलते हैं। इससे पहले बंटवारा

0: बंटवारा 1947 के दोनों टीजर दमदार लगते हैं। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी जैसे मंझे हुए कलाकार हैं। इंतजार अब ट्रेलर का है और 14 अगस्त का, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये फिल्म देश भर के सिनेमा घर में रिलीज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: लेकिन अफसोस, मुल्क का बंटवारा।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
3: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
5: You're listening to MSNBC.
3: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
12: क्या व्रत और उपवास रखकर मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? कौन से व्रत और उपवास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और व्रत उपवास रखने के नियम क्या हैं? जानिए व्रत और उपवास का महत्व सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।

0: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: दिल्ली NCR में भारी बारिश से मौसम सुहाना, गर्मी और उमस से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक रहेगा बादलों का डेरा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। यूपी और बिहार के कई जिलों में बारिश का संभावना जताई जा रही। अमरनाथ यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी यात्रा। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज छठा दिन। गुंडीचा मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। राजस्थान के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 29,68,00,000 रुपए। सोना चांदी का भी मिला चढ़ावा, 7वें चरण की होगी गिनती। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर, चतुर्दश देवता मंदिर में रंगाई पुताई का काम तेज। कल से 7 दिनों तक चलेगा उत्सव।
4: गोरखपुर में त्रिवेणी नदी से बहकर आई डॉल्फिन के लिए चला विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन, बनाया गया 52 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर।
2: टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: शुभ समाचार की शुरुआत मॉनसून के साथ करेंगे। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मॉनसून ने एक बार फिर से वापसी कर ली है। कई दिनों की उमस और चिपचिपी गर्मी के बाद बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सड़कों पर रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। पहाड़ों का खूबसूरत नजारा भी सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे।
5: मातपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की भी होगी, जहां पर बारिश पर आस्था और उत्साह भारी पड़ रहा है। अड़पा मंडप में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, तो वहां की भव्य तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे।
3: तो साथ ही बात बप्पा की भी होगी। भले ही बप्पा के आगमन में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। गणपति दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा पंडाल के बगल में ही बप्पा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। यहां अलग अलग डिजाइन, इको फ्रेंडली आसन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इस पर भी हम करेंगे आगे बात।
5: साथ ही आपको डॉल्फिन के लिए बने ग्रीन कॉरिडोर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। दरअसल नेपाल की त्रिवेणी नदी से बाहर आई डॉल्फिन को रेस्क्यू कर राप्ती नदी में डाला गया, और इसके लिए 55 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर बना, तो इसके बारे में होगी विस्तार से बात।
3: इसके अलावा आपको लिए चलेंगे नॉर्थ पोल, जहां तापमान 0 से काफी नीचे है, लेकिन क्या ऐसी जगह पर दौड़ना संभव है? भले ही आपको सुनने में ये किसी मुश्किल टास्क जैसा लग रहा हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी जुनूनी लोग हैं जो बर्फीले महासागर पर आयोजित मैराथन में हिस्सा लेते हैं। तो आर्कटिक महासागर में आयोजित हुई दुनिया की सबसे कूल मैराथन का नजारा भी आपको दिखाएंगे। आगे किन पर होगी बात, इस वक्त फटाफट अंदाज में हम देख लेते हैं सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज।
5: त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां पर चतुर्दश देवता मंदिर में रंगाई पुताई का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही मंदिर परिसर को अच्छी तरह से सजाया भी जा रहा है। मंदिर परिसर में भी सुरक्षा सख्त की गई है। ये उत्सव कल से 7 दिनों तक चलेगा।
3: MP के आगरमालवा जिले के मां बगलामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्रि के चलते भक्त बड़ी संख्या में मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर में इतने श्रद्धालु आए कि आसपास और नगर भर में वाहनों का रेला लग गया। पुलिस प्रशासन ने जैसे तैसे यहां भक्तों और वाहनों की व्यवस्था को संभाला।
5: वहीं बारिश और अच्छी फसल की कामना के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बुरामपल्ली गांव में ग्रामीणों ने मेंढक मेंढकी की पारंपरिक शादी कराई है और इस अनूठी परंपरा में पूरे गांव के लोग एकजुट होते हैं। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर मेंढकों को पूरे गांव में घुमाया जाता है। मान्यता है कि सामूहिक प्रार्थना और मेंढकों की शादी से प्रकृति प्रसन्न होती है और फिर अच्छी बारिश होती है।
3: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नेपाल की त्रिवेणी नदी से बहकर आई एक दुर्लभ गर्भवती गंगा डॉल्फिन को महाराजगंज की नहर से सुरक्षित निकाला गया। उसे राप्ती नदी में छोड़ने के लिए गोरखपुर पुलिस ने भटहट से राजघाट तक 52 किलोमीटर लंबी ग्रीन कॉरिडोर बनाई, जिसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ा गया।
5: वहीं राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में मिस टीन डीवा 2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें देश भर की 37 फाइनलिस्ट ने हिस्सा लिया था और इस भव्य प्रतियोगिता में मेघालय की ऐश्वर्या मंगल ने मिस टीन अर्थ इंडिया 2026 का ताज अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। असम की सिनिग्धा भुयान को मिस टीन ग्रैंड इंडिया 2026 और ओडिशा की प्रासूसी पांडा को भी मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज पहनाया गया।
3: असम के शिवसागर में जलस्तर बढ़ने के चलते सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बाढ़ राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया। यहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कई नावें तैनात कर लोगों को सुरक्षित निकाल रही हैं और राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। अकेले शिवसागर जिले में एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने अब तक 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
5: 20 साल के भारतीय पहलवान काजल रोचक ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित सीनियर रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट 2026 में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने महिलाओं के फ्रीस्टाइल 76 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अमेरिका की डायमंड प्रिशियस गिलफोर्ड को हराकर शानदार उपलब्धि हासिल की है।
3: इंग्लैंड में फार्नब्रो इंटरनेशनल एयर शो का आगाज हो गया। दुनिया की बड़ी विमान निर्माता कंपनी यहां अपने सबसे आधुनिक विमान दिखा रही है। एयर शो में अनोखे डिजाइन वाले विमान रॉयल एयरफोर्स का विशाल जंबो विमान, मिसाइल्स और ड्रोन भी आकर्षण का केंद्र हैं। रक्षा कंपनीज ने कम लागत वाली कई इंटरसेप्टर मिसाइल्स और आधुनिक ड्रोन भी पेश किए हैं।
5: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म जन नेता के हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग अब शुरू हो गई है। ये फिल्म 23 जुलाई को रिलीज होने वाली है। लाखों फैंस को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो अब लगभग आ गया है। जन नेता के हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग अब लाइव है।

0: तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत मौसम वाली गुड न्यूज के साथ कर लेते हैं। देश भर में मानसून ने एक बार फिर से वापसी कर ली है। कई दिनों की उमस और चिपचिपाती गर्मी के बाद बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सड़कों पर रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, यानी आज ही नहीं कल भी ज्यादातर इलाकों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। वैसे केवल दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से यहां मौसम सुहाना हो गया है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों का खूबसूरत नजारा सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। ऊंची चोटियां बादलों की चादर में लिपटी हैं, घाटियों में घना कोहरा छाया हुआ है।
1: तो मानसून की वापसी के साथ कश्मीर की वादियां पूरी तरह से खिल उठी हैं। श्रीनगर में मौसम सुहावना हो गया और इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। डल झील में शिकारी की सैर हो या फिर मुगल गार्डन की हरियाली, हर जगह पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ठंडी हवाएं, खुला आसमान, हरियाली सैलानियों के सफर को और यादगार बना रही है। होटल, हाउस बोट और स्थानीय बाजारों में भी पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है, जिससे पर्यटन कारोबार को भी नई रफ्तार मिल रही है।
2: या का जो पानी के ऊपर बोट पे रहने का इंतजाम है, ये देख के दिल खुश हो गया। तो पहले देखा हमने, पहले कभी नहीं देखा था। मौसम अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, तो मैंने सुना क्लियर होगा तो ज़्यादा इसका जो गर्जियसनेस वो निकल के आएगा। हमारा वहाँ अभी भी AC चलाना पड़ता है। हाँ, तो यह का जो मौसम है मतलब बहुत ही आरामदायक है।
0: तो देशभर में मॉनसून एक बार फिर पूरी रफ्तार में है और करीब 70% हिस्से पर बादलों का डेरा है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से को गर्मी और उमस से राहत मिलने के आसार हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं देशभर के मौसम का पूरा हाल।

0: ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि ब्रेक पर गया मॉनसून पुरानी रफ्तार में लौट आया है। कहीं फुहार, कहीं झमाझम तो कहीं मूसलाधार। एक तरह से कहें तो मॉनसून ने फिर से एक साथ कई दरवाजों पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर पंजाब तक आसमान में बादलों की कहीं कोई कमी नहीं है और अब ये बादल मॉनसून का बचा खुचा कोटा पूरा करने आ गए हैं।
1: लगातार उमस और बढ़ती गर्मी के बाद एक बार फिर से मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादलों का डेरा जो है वो लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। एक बार फिर से मॉनसून की वापस से एंट्री हो गई, हम ये बोल सकते हैं?
2: जी देखिए, मॉनसून की अभी फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं जिससे उत्तर पश्चिम भारत, उसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो है काफ़ी अच्छी वर्षा गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है। और हमारा अनुमान यही है, पूरा अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है।
0: लेकिन सवाल ये है कि आखिर मॉनसून ने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल कुछ दिनों के लिए बंगाल की खाड़ी शांत पड़ गई थी, नए लो प्रेशर सिस्टम नहीं बने, समंदर से नमी कम आई और मॉनसून की मुख्य पट्टी उत्तर की ओर खिसक गई। नतीजा ये हुआ कि बादलों ने कदम धीमे कर दिए, बारिश ने रफ्तार कम कर दी और कई राज्यों में सूरज ने फिर से अपना दबदबा बना लिया। लेकिन अब माहौल फिर से बदल गया है।
2: मॉनसून की जो वर्षा है वो बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन डिपेंड करती है, तो जिस क्षेत्र में अगर हम बात करें फेवरेबल मॉनसून की कंडीशन बन रही होती है वहां पर वर्षा गतिविधि जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था जुलाई के पहले सप्ताह में जो पश्चिमी राज्य थे, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, साथ साथ में मध्य भारत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्वी भारत, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में 9 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिली थी। अभी जो है मॉनसून एक्टिव कंडीशन देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है, जिसकी वजह से काफी अच्छी वर्षा जो है इन सभी क्षेत्रों में जो देखने की संभावना है।
0: अच्छी खबर यह है कि मॉनसून एक्सप्रेस का इंजन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। पूरे उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहां मैदानों में बारिश राहत लेकर आएगी, वहीं पहाड़ों में यही बारिश आफत बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, कुलगाम, श्रीनगर और अनंतनाग, जबकि उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है।
2: अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मैप में भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है।
0: जहाँ तक दिल्ली एनसीआर का सवाल है, अगले कुछ दिनों तक यहाँ बादलों की छांव रहेगी, हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसकी वजह से अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी उमस से राहत का सीन दिल्ली एनसीआर में बन चुका है। मॉनसून की वापसी शानदार तो है, लेकिन ये वापसी कई इलाकों पर भारी भी पड़ सकती है। मसलन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ पहले ही बारिश से पूरी तरह भीग चुके हैं। अब अगर बादल और खुलकर बरसे तो नदियां उफान पर आ सकती हैं और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इन इलाकों के लिए मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, ब्रेक के बाद मॉनसून ने जोरदार तरीके से वापसी तो की है। देश के बड़े हिस्से ऐसे हैं जहां पर बादलों का डेरा है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि बारिश की कमी की भरपाई हो, खासकर किसानों को सूखे की स्थिति से राहत मिल सके। तो फिलहाल बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली से गर्मी उमस की छुट्टी हो गई है।
3: तो आज भी एनसीआर में सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। दिल्ली में बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन बारिश का ये दौर जारी रहेगा।
1: फिलहाल तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और आज राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई जा रही है।
3: तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यूपी में भी मानसूनी फुहारे तपिश से राहत लेकर आई है।
1: हालांकि कुछ एक जगह ऐसी है जहां पर तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश का अनुमान है, तो मौसम विभाग ने यूपी के भी बड़े हिस्सों में मॉनसून का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है।
3: कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। गरज चमक के साथ बारिश होगी, जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है।
1: लिहाजा निचले इलाकों में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही बिहार की बात करें तो बिहार के मौसम में राजधानी पटना में समेत इसके साथ ही कई शहर ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई।
3: तो 8 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। भभुआ, गया, नवादा, रोहतास में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: वहीं मौसम विभाग ने सिवान, बक्सर, गोपालगंज में भी भारी बारिश का अंदेशा जताया हुआ है।
3: तो देशभर में एक बार फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इसके साथ ही कई राज्यों में नदियां और बरसाती नाले खतरनाक स्तर पर बह रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी का तेज बहाव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। वहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो कहीं रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगह लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं।

0: लगातार हो रही बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से तीन युवक बीच धारा में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तेज बहाव के बीच जवान नाव के सहारे युवकों तक पहुंचे और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी नालों के पास जाने से बचें।
1: इन्होंने फोन किया कि पानी आ गया और आप पुलिस को फोन करो। हमने मीडिया वालों को फोन किया था तो मीडिया वालों ने फोन कर दिया पुलिस को भी।
2: फिर ये अभी क्या एनडीआरएफ की टीम आई है?
1: आई है, वो ले आए उनको पास है।
2: कितने लोग थे ये?
1: तीन लड़के हैं ये।
3: ये तो पिछली बार भी अभी 10 दिन पहले ही हमने चार बंदों को रेस्क्यू किया था। अभी भी हमने इनको बताया, वो उस दिन भी हमने बताया था कि आप तवी के किनारे ना घूमें क्योंकि तवी का कभी भी फ्लो बढ़ सकता है। और ये जब ये अभी प्ली ले बच्चे जो जिनको बचाया हुआ तो ये कह रहे हैं कि सुबह पानी कम था तो हम क्रॉस कर गए। तो अब यही है ना कि अगर पानी कम था तो आप ये क्रॉस कर गए हैं तो अल्टीमेटली इनको वापस लाने में तो परेशानी, अभी पानी बढ़ता जा रहा है और ये पीछे उधमपुर एरिया में अभी बारिश हुई है, ये फिर बढ़ जाएगा तो कहीं अब भी तो हम टाइमली पहुंच गए। तो हमारा यही है कि पब्लिक, जनरल पब्लिक से यही है कि आप तभी के किनारे ना जाएं और अपने बच्चों को और अपने जो भी आपके कंसर्न है उनसे तभी के किनारे थोड़े ये रेनी सीजन में थोड़ा दूर रहें।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भी बारिश के बीच सेना, पुलिस और एसडीआरएफ ने मिलकर बड़ा राहत अभियान चलाया। व्हाइट नाइट कॉप्स के जवानों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दो अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन किए। उफनते नालों और तेज बहाव के बीच फंसे पांच बच्चों समेत कुल 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस अभियान में सुरक्षा बलों ने साहस और त्वरित कार्रवाई का परिचय दिया।
4: जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पूरी तरह से इस समय अगर हम देखें तो इस कार्य में जुटा हुआ है कि लोग जो है कहीं फंसे ना, क्योंकि कई इलाकों से खबरें आई थी कि लोग बाढ़ के पानी में फंसे थे। इसलिए भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनकी टीम्स अलग अलग स्थानों पर है। खासतौर पर जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर टीम्स तैनात कर दी गई है ताकि अगर कोई बड़ी स्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपटा जा सके। तो टीम्स हर जगह पर रवाना कर दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों में इस समय टीम्स हैं और यही प्राथमिकता है कि जो लोग इस समय बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए।
0: उत्तराखंड में भी लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदियों और बरसाती धाराओं का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन और राहत एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देहरादून में संतला देवी मंदिर के पास नदी के बीच बने टापू पर 7 लोग फंस गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान नदी नालों और झरनों के आसपास न जाने की सलाह दी है।
5: देवी माता मंदिर के पास नून नदी में 7 से ज्यादा लोग फंस गए जिनको बमुश्किल रेस्क्यू किया गया और इसके साथ ही देहरादून के माल देवता क्षेत्र में एक लैंडस्लाइड देखने को मिला। दूसरे क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो चमोली और पौड़ी में कई जगह रास्ते भी बाधित हो गए। चमोली में मलबा आने से एक बोलेरो भी फंस गई। और नदियों की अगर हम बात करें तो लगातार रुद्रप्रयाग और चमोली में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही हैं।
0: पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश का असर लगातार बढ़ रहा है। असम के शिवसागर, जोरहाट और चराईदेव जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। घरों और खेतों में पानी भर गया है जबकि सड़कें डूबने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचा रही हैं, जहां भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।
6: ईटानगर से ये टीम आया है और कल शाम को हम लोग चला था, आज सुबह यहाँ 4 बजे पहुँचा है। उसके पश्चात यहाँ पर हमने रेस्क्यू का काम आरंभ किया है और अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा आदमी को यहाँ से निकाल चुका है।
0: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों के साथ साथ पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
7: और हमारा अनुमान यही है, पूर्व अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मैप में भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर मुख्य रूप से मेघालय में और असम में भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है।
0: मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकारों ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन की सलाह का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में अफवाहों से बचते हुए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की गई है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, देहरादून से अंकित शर्मा, जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा और दिल्ली से मनीष अलड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: अब आपको दिखाते हैं डॉल्फिन के लिए कैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। दरअसल यूपी के गोरखपुर में डॉल्फिन को रेस्क्यू किया गया और फिर उसे राप्ती नदी में डाला गया। इसके लिए 55 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद डॉल्फिन को गोरखपुर के राप्ती तट पर लाकर उपचार के बाद राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। राप्ती नदी को डॉल्फिन के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। बताया गया है कि नेपाल की त्रिवेणी नदी से ये डॉल्फिन भटक कर एक कैनाल में आ गई और वो धीरे धीरे परतावाल के पास धर्मौली बाजार के कैनाल में आकर फंस गई थी और इस दौरान ये वहां पर 3 दिन से फंसी थी और उसकी जान को बचाना बहुत ही जरूरी था। डॉल्फिन 19 जुलाई को भी पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन बारिश के कारण कैनाल में पानी ज्यादा था और बहाव भी बहुत तेज होने के कारण बहुत ही कठिनाई हो रही थी। ऐसे में सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों से बात कर कैनाल में पानी को कम कराया गया और फिर देवरिया कैनाल से डॉल्फिन को सफल रेस्क्यू किया गया। इसके लिए सभी टीमों के काम की तारीफ भी की गई। डॉल्फिन को बेहद समझदार जीव माना जाता है। इसके जीवन से कुछ ऐसे पहलू जुड़े हैं जो समंदर की इस रानी को बेहद खास बनाते हैं। दुनिया भर में डॉल्फिन की 41 प्रजातियां पाई जाती हैं। जानवरों में सबसे लंबी याददाश्त डॉल्फिन की होती है। डॉल्फिन की सुनने की क्षमता इंसानों से 10 गुना ज्यादा होती है। दांत होने के बावजूद डॉल्फिन भोजन को चबाती नहीं, निगलती है। डॉल्फिन एक आंख खोलकर सोती है। एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि अमेरिकन नेवी के पास 75% डॉल्फिन्स हैं।
9: यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में जादू बिखेरने आज लौट रहे हैं अरिजीत।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
11: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
12: La Que Buena.
11: ESPN Radio.
13: We know LeBron has to be the best player on the planet to get
11: The Daily.
14: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
11: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
15: मुझ में ही है
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है। जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी और उमस से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक रहेगा बादलों का डेरा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। यूपी और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अमरनाथ यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी यात्रा। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज छठा दिन। गुंडीचा मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजस्थान के सवलिया सेठ के भंडार से निकले 29,68,00,000 रुपए सोना चांदी का भी मिला चढ़ावा, सातवें चरण की होगी गिनती। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर, चतुर्दश देवता मंदिर में रंगाई पुताई का काम तेज, कल से 7 दिनों तक चलेगा उत्सव। गोरखपुर में त्रिवेणी नदी से बहकर आई डॉल्फिन के लिए चला विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन, बनाया गया 52 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शुभ समाचार में। बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा सिंगर्स में शामिल अरिजीत सिंह एक बार फिर से प्लेबैक सिंगिंग में वापसी कर रहे हैं। लंबे ब्रेक के बाद उनकी आवाज एक बार फिर जादू बिखेरने वाली है। अरिजीत सिंह ने इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारापन 2 के टाइटल ट्रैक से आवारापन को अपनी आवाज दी है। वैसे इस खबर ने म्यूजिक लवर्स और अरिजीत के फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि अरिजीत सिंह की एक ऐसी आवाज है जिसने प्यार दर्द को सुरों में पिरोकर करोड़ों दिलों तक पहुंचाया है। अब वही आवाज एक बार फिर से बॉलीवुड में लौट रही है। अरिजीत सिंह आवारापन 2 के टाइटल ट्रैक आवारापन के साथ प्लेबैक सिंगिंग में वापसी करने जा रहे हैं। ये गाना आज रिलीज किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाने को अमाल मलिक ने कंपोज किया है, जबकि इसके बोल रश्मि विराग ने लिखे हैं। वैसे ये खबर इसलिए भी बड़ी हो गई है क्योंकि अरिजीत सिंह ने इस साल की शुरुआत में नए प्लेबैक प्रोजेक्ट से दूरी बनाने का ऐलान किया था। ऐसे में आवारापन 2 के लिए उनकी वापसी को बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की बड़ी खबर माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी फैंस इस खबर का जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं और गाने के रिलीज का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं।
1: तो वही तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और अब राजनीति में कदम रख चुके विजय थलपति की फिल्म जन नायकन को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दरअसल फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है और मेकर्स ने इसका जबरदस्त टीजर भी जारी कर दिया है। सुपरस्टार विजय एक बार फिर से बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाने को तैयार है। फिल्म जन नायकन 23 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक्शन दमदार डायलॉग और विजय का स्टाइलिश अंदाज फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। विजय की इस फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। वजह सिर्फ विजय की स्टार पावर नहीं बल्कि फिल्म से जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी हैं। विजय तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हैं और ऐसे में उनकी फिल्म जन नायकन को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी कई गुना बढ़ गई है।
2: कम से कम इस साल तो आर्मी एप्लीकेशन में सही सिग्नेचर करना।
3: किसने भेजा है?
4: Come, let's play a game. आज से 30 दिन बाद इंडिया मेरे कदमों में होगा।
5: प्लान क्या है?
4: ओए,
3: ओए, तबाही।
0: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का छठा दिन है। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ 7 दिनों के प्रवास पर है। ऐसे में भक्तों की भीड़ भी गुंडीचा मंदिर में जुट रही है। भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बारिश हो या धूप, लोग भगवान के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं।

0: भगवान अपनी मौसी के घर आए हैं, अपने जन्म स्थान। अड़ापा मंडप में भक्तों की भीड़ है। पालनहार जगत के नाथ को करीब से देखने का मौका मिला है। कोई कैसे छोड़ दे भला ये पावन अवसर। और फिर भगवान के अड़ापा दर्शन का अपना महत्व भी तो है। सुमंदिर प्रांगण में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। अब तक आसमान भी उत्सव के रंग में रंगा था, अब उसने भी थोड़ी सांस ली है। बादलों का पहरा हट गया है, सूर्य देव मुस्कुरा उठे हैं, मानो एक झलक उन्हें भी मिल जाए महाप्रभु की। यूं कहिए कि पुरी का कण कण इन दिनों उत्सव के रंग में रंगा है। जय जगन्नाथ का जय घोष हर ओर गूंज रहा है और गुंडिचा मंदिर की तो रौनक ही अलग है। भगवान का यहाँ प्रवास जो है, हेरा पंचमी पर माँ लक्ष्मी के आगमन से उत्सव का रंग कुछ और गहरा हो गया। जब से भगवान गुंडिचा मंदिर पधारे हैं, धूप हो की बारिश, भक्तों की लंबी कतारें हर दिन देखने को मिल रही हैं और उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद है।
1: हमारे पास पूरे 1 किलोमीटर तक एम्बुलेंस तैनात हैं। किसी को भी अगर किसी का भी तबीयत खराब हो, उनको इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या IDH हॉस्पिटल तक हम लोग ले जाएं। फायर डिप्लॉयमेंट बेसिकली पूरा वाटर स्प्रेइंग से शुरू करके ट्रैक टीम्स भी हमारे हैं। किसी को अगर घुटन हो या सफोकेशन वो लोग फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग उनको ऑक्सीजन कैनिस्टर के माध्यम से उनको हेल्प कर रहे हैं। ये सारे व्यवस्था जो है अभी एक्सटेंसिव वे में रहेगा आगे तक।
0: पूरे ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित स्कॉन मंदिर की है, जहां रथ यात्रा उत्सव की रौनक छाई रही। फूल मालाओं से भक्त रथ यात्रा का स्वागत करते दिखे। भगवान को अलग अलग मिठाइयां और फलों का भोग लगाया गया और फिर प्रसाद को भक्तों में बांटा गया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबकर गाते झूमते रहे।
2: बहुत दिव्य दर्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हर साल निकलती है और ये जगन्नाथ रथ यात्रा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा शोभा यात्रा भी कहते हैं।
3: बहुत ही अच्छा लग रहा है भगवान जी के दर्शन करके, मन को सुकून मिलता है दर्शन करके, इसीलिए मंदिर आते।
0: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जहां श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए झूमते नाचते भगवान के रथ की रस्सी खींचते हुए और रथ के आगे झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया और फिर मंदिर परिसर में इस रथ यात्रा का समापन हुआ। बिहार में भी जगन्नाथ रथ यात्रा के भव्य रंग देखने को मिले। यहाँ मुजफ्फरपुर में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। स्कॉन मंदिर की ओर से निकाली गई इस रथ यात्रा में करीब 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान हुए और लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। ढोल, मृदंग, झांझ और करताल की धुन पर हरिनाम संकीर्तन गूंजता रहा और भक्त भक्ति भाव से झूमते रहे। अब महाराष्ट्र के अकोला की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा निकली तो उसमें श्रद्धालुओं का गजब का उत्साह दिखा। 31 फीट ऊंचे और करीब 5 टन वजनी रथ पर महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान हुए। हजारों श्रद्धालुओं ने हरे कृष्णा जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच रथ को खींचा। खास बात ये रही कि भक्तों ने भगवान से सिर्फ अपनी खुशहाली नहीं बल्कि रूठे मानसून की जल्द वापसी, किसानों के खेतों में हरियाली और पूरे देश को सुजलाम सुफलाम बनाने की प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, इस दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह फूल बरसाकर रथ यात्रा का स्वागत किया। शहर की मुख्य सड़कों से गुजरी इस रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालुओं के सामूहिक भजन गायन ने समूचे वातावरण को भक्ति और अध्यात्म के रंगों से सराबोर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, जहां पर सावलिया सेठ मंदिर में भक्तों की आस्था का समंदर देखने को मिल रहा है। सावलिया सेठ मंदिर में जब दान पेटियां खोली गई तो करोड़ों का चढ़ावा सामने आया। गिनती पूरी होने के बाद मंदिर प्रशासन ने बताया है कि दान पेटियों से कुल 29,68,00,000 रूपये की राशि मिली। सावलिया सेठ मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ पर हर दिन बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। मान्यता ये है कि सावलिया सेठ के दरबार में मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं और इसी विश्वास के चलते दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं।
5: भले ही बप्पा के आगमन में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। गणपति दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा पंडाल के बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में भी बप्पा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। यहां अलग अलग डिजाइन के इको फ्रेंडली आसन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं।

0: गणेश चतुर्थी में अभी वक्त है, लेकिन उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए, लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृति जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: ये बाप्पा के लिए आसन है एक से बढ़कर एक, शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वाटरफॉल आसन तक, और छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन तक भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बाप्पा के लिए इस आसन को चुन रहे हैं। जब मौका बाप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बाप्पा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स और उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं। इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाला सारा सामान पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। अब बस बाप्पा के भक्तों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ पंडालों, घरों और दफ्तरों में बाप्पा की मूर्तियां स्थापित होंगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कर लेते हैं क्रिकेट की। दरअसल टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे के लिए हरारे पहुंच चुकी है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यंगस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 से 26 जुलाई तक हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 3 T20 मैच की सीरीज खेलेगा, और वीवीएस लक्ष्मण इस दौरे पर भारत के कोच हैं। इस सीरीज में बॉस बेबी पर भी सबकी नजरें रहेंगी। रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है, वहीं प्रभसिमरन सिंह, साथ ही मयंक यादव, अशोक शर्मा और यश ठाकुर जैसे युवा खिलाड़ियों को भी टीम में जगह दी गई है।
3: सोचिए, जहां तक नजर जाए सिर्फ चमचमाती बर्फ की चादर हो, तापमान शून्य से नीचे हो, क्या ऐसी जगह पर दौड़ना संभव है? भले ही आपको सुनने में ये किसी मुश्किल टास्क जैसा लग रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी जुनूनी लोग हैं जो बर्फीले महासागर पर आयोजित मैराथन में हिस्सा लेते हैं। जी हां, आर्कटिक महासागर में आयोजित हुई दुनिया की सबसे कूल मैराथन का नजारा आपको हम दिखाते हैं, जिसे पूरा करते ही इसका रनवे वापस समंदर में गायब हो गया।
0: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के समंदर में खड़ा जहाज, एक एक का जहाज से उतरते प्रतिभागी, माइनस डिग्री में तापमान, चारों तरफ जमा देने वाली बर्फीली हवाएं। नॉर्थ पोल पर कुछ ऐसा ही नजारा था जब दुनिया की सबसे अनोखी नॉर्थ पोल मैराथन का आगाज हुआ। ले कमांडर शार्को जहाज पर सवार होकर 7 देशों के 22 जांबाज एथलीट नॉर्थ पोल मैराथन में शामिल होने पहुंचे। आलम यह था कि मैराथन का ट्रैक भी तैरती बर्फ की परत पर तैयार किया गया। ट्रैक 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा तैयार किया गया, जहां प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए पोलर बियर पेट्रोलिंग टीम भी तैनात रही, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे ये कोई आम मैराथन नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जहां सड़क नहीं बल्कि तैरती हुई बर्फ की चादर ट्रैक बनती है, और कुछ ही घंटों बाद वही ट्रैक आर्कटिक महासागर में गायब हो जाता है। यहाँ तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, इसलिए धावकों को लाइफ जैकेट और थर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य था और मैराथन पूरी करने के लिए उन्हें इस ट्रैक के 40 चक्कर लगाने पड़े। इस अनोखे मैराथन में चीन के शंगशियान वांग ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता। वहीं महिलाओं के वर्ग में डेनमार्क की रिक्के डैम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी अपने नाम की। कुल मिलाकर बर्फ, उबर खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और हर कदम पर चुनौती, लेकिन इन धावकों ने साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो दुनिया का आखिरी छोर भी मंजिल बनने से नहीं रुक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब आपको स्कॉटलैंड लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय रंग बिखरे नजर आए। ये मौका एडिनबर्ग फेस्टिवल कार्निवल 2026 का रहा। दरअसल यहां पर भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये फेस्टिवल स्कॉटलैंड के सबसे शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है।

0: और इंस्टा स्टोरी में बाप को उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए अपेक्षा मालवीय की फनी इंस्टा स्टोरी।
1: सुनो।
2: हाँ जी
1: भैया, भाभी आ रहे हैं तुम्हारे।
2: मैं चाय पकौड़ी बना
3: रही। एक सवाल का जवाब प्यार से दोगी?
2: कौन सा सवाल?
3: तुम्हारा नाम क्या है?
4: पतले होने लोकी की नहीं करते, जिम करते ने, डाइट करते ने, तू क्यों नहीं कुछ कर दी?
5: तेनू की लगता मैं जिम नहीं कर सकती, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती? जे मेरे दिल दी प्रॉब्लम ना होती तो मैं सारा कुछ कर लेना सी।
4: की होया तेरे दिल नू?
5: यार मेरा नहीं दिल करता कुछ करन नू, की करूं?
6: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
0: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: क्या व्रत और उपवास रखकर मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं? कौन से व्रत और उपवास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और व्रत उपवास रखने के नियम क्या हैं? जानिए व्रत और उपवास का महत्व सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored from nature, science, and space to premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
10: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: दिल्ली NCR में भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी और उमस से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक रहेगा बादलों का डेरा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। यूपी और बिहार के भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अमरनाथ यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी यात्रा। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का 6ठा दिन। गुंडीचा मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। राजस्थान के सवालिया सेठ के भंडार से निकले 29,68,00,000 रुपए सोना चांदी का भी मिला चढ़ावा। आज 7वें चरण की होगी गिनती। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, बाजारों में अभी से दिखने लगी रौनक। इको फ्रेंडली सजावट के सामानों से सजे बाजार। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर, चतुर्दश देवता मंदिर में रंगाई पुताई का काम तेज। कल से 7 दिनों तक चलेगा उत्सव।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि व्रत और उपवास रखने के फायदे क्या हैं और कौन सा व्रत रखने से आप अपने जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात 8:49 तक, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 7:54 तक, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा

राशि में राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं व्रत और उपवास के बारे में। व्रत और उपवास का महत्व क्या है? देखिए, व्रत या उपवास जो रखा जाता है वो वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना होता है और आध्यात्मिक रूप से व्रत रखने से मन और आत्मा को नियंत्रित किया जाता है। ये जो अलग अलग तिथियां हैं और अलग अलग दिन हैं, ये अलग तरीके से मन पर और शरीर पर असर डालती हैं। इसको ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों और दिनों को उपवास रखा जाता है या व्रत रखा जाता है कि आपके मन पर इसका सही प्रभाव पड़े। विशेष तिथियां जैसे एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष, अमावस्या या विशेष दिन सोमवार, मंगलवार, रविवार, इनमें जब आप सोच समझ कर व्रत उपवास रखते हैं तो शरीर और मन शुद्ध होता है, मनचाही इच्छाएं भी आपकी पूरी होती हैं। यानी व्रत उपवास का जो नियम बनाया गया है वो इस आधार पर बनाया गया है कि अलग अलग तिथियों का, अलग अलग दिनों का आपके ऊपर अच्छा और सही प्रभाव पड़ सके। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन और भी अच्छा होगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें,
जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, वैसे तो साल भर में बहुत सारे व्रत आते हैं, बहुत सारे उपवास आते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि कौन से व्रत सबसे महत्वपूर्ण हैं और इनके फायदे क्या हैं। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष और नवरात्रि के माने जाते हैं। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का या अमावस्या का व्रत रखने से हार्मोन की समस्या ठीक होती है और आपके मनोरोग, आपकी मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। वर्ष में दो बार संधियां पड़ती हैं, जब ऋतुओं में बड़ा परिवर्तन होता है, उस समय शरीर की धातुओं को ठीक रखने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नवरात्रि के व्रत का नियम बनाया गया है। वर्ष में केवल दोनों नवरात्रि का उपवास रखने से आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और साल भर स्वस्थ रह सकते हैं। महीने में दो एकादशी, दो प्रदोष, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है, तो या तो दोनों एकादशी का व्रत रखें, या दोनों प्रदोष का व्रत रखें, या एक पूर्णिमा और एक अमावस्या का व्रत रखें। और अगर हर महीने ऐसा नहीं कर पाते तो पूरी नवरात्रि में, चैत्र वाली में यानी अप्रैल वाली में, और आश्विन वाली यानी अक्टूबर वाली नवरात्रि में 9-9 दिन का अगर आप व्रत रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लाभ के योग हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि,
व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अपना टाल दीजिए, परिवार में शांति बनाए रखें, लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि आप कोई भी व्रत रखते हैं उसके नियम क्या हैं। देखिए, व्रत दो तरीके से रखा जाता है। एक है निर्जल व्रत, यानी जिसमें पानी की एक घूंट भी नहीं पिएंगे, और एक है फलाहारी व्रत, फल खाकर या जल पीकर व्रत रखना। सामान्यतः निर्जल व्रत जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को, जल पीकर, लिक्विड लेकर या फल खाकर उपवास रखना चाहिए। देखिए, उपवास का मतलब होता है, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। तो व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उपासना में आप लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खान पान में रस वाले फल, कंद, मूल, जल, दूध या दही का सेवन करें। अब ऐसा नहीं कि कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी, शामक के चावल, बाकला की दाल, ये सब मत खाइए, फिर व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि केवल नींबू पानी पीकर या फलों का लिक्विड रस पीकर व्रत रखिए और पूरा समय भगवान की पूजा में लगाइए। शाम के समय जब आप पूजा कर लेते हैं या शाम के समय जब आप अर्घ दे लेते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फल खाना चाहिए। व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पी करके करना चाहिए, और अगर संभव हो तो अगले दिन व्रत समाप्त करने के पहले भोजन या अन्न का दान करना चाहिए, उसके बाद अनाज खा करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। अब जानते हैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, धन के लिए कौन सा व्रत अच्छा है। देखिए, एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में सबसे ज्यादा अच्छा है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करें या अपने इष्ट देव की पूजा करें। नमक और अन्न का सेवन ना करें, जहां तक हो सके जल वाले आहार, लिक्विड डाइट लेना चाहिए। और एकादशी के व्रत में अगर गुरु मंत्र मिला है तो अपने गुरु मंत्र का जप करें या विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीमद् भागवत का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, व्रत और उपवास में दो बातें आपको जरूर समझनी हैं, तभी आपको व्रत और उपवास का लाभ होगा। शरीर पर भोजन का बोझ कम से कम डालिए, इसीलिए नींबू पानी पीकर या लिक्विड लेकर ही उपवास रखना बेहतर है। बहुत मजबूरी होने पर फल खाया जा सकता है, लेकिन आलू पूड़ी पकौड़ी चावल सब्जी, चाहे भले ही वो फलाहारी माना जाता हो, लेकिन उसको खा करके व्रत रखने से फायदा नहीं होगा। और जब आप कम से कम आहार ग्रहण करके उपवास रखेंगे और अपना समय पूजा उपासना में या ध्यान में पूरे दिन भर या पूरी रात भर लगाएंगे, तब आपको व्रत का असली फायदा मिलेगा। आपकी मुश्किलें, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। तो आज हमने बात की व्रत और उपवास के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है तो चांदी का एक गिलास खरीद लें, जब भी पानी पिए, जब भी लिक्विड लें, चांदी के गिलास से पिए तो अच्छा होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

बैठे कहां हैं? एक बात और मेरे पागलो याद रखना, बैठने की तो बड़ी महिमा, स्थान की तो महिमा है ही है। आप कथा में बैठ गए तो आप श्रद्धालु हो गए, श्रोता हो गए। कौन हो गए? बोलो बोलो। जो कथा में बैठ गए वो कौन हो गए? श्रोता हो गए, श्रद्धालु हो गए। कितनी अद्भुत बात है, भगवान ने कृपा की, आप कथा में आ गए। पर एक बात हम निवेदन करें कथा कहने के पहले, कथा में तो आप बैठ गए, ये बड़ी बात नहीं है, कथा आपके अंदर बैठ जाए ये बड़ी बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, यहां भी बैठे, चार दो पंडाल सामने लगे, दो पंडाल तीन बगल में लगे, सब पंडालों में लोग बैठे, पीछे भी कुछ लोग घर बैठ करके कथा सुन रहे, यूट्यूब पर सुन रहे, बागेश्वर धाम चैनल पर सुन रहे, सब लोग सुन रहे। पर भैया, कथा पंडाल में बैठना या कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न उठता है कि दिल में कथा बैठे कैसे? सावधान से, जब तक कथा में बैठे ना तब तक सिर्फ कथा सुने, केवल कथा, सावधान होकर के बैठे। कथा सुनने का नियम क्या है? कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाएं, कथा जब तक विराम ना हो तब तक भगवान को पीठ दिखा कर ना जाएं, कोशिश भर। अब कोई जरूरी काम आ गया तो बात अलग है, पर बहुत जरूरी नहीं है ना, तो पूरी कथा विराम हो तब जाएं, श्रोता सुन लें, यजमान जी। दूसरा नियम क्या है? इन 7 दिनों में, वैसे तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर 7 दिन तो छोड़ ही देना, 7 दिन में तो ना बोलना, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है भूमि पर शयन करना। चौथा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा नियम, हो सके तो दिन में फलाहार रहो, रात को फुल आहार लो। पर मान लो कुछ गड़बड़ी है तो ठीक है, खा के आओ, पर इतना ही खा के आओ कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, प्रसाद तो पाके आओ पर थोड़ा कम, हाँ कम आहार, ताकि नींद भी ना आए। डिस्टर्ब कई प्रकार से होता है, केवल इससे नहीं, कई प्रकार से होता है। नींद आ जाए, ज्यादा पाने से नींद भी तो आती है, तो थोड़ा नींद भी ना आए, थोड़ा चैतन्यता बनी रहे, क्योंकि शरीर में जब भोजन जाता ना तो पूरा भोजन उसको पचाने में लग जाता, फिर कथा कौन सुनेगा? पड़ोसी। इसलिए कम आहार पाके आओ। पांचवा नियम, वो भी बहुत अच्छा नियम है, इन 7 दिनों में स्वस्ति तिलक मस्तक पर लगाना और वैष्णव मंत्र का जप करना। गुरु जी का कोई मंत्र दिया हो, राम नाम, या आपको जो मंत्र प्रिय लगता हो, आप जिनके उपासक हो, वो मंत्र जप करना। छठवा नियम, आहार पाए पर वही आहार भोजन खाएं जिस जो ठाकुर जी को जिसका भोग लगाया जा सके। हम दरबार में बैठे थे तो एक बार हमसे गलती हो गई, हमने एक चेला को कहा बेटा लहसुन प्याज नहीं करना, बाकी आगे का नहीं बोल पाए। तो एक साल बाद हमारे पास आया, बोले गुरुजी 2 काम तो हो गए पर एक नहीं हो रहा। हमका नियम पूरा किया, अरे बोले लहसुन प्याज आज तक छुआ नहीं। तो हमने अपने गुरुजी से वाईफाई में सिग्नल मिलाया कि 1 साल से ये आ रहा है और हमने इसको वचन दे दिया था, इसका काम क्यों नहीं हो रहा? बोले इससे कहो पौवा बंद क्यों नहीं किया। तो हमने कहा ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा, तो पौवा पीता रहा 6 दिन और मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करता रहा, अब कहां से तुझ पे कृपा हो जाए? बोले गुरुजी आपने कहा था लहसुन प्याज नहीं खाना, भगवान कसम लहसुन प्याज नहीं खाया। हमका मूसर चंदा लहसुन प्याज नहीं खाया, बाकी सब? बोले बाकी रोका ही नहीं आप। इसलिए हम ये छठवा नियम बता रहे स्पेशल, वही पाए जिससे जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके, आहार में भी सात्विक आहार। 7वां नियम, यजमान खास करके सुने, 7वां नियम है कथा सुनने का, 7 दिन की कथा है, 7 नियम। 7वां नियम है, इन 7 दिनों में दुश्मन भी आ जाए तो भी मन में ईर्ष्या ना लाना, यही सोचना इतने बड़े पंडाल में
लगता है हनुमान जी कोई ना कोई रूप बना करके कथा सुनने आए, क्योंकि हर कथा में कोई पहुंचे या ना पहुंचे, हमारे हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। पूछो क्यों?

0: राम लखन
1: सीता मन बसिया।
0: हनुमान जी को कथा प्रिय है, हम लोगों को वृथा प्रिय है। पूछो क्या प्रिय है? हाँ, कथा होत के बीच में हम लोगों की बात, हमारी नहीं, तुम सुनो अपनी भी 50-50। कथा होत के बीच में पाप उठे या कुलाए, या सोवे या लड़ पड़े, या उठ के भग जाए। कथा के बीच में ना पाप बड़े अकुलाते, क्योंकि जब कथा की वाणी कानों से अंदर जाती ना तो भीतर खलबली मचती है। जैसे बहुत नींबू पी लेने से पेट में खलबली मचती ना, वैसे ही कथा सुनने से पापों को खलबली मचती है कि ये क्या हो गया। लगता है ये जो बार बार कानों से आ रहा ना, हम लोगों को हाउस खाली करना पड़ेगा। तो पाप अकुलाते हैं। अब पाप अकुलाते हैं तो क्या करते हैं वो? दो तीन काम। जैसे ही कथा में बैठेंगे तुरंत नींद आएगी, और कई लोगों को इतनी गहरी नींद आती है कि लास्ट टाइम में जय बोलते हैं। हाँ, और हमने ऐसे भी श्रोता देखे, वो लोग फिक्स है, वो कथा में सबसे आगे आएंगे, ऐसी जगह देखेंगे जहां टिक जाए। हाँ, फिर बड़ा आनंद लेते हैं। बोलो सीताराम। त्यागी कौन है? पूछो कौन? तजो पिता प्रह्लाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत व्रज नंदन भय मुद मंगल कारी। कौन है त्यागी? तजो पिता प्रह्लाद। प्रह्लाद जी ने पिता को त्याग दिया, किसके कारण? भगवान के कारण। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, किसके कारण? भगवान के कारण। और सबसे बड़ा रिश्ता मां का होता, पर भरत महतारी, किसके कारण? भगवान के कारण। बलि गुरु तजो, गुरु का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ है। सबकी आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता, पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन बलि महाराज ने गुरु का परित्याग कर दिया, किसके कारण? बोलो बोलो बोलो, भगवान के कारण। कंत ब्रज नंदन भय मुद मंगलकारी। जो राम का नहीं वो किसी, तो भागवत का अर्थ है भक्ति, भागवत का अर्थ है ज्ञान, भागवत का अर्थ है वैराग्य, भागवत का अर्थ है त्याग। पर भक्ति हो भगवान युक्त, ज्ञान हो भगवान युक्त, वैराग्य हो भगवान युक्त, त्याग भी हो वो भी भगवान युक्त। जो केवल भगवान के लिए जो करे वही भागवत का सच्चा श्रोता है। बोलो सीताराम। इसलिए तो भागवत जी के प्रारंभ में ही बड़ा मधुर श्लोक आया, सच्ची

भागवत जी के महत्व में ही भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया। बोले कौन कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाया, जो सत है, चित है और आनंद से परिपूर्ण है, वो है सच्चिदानंद। कौन कृष्ण? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, हेतु है, वो कृष्ण। बोले कौन कृष्ण? बोले भैया जो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हो, जिनका नाम लेने से तीनों ताप मिट जाते हो। बोले कौन कौन से ताप?

0: बोले कौन कृष्ण?
1: श्री कृष्णाय भयम् नमः।
0: बोले कौन?
1: तापत्रे विनाशाय,
0: जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो किसी ने कहा महाराज भागवत जी की महिमा क्या है? सुखदेव जी महाराज की एक चर्चा बहुत अच्छी बहु प्रचलित है कि जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की ना, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता बोले महाराज ये अमृत है। सुखदेव जी बोले हम क्या करें? बोले देवता बोले महाराज परीक्षित जी को श्राप है, सातवें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे नहीं। तो सुखदेव जी बोले ये तो हो गया हमारा फायदा, तुम अपना बताओ तुम्हें क्या फायदा अमृत पिलाने से? बोले फायदा तो कुछ नहीं है, ये जो भागवत आप इन्हें पिला रहे ये हमारे यहां ले चलो। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी बताओ अमृत पियोगे या कथा अमृत पियोगे? बताओ महाराज अमृत पियोगे या कथा अमृत? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात बताओ फायदा किसमें है, फायदा किसमें है? बोले देखो दो में से एक कुछ मिलेगा, या तो कथा अमृत या ये देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन से निकला ये अमृत। पर फायदे की बात सुनो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, कहां कथा कहां ये अमृत? अरे परीक्षित जी कहां मणि और कहां कांच? ये अमृत जो देवता लेके आए ये कांच है और ये जो कथा है ना ये मणि है मणि। बोले महाराज कैसे? सुखदेव जी समझाने लगे राजन ये मणि इसलिए है कि आप अमृत पियोगे तो मरोगे तो नहीं ये पक्का है, लेकिन पिट गए तो दर्द में पड़े रहोगे, दर्द नहीं जाएगा। भाई हुआ क्या? यही तो हुआ, देवताओं को रावण खूब रगड़ रगड़ के मारता था और जैसे ही रावण घर से निकले और देवताओं को पता लगे कि इस तरफ एम्बुलेंस आ गई, मतलब रावण आ गया, सब देवता भाग जाते थे। तो किसी ने कहा देवताओं से कि तुम क्यों भागते हो, तुम क्यों रावण से डरते हो, तुम तो अमर हो अमर। तो देवता बोले अमर तो है, ये तो पक्का है मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कितने दिन पिटना है। और बोले पिटना भी बुरी बात थोड़ी है, बोले पिटने के बाद जो सिकाई होती है, कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ रहा जाता है, ऐसी हालत होती है, इसलिए बोले बहुत बुरी हालत होती है, इसलिए हम लोग बचते ही हैं। तो देवता बचते कैसे थे? रावण जैसे ही आवे सो भाग जाए और साहब देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाए। तो किसी ने कहा कि तुम छोटी गुफाओं में क्यों घुसते हो? देवता बोले रावण की आदत है, रावण झुकता नहीं है, घमंडी है, झुकता नहीं है, वो बड़े दरवाजों में तो आ जाता है छोटे दरवाजे में नहीं आता, इसलिए देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस के रावण से कहा दम हो तो आ आ। तो रावण कहे अब तुम अंदर हो, हम सिर नहीं झुका सकते, तुम में दम होते इधर तक आओ फिर बताते हैं। उस बालक को आने देना, बेटे तुम आ जाओ लेके।

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
4: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
7: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
3: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
3: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
10: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
11: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
11: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
3: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
7: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
14: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
9: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
3: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
3: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
3: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
10: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
5: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
21: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
2: गुंडे चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind. Reminisce about the good old

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए। सीरियल्स की दुनिया में कहीं है रोमांस तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
4: दिल्ली NCR में भारी बारिश से मौसम सुहाना, गर्मी और उमस से राहत। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। अमरनाथ यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। उत्तराखंड के चंबा में बादल फटने के बाद देवदूत बने जवान, नाले में फंसे 11 मजदूरों का किया सफल रेस्क्यू, प्रशासन ने की नदी नाले से दूर रहने की अपील। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का 6ठा दिन, गुंडीचा मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। राजस्थान के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 29,68,00,000 रुपए सोना चांदी का भी मिला चढ़ावा, आज 7वें चरण की होगी गिनती। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू, बाजारों में अभी से दिखने लगी है रौनक, इको फ्रेंडली सजावट के सामानों से सजे बाजार। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर, चतुर्दश देवता मंदिर में रंगाई पुताई का काम तेज, कल से 7 दिनों तक चलेगा ये उत्सव।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। बारिश ने हवा की गुणवत्ता में किया सुधार, उमस और गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजौरी में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई। घाटी में हुई बारिश से स्थानीय किसान हुए खुश, हालांकि कुछ जगहों पर यातायात हुआ प्रभावित। डोडा में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश ने निखारा डोडा का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ और वादियां बारिश के बाद और भी मनमोहक नजर आने लगी। लगातार बारिश से प्रकृति ने ओढ़ी हरियाली की चादर, पूरे इलाके में बड़ा ठंड का एहसास। बारिश का लोगों ने लिया जमकर आनंद, बारिश की मेहरबानी से खिल उठा डोडा। ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम को बनाया खुशनुमा, प्राकृतिक नजारों की खूबसूरती हो गई दोगुना। श्रीनगर की डल झील पर पर्यटकों की बड़ी आमद, शिकारा राइड के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। बढ़ते टूरिज्म से होटल और शिकारा कारोबारियों की कमाई पर भी पड़ रही है असर, सैलानियों से गुलजार हुआ है श्रीनगर। डल झील बनी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, शिकारा राइड के बढ़ते क्रेज से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बड़ा सहारा। डल झील की वादियों में लौट आई चहल पहल, होटल बुकिंग में तेजी, पर्यटन कारोबारियों के खिल उठे चेहरे। श्रीनगर की खूबसूरती सैलानियों को कर रही है अपनी ओर आकर्षित, घाटी में पर्यटन सीजन ने पकड़ी रफ्तार। केदारनाथ हाईवे पे सोनप्रयाग के निकट मुंकटिया स्लाइडिंग जोन में फंसी महिला यात्री के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, बारिश के बीच महिला का किया गया सफल रेस्क्यू। देश के कई राज्यों में मॉनसून हुआ एक्टिव, मैदानी इलाकों में गर्मी उमस से राहत मिलने की उम्मीद, बारिश से प्रभावित 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट किया गया जारी। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना, असम और मेघालय के लिए भी मौसम का रेड अलर्ट किया गया जारी। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी, पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट किया गया जारी, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग में हो सकती है भारी बारिश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 4 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों और बाजारों तक पानी भर गया, अस्पताल परिसर में भी जलभराव होने से मरीज हुए प्रभावित। भारी बारिश के कारण असम के कई जिलों में भरा बाढ़ का पानी, 16 जिलों के 3,62,000 लोग हुए इससे प्रभावित, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम लगातार जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के चलते शहर की कई सड़कें अचानक पानी में डूबी, सिटी मैजिस्ट्रेट ने जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। तमिलनाडु के वेल्लोर में जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से अचानक निचले इलाकों में आया मलबा, प्रशासन और राहत टीमें अलर्ट मोड पर। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन टनल में करीब 17 मजदूर फंस गए थे, समरडुंग मामरिंगे टनल में बचाव अभियान जारी। मूसलाधार बारिश के बाद टिहरी जिले में 4 धाम यात्रा मार्ग पर आई चट्टाने और मलबा, प्रशासन ने कई घंटों की मशीनों के जरिए मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। लैंडस्लाइड के चलते देहरादून मसूरी हाईवे को भी हुआ नुकसान, प्रशासन ने हाईवे को ट्रैफिक के लिए किया बंद। पटना में बारिश की वजह से बेकाबू हुई कार नाले में गिरी, हादसे में बाल बाल बची ड्राइवर की जान। भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी अमरनाथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बाढ़ बारिश के बीच सीआरपीएफ के जवान बने देवदूत, सीआरपीएफ जवानों ने रेस्क्यू कर महिला को पहुंचाया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हुए, पुल क्षतिग्रस्त हुआ, लोगों के घर में घुसा पानी। लगातार बारिश के कारण रजौरी के नौशहरा में मुनवार नदी उफान पर, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पुंज में एलओसी से सटे माल्टी में फ्लैश फ्लड, घरों, शेड और राशन की दुकानों को पहुंचा नुकसान। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल के अंतिम चरण में पहुंची तैयारियां, कल से शुरू होगा 7 दिवसीय खर्ची महोत्सव। मंदिर में रंगाई पुताई और सजावट का काम लगातार तेज और श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी भी हुई पूरी। उत्सव के दौरान पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पे, भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था। मेले में संस्कृति की दिखेगी झलक, 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और पारंपरिक आयोजनों से सजेगा खर्ची मेला। चतुर्दश देवता मंदिर सजाया गया, हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। अयोध्या के राम मंदिर में राम भक्तों का उमड़ा सैलाब, घंटों लाइन में लग के रामलला के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में आस्था अपने चरम पर, मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त रामलला के दर्शन कर खुद को महसूस कर रहे हैं धन्य। राम भक्तों की भारी भीड़ से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा। मंगलवार के दिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं का रेला, बजरंग बली के जयघोष से गूंज उठा पूरा परिसर। हनुमानगढ़ी में सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही, मंगल दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह चरम पर दिखा। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का छठा दिन, अड़पा मंडप के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। पुरी में बारिश के दौरान भी रथ यात्रा उत्सव आस्था और उत्साह के साथ लगातार जारी, तापमान में कमी आने से लोगों को मिली राहत। रथ यात्रा उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का होता है विशेष श्रृंगार, संध्या काल में निभाई जाती है संध्या धूप, विशेष आरती और भोग की परंपरा। पुरी में अड़पा मंडपम में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं लाखों श्रद्धालु, मान्यता के मुताबिक अड़पा मंडप दर्शन से कई गुना मिलता है पुण्य। 7 दिन मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में रहते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा, 24 जुलाई को होगी वापसी रथ यात्रा। अकोला में जीवंत हुई जगन्नाथपुरी की सदियों पुरानी प्रसाद की मटके परंपरा, आषाढ़ अमावस्या के बाद पहले सोमवार को भरी गई भगवान जगन्नाथ के प्रसाद मटके। गुड़ के गुलगुले, मीठी रोटी, पूड़ी, गुजिया और मीठे भात से भरी गई विशेष प्रसाद मटकी 24 घंटे भगवान को अर्पित रहने के बाद श्रद्धालुओं में बांटा जाता है ये महाप्रसाद। भगवान जगन्नाथ के दर्शन और महाप्रसाद के लिए उमड़े श्रद्धालु, परंपरा, श्रद्धा और संस्कृति का अनूठा संगम बना अकोला। मान्यता है कि जो पुरी नहीं जा पाते हैं उन्हें अकोला में ही मिलता है महाप्रसाद का पुण्य, चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। जगन्नाथ भक्ति की सदियों पुरानी परंपरा आज भी है अटूट, पूर्वजों की विरासत को आज भी पूरे श्रद्धा भाव से निभा रहा है गुप्ता परिवार। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, गणपति बप्पा के आसनों से सजे बाजार, सहेली कार्यशाला में इको फ्रेंडली गणेश आसनों की धूम। बप्पा के लिए साई रूप, महादेव, शिवलिंग और महाराजा आसन बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। लालबाग में गणपति के सिंहासन और सजावट के सामान की बड़ी मांग। गणेश उत्सव से पहले मुंबई के बाजारों में दिखने लगी उत्सव की रौनक, गणेश दरबार सजाने के लिए फूल मालाएं, लड़ी, मुकुट और आरती की थाली की खरीदारी तेज। भक्तों के लिए तैयार है मौर्य, वत्रकुंड और मंगल मूर्ति जैसे खास सिंहासन। कार्यशाला में कच्चा सामान भी उपलब्ध, घर पर बना सकते हैं बप्पा का आसन। बप्पा के स्वागत में मुंबई का बाजार पूरी तरीके से सच करके हुआ तैयार। 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर मुंबई में उत्साह चरम पर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नेपाल की त्रिवेणी नदी से बहकर आई डॉल्फिन मछली के लिए चला विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन, बनाया गया 52 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर। महाराजगंज जिले की नहर में बहकर पहुंची थी 7 फीट की डॉल्फिन मछली, वन विभाग की टीम ने विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन चला के डॉल्फिन को सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ा। 3 दिन से फंसी थी डॉल्फिन मछली के रेस्क्यू के लिए 2 दिन तक चली नहर से निकालने की उसे कोशिश, डॉल्फिन की जान बचाने के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है। ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
10: सास बहू और बेटियां में आज देखिए, सीरियल्स की दुनिया में कहीं है रोमांस तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: दिल्ली NCR में भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी और उमस से मिली राहत। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। अमरनाथ यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। उत्तराखंड के चंबा में बादल फटने के बाद देवदूत बने जवान, नाले में फंसे 11 मजदूरों का किया गया सफल रेस्क्यू, प्रशासन ने की नदी नाले से दूर रहने की अपील। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का 6ठा दिन गुंडीचा मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। राजस्थान के सावलिया सेठ के भंडार से निकले 29,68,00,000 रुपए सोना चांदी का भी मिला चढ़ावा, आज 7वें चरण की होगी गिनती। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू, बाजारों में अभी से दिखने लगी रौनक, इको फ्रेंडली सजावट के सामानों से सजे बाजार। चमोली के चीन सीमा पर स्थित पार्वती कुंड पहुंचा ग्रामीणों का दल, कुंड में स्नान कर भक्तों ने की पूजा, नाचते गाते नजर आए लोग।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी आस्था भक्ति की खनक की। देखिए, आज आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, जहां के सावलिया सेठ मंदिर में आस्था और विश्वास का अद्भुत संसार समा गया है। देखिए, जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। कहते हैं कि सावलिया सेठ के दरबार में भक्त खाली हाथ कभी नहीं लौटते हैं। कोई अपनी मुराद लेकर आता है तो कोई मन्नत पूरी होने के बाद अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए यहां पर पहुंचता है। और अब इस आस्था के केंद्र से करोड़ों के चढ़ावे का आंकड़ा भी सामने आया है। इस महीने मंदिर की दान पेटियां खुली तो नोटों की घटियां और सिक्कों का अंबार निकला। गिनती पूरी हुई तो सामने करीब 29,68,00,000 रुपए का चढ़ावा आया। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सावलिया सेठ में भक्तों का विश्वास कितना है और उनका जो विश्वास है वो कितना अडिग है, और यहाँ की गई प्रार्थना और सेवा का विशेष महत्व है।

मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवरिया सेठ के प्रति भक्तों की आस्था अत्यंत गहरी है। यहाँ हर दिन देश और दुनिया से भक्त आते हैं और सांवरिया सेठ का दर्शन कर भाव विभोर हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगने पर सांवरिया सेठ उसे जरूर पूरा करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ दिल खोल कर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस बार चढ़ावे की मासिक गणना के दौरान मिल रही भारी भरकम राशि को देखकर साफ हो जाता है कि सांवलिया सेठ के प्रति आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

जुलाई महीने में अब तक 6 चरण की मासिक गणना का काम पूरा हो चुका है और इन 6 चरणों में 29 करोड़ 68 लाख 83 हजार 955 रुपए की नकद राशि प्राप्त हो चुकी है। चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी। पहले ही दिन की गणना में जब 10 करोड़ 11 लाख की राशि मिलने की पुष्टि हुई तो मंदिर प्रशासन को ये लग गया कि भक्तों ने तो खुले दिल से दान दिया है। आपको बता दें कि भंडार से मिला सोना चांदी का वजन और भेंट कक्ष में नकद मनी ऑर्डर और भेंट स्वरूप मिले सोने चांदी की गणना अभी हो रही है। गणना का काम संपन्न होने के बाद ही पता चल पाएगा कि मंदिर में दान स्वरूप कितना सोना चांदी मिला है। हालांकि इस बीच सावलिया सेठ के किसी श्रद्धालु ने 20 लाख रुपए की सोने की बांसुरी जरूर भेंट की है, जो चर्चा का विषय बन गई है।

0: आपको बता दें कि सांवलिया सेठ मंदिर में मिले चढ़ावे की गणना काफी पारदर्शी तरीके से की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और कई बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि श्री सांवलिया सेठ पर अर्पित प्रत्येक भेंट केवल दान नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और भक्ति की अभिव्यक्ति है, जो इस पावन धाम की आध्यात्मिक महिमा को और ज्यादा गौरवान्वित करती है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: श्री सांवलिया सेठ जी के दरबार में आने वाले चढ़ावे की रकम हर साल बढ़ रही है। सेठ जी निरंतर मालामाल हो रहे हैं, उनका जो खजाना है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। खास तौर पर पिछले 5 सालों में यहाँ पर चढ़ावे और दान की रकम का आंकड़ा करोड़ों से बढ़कर अरबों में दर्ज किया गया है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार यहाँ के दान पेटियों में कितनी रकम और कितना चढ़ावा आया है। तो यहाँ पे साल 2022 से 2023 में 130 करोड़ 51 लाख रुपए की कीमत चढ़ावे में आई। वहीं साल 2023-2024 की अगर हम बात करें तो 23-24 में चढ़ावे का आंकड़ा 167 करोड़ 65 लाख रहा। साल 2024-2025 में इस मंदिर में 235 करोड़ 96 लाख की रकम चढ़ावे में आई, जबकि साल 2025-2026 की अगर हम बात करें तो इस टेन्योर में यहां पर 367 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा सांवलिया सेठ जी के खजाने में आया, जो एक नया रिकॉर्ड है अपने आप में। क्योंकि देखिए, 34 साल में पहली बार 367 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान सांवलिया सेठ जी के मंदिर में आया है। और इस रिकॉर्ड रकम के चढ़ावे से पता चलता है कि सांवलिया सेठ में भक्तों की अटूट आस्था है, जिन्हें सेठ जी के रूप में पूजा जाता है। दरअसल देखिए, हुआ यह है कि भगवान सांवलिया सेठ ने भक्तों की मुराद पूरी की है, तो भक्तों ने भी दिल खोलकर उनके दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाया है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो ब्रज से द्वारका तक देश के कोने कोने में होती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के नाम से क्यों पूजे जाते हैं आखिर श्याम, इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक ऐतिहासिक गाथा है। दरअसल दूर दूर से लोग साल भर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि भगवान की वही प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है जिनकी पूजा स्वयं संत मीराबाई किया करती थीं।

0: ये भगवान श्री कृष्ण का अनोखा धाम है, जहां वासुदेव पूरी करते हैं सबकी मुराद। सांवले सलूने श्याम सबकी झोली भर देते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित इस मंदिर की बात ही निराली है, क्योंकि यहाँ कुंज बिहारी कृष्ण कन्हैया योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सावलिया सेठ के रूप में होती है। सावलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सावलिया सेठ का यह मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे सदियों पुरानी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस मंदिर का बड़ा ही रोचक इतिहास है। असल में भगवान सावलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरिधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा समेत चार मूर्तियों को बांगुड़ भातसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई, तो ये भी जान लीजिए। संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई सालों तक वहीं दबी रहीं। 1840 में मंडफिया गांव के ग्वाले भोलाराम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गईं। सबसे बड़ी मूर्ति को भातसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के मार्गदर्शन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित किया गया। तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोलाराम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित किया। चौथी प्रतिमा खुदाई के दौरान खंडित हो गई और इसे उसी स्थान पर वापस दबा दिया गया। यहीं से शुरू हुई सावलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक पूजा अर्चना। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों समेत तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सावलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सावलिया सेठ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी अनोखी कहानी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहाँ आकर सावलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी व्यापारी यहाँ आकर सावलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बड़े चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती से शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सावलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान करते हैं, लेकिन सावलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपनी दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सावलिया सेठ के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सावलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। मान्यता है कि व्यापारी कारोबार के फलने फूलने की जिम्मेदारी भगवान को अर्पित कर देते हैं और व्यापार में हिस्सेदार बनने के बाद भगवान व्यापारियों के कारोबार को अपना मान लेते हैं, जिससे व्यापार में घाटा नहीं होता, मुनाफा ही मुनाफा होता है। वहीं सावलिया सेठ के मंदिर में आने वाले आम लोग भी यहाँ दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। 2026 में फरवरी मार्च के दौरान डेढ़ महीने में ही मंदिर में 46.5 करोड़ से ज्यादा नकद, 3 किलो सोना और 152 किलो चांदी का रिकॉर्ड दान प्राप्त हुआ। इससे पहले नवंबर 2025 में 51 करोड़ से ज्यादा की नकद राशि यहां पर दान की गई। 2024 में मंदिर को करीब 124 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड वार्षिक दान मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 30 सालों में मंदिर का चढ़ावा 340 गुना बढ़ा है और ये 225 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इस तरह सावलिया सेठ मंदिर में हर साल करोड़ों का विशाल चढ़ावा आता है, जिसमें कैश के अलावा सोना चांदी नकदी और कीमती हीरे जवाहरात भी शामिल हैं। दान में मिले इस धन का उपयोग मंदिर ट्रस्ट की ओर से समाज सेवा के कामों में किया जाता है। हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर यहां भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। क्योंकि मेवाड़ की इस पावन धरती पर स्थित सावलिया सेठ का ये मंदिर केवल भक्ति और आस्था ही नहीं, बल्कि भगवान के प्रति लोगों के अटूट विश्वास का बड़ा केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मेवाड़ की धरती पर भक्ति और आस्था की एक ऐसी कहानी भी जुड़ी हुई है जो सदियों से लोगों के विश्वास का हिस्सा बनी हुई है। देखिए, मान्यता है कि भगवान श्री सावलिया सेठ को ही संत मीराबाई के आराध्य गिरिधर गोपाल का स्वरूप माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि मीराबाई ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उनके लिए गिरिधर गोपाल ही उनके लिए सब कुछ थे। उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण की गूंज आज भी भक्ति परंपरा में सुनाई देती है और यही वजह है, यही कारण है कि सावलिया सेठ का दरबार सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भक्ति, विश्वास और सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है।

मेवाड़ जिसकी धरा में जन्मे वीर शिरोमणि, जिसकी माटी को सींचा है शूरवीरों के रक्त ने, जहां आज भी खिलते हैं शौर्य और स्वाभिमान के फूल। शौर्य तीर्थ मेवाड़ की उसी माटी में कभी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का ऐसा बीज पड़ा था जो आज भी आस्था का विशाल वट वृक्ष बनकर चित्तौड़ की धरा पर लहलहा रहा है और सुना रहा है किस्से प्रेम के, भक्ति के, मीरा और उनके गिरिधर गोपाल के।

0: अनोखा धाम है चित्तौड़ का श्री सांवलिया सेठ मंदिर। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस मंदिर की बात निराली है, क्योंकि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सांवलिया सेठ के रूप में होती है। सांवलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सांवलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे सदियों पुरानी कहानी है, जो खुद में समेटे है भारत के इस भूभाग का रोचक इतिहास। असल में भगवान सांवलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा सहित चार मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई। दरअसल संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई वर्षों तक वहीं दबी रही। 1840 में मंडफिया गांव के एक नौजवान भोला राम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गईं। सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के निर्देशन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित कर दिया गया, जबकि तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोला राम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित कर लिया, और चौथी मूर्ति खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और इसी स्थान पर उसे वापस दबा दिया गया।
1: ठाकुर जी की स्थापना का गलत 200 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, महिमा तब से ही चली आ रही है। लाख 200 वर्षों से पहले ठाकुर जी पति से उत्पन्न हुए थे, यहाँ से 7 की उम्र थी, तो अब तो पुजारी परिवार के वंशज थे और उनके ऊपर एक भोले राम जी थे, उनके जो सपना में आए थे और उनके साथ में स्थापना हुई 200 वर्षों से। चमत्कार के रूप में देखा जाए तो सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। लोग यहाँ पार्टनरशिप साझेदारी उसके लिए भी ठाकुर जी विख्यात है।
0: यहीं से शुरू हुई सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक रूप से पूजा। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों सहित तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सांवलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कहानी अनोखी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहाँ आकर सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे भागों के व्यापारी भी यहाँ आकर सांवलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती के रूप में कभी शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान किया करते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपनी दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सांवलिया सेठ के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सांवलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आकर लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। शौर्य तीर्थ मेवाड़ में शान से खड़ा ये मंदिर आज भी जिंदा रखे है मीराबाई और उनके गिरिधर गोपाल की आस्था में पगी कहानियों को, और उन्हीं कहानियों की डोर थामे इस दिव्य धाम को देखने दुनिया भर के भक्त यहां आते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: भले ही बप्पा के आगमन में अभी लगभग 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। देखिए, गणपति दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही है। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा पंडाल के बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में भी बप्पा के स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। यहाँ अलग अलग डिजाइन के इको फ्रेंडली आसन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं।

0: गणेश चतुर्थी में अभी वक्त है, लेकिन उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए। लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन

0: जब मौका बापा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे बल्कि बापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स और उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं। इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाला सारा सामान पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। अब बस बापा के भक्तों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ पंडालों, घरों और दफ्तरों में बापा की मूर्तियां स्थापित होंगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including Live Dealer, Blackjack, and Craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
3: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: दिल्ली NCR में भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी और उमस से मिली राहत हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट।
13: अमरनाथ यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते कल स्थगित रहेगी यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह।
12: हिमाचल के चंबा में बादल फटने के बाद देवदूत बने जवान, नाले में फंसे 11 मजदूरों का किया सफल रेस्क्यू, प्रशासन ने की नदी नाले से दूर रहने की अपील।
13: पुरी में बहुधा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण, तकनीकी जांच के साथ ही सभी आवश्यक मरम्मत और सफाई का काम जारी। 24 जुलाई को गुंडीजा मंदिर से रवाना होंगे भगवान।

0: सीमा पर स्थित पार्वती कुंड पहुंचा ग्रामीणों का दल। कुंड में स्नान कर भक्तों ने की पूजा अर्चना, नाचते गाते नजर आए लोग।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। बारिश ने हवा की गुणवत्ता में किया सुधार, उमस और गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में हुई बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट। राजौरी में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई। घाटी में हुई बारिश से स्थानीय किसान खुश, हालांकि कुछ जगहों पर यातायात हुआ प्रभावित।
0: डोडा में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हुआ, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश ने निखारा डोडा का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ और वादियां बारिश के बाद और भी मनमोहक नजर आने लगे। श्रीनगर के डल झील पर पर्यटकों की बढ़ी आमद, शिकारा राइड के लिए उमड़ रहे हैं भारी भीड़। बढ़ते टूरिज्म को लेकर टूरिस्ट से होटल और शिकारा कारोबारियों की कमाई भी पकड़ रही है रफ्तार, सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। डल झील बनी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, शिकारा राइड्स के बढ़ते हुए क्रेज से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बड़ा सहारा।
2: अयोध्या के राम मंदिर में राम भक्तों का उमड़ा सैलाब, घंटों लाइन में लगकर रामलला के दर्शन कर रहे श्रद्धालु। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल के अंतिम चरण में पहुंची तैयारियां, कल से शुरू होगा 7 दिवसीय खर्ची महोत्सव। मंदिर में रंगाई पुताई और सजावट का काम तेज, श्रद्धालुओं के स्वागत की पूरी तैयारी। उत्सव के दौरान पुलिस और प्रशासन अलर्ट, भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई। मेले में संस्कृति की दिखेगी झलक, 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, लोक नृत्य और पारंपरिक आयोजनों से सजेगा खर्ची मेला।
0: महाराष्ट्र के अमरावती में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। इस्कॉन की शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल। फूलों से सजे रथ पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और साथी बहन सुभद्रा की मनमोहक प्रतिमाएं विराजमान, श्रद्धालुओं ने पूरे मार्ग में रथ खींचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। वहीं जूनागढ़ में गिरनार निर्वाण लड्डू महोत्सव में श्रद्धालु की भारी भीड़ को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, गिरनार तीर्थ यात्रा मार्ग पर 500 से ज्यादा जवान तैनात। गुजरात के भावनगर में ड्रैगन फ्रूट की खेती ने जिले के किसानों की किस्मत बदली, पारंपरिक फसलों के मुकाबले आमदनी में हुई बढ़ोतरी। भावनगर में भी 30 से भी ज्यादा किसान कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती, आमदनी बढ़ने से परिवारों की आर्थिक स्थिति हो रही है बेहतर।
2: मार्वल स्टूडियोज की मच अवेटेड फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का पहला फुल ट्रेलर रिलीज हो गया है। मार्वल की फिल्मों में आयरन मैन की भूमिका निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस फिल्म में डॉक्टर डूम के तौर पर नजर आएंगे। एक्टर सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर एक नया और अहम अपडेट सामने आया है। साल 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म, पहले 2027 में रिलीज होने की खबरें आई थी। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को भारत में 8.5 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 4 दिनों की कुल नेट कमाई अब 69 करोड़ रुपए हो गई। इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवारापन 2 के सॉन्ग ये आवारापन को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है। आज रिलीज होगा ये गाना। धमाल 4 की रिलीज के 11वें दिन कमाई के मामले में वर्ल्ड वाइड किया धमाल। 11वें दिन करीब 7 करोड़ का किया ग्लोबल कलेक्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लो।
0: सच्ची खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
2: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
0: दिल्ली NCR में भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी और उमस से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक रहेगा बादलों का डेरा।
2: अमरनाथ यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी यात्रा। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई।
0: पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज 6वां दिन। गुंडीचा मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
2: राजस्थान के सांवलिया से के भंडारे से निकले 29.68 करोड़ रुपए सोना चांदी का भी मिला चढ़ावा। 7वें दिन चरण की गिनती।
0: वही अरिजीत सिंह की आवाज में आवारापन 2 का नया गाना रिलीज हुआ। क्या प्लेबैक सिंगिंग में अरिजीत ने कर ली है वापसी? आधिकारिक पुष्टि का फिलहाल इंतजार।

राजस्थान के सांवलिया सेठ के भंडार से निकले 29 करोड़ 68 लाख रुपए सोना चांदी का भी मिला चढ़ावा, आज सातवें चरण की गिनती।

0: अब देखिए, कुछ महीने पहले भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर चूंकि बस बहुत तेज है, इसलिए बॉलीवुड के गलियारों में जो चर्चा गर्म है उसी से शुरुआत कर लेते हैं। और वो ये है कि क्या अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग में फिर से वापसी कर ली है। बॉलीवुड के साथ साथ अरिजीत के फैंस भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि क्या बॉलीवुड में अरिजीत सिंह की आवाज एक बार फिर से अपना जादू बिखेरने वाली है।
1: इस चर्चा की वजह भी जान लीजिए। इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म आवारापन 2 के लिए अरिजीत सिंह ने एक टाइटल ट्रैक गाया है जो कि अब से थोड़ी देर पहले रिलीज किया गया, और इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्लेबैक सिंगिंग में रिटायरमेंट के 6 महीने बाद अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग में वापसी कर ली है, या फिर ये गाना रिटायरमेंट से पहले किए गए उनके कमिटमेंट का हिस्सा है।
0: देखिए, आगे हम इस पर बातचीत करेंगे, पहले सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना।

0: तो अरसे बाद किसी बॉलीवुड गाने में अरिजीत सिंह की आवाज आपने सुनी, वही आवाज जिसने प्यार दर्द को सुरों में पिरोकर करोड़ों दिलों तक पहुंचाया है। लेकिन इसी साल 27 जनवरी को अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान भी किया था, आपको याद होगा।
1: अब देखिए, अरिजीत सिंह ने हर किसी को फिर से हैरान कर दिया है, लेकिन इस न्यूज़ ने, जब ये न्यूज़ सबके सामने आई थी तब भी फैंस हैरान हुए थे। अरिजीत सिंह ने कहा था कि वो फिल्मों में गाने नहीं गाएंगे लेकिन गायकी का सफर जारी रखेंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अरिजीत सिंह ने आवारापन 2 से प्लेबैक सिंगिंग में वापसी कर ली है। इस बात की फिलहाल तो कोई आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है।
2: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है।

0: क्या अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग में कमबैक कर लिया है? क्या सचमुच अरिजीत सिंह ने सन्यास के अपने फैसले को पलटते हुए फिल्मी दुनिया में वापसी कर ली है? अगर ऐसा है तो फिर बीते 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि अरिजीत सिंह को वापसी पर मजबूर होना पड़ा है? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन मुकेश भट्ट की अपकमिंग फिल्म आवारापन 2 के रिलीज हुए टाइटल ट्रैक ये आवारापन की बात की जाए तो इस सैड सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने अपनी दर्द भरी आवाज से पिरोया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट से वापसी करते हुए आवारापन 2 का ये गाना गाया है, या अरिजीत इस गाने की रिकॉर्डिंग पहले ही कर चुके थे, या फिर ये गाना भी उनके संन्यास से पहले के कमिटमेंट का हिस्सा है, जैसा कि आमिर खान की फिल्म एक दिन के लिए उन्होंने एक गाना गाया था। दरअसल इसी साल 27 जनवरी की रात 9 बजे अरिजीत सिंह ने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए प्लेबैक सिंगिंग से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अरिजीत ने कहा था कि आगे से प्लेबैक सिंगर के तौर पर वो कोई नया असाइनमेंट नहीं लेंगे, मतलब वो अब से फिल्मी गाने नहीं गाएंगे। हालांकि उनका संगीत का सफर जारी रहेगा, जो कि उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट के जरिए जारी भी रखा है। अब करीब 6 महीने बाद सुरों के इस शहंशाह की आवाज में एक नया गाना सामने है। वजह जो भी हो, लेकिन सच तो यही है कि उनकी आवाज के मुरीदों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। बताया ये भी जा रहा है कि आवारापन 2 के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट के कहने पर ही अरिजीत ने अपने फैसले में बदलाव किया है। विशेष भट्ट और विशेष फिल्म से अरिजीत का दरअसल 15 साल पुराना रिश्ता है। विशेष फिल्म्स ने ही सबसे पहले अरिजीत सिंह पर भरोसा किया और उन्हें मर्डर 2 में फिर मोहब्बत गाना दिया था, जिसने अरिजीत सिंह को एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। इसके बाद तो अरिजीत ने विशेष फिल्म्स के लिए कई सारे सुपरहिट गाने गाए। शायद यही वजह है कि पुराने दिनों को याद कर अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के अपने कमिटमेंट पर काबिज न रह सके हों और विशेष फिल्म्स के आग्रह पर गाने के लिए तैयार हो गए हों। फिलहाल ये सब कयास हैं, सच क्या है ये तो अरिजीत सिंह ही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब देखिए, जो आजकल की जेंजी है उनको तो ये गाना आई एम श्योर कि बहुत पसंद आया। पूजा,
2: जेंजी की बात नहीं शगुफ्ता, ये गाना क्योंकि पुराना भी काफी ज्यादा अच्छा लिखा हुआ था, तो कुछ पहले जैसा ही लगभग लग रहा है।
1: वेरी क्लोज टू दैट, बट चूंकि अरिजीत की आवाज है तो जाहिर सी बात है कि जादू तो बिखेरेगी। अब बात चलिए आगे बढ़ते हैं और सलमान खान की अपकमिंग फिल्म मातृभूमि की कर लेते हैं। फिल्म की रिलीज में हो रही देरी की खबरों के बीच में मेकर्स ने फिल्म मातृभूमि का एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा है 2026, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म इसी साल रिलीज होगी।
2: हालांकि डेट अभी कन्फर्म नहीं है। इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि फिल्म 2027 के लिए टाल दी गई है।

मातृभूमि का ये पोस्टर रिलीज डेट का ऐलान नहीं, एक इशारा है जो ये बताता है कि सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2026 यानी इसी साल रिलीज होगी।

इस पोस्टर में सलमान खान और चित्रगंधा सिंह नजर आ रही हैं। फिल्म के पोस्टर पर 2026 में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे इस बात का हिंट मिलता है कि ये फिल्म इसी साल रिलीज हो जाएगी। हालांकि मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर किसी तरह के रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस पोस्टर ने फिल्म के रिलीज को लेकर फैंस की क्यूरियोसिटी तो बढ़ा ही दी है।

0: मातृभूमि का पोस्टर सलमान खान फिल्म्स की तरफ से जारी किया गया है। कैप्शन में लिखा है, एक सैनिक का वादा, एक परिवार की ताकत, एक राष्ट्र का गौरव। इसी के साथ पोस्टर पर हर सांस भारत के लिए कुछ बॉन्ड खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं, दिल से देश के लिए, ऐसे स्लोगन लिखे गए हैं। यहाँ गौर करने वाली एक बात और है, पोस्टर पर सलमान खान द्वारा निर्मित फिल्म लिखा गया है। पोस्टर से डायरेक्टर अपूर्वा लखिया का नाम गायब है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अपूर्वा इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। पहले खबरें आ रही थी कि फिल्म 2027 के लिए टल गई है, हालांकि सलमान खान ने इस बात का खंडन किया था और अब मातृभूमि का यह नया पोस्टर भी यही हिंट दे रहा है कि फिल्म इसी साल रिलीज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो आज से करीब 27 साल पहले 1999 में भारतीय सेना ने करगिल जंग में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ लगभग एक अभियान चलाया था और जिसे हम सब ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। सिल्वर स्क्रीन पर LOC, करगिल, शेरशाह समेत ऑपरेशन विजय से प्रेरित कई फिल्में अब तक रिलीज भी हो चुकी हैं,
2: जिसमें हमने भारतीय सेना की शौर्य और जांबाजी की झलक देखी है। लेकिन इसी कारगिल जंग में भारतीय वायुसेना ने अपना सबसे खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया था, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से जानते हैं। भारतीय वायुसेना के इस शौर्य पराक्रम की झलक 2020 में आई फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में हमें दिखी थी, लेकिन अब नेटफ्लिक्स भारतीय वायुसेना की इस गौरव गाथा पर पहली बार एक सीरीज लेकर आ रहा है।
1: ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की ये पूरी गाथा विस्तार में दिखाई जाएगी। जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, सिद्धार्थ जैसे कलाकारों की ये सीरीज 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है।
3: पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी कारगिल द्रास सेक्टर की सारी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन पोस्ट से वो हमारी नेशनल हाईवे 1 को टारगेट कर रहे हैं।
4: कश्मीर छीनना है,
5: नीचे से कुछ नहीं देख पा रहे हैं और वो ऊपर से हमारी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। उनकी हाइट की एडवांटेज को काउंटर करने के लिए वी नीड द एयर फोर्स।
0: वो तारीख थी 26 मई 1999, जब भारतीय वायुसेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अपना सबसे जाबाज और खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया था।
6: वाजपेयी साहब, ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है,
7: ये मुजाहिदीन है।
8: मुजाहिदीन सिंगल फाइल में नहीं चलते, सिंगल फाइल में तो आर्मी वाले चलते हैं।
9: टारगेट 18,000 फीट पर है, बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी।
10: श्रीनगर जाना।
0: ऑपरेशन सफेद सागर दुनिया के सबसे मुश्किल मिशनों में से एक।
9: ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट्स टुमारो एट 0700 आवर्स।
0: मुश्किल इसलिए कि दुनिया में किसी भी देश की वायुसेना ने इससे पहले इतनी ऊंचाई पर जंग नहीं लड़ी थी। अब तक भारतीय सेना तोसा मैदान फायरिंग रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अभ्यास करती थी, लेकिन कारगिल में दुश्मन 14,000 से 18,000 की फीट ऊंचाई पर बैठा था। घुसपैठ का दायरा पश्चिम में द्रास से लेकर पूर्व में बटालिक तक फैला हुआ था। एयरफोर्स के पायलटों को 15,000 से 18,000 फीट की पहाड़ की दुर्गम चोटियों पर बम बरसाने थे। ये काम आसान नहीं था, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन भारतीय सेना की मदद और पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया।
11: सर, उन्होंने अपने साथ मुझे,
12: हमारे भाइयों के सम्मान में हम लड़ेंगे।
0: 26 मई की सुबह MiG-21, MiG-23 और MiG-27 ने घुसपैठियों के शिविरों, उनके सामान और आपूर्ति मार्ग पर हमला किया। ये सभी इलाके द्रास, कारगिल और बटाली के आसपास के थे। ये पूरा हिमालय क्षेत्र बर्फ से ढका होने की वजह से सफेद समुद्र जैसा दिखता था, इसलिए इसे ऑपरेशन सफेद सागर का कोडनेम दिया गया। इस ऑपरेशन के कामयाब होने के लिए हमलों का सटीक होना बेहद जरूरी था। पहाड़ों की बनावट ऐसी थी कि अगर कोई बम अपने निशाने से 50 मीटर भी चूक जाता तो 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। इतनी ऊंचाई पर हमलावर हेलीकॉप्टर सही से काम नहीं कर रहे थे। दुश्मन ऊंचाई पर था, इसलिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों का निशाना बनाने का भी खतरा था। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद लड़ाकू विमानों ने पूरे सेक्टर में लगातार हमले जारी रखे। 16 जून 1999 को भारतीय वायुसेना ने मुंथो ढालों में पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स कैंप का पता लगाया। इसके बाद ऑपरेशन में एंट्री हुई वायुसेना के गेम चेंजर विमान मिराज 2000 की, जिसने जंग में पूरी कहानी बदल दी। वायुसेना के इंजीनियरों ने रातों रात विमान पर लेडर गाइडेड बमों को फिट किया। ये पहली बार था जब भारत लड़ाकू विमान से इतनी ऊंचाई पर लेजर गाइडेड बमबारी करने वाला था। मिराज 2000 ने 250 किलोग्राम के बमों से कारगिल की चोटी पर सुरक्षित बनाए गए पाकिस्तानी बंकरों पर हमला किया और उसे निस्तानाबूद कर दिया। मिराज के साथ साथ जगुआ लड़ाकू विमानों ने मुश्कोट घाटी में भी जमकर गाइडेड बम दागे। इन हमलों से बटालिक में पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। मिराज 2000 विमानों ने सटीक हमलों से ऐसा कहर ढाया कि पाकिस्तानी फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए कारगिल की लड़ाई जीत ली। भारतीय वायुसेना की यही गौरव गाथा अब नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त को ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज में दिखाई जा रही है। हाल ही में रिलीज हुए टीजर के बाद ऑपरेशन सफेद सागर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें वायुसेना की फैसले लेने की प्रक्रिया, पायलट की ट्रेनिंग और युद्ध के मैदानों की असलियत दिखाई गई है।
9: टारगेट 18,000 फीट पर है, बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी।
0: इस शो की शूटिंग भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन बेस पर बड़े पैमाने पर की गई है और इसमें मिग एयरक्राफ्ट और वायुसेना के जवान शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब देखिए, तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और अब राजनीति में कदम रख चुके विजय थलपति की फिल्म जननायकन को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है और मेकर्स ने इसका एक नया जबरदस्त टीजर जारी किया है। सुपरस्टार विजय एक बार फिर से बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है।
1: फिल्म जननायकन 23 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक्शन, दमदार डायलॉग और विजय का स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। विजय की इस फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। वजह सिर्फ विजय की स्टार पावर नहीं बल्कि फिल्म से जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी हैं।
2: और देखिए, विजय तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हैं, ऐसे में उनकी फिल्म जननायकन को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है।
7: कम से कम इस साल तो आर्मी एप्लीकेशन में सही सिग्नेचर करना।
11: पापा! किसने भेजा है?
13: Come, let's play again.
1: देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक बार फिर से अपनी फिल्म जननायकन को लेकर चर्चा में है, जो कि 7 महीने देरी के बाद थिएटर्स में 23 जुलाई से आ रही है। दरअसल विनोद के डायरेक्शन में बनी ये तमिल एक्शन थ्रिलर थलापति विजय के राजनीति में पूरी तरह आने से पहले की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, जिसके चलते उनके फैंस के बीच फिल्म को लेकर और भी ज्यादा उत्साह है।
2: बिल्कुल, देखिए, इस फिल्म को लेकर काफी सारा बज भी हमने देखा है। फिल्म की रिलीज को लेकर हुई इस भारी देरी के चलते दर्शकों के बीच भी काफी बेताबी देखी जा सकती है और इसकी मिसाल नजर आई फिल्म की एडवांस बुकिंग में, जो शुरू हो गई है। खास बात यह है कि देश में चुनिंदा जगहों पर फिल्म की प्रीमियर टिकट की कीमत 2500 रुपए तक पहुंच गई, लेकिन जननायकन को लेकर लोगों का क्रेज साफ नजर आ रहा है।
14: सात महीने की देरी सही, लेकिन अब थलापति विजय की फिल्म जननायकम फुल फॉर्म में रिलीज के लिए तैयार है।
15: लोग उसे बुलाते हैं थलापति, उसे टच मत करना, तुझे काट डालेगा।
14: तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म बताई जा रही, लिहाजा विजय के फैंस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म को लेकर दर्शकों की बेताबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दर्शक फिल्म की एक टिकट के लिए 2500 रुपए तक भी खर्च करने को तैयार हैं। भारत में एडवांस बुकिंग शुरू होते ही बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में थिएटर्स मिनटों में हाउसफुल हो गए। जननायकन के तमिल वर्जन के लिए ज्यादातर जगहों पर टिकट की कीमत 100 से 800 रुपए के बीच रखी गई है, लेकिन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो के मुताबिक बेंगलुरु में सुबह के शो के टिकट की कीमत 1200 से 2500 रुपए के बीच है। कई जगह टिकट सोल्ड आउट भी हो चुके हैं।
16: बेटियों पे डर हावी नहीं होना चाहिए, विजय को हमें एक शेरनी की तरह बनाना है।
14: फिल्म की टिकट की कीमत इतनी ज्यादा होने के बावजूद एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है और इसकी बड़ी वजह तो यही है कि इसे थलापति विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने चुनावों से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इसके बाद पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय होंगे।
13: play a game.
14: The Nikon का क्रेज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है. ब्रिटेन में एडवांस बुकिंग विंडो खुलते ही शुरुआती 60 मिनट के भीतर ही 10,000 से ज्यादा टिकट्स बिक गए.
13: तबाही.
14: पहली फिल्म इसी साल 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी.
17: डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे हैं चाचा.
14: विजय अपनी आखिरी फिल्म जनता को एक गिफ्ट के रूप में सौंपना चाहते थे, लेकिन सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन का पेच ऐसा अटका कि फैंस को महीनों तक मायूस होना पड़ा.
13: लोगों की भलाई के लिए मेरे काम में टांग मत अड़ाना.

0: कहा गया कि इस फिल्म से विजय को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। जनायकन में कुछ सीन्स पर आपत्ति भी उठी। कहा यह भी गया कि इनसे भारतीय सेना और सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण माना गया जिससे सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट को कई महीनों तक टाले रखा। हाल ही में जननायकन को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास किया है जिसके बाद इसके रिलीज का रास्ता साफ हो सका।
1: आई एम
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
2: वाली गुड न्यूज की, देश भर में मॉनसून ने एक बार फिर से वापसी कर ली है। कई दिनों की उमस और चिपचिपाती गर्मी के बाद बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। सड़कों पर रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है लेकिन मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है।
3: अब देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले दो दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, यानी आज ही नहीं कल भी ज्यादातर इलाकों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। वैसे केवल दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी मॉनसून पूरी तरह एक्टिव है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश है। बारिश से मौसम सुहाना हुआ है जिसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों का खूबसूरत नजारा सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहा है। ऊंची चोटियां बादलों की चादर में लिपटी नजर आ रही हैं, घाटियों में घना कोहरा भी छाया हुआ है।
2: देखिए, देश भर में एक बार फिर से मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली और इसके साथ ही कई राज्यों में नदियां और बरसाती नाले खतरनाक स्तर पर बह रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी का तेज बहाव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है।
3: अब देखिए, कहीं आफत है तो कहीं राहत है, कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं तो कहीं रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई जगह लोगों की जान बचाने के लिए युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।

0: लगातार हो रही बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 3 युवक बीच धारा में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तेज बहाव के बीच जवान नाव के सहारे युवकों तक पहुंचे और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी नालों के पास जाने से बचें।
1: इन्होंने फोन किया कि पानी आ गया और आप पुलिस को फोन करो। हमने मीडिया वालों को फोन किया था तो मीडिया वालों ने फोन कर दिया पुलिस को भी।
2: अभी क्या एनडीआरएफ की टीम आई है?
1: आई है, वो ले आए उनको पास से।
2: कितने लोग थे ये?
1: 3 लड़के हैं ये।
3: ये तो पिछली बार भी अभी 10 दिन पहले ही हमने 4 बंदों को रेस्क्यू किया था। अभी भी हमने इनको बताया, वो उस दिन भी हमने बताया था कि आप तवी के किनारे ना घूमें क्योंकि तवी का कभी भी फ्लो बढ़ सकता है। और ये जब ये अभी प्ली ले बच्चे जो जिनको बचाया हुआ तो ये कह रहे हैं कि सुबह पानी कम था तो हम क्रॉस कर गए। तो अब यही है ना कि अगर पानी कम था तो आप ये क्रॉस कर गए हैं तो अल्टीमेटली इनको वापस लाने में तो परेशानी। अभी पानी बढ़ता जा रहा है और ये पीछे उधमपुर एरिया में अभी बारिश हुई है, ये फिर बढ़ जाएगा। तो कहीं अब भी तो हम टाइमली पहुंच गए। तो हमारा यही है कि पब्लिक, जनरल पब्लिक से यही है कि आप तवी के किनारे ना जाएं और अपने बच्चों को और अपने जो भी आपके कंसर्न है उनसे तवी के किनारे थोड़े ये रेनी सीजन में थोड़ा दूर रहें।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भी बारिश के बीच सेना, पुलिस और एसडीआरएफ ने मिलकर बड़ा राहत अभियान चलाया। व्हाइट नाइट कॉप्स के जवानों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 2 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन किए। उफनते नालों और तेज बहाव के बीच फंसे 5 बच्चों समेत कुल 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस अभियान में सुरक्षा बलों ने साहस और त्वरित कार्रवाई का परिचय दिया।
4: जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पूरी तरह से इस समय अगर हम देखें तो इस कार्य में जुटा हुआ है कि लोग जो है कहीं फंसे ना, क्योंकि कई इलाकों से खबरें आई थी कि लोग बाढ़ के पानी में फंसे थे। इसलिए भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनकी टीम्स अलग अलग स्थानों पर है। खासतौर पर जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर टीम्स तैनात कर दी गई है ताकि अगर कोई बड़ी स्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपटा जा सके। तो टीम्स हर जगह पर रवाना कर गई है। प्रभावित क्षेत्रों में इस समय टीम्स हैं और यही प्राथमिकता है कि जो लोग इस समय बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए।
0: उत्तराखंड में भी लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदियों और बरसाती धाराओं का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन और राहत एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देहरादून में संतला देवी मंदिर के पास नदी के बीच बने टापू पर 7 लोग फंस गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान नदी नालों और झरनों के आसपास न जाने की सलाह दी है।
5: देवी माता मंदिर के पास नून नदी में 7 से ज्यादा लोग फंस गए जिनको बमुश्किल रेस्क्यू किया गया और इसके साथ ही देहरादून के माल देवता क्षेत्र में एक लैंडस्लाइड देखने को मिला। दूसरे क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो चमोली और पौड़ी में कई जगह रास्ते भी बाधित हो गए। चमोली में मलबा आने से एक बोलेरो भी फंस गई। और नदियों की अगर हम बात करें तो लगातार रुद्रप्रयाग और चमोली में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही हैं।
0: पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश का असर लगातार पड़ रहा है। असम के शिवसागर, जोरहाट और चराईदेव जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। घरों और खेतों में पानी भर गया है जबकि सड़कें डूबने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचा रही हैं, जहां भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।
6: नगर से ये टीम आया है और कल शाम को हम लोग चला था, आज सुबह यहाँ 4 बजे पहुँचा है। उसके पश्चात यहाँ पर हमने रेस्क्यू का काम आरंभ किया है और अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा आदमी को यहाँ से निकाल चुका है।
0: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों के साथ साथ पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है
7: और हमारा अनुमान यही है, पूर्वानुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले दो दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मैप पे भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर मुख्य रूप से मेघालय में और असम में भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है।
0: मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकारों ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन की सलाह का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में अफवाहों से बचते हुए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की गई है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, देहरादून संकेत शर्मा, जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा और दिल्ली से मनीष अलड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुंडचा मंदिर में उत्सव के रंग।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
11: Drive home a new 26 Volkswagen Tiguan S front-wheel drive, $229 for 36 months with $3,999 to its signing.
10: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
11: Offer ends 8/31/26. See dealer for details.
12: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
13: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
18: जाए। पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: हिमाचल के लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी, प्रकृति ने बिछा दी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट।
19: दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से मौसम सुहावना, गर्मी और उमस से राहत, हिमाचल उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट।
8: अमरनाथ यात्रा वैष्णो देवी यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते यात्रा स्थगित, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह।
19: हिमाचल के चंबा में बादल फटने के बाद देवदूत बने जवान, नाले में फंसे 11 मजदूरों का किया गया सफल रेस्क्यू, प्रशासन ने की नदी नाले से दूर रहने की अपील।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आज छठवां दिन है। गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ 7 दिनों के प्रवास पर हैं। ऐसे में भक्तों की भीड़ भी गुंडिचा मंदिर में जुट रही है। भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं।
19: बारिश हो या धूप, लोग भगवान के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिये

0: भगवान अपनी मौसी के घर आए हैं, अपने जन्म स्थान। अड़ापा मंडप में भक्तों की भीड़ है। पालनहार जगत के नाथ को करीब से देखने का मौका मिला है। कोई कैसे छोड़ दे भला ये पावन अवसर। और फिर भगवान के अड़ापा दर्शन का अपना महत्व भी तो है। सुमंदिर प्रांगण में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। अब तक आसमान भी उत्सव के रंग में रंगा था, अब उसने भी थोड़ी सांस ली है। बादलों का पहरा हट गया है, सूर्य देव मुस्कुरा उठे हैं, मानो एक झलक उन्हें भी मिल जाए महाप्रभु की। यूं कहिए कि पुरी का कण कण इन दिनों उत्सव के रंग में रंगा है। जय जगन्नाथ का जय घोष हर ओर गूंज रहा है और गुंडिचा मंदिर की तो रौनक ही अलग है। भगवान का यहाँ प्रवास जो है, हेरा पंचमी पर माँ लक्ष्मी के आगमन से उत्सव का रंग कुछ और गहरा हो गया। जब से भगवान गुंडिचा मंदिर पधारे हैं, धूप हो की बारिश, भक्तों की लंबी कतारें हर दिन देखने को मिल रही हैं और उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद है।
1: हमारे पास पूरे 1 किलोमीटर तक एम्बुलेंस तैनात हैं। किसी को भी अगर किसी का भी तबीयत खराब हो, उनको इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या IDH हॉस्पिटल तक हम लोग ले जाएं। फायर डिप्लॉयमेंट बेसिकली पूरा वाटर स्प्रेइंग से शुरू करके क्रैक टीम्स भी हमारे हैं। किसी को अगर घुटन हो या सफोकेशन वो लोग फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग उनको ऑक्सीजन कैनिस्टर के माध्यम से उनको हेल्प कर रहे हैं। ये सारे व्यवस्था जो है अभी एक्सटेंसिव वे में रहेगा आगे तक।
0: पूरे ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित स्कॉन मंदिर की है, जहां रथ यात्रा उत्सव की रौनक छाई रही। फूल मालाओं से भक्त रथ यात्रा का स्वागत करते दिखे। भगवान को अलग अलग मिठाइयां और फलों का भोग लगाया गया और फिर प्रसाद को भक्तों में बांटा गया। इस दौरान श्रद्धालु भक्तिभाव में डूबकर गाते झूमते रहे।
2: बहुत अच्छी, बहुत दिव्य दर्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हर साल निकलती है और ये जगन्नाथ रथ यात्रा है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा शोभा यात्रा भी कहते हैं।
3: बहुत ही अच्छा लग रहा है भगवान जी के दर्शन करके, मन को सुकून मिलता है दर्शन करके, इसीलिए मंदिर आते हैं।
0: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जहां श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए झूमते नाचते भगवान के रथ की रस्सी खींचते हुए और रथ के आगे झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया और फिर मंदिर परिसर में इस रथ यात्रा का समापन हुआ। बिहार में भी जगन्नाथ रथ यात्रा के भव्य रंग देखने को मिले। यहाँ मुजफ्फरपुर में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। स्कॉन मंदिर की ओर से निकाली गई इस रथ यात्रा में करीब 30 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान हुए और लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। ढोल, मृदंग, झांझ और करताल की धुन पर हरिनाम संकीर्तन गूंजता रहा और भक्त भक्ति भाव से झूमते रहे। अब महाराष्ट्र के अकोला की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा निकली तो उसमें श्रद्धालुओं का गजब का उत्साह दिखा। 31 फीट ऊंचे और करीब 5 टन वजनी रथ पर महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान हुए। हजारों श्रद्धालुओं ने हरे कृष्णा जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच रथ को खींचा। खास बात ये रही कि भक्तों ने भगवान से सिर्फ अपनी खुशहाली नहीं बल्कि रूठे मानसून की जल्द वापसी, किसानों के खेतों में हरियाली और पूरे देश को सुजलाम सुफलाम बनाने की प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, इस दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह फूल बरसाकर रथ यात्रा का स्वागत किया। शहर की मुख्य सड़कों से गुजरी इस रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालुओं के सामूहिक भजन गायन ने समूचे वातावरण को भक्ति और अध्यात्म के रंगों से सराबोर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भले ही बापा के आगमन में अभी लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। गणपति दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं।
5: अब देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा के पंडाल के बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में बप्पा के स्वागत की तैयारी है। यहाँ अलग अलग डिजाइन, इको फ्रेंडली आसन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।

0: गणेश चतुर्थी में अभी वक्त है, लेकिन उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए। लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: ये बापा के लिए आसन है एक से बढ़कर एक, शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वाटरफॉल आसन तक, और छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन तक भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बाप्पा के लिए इस आसन को चुन रहे हैं। जब मौका बाप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स और उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं। इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाला सारा सामान पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। अब बस बापा के भक्तों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ पंडालों, घरों और दफ्तरों में बापा की मूर्तियां स्थापित होंगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सोचिए, जहां तक नजर जाए सिर्फ चमचमाती बर्फ की चादर हो, तापमान शून्य से नीचे हो, क्या ऐसी जगह पर दौड़ना संभव है? भले ही आपको सुनने में किसी मुश्किल टास्क जैसा लग रहा हो, लेकिन दुनिया में ऐसे जुनूनी लोग हैं जो बर्फीले महासागर पर आयोजित मैराथन का हिस्सा बनते हैं।
3: जी हाँ, आर्कटिक महासागर में आयोजित हुई दुनिया की सबसे कूल मैराथन का नजारा आपको अब दिखाते हैं, जिसे पूरा करते ही इसका रनवे वापस समंदर में गायब हो गया।
0: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के समंदर में खड़ा जहाज, एक एक का जहाज से उतरते प्रतिभागी, माइनस डिग्री में तापमान, चारों तरफ जमा देने वाली बर्फीली हवाएं। नॉर्थ पोल पर कुछ ऐसा ही नजारा था जब दुनिया की सबसे अनोखी नॉर्थ पोल मैराथन का आगाज हुआ। ले कमांडर शार्को जहाज पर सवार होकर 7 देशों के 22 जाबाज एथलीट नॉर्थ पोल मैराथन में शामिल होने पहुंचे। आलम यह था कि मैराथन का ट्रैक भी तैरती बर्फ की परत पर तैयार किया गया। ट्रैक 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा तैयार किया गया, जहां प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए पोलर बियर पेट्रोलिंग टीम भी तैनात रही, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे ये कोई आम मैराथन नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जहां सड़क नहीं बल्कि तैरती हुई बर्फ की चादर ट्रैक बनती है, और कुछ ही घंटों बाद वही ट्रैक आर्कटिक महासागर में गायब हो जाता है। यहां तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, इसलिए धावकों को लाइफ जैकेट और थर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य था, और मैराथन पूरी करने के लिए उन्हें इस ट्रैक के 40 चक्कर लगाने पड़े। इस अनोखी मैराथन में चीन के शंगशियान वांग ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, वहीं महिलाओं के वर्ग में डेनमार्क की रिक्के डैम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी अपने नाम की। कुल मिलाकर बर्फ, उबर खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और हर कदम पर चुनौती। लेकिन इन धावकों ने साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो दुनिया का आखिरी छोर भी मंजिल बनने से नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी लंच टाइम में खबरें जारी रहेंगी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
7: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
2: देखिए, यूरोप में इन दिनों गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। ग्रीस में मौसम ने ऐसा तेवर दिखाया कि पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग धूप से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं ग्रीस में आने वाले सैलानियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, प्रशासन ने इसकी व्यवस्था कर दी है।

0: ये धुंध नहीं बल्कि गर्मी से राहत की उम्मीद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सूरज की तपश बढ़ी है, ऐसे में हर शख्स ठंडी हवा, पानी की फुहार और छांव की तलाश में नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स में मिस्ट फैन चल रहे हैं तो शहर के फव्वारे लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गए हैं। ग्रीस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, ऐसे में कोई पानी की बोतल से खुद को हाइड्रेट रख रहा है तो कोई बैग और छाते को ही धूप से बचने की ढाल बना चुका है। गर्म हवाओं के बीच भी ग्रीस का इतिहास जानने आए सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि गर्मी चाहे जितनी हो, ग्रीस के एथेंस की रौनक अभी भी बरकरार है। रेस्टोरेंट से लेकर चौक चौराहों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। पर्यटकों को गर्मी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब जरा इस रेस्टोरेंट का नजारा देखिए, किस कदर यहाँ मिस्ट फैन लगातार लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। इसलिए तो दुनिया भर से आए पर्यटक गर्मी में भी एथेंस की प्राचीन विरासत का दीदार कर रहे हैं। रोमन अगोरा जैसी प्राचीन धरोहरों पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी पेड़ों की छांव और छातों के नीचे अपना काम मुस्तैदी से करते दिखे। ग्रीस में हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर में एयर कंडीशनड राहत केंद्र खोले गए हैं, इसके साथ ही लोगों को हाइड्रेटेड रहने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए, सीरियल्स की दुनिया में कहीं है रोमांस तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे

0: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
1: Drive home a new 26 Volkswagen Tiguan S front-wheel drive, $229 for 36 months with $3,999 due at signing.
0: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
1: Offer ends 8/31/26. See dealer for details.
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
3: हिमाचल के लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी, प्रकृति ने बिछा दी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट। NCR में भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी और उमस से राहत। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते यात्रा स्थगित, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। खराब मौसम के बावजूद चार धाम में श्रद्धालुओं का जोश हाय, फिर से केदारनाथ यात्रा शुरू, बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों की लगी लंबी कतारें। पुरी में बाहुड़ा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण, तकनीकी जांच के साथ ही सभी आवश्यक मरम्मत और सफाई का काम जारी। 24 जुलाई को गुंडीचा मंदिर से रवाना होंगे भगवान। चमोली के चीन सीमा पर स्थित पार्वती कुंड पहुंचा ग्रामीणों का दल, कुंड में स्नान कर भक्तों ने की पूजा, नाचते गाचते नजर आए लोग।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना।

0: बारिश ने हवा की गुणवत्ता में किया सुधार, उमस और गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के रजौरी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रजौरी में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई। घाटी में हुई बारिश से स्थानीय किसान खुश, हालांकि कुछ जगहों पर यातायात हुआ प्रभावित। डोडा में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश ने निखारा डोडा का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ और वादियां बारिश के बाद और भी मनमोहक नजर आने लगी। लगातार बारिश से प्रकृति ने ओढ़ी हरियाली की चादर, पूरे इलाके में बढ़ा ठंड का एहसास। बारिश का लोगों ने लिया जमकर आनंद, बारिश की मेहरबानी से खिल उठा डोडा। ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम को बनाया खुशनुमा, प्राकृतिक नजारों की खूबसूरती हो गई दोगुनी। श्रीनगर की डल झील में बड़ी पर्यटकों की आमद, शिकारा राइड के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। बढ़ते टूरिस्ट से होटल और शिकारा कारोबारियों की कमाई भी पकड़ रही है रफ्तार, सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। डल झील बनी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, शिकारा राइड के बढ़ते क्रेज से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बड़ा सहारा। डल झील की वादियों में लौट आई चहल पहल, होटल बुकिंग में तेजी, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। श्रीनगर की खूबसूरती सैलानियों को कर रही है आकर्षित, घाटी में पर्यटन सीजन ने पकड़ी रफ्तार। बद्रीनाथ में बारिश के बीच भी आशा बरकरार, मॉनसून अलर्ट के बावजूद श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह कायम। बारिश के बीच भी यात्रा सुचारू, भक्तों को आसानी से हो रहे हैं दर्शन, रात की बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई, अलकनंदा नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी, श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील। बद्रीनाथ धाम में मिली सुविधाओं से श्रद्धालु दिखे संतुष्ट, फिलहाल बद्रीनाथ यात्रा मार्ग सुरक्षित और सामान्य। सोमवार को दिनभर स्थगित रही केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू, आज सुबह सोनप्रयाग से लगभग 1000 भक्तों को धाम भेजा गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी, जुलाई में स्पीति में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। लोग बर्फ की मोटी परत और ठंडी हवाओं के बीच नजारा कैद करते दिखे, गर्मी के मौसम में बर्फ की सफेद चादर ने लोगों को हैरान किया। बर्फ से ढकी पहाड़ियां बन गई आकर्षण का केंद्र, स्पीति में मौसम का अनोखा नजारा। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया, हालांकि अचानक बदले मौसम से स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का ये बदलाव है आम, धूप के बीच अचानक गिरी बर्फ। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग के निकट मुंगकंटिया स्लाइडिंग जोन में फंसी महिला यात्री के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, बारिश के बीच महिला का सफल रेस्क्यू किया गया। देश के कई राज्यों में मॉनसून हुआ एक्टिव, मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद, बारिश से प्रभावित 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना, असम और मेघालय के लिए भी मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र कोंकण और गोवा के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा और बीकानेर संभाग में हो सकती है भारी बारिश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 4 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों और बाजारों तक पानी भर गया, अस्पताल परिसर में भी जलभराव होने से मरीज हुए प्रभावित। भारी बारिश के कारण असम के कई जिलों में भरा बाढ़ का पानी। 16 जिलों के 3,62,000 लोग हुए प्रभावित। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के चलते शहर की कई सड़कें अचानक पानी में डूबी। सिटी मजिस्ट्रेट ने जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। तमिलनाडु के वेल्लोर में जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से अचानक निचले इलाके में आया मलबा। प्रशासन और राहत टीमें अलर्ट पर। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन टनल में करीब 17 मजदूर फंसे। समरंगडूंग मामरिंग टनल में बचाव अभियान जारी। मूसलाधार बारिश के बाद टिहरी जिले में चारधाम यात्रा मार्ग पर आई चट्टाने और मलबा। प्रशासन ने कई घंटे में मशीनों के जरिए मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। लैंडस्लाइड के चलते देहरादून मसूरी हाईवे को हुआ नुकसान। प्रशासन ने हाईवे को ट्रैफिक के लिए किया बंद। पटना में बारिश की वजह से बेकाबू हुई कार नाले में गिरी। हादसे में बाल बाल बची ड्राइवर की जान। भारी बारिश के चलते आज और कल भी स्थगित रहेगी अमरनाथ यात्रा। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह दी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बाढ़ बारिश के बीच सीआरपीएफ के जवान बने देवदूत। सीआरपीएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर महिला को पहुंचाया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हुए। पुल क्षतिग्रस्त, लोगों के घरों में घुसा पानी। लगातार बारिश के कारण राजौरी के नौशेरा में मुनवार नदी उफान पर, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पुंछ में एलओसी से सटे माल्टी में फ्लैश फ्लड, घरों शेड और राशन की दुकानों को पहुंचा नुकसान। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल के अंतिम चरण में पहुंची तैयारियां। कल से शुरू होगा 7 दिवसीय खर्ची महोत्सव। मंदिर में रंगाई पुताई और सजावट का काम तेज। श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां पूरी। उत्सव के दौरान पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर। भीड़ प्रबंधन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। मेले में संस्कृति की दिखेगी झलक। 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और पारंपरिक आयोजनों से सजेगा खर्ची मेला। चतुर्दश देवता मंदिर सजाया गया, हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। अयोध्या के राम मंदिर में राम भक्तों का उमड़ा सैलाब। घंटों लाइन में लगकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में आस्था अपने चरम पर। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त रामलला के दर्शन कर खुद को महसूस कर रहे हैं धन्य। राम भक्तों की भारी भीड़ से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा। मंगलवार के दिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं का रेला। बजरंगबली के जयघोष से गूंज उठा पूरा परिसर। हनुमानगढ़ी में सुबह से ही दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। मंगल दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह चरम पर दिखा। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का छठा दिन। अडपा मंडप में दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। पुरी में बारिश के दौरान भी रथ यात्रा उत्सव आस्था और उत्साह के साथ जारी। तापमान में कमी आने से लोगों को राहत मिली। रथ यात्रा उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का होता है विशेष श्रृंगार। संध्या काल में निभाई जाती है संध्या धूप, विशेष आरती और भोग की परंपरा। पुरी में अडपा मंडपम में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं लाखों श्रद्धालु। मान्यता के मुताबिक अडपा मंडप दर्शन से कई गुना मिलता है पुण्य। 7 दिन मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में रहते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। 24 जुलाई को होगी वापसी रथ यात्रा। अकोला में जीवंत हुई जगन्नाथपुरी की सदियों पुरानी प्रसाद की मटकी परंपरा। आषाढ़ अमावस्या के बाद पहले सोमवार को भरी गई भगवान जगन्नाथ की प्रसाद मटकी। गुड़ के गुलगुले, मीठी रोटी, पूड़ी, गुजिया और मीठे भात से भर गई विशेष प्रसाद की मटकी। 24 घंटे भगवान को अर्पित रहने के बाद श्रद्धालुओं में बांटा जाता है महाप्रसाद। भगवान जगन्नाथ के दर्शन और महाप्रसाद के लिए उमड़े श्रद्धालु, परंपरा श्रद्धा और संस्कृति का अनूठा संगम बना खोला। मान्यता है कि जो पुरी नहीं जा पाते उन्हें अकोला में ही मिलता है महाप्रसाद का पुण्य। चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। जगन्नाथ भक्ति की सदियों पुरानी परंपरा आज भी अटूट, पूर्वजों को विरासत को आज भी पूरे श्रद्धाभाव से निभा रहा है गुप्ता परिवार। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, गणपति बप्पा के आसन से सजे बाजार, सहेली कार्यशाला में इको फ्रेंडली गणेश आसन की धूम। बप्पा के लिए साई रूप, महादेव, शिवलिंग और महाराजा आसन बने आकर्षण का केंद्र। लालबाग में गणपति के सिंहासन और सजावट के सामान की बड़ी मांग। गणेशोत्सव से पहले मुंबई के बाजारों में दिखने लगी उत्सव की रौनक। गणेश दरबार सजाने के लिए फूल मालाएं, लड़ी, मुकुट और आरती की थाली की खरीदारी तेज। भक्तों के लिए तैयार है मोरिया, वक्रतुंड और मंगल मूर्ति जैसे खास सिंहासन। कार्यशाला में कच्चा सामान भी उपलब्ध, घर पर बना सकते हैं बप्पा का आसन। बप्पा के स्वागत में मुंबई का बाजार पूरी तरह से है तैयार। 14 सितंबर को शुरू होने वाले गणेश महाउत्सव को लेकर मुंबई में उत्साह चरम पर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नेपाल की त्रिवेणी नदी से बहकर आई डॉल्फिन मछली के लिए चला विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन। बनाया गया 52 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर। महाराजगंज जिले की नहर में बहकर पहुंची थी 7 फीट की डॉल्फिन मछली। वन विभाग की टीम ने विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर डॉल्फिन को सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ा। 3 दिन से फंसी थी डॉल्फिन मछली के रेस्क्यू के लिए 2 दिन तक चली नहर से निकालने की कोशिश। डॉल्फिन की जान बचाने के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री साय ने छोटे स्कूली बच्चों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव के जरिए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है रोमांस तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: इतिहास जब किताबों के पन्नों से निकलकर आंखों के सामने जीवंत हो जाए तो नजारा सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि रोमांच से भर देता है। रोमानिया में ऐसा एक अनोखा उत्सव हुआ जहां करीब 2000 साल पुराना रोमन और डेशियन दौर को रिक्रिएट किया गया। गेडो डावा फेस्टिवल में योद्धाओं की चाल ढाल और युद्ध रणनीतियों ने दर्शकों को जैसे टाइम मशीन में बिठाकर अतीत की सैर करा दी।

0: चमकती ढालें, सिर पर लोहे के हेलमेट, हाथों में भाले और सीने में इतिहास को दोबारा जीने का जुनून। रोमानिया की खूबसूरत वादियों में जब अतीत ने दस्तक दी तो नजारा कुछ ऐसा था जिसे लोग बस देखते रह गए। रोमानिया के पुयाना में गेटोडावा महोत्सव में सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। जहां कभी रोमन साम्राज्य की ताकत की नुमाइश हुई तो कभी डैशियन योद्धाओं का साहस लोगों के आकर्षण का केंद्र बन। सिर्फ तलवारें ही नहीं, यहां हर हेलमेट, हर ढाल और हर पोशाक उस दौर की कहानी कह रही थी जिसे इतिहास की किताबों में पढ़ा जाता है। उसे इन कलाकारों ने अपनी मेहनत और जुनून से आंखों के सामने जीवंत कर दिया। ये उत्सव सिर्फ तलवारों के खनक तक सीमित नहीं था। एक तरफ जहां धनुष की प्रत्यंचा से छूटे तीर इतिहास के सटीक निशानों को भेद रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अप्सराओं के वेश में नृत्य करते कलाकारों ने माहौल में संगीत और रंग घोल दिए।
1: Participo la sfera del festival de când eram foarte mică, cam m-am tot adus la festivale și vin pentru că am o pasiune pentru istorie și îmi place foarte mult aici.
0: गेटोडावा महोत्सव ये साबित करता है कि इतिहास अगर सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाए तो वो याद तो रहता है, लेकिन जब वही इतिहास आंखों के सामने जीवंत हो उठे तो वो आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा के लिए रच बस जाता है। ये उत्सव विरासत को संजोने का ऐसा खूबसूरत तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal Housing Lender.
4: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Fields, and it will...
4: From the first pitch of the season to the stretch run.
5: That's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: हिमाचल के लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी, प्रकृति ने बिछा दी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी और उमस से राहत हिमाचल उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में, अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा पर बारिश का साया, भारी बारिश के चलते यात्रा स्थगित, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। खराब मौसम के बावजूद चारधाम में श्रद्धालुओं का जोश हाई, फिर से केदारनाथ यात्रा शुरू, बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों की लगी लंबी कतारें। राजौरी में उफनते नाले में फंसे लोगों के लिए सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 13 लोगों का सफल रेस्क्यू, बचाए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग। पुरी में बाहुड़ा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण, तकनीकी जांच के साथ ही सभी आवश्यक मरम्मत और सफाई का काम जारी, 24 जुलाई को गुंडीचा मंदिर से रवाना होंगे भगवान। चमोली के चीन सीमा पर स्थित पार्वती कुंड पहुंचा ग्रामीणों का दल, कुंड में स्नान कर भक्तों ने की पूजा, नाचते गाते नजर आए लोग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूँ पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू अर्पिता में आज एंटरटेनमेंट की खुशबू, यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। अब जिस तरह ये परफ्यूम्स महका देते हैं हमें और आपको, उसी तरह एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज महका देती है हमारे शो सास बहू और बेटियां को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला। आज तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। शुरू करते हैं हमारे ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी।
5: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, प्यार के रंग में रंगेंगे अरमान और अभीरा, शुरू होगा फिल्मी रोमांस।
4: धड़कता है तू है तो सांस आती है।
5: राज और नायरा की शादी में शुरू होगा तमाशा, नायरा लेकर आएगी पुलिस।

सुधा पर लगेंगे इल्जाम, शुरू होगा नया ड्रामा। शिवाय के पापा की बर्थडे पार्टी में रुद्र को होगी जलन। खतरे में पड़ेगी दुआ, मन्नत बनेगी रक्षक। पति ब्रह्मचारी में ईशा लेगी अपने ही घर की तलाशी, रिश्तों में पड़ेगी दरार।

0: और बच्चन परिवार संग करेंगे लखनऊ की सैर। होगी मटर गश्ती अनलिमिटेड, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि सूरज और ईशा को भी लेना चाहिए एक ब्रेक। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको सीधा यहाँ और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग। एक्चुअली अगर ये ब्रेक लेना निकल जाए कहीं दूर पहाड़ों में, फूलों की वादियों में, जहाँ पर भी हो इन परफ्यूम्स की तरह, आहा फूलों की भीनी भीनी खुशबू। तो क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में, आज क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, लेट्स चेक इट आउट।
0: अपने ही घर में तलाशी लेने पहुंची ईशा। दादा भाई यानी सूरज पर लगे इल्जाम। सूरज और ईशा के रिश्ते में दरार। टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज आईपीएस ऑफिसर ईशा पहुंच गई है अपनी टीम संग सूरज के घर पर। असल में सूरज ने अपने घर पर दादा पोते को छुपा कर रखा है और ऐसे में ईशा अपनी टीम संग दादाजी को ढूंढने पहुंची है। उसे लगता है कि दादाजी ने बच्चे को किडनैप किया है क्योंकि उसके पास कंप्लेंट ही ऐसी आई है। ऐसे में दादा पोते को ढूंढ रही है। ऐसे में ईशा आज बहुत गुस्से में है। ऐसे में सूरज से वो सवाल जवाब कर रही है लेकिन सूरज वो तो अपने टशन में है। वो ईशा को कुछ भी बताने को तैयार नहीं लेकिन वो ईशा को ये सच जरूर बताता है कि दादा गुनहगार नहीं बल्कि बेकसूर है जो बस अपने पोते पर प्यार लुटाना चाहता है। लेकिन ईशा सूरज की बात सुनने को तैयार ही नहीं।
2: ये आदमी मोहल्ले में दादा भाई को पूछ रहा था और ये बात मुझे खुद ताइमा ने बताई। तुमने वादा किया था ना तुम मेरे काम के आड़े नहीं आओगे।
3: मैंने कहा ना आपको आईपीएस साहिबा कि मैं किसी अपराधी को नहीं जानता। हाँ एक बूढ़े बाबा को जरूर जानता हूँ जो अपने एक बच्चे का दादा है।
2: जिसने अपने बेटे के बच्चे को किडनैप कर लिया। तुम्हें अंदाजा भी है उस बच्चे के बाप पर क्या बीत रही है?
3: और आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि एक बूढ़े बाप पर क्या गुजर रही होगी जब उसके खुद के बेटे ने उसको इतना बड़ा इल्जाम लगाया है।
2: एक बात अच्छे से समझो, अपराधी को पनाह देने से ना ही तुम उन्हें बचा पाओगे और ना ही कानून की धज्जियां उड़ा पाओगे। मुझे मेरा काम करना, मैं उन्हें गिरफ्तार करने आई, उन्हें मेरे हवाले करो।
4: और ईशा साथ में ही है, आप लोगों को पता ही है जो देख रहे हैं ऑडियंस की, हम दोनों साथ में एक ही एक ही पुलिस स्टेशन में हम दो आईपीएस हैं। सो हम दोनों साथ में ही मिलकर केसेस सॉल्व करते हैं। तो आज जो केस है उसमें हम एक कंप्लेन आई हमारे पास जिसमें दादा जो है वो पोते को लेकर गायब हो गए हैं, किडनैप कर लिया है। तो हम बस उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, वो केस सॉल्व कर रहे हैं और हमें अचानक से पता चलता है कि उन्हें सूरज ने छिपा कर रखा है, दादा भाई ने छिपा के रखा है तो हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं सर्च करने और उनको गिरफ्तार करने के लिए।
0: पुलिस ऑफिसर्स को आखिरकार दादा पोते की ये जोड़ी मिल ही जाती है लेकिन असली कहानी तो अब पता चलती है जब पोता दादा से कहीं दूर नहीं जाना चाहता। और ऐसे में सभी लोग सच भी बताते हैं कि कैसे इस बुजुर्ग के बेटे ने उसे घर से बाहर निकाला, उसके पैसे भी बंद कर दिए और दादा अपने पोते से बेहद प्यार करता था इसीलिए वो उसका साथ पाना चाहता था। ये कहानी सुनकर ईशा भी इमोशनल हो जाती है और दादाजी को हथकड़ी नहीं लगाती। आखिरकार ईशा को भी रियलाइज हुआ कि वो क्या गलती करने जा रही थी और सूरज सही था।
2: मुझे नहीं जाना पापा के पास, मुझे दादू के साथ रहना है।
3: प्यार दिया इन्होंने बच्चे को और यही है इनका अपराध। कहा होगा कि ये आदमी अपने पोते का किडनैपर है और आप इंसाफ की देवी बने, आंखों पे पट्टी बांध कर इन्हें गिरफ्तार करने चले आए। ये है आपका कानून, पर दादा भाई का कानून कहता है कि ये एक ऐसा अभागा बाप है जिसका बेटा नालायक है।
5: और इतना ही नहीं, वो बेटे ने इनका मकान बेचकर इनके सारे पैसे हड़प लिए, कुछ महीनों बाद वृद्धाश्रम की फीस देना भी बंद कर दिया, इनको वृद्धाश्रम से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि पिछले एक महीने से तक रहने का कोई ठिकाने ही नहीं है।
3: असली कहानी आपके सामने है ईशा जी, और आपके सबूत बाबा को मुजरिम करार देते हैं। या सच जानने के बाद आप अपने दिल की सुनेंगी या आंखों पे पट्टी बांध के आप

0: हमारा मोटिव किसी भी बेगुनाह को सजा देना नहीं है ऑब्वियसली, तो हम एक गुनहगार को पकड़ने आए थे, पर यहाँ आकर हमें हकीकत कुछ और पता चली कि जिसे हम पकड़ने आए थे वो असल में कोई कुछ और बात है, वो चीज़ हुई थी, वो अपने पोते को लेकर आए थे पर जो वजह है वो कुछ और थी। इसलिए हमें रियलाइजेशन हुआ और ईशा कहती है कि नहीं, हम इन्हें हथकड़ी लगाकर इनका अपमान नहीं कर सकते, तो हम इन्हें हथकड़ी नहीं लगाएंगे।
1: भाई धीरे धीरे ही सही, कहीं ना कहीं ईशा को एहसास होगा कि सूरज सही है, बस उसकी राह गलत है। अब देखना होगा कि कैसे सूरज और ईशा मिलकर अपनी गलत फहमियाँ दूर करते हैं। मुंबई से कैमरामैन अजय गुरेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अर्थात्री, आपको तो जरूरत है एक ऐसे परफ्यूम की जो लेकर आए आपकी जिंदगी में पीस। जी हाँ, क्योंकि देखिए हमेशा बेचारी घिरी रहती है किसी ना किसी सिचुएशन से, किसी ना किसी प्रॉब्लम से, या फिर हो जाती है कोई नई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई नया कंफ्यूजन, कोई नया ट्विस्ट। OMG, तो चलिए पता कर आते हैं क्या है इस कहानी का अपडेट, क्या आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज, या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा।
1: शिवाय के पापा का बर्थडे, घर वालों ने दिया सरप्राइज,
3: गुगुरी कर रही है, हल्ला मचा रही है, पागल सी ख्वाहिश है, खुशियों की मिली है वजह।
1: देखा बाप बेटे का इमोशनल मोमेंट,
3: जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है।
4: किसी को मेरी आवाज आ रही है? Are you guys listening?
1: टीवी के सीरियल जगधात्री में मौका है महेश यानी कि शिवाय के पापा के बर्थडे का। ऐसे में शिवाय ने सरप्राइज पार्टी रखी है। असल में महेश घर में अकेले हैं, तभी उन्हें लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है और वो घबरा जाते हैं। घबराहट में वो चाकू भी उठा लेते हैं, लेकिन फिर जब लाइट्स ऑन होती है तब उन्हें पता चलता है कि शिवाय है जो उनके बर्थडे का केक लेकर आया है। और ऐसे में देखिए वो कितने खुश है।

0: वहीं शिवाय के साथ साथ जगधात्री और बाकी सभी घर वाले भी महेश का बर्थडे मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। सभी उन्हें विश करते हैं और देते हैं ये प्यारा सा सरप्राइज। ऐसे में फैमिली मोमेंट आज देखने को मिला, जहां सभी लोग महेश को बर्थडे विश कर रहे हैं। सभी के चेहरों पर खुशी है और साथ ही एक हैप्पी मोमेंट है, जहां सभी तस्वीर भी खींच रहे हैं।
1: आप जियो हजारों साल और साल के दिन 50,000।
2: नहीं, मजबूर तो शुरू से ही ये कैरेक्टर है महेश देशमुख, मजबूर है और इसकी ज़िंदगी कभी भी सही पटरी पे आती नहीं है। कुछ ना कुछ हो जाता है जो फिर से इसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो आज का दिन जो है कि एक शुभ दिन था, वो सुबह कहीं जाके आया है या मंदिर या अनाथ आश्रम जहां वो जाता है हर साल, और वो आया तो अगेन घर में कुछ बड़ा सस्पेंस वाला माहौल, कोई बंदा नहीं, कोई इंसान नहीं, अंधेरा, चिल्लाता भी है कोई, है कोई सुन रहा है। एंड सडनली उसको एक दूर एक बड़ा लंबा सा कैरेक्टर नज़र आता है अंधेरे में जो उसकी तरफ आ रहा है। तो डेफिनेटली उसकी जो इंस्टिंक्ट है उसको चाकू नज़र आती है, एक शार्प एज नाइफ, एंड वो उसको उठा लेता है एंड वो शायद अटैक कर ही देता, और वो अच्छा हुआ जो नहीं किया, क्योंकि वो उसी वक्त लाइट आ जाती है और वो शिवाय निकलता है, इसका बेटा। तो वो बड़ा एक ड्रामेटिक सा और एक क्या कहते हैं कि बड़ा एज ऑफ द एज वाला एक सीन था।
3: सरप्राइजिंग बात तो ये है कि मैंने शिवाय को कभी ये नहीं बताया था कि आपको पाइनएप्पल केक पसंद है, बट इट्स सच अ हैप्पी कोइंसिडेंस शिवाय पाइनएप्पल केक ही ले आया।
4: तो माय डियर, पाइनएप्पल केक तो मुझे भी पसंद है, तो इसलिए मैंने ये चूज किया।
3: सी, लाइक फादर लाइक सन।
0: वहीं दूसरी तरफ रुद्र को हो रही है जलन। असल में शिवाय अपने पापा के लिए वही केक लेकर आया है जो उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन शिवाय को भी ये पाइनएप्पल केक ही पसंद है। ऐसे में पापा बेटे का बॉन्ड यहीं जुड़ गया और इस बात से हो गई रुद्र को जलन, क्योंकि केक वाली बात जानने के बाद देखिए कैसे महेश हो गए इमोशनल। और ऐसे में बाप बेटे का बॉन्ड साफ देखने को जाहिर है, जो रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा।
5: हाँ, इट वॉज सपोज टू बी अ गुड डे एंड वो भी अच्छे मूड में आया था, तो मुझे तो लगता है ये महेश की गलती है। अब तो मुझे लग गया है कि मेरे पापा की गलती है, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें। तो बेसिकली होता ये है कि केक लेके आया होता है शिवाय सेलिब्रेशन के लिए फादर के बर्थडे के, एंड वो लोग भी सब आते हैं, बट देन माया दी बोलती है कि यार ये पाइनएप्पल केक कैसे पता है तुम्हें कि इनका फेवरेट है। तो बोलता मुझे पता नहीं था, मेरा भी फेवरेट है। देन बोथ ऑफ देम शेयर अ मोमेंट of father and son, and obviously Rudra feels bad about it.
0: रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन कुछ दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि ये रिश्ते सुलझे। अब देखना होगा कि ये दुश्मन कहानी में कौन से ट्विस्ट लेकर आते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: अब कुछ लोगों से खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनमें से अपनों की खुशबू आती है। कुछ ऐसा ही है ना यहाँ पर तन्वी और युग का ये रिश्ता। वैसे से कहते हैं कि कभी कभी होता है ये पिछले जन्म का कोई रिलेशनशिप जो इस जन्म में हमें इस तरह मिलते हैं कि हमें लगता है कि हम तो शायद इन्हें जानते हैं, शायद इन्हें पहचानते हैं, अजीब सा कनेक्शन और पुल फील होता है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको सीधा तन्वी और युग के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज।
0: खतरे में परी की जान, फिल्म बना जाने दुश्मन, क्या युग बनेगा परी का रक्षक?

मंगल टीवी के सीरियल 30 के पार जब मिला प्यार में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। असल में व्योम और परी शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही ड्रामा चल रहा है। व्योम से दूर दूर भाग रही है परी और व्योम उसका पीछा कर रहा है। असल में परी को व्योम का सच पता चल चुका है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती, और ऐसे में व्योम उसकी जान लेने पर उतारू है। भाई खुद को बचाने की परी काफी कोशिश कर रही है, लेकिन व्योम देखिए कैसे उस पर कर रहा है अत्याचार और उसकी जान लेने की कोशिश।

परी अपनी बहन तन्वी और आई को आवाज लगा रही है, लेकिन कोई भी परी की आवाज सुन नहीं रहा। ऐसे में व्योम परी को आज नहीं छोड़ने वाला है और इनकी हाथापाई में देखिए कैसे परी इस बालकनी से नीचे गिरने लगती है।

0: तो सही समय पर वहाँ पर आ जाता है युग, जो परी को बचाने की कोशिश कर रहा है।
1: परी, परी, संभाल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा परी।

0: युकी ये कोशिश नाकाम रही और परी नीचे गिर गई। तो भाई अब देखना होगा कि परी की जान बच पाती है या नहीं।
1: देखो यो, यो मैं हाथ में तल रही हूँ।
2: परी, मैं जाएगा तो मत बताना परी।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सास बहू और पेटिया की एयरलाइन भी कर चुकी है लैंड और लेकर हाजिर है ये आपके लिए एंटरटेनमेंट की महक इन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। यहाँ तो आपके फेवरेट शोज के सारे हाईलाइट्स और हाई पॉइंट्स भर रहे हैं एंटरटेनमेंट की उड़ान। तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन का बोर्ड और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट गो।
0: टीवी के सीरियल तू ही रे में और भी ज्यादा गहरी हो रही है स्वाति और वृंदा की दोस्ती। देखिए कैसे स्वाति वृंदा का ख्याल रख रही है, उसकी मरहम पट्टी कर रही है। इतना ही नहीं, आज तो ये हेयर ड्रायर देखकर वृंदा के होश उड़ गए। भाई उसके लिए ये सब कुछ नया है, बड़ा घर, हेयर ड्रायर, फोन, ये सब कुछ, जिस वजह से वो काफी एक्साइटेड है और स्वाति से उसकी दोस्ती उसे काफी पसंद भी आ रही है।
4: काफ़ी टाइम बाद वृंदा के लाइफ में थोड़े हैप्पी मोमेंट्स आया है जहाँ पर वो सच में इंजॉय कर रही है। तो बहुत सारी नई चीज़ों के साथ मतलब देख भी रही है वो नई चीज़ें, क्योंकि बड़ा सा घर है, कभी वो अपनी दुनिया से बाहर ही नहीं निकली गांव की दुनिया से। तो अभी जाके उसको पता चल रहा है कि हेयर ड्रायर भी होते हैं जिससे बाल सुखाए जाते हैं, और फिर वो फोन, स्पीकर, एयरपॉड्स, वो सब देख रही है। तो बहुत ज़्यादा एकदम फैसिनेट कर रही है एकदम स्वाति को कि वाओ यार क्या एकदम सब अलग ही चल रहा है वहाँ पर। और स्वाति के साथ स्वाति की कंपनी उसको बहुत कम मतलब कंफर्टिंग लग रही है, बहुत कोजी लग रही है, उन्होंने तो बहुत प्यारा सा सीन शूट किया है।
0: वहीं दूसरी तरफ स्वाति संजय से फोन पर बातें कर रही होती है कि वहाँ वृंदा पहुँच जाती है और कहीं ना कहीं उसे शक हो रहा है कि स्वाति और वृंदा का संजय कहीं एक ही तो नहीं।
5: डॉक्टरी का डी भी नहीं आता है उसे, पर पसंद फिर भी डॉक्टर ही आई वो बिजनेसमैन। उसका उसका अपना कारोबार है, खुद का बिजनेस है उसका।
4: स्वाति संजय जी को संजू बोलती है तो मुझे लगा संजू से संजय भी तो हो सकता है। सो वही उसी डाउट में आए, थोड़ा सा मुझे वो शक हो जाता है और मैं उसी एंग्जाइटी में चली जाती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब एक बहुत स्लाइट सा थॉट होता है क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता मुझे ऐसा लगता है। तो हमने वो थोड़ा सा इंटेंसिटी के साथ करा।

0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आए हैं घर में कुछ खास मेहमान और ये हैं काफी हाई फाई और अमीर। ऐसे में राथिया और उसके सभी घर वाले इनकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी हरकतें देखकर कुछ और ही लग रहा है। देखिए कैसे ये लड़का खाने पर टूट कर पड़ा है, लेकिन फिर भी मेहमानों की आवभगत में परिवार वाले कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन दूर खड़ी राथिया ये सारे नज़ारे देख रही है।
1: दीदी, आपने तो सूप लिया ही नहीं, आप दीजिए ना। ये लीजिए, बहुत हेल्दी सूप है, देखिए एकदम क्लियर है। क्लियर बबलू, आप सूप नहीं लेंगे, लीजिए ना।
2: आप शर्माइए मत, पेट भर के खाना खाइए।
3: बस बस बस, डाइट पे हूँ मैं।

0: मंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आ गए हैं घर में रुचिता और रुहान और देखिए कैसे वो खेल खेल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दादी को रुचिता को देखकर काफी गुस्सा आ रहा है। खैर घर में काफी कुछ चीजें चल रही हैं जिसके चलते रूही भी काफी परेशान है और सच का पता लगाने में वो जुटी हुई है।
1: अब आजकल तो ऑनलाइन फैशन का जमाना है। Now just imagine, आपने मंगवाया अपना फेवरेट परफ्यूम, वो भी 50% ऑफ पर, लेकिन वो निकल गया फेक। सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, हो गया ना शॉकिंग। तो जरा संभल कर। वैसे ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हमें मिलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें। कुछ हमें सरप्राइज करती हैं, तो कुछ हमें शॉक करती हैं। जी हाँ, रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: पेशे बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। नजर डाल लीजिए गंगा माई की बेटियां के नए प्रोमो पर, जहां सिद्धू अपनी मां के खिलाफ हो चुका है और दुर्गावती को लग गई है हथकड़ी। तो अब देखना होगा कि रिश्तों की ये दरारें कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आती है।
2: दरोगा जी हमारे घर पर क्या कर रहे हैं?
3: गंगा माई का ढाबा जलाने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने आए।
2: शिकायत किसने दर्ज किया है?
3: हमने किया है, हमने किया है।
2: क्या बोल रहे हो तुम? माँ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हो?
4: हमेशा तुम कहते थे ना, जिस दिन आपके खिलाफ जाएंगे ना, उस दिन हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ये दिल तो धड़क रहा है सिद्धू। हम चाहते हैं कि हथकड़ी तुम पहनाओगे।

रोहिणी चौरा ने शेयर की है अपनी वेडिंग की पिक्चर्स, जो कि है थ्रोबैक पिक्चर्स, जहां वो अपनी उन हसीन यादों को याद करते नजर आई।

0: खबरों की माने तो लॉकअप सीजन 2 में जल्दी बतौर गेस्ट नजर आ सकते हैं हिना खान और उर्फी जावेद। यानी कि इस रियलिटी शो में लगेगा एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज। इसी के साथ गौतमी कपूर ने शेयर किया है ये वीडियो जहां उन्होंने राम कपूर पर श्रेया ने लगाए एलिगेशंस पर अपना रिएक्शन दिया है।
1: एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट दैट द एपिसोड्स आर एडिटेड, वी डोंट नो व्हाट द होल स्टोरी इज, वी ओनली सी द एडिटेड वर्जन। सो बिफोर पासिंग दीज हेवी कॉमेंट्स एंड दीज टॉक्सिक कॉमेंट्स, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज थिंग्स आर ट्रिपलिंग डाउन टू आवर फैमिली एंड प्लीज बी अ लिटिल कंसिडरेट ऑफ दैट।
0: हुआ सीआईडी का रियूनियन जहां सभी सितारे नजर आए और दिखा इनका हैप्पी मोमेंट।
2: हरिशन ऐसे कुछ दिखाई नहीं।
3: के जी क्या बात है, बच्चन साहब लग रहे हैं सर आप, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर आज, हैंडसम तो देखो पीछे देखो।
4: क्या हाल है सर? ये देखिए टेप किया, ठीक है चलेगा।
0: हस्तिनापुर के वीर के सेट से सामने आए हैं ये बीटीएस नजारे जहां सभी लोग साथ साथ खाना खाते नजर आए।
5: अरे और क्या खाने की चीज है? अतुल अरे
6: ये क्या है?
5: ये हलवा है।
6: क्यों
5: अब खाना बांटो थालियों में, करूंगा
7: चलो
5: हे पार्थ।
7: मैंने कुछ नहीं किया।
5: हे पार्थ तुम्हारे पर नजर है।
0: खबरों की माने तो स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जल्दी नजर आने वाले हैं आशीष कौल, जिन्हें आप नागिन सीजन 7 में देख चुके हैं। लॉर्ड्स ग्राउंड में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच देखने पहुंचे अक्षय कुमार और साथ हैं सैफ अली खान और तैमूर अली खान। गांगुली ने शेयर किया है ये वीडियो अपने विजय गांगुली को मिले
8: रूपाली
0: के लिए ये प्राउड मोमेंट।
9: For outstanding choreography that conveyed sharp, energetic and innovative moment with striking formations and visual elegance. Choreographer Vijay Ganguly.

0: क्या आपने भी नोट किया है कि एक अच्छा परफ्यूम एक्चुअली होता है मूड लिफ्टर? जी हाँ, मूड को कंप्लीटली चेंज कर देता है और कुछ ऐसा ही करेगी आपकी जिंदगी में भी हमारी ये स्पेशल स्टोरी। वेल देखिए, स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। मैं जानती हूँ अब हो गया है आपके पेट में दर्द, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
1: दस नब्बे चौराहे पे आई लव हमारा लखनऊ पे हम आ गए।
2: मुस्कुराते हुए लखनऊ पहुंच गए हैं बरेली वासे और लखनऊ आए हैं, यहाँ की गलियों में डांस करना पड़ेगा। यहाँ का स्वाद तो चखना पड़ेगा,

0: यहाँ पे शॉपिंग करनी पड़ेगी।
1: तू बता दे करूँ कैसे इजहार, बोले तो दे तू जान कट के।
0: और हाँ, यहाँ पर मस्ती भी करनी पड़ेगी।

मुस्कुराते हुए लखनऊ पहुंच गए हैं बरेली वासी और लखनऊ आए हैं यहाँ की गलियों में डांस करना पड़ेगा। तो यहाँ का स्वाद तो चखना पड़ेगा।

0: यहाँ पे शॉपिंग करनी पड़ेगी।
1: तू बता दे करूँ कैसे इजहार, बोले तो दे तू जान कटके।
0: और हाँ, यहाँ पर मस्ती भी करनी पड़ेगी।

सास बहू बेटिया आज एक खास नवाबी डे आउट लेकर आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों की नगरी लखनऊ से, जहां पर आज हमारे मेहमान हैं बरेली के बच्चन के भाई और उनकी नई भाभी, जहां संगम बन गई है बच्चन परिवार की बहुरानी और आज पूरा परिवार डे आउट पर निकला है लखनऊ में। भाई लखनऊ में इनका रिसेप्शन था, अब रिसेप्शन तो हो गया लेकिन अब जरा लखनऊ घूमना जरूरी है, फिर चाहे वो लखनऊ का सेल्फी पॉइंट हो।

0: के बड़े भैया कृष्णा की दुल्हनिया आज लखनऊ में सैर सपाटा करेंगे, यानी बरेली का टशन लखनऊ में। तो मुस्कुराते हुए ये चारों पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां से लखनऊ की शुरुआत होती है। तो हम भी शामिल हो जाते हैं बच्चन परिवार के इस अनोखे लखनऊ वाले डे आउट में, उन्हीं में सास बहू और बेटियां।
1: तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो।
0: जहां लखनऊ बड़ा हैपनिंग हो गया है और यहां मुस्कुराते हुए लोग फोटो खिंचाते हैं, इसलिए ये खास सेल्फी पॉइंट शहर की एंट्री पर ही आपका स्वागत करता है। तो भाई आज कृष्णा अपने दोनों भाई सतलुज और माही के साथ, तो अपनी पत्नी संगम के साथ इस सेल्फी पॉइंट पर पहुंच गए हैं। और देखिए इनका छोटा भाई माही जो सेल्फी एक्सपर्ट है, कैसे फैमिली सेल्फी खींच रहा है। और इसी के साथ इनका लखनऊ का डे आउट भी शुरू हो गया।
1: तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो।
2: कहां भाई कहां?
3: तो हमारे होटल से निकल कर हम आ चुके हैं कहां, 10 90 चौराहे पे। आई लव हमारा लखनऊ पे, हम आ गए सेल्फी पॉइंट।
4: आई लव बरेली टू आई लव लखनऊ।
3: Yes.
4: पहुंच चुके हैं।
3: ये दास्तां हर शहर तक ऐसी पहुंचती रहेगी प्यार के जरिए।
5: वाह, मौसम का क्या मिजाज,
2: खुला खुला खुला मौसम है,
4: खुला बारिश भी होने वाली लग रहा है ना।
2: वो भी सकती है, मौसम बड़ा बेईमान है।
5: शाम होने वाली है और शाम बहुत अच्छी होती है। शाम में मजा आएगा।
3: हैपनिंग कानपुर है, बेहतर लखनऊ।
5: अरे
4: क्या
3: बेहतर
4: बेहतर कलेश करा दिया
2: भाई ने। भाई ने
3: हैपनिंग कानपुर है,
2: हैपनिंग कानपुर को बोल दिया
3: बेहतर लखनऊ है, कानपुर के लोगों को। और ये तो स्टडी भी है यार, स्टडी में भी बोला गया कि सबसे खुश शहर कानपुर ही रहा है।
5: कौन सी स्टडी?
3: यूएन से बड़ी स्टडी कोई होती है?
2: उत्तर प्रदेश की भूमि, जो
5: उत्तर प्रदेश एक ही नाम सुनाई देता है, उत्तर प्रदेश
2: सबसे हैप्पी भूमि है कि नहीं?
5: इंडिया,
2: यहाँ हमारा भवभाग मचा रहेगा, बना रहेगा। तो क्या है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा।
4: अरे दिल्ली दूर नहीं लगता, और वैसे यूपी से बिल्कुल दूर नहीं लगता दिल्ली। तो दिल्ली में बहुत यूपी का टच है, यूपी के लोग आए रहते हैं और यूपी में बहुत दिल्ली के टच है। तो हम भी यही क्या बरेली के हैं, बरेली के बच्चनों के हैं। तो
2: सही बात,
5: लखनऊ में खड़ी है आप?
2: नहीं बाकी,
4: अरे अब हम लखनऊ के हैं,
2: बाकी दिल्ली तक पहुंचने के लिए हर किसी को यूपी से होके गुजरना पड़ेगा,
4: और सेम यूपी पहुंचने के लिए भी दिल्ली से गुजरना पड़ेगा।
5: अरे कुछ भी हो, हैपनिंग कुछ भी
2: पर
5: अब कुछ मौका लखनऊ में
4: है। इनका थोड़ा साबुन स्लो है,
2: इनकी इनकी बुद्धि जो है,
4: इनका साबुन थोड़ा स्लो है,
2: इनका साबुन स्लो है। साबुन से हाथ धो के इनको लेके चलते, कुछ खिलाते हैं,
5: खिलाते हैं
2: चाट,
5: कुछ खाते वरना सब एक दूसरे को।
2: अब कुछ खाए,
5: पेट पूजा थोड़ी हो जाएगी रॉयल कैफे पे, बास्केट चाट वगैरह बढ़िया से। लखनऊ में एक चीज कहते हैं ना कि बेमान मौसम होता है आशिक नहीं।
4: अरे आपका शाही मुशायरा भी लगाने वाले हैं अपने आज रात को।
0: पड़ाव नंबर टू, लखनऊ की गलियों को चीते हुए ये पहुंचे लखनऊ के बिजी इलाके हजरतगंज में, जहां पर हरे रामा हरे कृष्णा की धुन बज रही है। ये चारों भाई हैं कृष्णा के भक्त, और कृष्णा का तो नाम ही कृष्णा है, इसलिए कृष्णा अपने भाइयों और पत्नी संगम के साथ इस हरे रामा हरे कृष्णा के सेलिब्रेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए सब ने कैसे नाचते हुए हजरतगंज की सड़क पर सबका ध्यान खींचा।

भाई ये चारों बड़े ही चटोरे हैं, पर आज देखिए ये लखनऊ की इस फेमस चाट शॉप में कुछ खाने वाले हैं। तो ये पहुंचे इस चाट शॉप पे, जहां पर घंटी बजाकर कृष्णा ने अपने आने का ऐलान किया। अब ये पहुंचे अंदर और सबसे पहले इनकी नजर गई पानी पूरी यानी गोलगप्पों पर, और हो गया एक गोलगप्पे वाला मुकाबला। अब देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाता है, ये तीनों भाई या इनकी घर की पहली महिला सदस्य

0: संगम। तो चलिए देखते हैं बच्चन फैमिली का गोलगप्पा कॉम्पिटिशन।
1: तो हम शुरू करने वाले हैं पानी पूरी से,
2: गोलगप्पे से।
1: गोलगप्पे हम लखनऊ में है,
3: लखनऊ में है।
1: बताशे खाएंगे,
4: बताशे कहते हैं यहाँ।
2: बताशे पूरी है लखनऊ में
1: जी, बताशे पानी पूरी नहीं।
4: देखना ये है कि कौन किस।
5: मैंने पानी पूरी लिखा है यहाँ पे।
1: अरे वो आपके लिए लिखा है
2: भाई सब।
4: हम लेकिन
5: छोड़
4: कॉम्पिटिशन ये करने वाले हैं कि कौन कितने ज्यादा खाएगा, उसमें मैं हारने को तैयार हूँ। बाकी
1: मैं तो जीतना ही चाहता हूँ।
3: आई थिंक मैं जीतने वाला से कॉम्पिटिशन कर रही हूँ।
4: मुझे लगता है कि हमारे कृष्णा जीतेंगे
5: भाई। देख लेते हैं कौन जीतेगा, है ना। शुरू करो, शुरू करो।
1: मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा जिस तरह।
4: चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के।
6: लड़की ब्यूटीफुल कर गई
0: लखनऊ मशहूर है अपनी बास्केट चाट के लिए। ये एक तरह से बहु संगम का रसोई का टेस्ट भी है। भाई सबने सर पर टोपी लगाई और हाइजीन का ध्यान रखते हुए यहाँ पर बास्केट चाट बनाई। तो संगम की बास्केट चाट तो कुछ यूं है, लेकिन वहीं इनके देवर और जेठ भी अलग अलग स्टाइल की चाट बना रहे हैं। सबकी चाट तैयार है, लेकिन इस मौके पर गुगली मारी कृष्णा यानी प्रविष्ट ने, जिनकी चाट भी अनोखी है और अंदाज भी। तो भाई सब अपने अपनी चाट लेकर हाजिर है, तो देखते हैं चाट का ये गोलमाल इन बच्चनों के साथ।
3: हेलो, क्या खाएंगे आज आप? हमारे पास क्या क्या है? दही वाला है, पापड़ी चाट, सेव पूरी और क्या क्या है?
4: आज आपको चाट भंडार में आपका
3: नॉर्थ की चाट।
4: हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं
3: बाकी से आलू टिक्की,
4: बास्केट चाट, आलू टिक्की, छोले टिक्की, छोले टिक्की, पापड़ी चाट, पापड़ी चाट, दही भल्ला, दही भल्ला, भल्ला पापड़ी,
3: भारी
4: भल्ला पापड़ी, काजी वड़ा, नींबू बटर, दही बताशा, पानी बताशा, सिंधी बताशा बनाऊंगा मैं।
5: जो से मैंने बोला उसमें हमारे टच के बिना कुछ बनेगा।
1: बास्केट चाट, भाभी बास्केट चाट,
3: सब एक कलेक्टिवली बास्केट चाट बनाएंगे।
4: तो बनाना शुरू कर दिया
3: है बास्केट चाट। चलिए शुरू कहाँ से करें?
5: हटी मैम, एक सेकंड पूरी होनी चाहिए, बनना तो हो
1: ही है जो बनना।
4: मैं तो आधे रास्ते में हूँ, रुक जाओ।
1: मैं भाभी का आलू टिक्की डालो।
5: ये आलू टिक्की, ये आलू टिक्की, ये हमने किया उसको मस्ता।
7: कच्चा पापड़ पक्का पापड़ दे तुम मुझे, दोनों लाकर मुझे आते मुझे खाकर, कच्चा हो या पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ दे तुम मुझे, दोनों लाकर मुझे आते मुझे खाकर, कच्चा हो या।
5: और ये हमने डाला लपेटू छोले, थोड़ा सा और थोड़ा भना हुआ और बहुत बढ़िया।
1: ये
3: भाई पूरे मुंह पे आ रहा है।

0: ओके इट्स रेडी
1: स्पेशल
0: अरे वाह
2: मैं चाहूँ कि इस चार्ट में स्पेशल क्या है जो इसको
0: ने बनाई है चार्ट
2: स्पेशल के लोगों ने लखनऊ चार्ट बनाई है
3: भाई भाई पक्का
2: दोनों अपनी साइड बहुत अच्छी है
4: तुम्हें इसका बाइट मैं देता हूँ
2: बरेली का स्वाद आ रहा है इसमें लखनऊ का स्वाद आ रहा
0: है
3: भाई मैं समझ गया तुम क्या
0: मेरा मैटर
2: अब बताओ
3: हम हाथ से खिला
2: अच्छा क्या बात है चॉकलेट या पिज्जा मिले
5: मुझे सब कुछ चाहिए पास में मेरे
2: मजा आ गया
5: सच सच
2: हो गया अच्छी है

0: लखनऊ जाना जाता है अपनी चिकनकारी के लिए, पर अब संगम को करनी है अपनी ससुराल के लिए शॉपिंग। अब शॉपिंग के लिए उन्होंने सोचा कुर्ते से बेस्ट कुछ नहीं, लखनऊ आई है तो चिकन का कुर्ता खरीद लेते हैं। तो वो पहुंचे इस चिकन की शॉप पे, जहां पर इन्होंने अलग अलग कुर्ते देखे, ट्राई किए और फाइनली संगम ने पसंद किए बच्चन फैमिली के लिए कुर्ते। तो देखते हैं संगम ने आखिर कौन सी चिकन की खरीदारी की इस शॉप पर।
1: खरीदारी का पड़ाव
2: यहाँ लखनऊ का चिकन कारी फेमस होता है, तो हम एक शॉप में आए हैं अभी थोड़ा एक्सप्लोर करने।
3: मेरी जिंदगी में ये चिकन है जो मुझे पसंद है।
2: मैं तो बहुत टाइप के रखती बट बहुत एक्साइटेड है अभी लास्ट पड़ाव के लिए, इस दिन के लास्ट पड़ाव के लिए।
4: अभी आखिरी थोड़ी है,
5: अभी तो अभी अच्छा। बहुत बाकी है,
4: अभी तो पड़ावों के पड़ाव
5: मतलब शाम ढलनी हुई
3: जो इनको इंटरेस्टिंग लगता है, इसके बाद आप कुछ नया लगे इंटरेस्टिंग।

0: और मैं कहता हूँ संगम जी चार पांच मर्द हैं घर में, तो मैडम सोच रही
1: है कम से कम दस कपड़े तो
0: पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते।
2: भाई मैं खुद उस घर से निकलना चाह रही हूँ, मैं कपड़े रहूंगी।

0: बताइए मैडम।
1: पापा के लिए पहले
0: पहले
2: मुझे तो सफेद रंग पसंद है वैसे।
1: सफेद दिखा दे।
0: इश्क का रंग सफेद। पर पापा के लिए भी सफेद?
2: नहीं नहीं, अजब के लिए, अजब सर के लिए, अजब सर के लिए कुछ अजब।
1: इनकी समय इनकी पसंद से कुछ नहीं लेना है, भाभी दिलाएंगे हम नहीं तो।
2: सर क्योंकि लुंगी पहनते हैं बहुत टाइम, तो मुझे लग रहा है ये ऐसी कोई शर्ट अच्छी रहेगी फॉर अ चेंज। मुझे लगता है
1: महाराज
2: कोई फंक्शन हो रहा है रिसेप्शन के फंक्शन के लेवल से। फिर सतलुज जी पे क्योंकि हमेशा एंग्री रहते हैं तो कुछ रेड में ये
1: वो ग्रीन ग्रीन भैया पे बहुत अच्छी।
2: हाँ ये
1: पीकॉक ग्रीन जैसा जो रेड
2: हुआ।
1: हाँ ऐसा कुछ
2: नहीं,
0: इनके जीवन में जो है वो आना चाह रही है, उसको मना कर
3: किसी को नहीं आने देंगे, समस्या ही यही समय चाहिए ही नहीं।
4: भैया को
0: भैया के लिए वाइट, वाइट या ब्लू, ब्लू
3: गंगा भैया के लिए तो आना चाहिए ये लाइट कलर कुछ
0: येलो, येलो दे दो
1: तो मेरे लिए वाइट क्यों।
3: ये देखो ये गंगा भैया
0: इश्क का रंग
2: सफेद।

0: क्यों मैं लखनऊ की कारीगरी हुई भी, चिकनकारी की कारीगरी हुई भी। तो ये है अजब सर के लिए, जो मेरे ससुर जी हैं उनके लिए ये विद हिज लुंगी, थोड़ा फ्यूजन इंडो वेस्टर्न, ये उनके लिए है। ये है सतलुज जी के लिए, देखते हैं कैसा लग रहा है इन पे। कलर एक्चुअली बहुत
1: अच्छा, एक्चुअली मुझे भी फील आ रहा है अच्छा लग रहा है।
2: चलिए स्माइल आ
0: गया। ये है माही के लिए, ये थोड़ा जेंजी टाइप का है, तो इंडियन भी है, रूटेड भी है वो, बट ही इज जेंजी, तो
1: हुकुम का इक्का
3: अलग ही है।
0: यस
1: हुकुम और पान दोनों इसमें
3: अच्छी लगी है, ये अच्छी
0: है। ये है गंगा भैया के लिए,
1: सिंपल सोबर और मस्त
0: है, बिल्कुल भोले हैं और ब्लू जस्ट लाइक द गंगा रिवर।
1: हमारे कानपुर में ऐसी कहावत भी होती है, सिंपल सोबर और मस्त।
0: यस तो ये गंगा भैया
1: जी।
0: ये है आखिरकार हमारे कृष्णा जी हैं, जो वैसे बहुत बड़े बोल बच्चन हैं और उनका मुंह तेज तलवार की तरह चलता है, तो सफेद वुड बी अ गुड ब्रेक। और उनके कपड़े भी बहुत वैसे रहते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, कि कभी कभी कभार सिंपलिसिटी भी खुद में और सादगी में बहुत ब्यूटी होती है, तो मुझे लगता है एक ब्रेक मिलेगा इन्हें, कोई फंक्शन आएगा वो ऐसे कपड़े पहने।
3: बाकी देखिए संगम जी अभी तक शो में मान नहीं रही है, उनको भी एहसास नहीं हुआ है
0: हाँ।
3: लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कृष्णा को
0: शायद अब सफेद पहने तो वो एहसास
3: हाँ, तो कहीं ना कहीं वो भी वो कृष्णा को पसंद करती हैं।
1: झूठी अफवाहें फैला रहे हैं दोनों,
3: इसीलिए मैडम जो है
0: नहीं मैं पसंद नहीं करती हूँ
3: इन्हें, मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं करती, इनको इनको लग रहा है ऐसा।
0: अरे नहीं,
3: मुझे खाटू श्याम बाबा का पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, बहुत जल्द उनकी उनकी जो बांसुरी है, जो छड़ी है, जो मोरपंख है, वो चलेगा और फिर ये सफेद कुर्ता पहना जाए।
4: सीने का नाम भूल गया,
3: अभी नहीं परी है शादी,
4: नहीं नहीं ये परी से ज्यादा अच्छी है।
5: पूरे दिन की भागम भाग के बीच अब वक्त है रिलैक्स करने का, तो भाई पूरी बच्चन फैमिली इंक्लूडिंग बहू संगम पहुंचे इस हेरिटेज रेस्टोरेंट में, जहां आज ये लखनऊ का स्वाद तो एक्सपीरियंस करेंगे ही, लेकिन साथ साथ कुछ मस्ती भी करेंगे। ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और यहां पर इनकी नजर गई इस पियानो पर, तो इनके अंदर का बॉलीवुड झांक निकला। तो देखिए वैसे कृष्णा यानी प्रवेश मिश्रा को पियानो बजाना आता है, तो वहीं पर अंश यानी सतलुज को भी पियानो बजाना आता है, तो हो गया एक पियानो कॉम्पिटिशन जहां पर कृष्णा और संगम ने डांस वांस भी कर डाला बॉलीवुड स्टाइल में। भाई वाह, बच्चन परिवार का ये फिल्मी अंदाज बड़ा ही फिल्मी है।
3: पूजा नहीं तो कोई दूजा।
6: जान ले बात तेरी वी हैव अ प्लेयर इन हाउस, प्लेयर बीच द पियानो
7: बजाता।

0: प्यार हो।
1: और देखिए मैं जानता हूँ भाई बजाना बहुत जानते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, और कौन से ये अभी धीरे धीरे पता चल रहा है।
2: प्यार होता है दीवाना।
3: मुझे हारमोनियम बजाना आता है, तो थोड़ा बहुत ये भी बजा लेता हूँ।
1: सही सही,
3: हारमोनियम और मोहन मीणा बजाते
4: दोनों अलग अलग है।
3: हाँ।

भाई लखनऊ अपने कबाबों के लिए जाना जाता है, तो चाहे वो दही वाले कबाब हो या फिर रेशमी कबाब। अब ये कबाब वेज भी मिलते हैं, नॉन वेज भी मिलते हैं। बच्चन परिवार ने वेज कबाब चुने और देखिए लखनऊ के इस नवाबी स्वाद को ये तीनों बच्चन भाई और इनकी कृष्णा की दुल्हनिया कैसे एंजॉय कर रही हैं। इनके साथ जानते हैं इनका ये नवाबी लखनवी स्वाद।

0: कितना सुंदर है, कितना सुंदर
1: कबाब। ये है सैटी
2: भोला कबाब, भोला कबाब। सो वो वाला भोला कबाब है,
1: और फिर
0: ये कबाब है वेज कबाब,
2: ये दही के, अरे दही, दही के कबाब, शमाई को मशरूम के कबाब। वाओ, बहुत
0: ये सबसे अच्छी चीज भैया, ये
2: देखिए, ये हमने करवाया है ना, एक तुम्हारे लिए है कि तुम अपना खाना लेके खाओ, एक भाई तुम्हारे लिए है वहाँ आ जाएगा, और एक आपके लिए है।
1: So much.
2: आपके जिंदगी को हम ऐसे ही रोशन करेंगे। अब इसको रखो बीच में ताकि टेंडर नाइट डिनर वाला फील भी आ जाए। सुबह से मुस्कुरा रहे हैं, मुंह का पूरा उपयोग हुआ लखनऊ में सुबह से, मुस्कुराते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ खाते हुए, कुछ गाते हुए, कुछ चबाते हुए, कुछ खिलाते हुए, और बाकी हाथों का बनाते हुए और नाचते हुए, तो फेशियल मसल सारे एक्सरसाइज हो चुके हैं।
0: अरे इस सब में दिल का बहुत इन्वॉल्वमेंट था।
2: हाँ, दिल,
1: आई एग्री,
2: संगम जी दिल की धड़कनें तेज कर रही हैं।
1: आई एग्री, बहुत प्यार मिला, मतलब बरेली में हमें लगा कि अरे इससे ज्यादा प्यार नहीं मिल सकता, पर लखनऊ में उतना ही प्यार मिल रहा था हमें जितना बरेली में मिला, तो बिल्कुल वो एक यादें जो थी बरेली की वापस आ गई। और मैंने पहले भी एक जगह कहा था कि क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, रोज शूट करते हैं, सेट से घर जाते हैं, तो यहाँ जब आए तो वो लोगों का फीडबैक जानकर कि कैसे वो शो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनकी फैमिली से, हमें फ्लाइट पर भी मिल गया था कोई जो जिन्होंने बात भी करवाई अपनी मॉम से, तो बहुत अच्छा लग रहा है जान के। और इससे बेटर मतलब कोई रेटिंग वेटिंग कुछ नहीं हो सकती, बस लोगों का प्यार ही है जो हमें रोज सेट पे पहुंचाता है, काम करवाता है।
0: लखनऊ वालों ने हमें इतना प्यार दिया कि हमें यहाँ आना ही पड़ा उन्हें थैंक यू बोलने, एंड थैंक यू लखनऊ पीपल फॉर मेकिंग आवर डे सो स्पेशल।
2: लखनऊ तो मतलब एक जरिया है, मतलब ये यूपी का एपिसेंटर है, और है तो लखनऊ के थ्रू द एंटायर
0: पूरा उत्तर प्रदेश
2: और पूरा भारत,
0: पूरा देश।
3: वो कहते हैं ना कि मुकम्मल वही मेहनत होती है जिसकी तारीफ तुम्हारा बाप कर दे, तो आज मेरे लिए वो वाली मेहनत थी एकदम की। अब वो मेहनत जो करते आए थे आज पापा ने जब देख लिया, वो तो मतलब बटोर के अपने दोस्तों को ले आए थे, तो मजा आया। उस वो एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे अलग था, स्पेशल था। लेकिन पूरा दिन जो लखनऊ वालों ने बितवाया है हमारा, ये इख्तिताला की तरीके से भाई साहब, चाहे खाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे नाचना हो, चाहे दुलार हो, सब कुछ मतलब अव्वल नंबर, अव्वल दर्जे की शीर्ष एकदम।
0: बहुत अलग ही स्पेशल वाला प्यार मिला है। हर किसी ने मुझे बोला है कि वाह लखनऊ का नाम रोशन कर रहे हो, और ब्लेसिंग्स दी मुझे, सबने आशीर्वाद दिया। कितने सारे आंटियां आए थे जिन्होंने ऐसे हाथ करके आशीर्वाद दिए, तो आई थिंक ये बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल प्यार है। हाँ बिल्कुल, वैसे ट्रीट हुआ, ये भी खाओ वो भी खाओ।
4: खाने के टेबल के साथ साथ अब वक्त है जाने का, क्योंकि इनको मुंबई में अपनी सीरियल बरेली के बच्चन की शूटिंग भी करनी है। तो इसी स्वाद के मोड़ पर सास बहू और बेटिया कहता है इनको अलविदा। भाई सास बहू बेटिया बरेली के बच्चन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, और इनकी सब खबरें और बिहाइंड द सीन्स हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल लखनऊ में इनका रिसेप्शन हो चुका है, और लखनऊ वासियों के आशीर्वाद के साथ अब बरेली वाले पहुंच गए हैं मुंबई, जहां पे सीरियल की शूटिंग होती है। तो बने रहिए सास बहू और बेटिया के साथ बरेली के बच्चन का हर अपडेट देखने के लिए।
2: जितना हम थके हैं, जितना हमारी एनर्जी गई, उतना आपकी भी गई है। और हम तो मतलब कई बार सिर्फ बैठे थे, या हमारा मेकअप हो रहा है, हम बैठ के खा रहे हैं, यू ऑल वर द वन जो कैमरे के पीछे चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू।
3: हमारे दिन की पूरी प्लानिंग आप लोग एक तरीके से इस तरह से करते हैं कि हम एंजॉय भी करें, काम भी करें और मजे भी कर पाएं, तो उसके लिए भी थैंक यू एक्चुअली।
0: और जो आप व्यूअर्स को एंटरटेन करते हो तो ऑलवेज है, यस।
1: सास बहू और बेटियां
2: देखिए हर दोपहर, कौन सी दोपहर, जिसकी पिछली रात को आप 9 बजे देखेंगे बरेली के बच्चन।
4: लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।

हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हैं दोस्तों, तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देते हैं। कुछ ऐसी है यहाँ पर हमारी अभीरा और कुछ ऐसा ही है यहाँ पर अरमान और अभीरा का ये रिश्ता, जिसमें आते हैं कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, उतार चढ़ाव। लेकिन देखिए, फिर भी इतनी सारी सिचुएशंस के बाद ये आ ही जाते हैं एक दूसरे के पास। इसी को तो कहते हैं forever made for each other। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर, और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।

0: रहता है।
1: प्यार के रंग में रंगे अरमान और अभीरा।
0: तू ना तो घर घर नहीं लगता,
1: पति पत्नी हुए लवशुदा।
0: नहीं लगता तू है तो हम आते हैं।
1: अरमान अभीरा पर चढ़ा इश्क का खुमार।
0: के तेरे बिन सो नहीं सकते, ने सो नहीं सकते।
1: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है मौसम प्यार का। भाई बड़े दिनों बाद अरमान और अभीरा को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला है। इन दोनों की जिंदगी में काफी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन आज सभी परेशानियों को भूलकर देखिए कैसे दोनों एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ऐसे में शुरू हो चुका है इनका किचन रोमांस। जी हाँ, अरमान और अभीरा किचन में है और ऐसे में इस एप्पल ने बना दी है दोनों की जोड़ी। और ये दोनों हो गए हैं मजबूर एक दूसरे के करीब आने को।

कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन आज तो इस एप्पल ने लवर्स को करीब ला दिया है। तभी तो देखिए कैसे अभीरा बड़े ही प्यार से अरमान को एप्पल खिला रही है, और ऐसे में दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। भाई अरमान की आंखों पर पट्टी बांधकर शुरू हो गया है अभीरा का रोमांटिक अंदाज, और पट्टी खुलते ही दोनों की आंखें हुई चार और दोनों प्यार के लाल रंग में खो गए।

0: सकते।
1: ढाई साल में इतना नहीं हुआ है कि बैक टू बैक तीन रोमांटिक सीन सुबह से तीन सीन किए अरमान अबीरा के ही, और तीनों रोमांटिक थे, एंड उसका तीनों का रोमांस पे ही था, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए भी न्यू था। ऑडियंस विल एंजॉय, एंड ऑफ कोर्स इसीलिए हम ये सब कुछ करते भी हैं कि यू नो ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है, सो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। एक रूम में है सीन, और एक और सीन रूम में ही होता है, दो सीन रूम में थे और एक किचन में।
2: असल में ये रोमांस हुआ कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। भाई अरमान और अभीरा दोनों ही पहुंच गए हैं किचन में, क्योंकि आज अभीरा को किचन में अपनी बेटियों के लिए कुछ स्पेशल बनाना है। ऐसे में आज अरमान भी किचन में उसका हाथ बटा रहे हैं, और मियां बीवी दोनों मिलकर बना रहे हैं यमी यमी सा खाना। और खाने की रेसिपी बनाते बनाते दोनों ने शुरू कर दी अपने प्यार की रेसिपी बनाना।
1: अरमान और अभीरा दोनों बाजार से लौटे हैं, अभीरा के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं अब MD होने की वजह से, तो अरमान बोलता है कि क्यों इतना सब कुछ करना है, तो बोलती है नहीं मैंने कभी, मुझे मौका नहीं मिला, मायरा छोटी थी तो वो मुझसे दूर थी तो मैं खाना नहीं बना पाई उसके लिए, और मुक्ति जब थी गैराज में बिजी रहती थी इसलिए कुछ बना नहीं पाती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को मेरे हाथ के खाने का स्वाद पता हो, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, और मुझे रिलैक्स्ड ही फील होगा बच्चियों के लिए कुछ करके, ऐसा नहीं है कि मैं थक जाऊँगी, तो उसका वो एक इमोशन है इस चीज़ को लेकर। और अरमान का वो कंसर्न है कि वो नहीं चाहता कि अबीरा मेंटली फिजिकली खुद को एग्जॉस्ट कर लेंगे, काम भी करे उनके काम भी करे और हर चीज़ में, तो वो ट्राई करता है सपोर्ट करने की कि वो खाना बना लेगा स्टाफ के साथ, बट अबीरा वॉन्ट्स टू।
2: वैसे आज तो रोमांस पर ब्रेक नहीं लगने वाला है, तभी तो वही दूसरी तरफ कमरे में अरमान और अभीरा अपनी बेटियों को लेकर देखे कैसे बातें कर रहे हैं, और बातों ही बातों में फिर एक बार शुरू हो गया इनका रोमांस, जहां अभीरा भाग रही है और उसे पकड़ रहे हैं अरमान। भाई दिल तो बच्चा है,
3: मंकी की थीसिस मार वैसे कर
4: और फूटे के भी, मुझे तो लगता है स्कॉलरशिप से मिले,
3: नहीं आई थिंक मंकी को मिलेगी,
4: चलो जिसको भी मिले आई जस्ट डोंट फील टेंशन,
3: नहीं होगी,
4: अगर बाई चांस होती भी है तो हमने बिना बोले कमरे में बंद कर देंगे, उसके बाद खून खराबा होता है तो हो जाएगा।
3: शुभ बोलो, बच्चों ने उनकी लाइफ का फर्स्ट हाफ देखा है, सिर्फ एक भाई बहन ही होते जो आपके साथ स्टार्ट से फिनिश तक बात रियलाइज करें कि अगर आपका कोई सिबलिंग है तो ऐसा समझ लो कि आपके पास फुल लाइफ के लिए अपना प्राइवेट चेयरिंग है।
4: हमारी बेटियां पहले से ही सीखे सिखाई हैं, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उन दोनों ने एक दूसरे के बिना भी लाइफ देखी, और साथ आने के बाद उन्हें पता चल गया कि लाइफ का असली मजा साथ में ही है।
3: होप सो

0: मेरा ने थीसिस लिखी है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बारे में बात हुई और दोनों को लगता है, उसे लगता है कि मुक्ति जीतेंगी स्कॉलरशिप और मुझे लगता है कि मायरा जीतेंगी। दोनों बहुत इम्प्रेस्ड हैं, खुश हैं अपने बच्चों से। और फिर ऐसी बात निकल के आती है कि एक टाइम के बाद सेकेंड हाफ लाइफ का जब होता है तो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आसपास के लोग गुजर जाते हैं, आपके पास कोई नहीं रहता, बट एक भाई बहन ही होते हैं, भाई बहन ही होते हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं और वो आपके लाइफ के हर पड़ाव पे आपके साथ रहते हैं, तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझेंगे।
1: हम तो यही कहेंगे अरमान और अभीरा का ये रोमांस यूं ही चलता रहे, लेकिन ये सीरियल है, कोई ना कोई ट्विस्ट तो जरूर आएगा इस रोमांस पर ब्रेक लगाने के लिए, जो देखना होगा काफी दिलचस्प।
2: बेचारी अभीरा कितनी मेहनत कर रही हो, पर अफसोस बोर्ड मेंबर्स इस बार मेरे ही साथ है।
3: एक बार उन्हें अपनी साइड ला चुकी हूँ, इस बार भी ले ही आऊंगी।
1: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: और साबित कर दो कि एक औरत अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती है।
4: भी लेकर आती है हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की खुशबू, क्योंकि देखिए रोज कहानी में है कोई ना कोई नया ड्रामा, कहानी का लेखक लेकर आता है इसमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट कि हमें मजा भी आता है और ढेर सारा मनोरंजन भी हो जाता है। तो किस हाल में है आज हमारी डॉक्टर आरंभी और क्या कुछ हो रहा है आज अवंतिका और विश्वास की जिंदगी में, क्या फिर से रचा जा रहा है यहाँ पर कोई नया षड्यंत्र? लेट्स फाइंड आउट।
1: फूटा नायरा का गुस्सा, राज और नायरा की शादी में ड्रामा, जेल जाएगा टंडन परिवार। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में नायरा और राज शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन यहाँ तो गोलमाल ही हो गया है क्योंकि दुल्हन मंडप से गायब है। ऐसे में घर में उठ रहे हैं सवाल कि आखिरकार नायरा दुल्हनिया गई तो गई कहाँ। ऐसे में सभी घर वाले काफी परेशान हो गए हैं क्योंकि शादी का मुहूर्त बीता जो जा रहा है।
5: ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी भागा नहीं है, सब घर में है। अब मैं कुछ देकर आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ।
1: भाई नायरा को लेकर सब परेशान हो ही रहे होते हैं कि नायरा की एंट्री होती है और देखिए कैसे नायरा गुस्से में है क्योंकि उसे सच का पता जो लग गया है और यही सच वो आज मीडिया वालों और सभी घर वालों के सामने बताने आई है। सबके पूछने के बाद आखिरकार नायरा ने बता ही दिया कि टंडन ने उनसे दहेज लिया है, वो भी 100 करोड़ का, जिसे सुनकर आरंभी और राज के होश ही उड़ गए क्योंकि वो तो इस सच से अनजान है। ऐसे में नायरा पुलिस को लेकर आती है और वो चाहती है कि यहाँ पर राज के मम्मी पापा की गिरफ्तारी हो।
6: घर परिवार टूटे कोई भागता है क्या?
5: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं भी अपना चेहरा छुपाता था। चेहरा छुपाने वाली हरकत तो आप करने से देख लिया। तो आपने बनाया राज, मेरा मेरी फीलिंग्स का, मेरी कहानी का, मेरे इमोशंस का, मैं तो बस उस तमाशे को खत्म करने आई हूँ आज। मैं नो मनी ना देने नहीं आई हूँ, अपने साथ पुलिस को भी लेकर आई हूँ। जस्ट स्टॉप इट, आप हो गए इनके प्यार में मैनिपुलेट, लेकिन मैं मैनिपुलेट होने वाले से बिल्कुल भी नहीं। मैं ना आप सबको ये बताना चाहती हूँ, शहर की इतनी बड़ी फैमिली का टंडन ने रात से मेरी शादी करवाने के लिए दहेज लिया है।
7: Just stop it, please. मेरी फैमिली के बारे में ना ऐसे किसी बकवास बातें मत करो, फिर अगर कोई बात है तो प्लीज टॉक इट आउट, सॉर्ट करो यहाँ पे, ये इतने बड़े गंदे इल्जाम मत लगाओ। मेरी फैमिली बिल्कुल भी ऐसी नहीं।
5: मैं बताती हूँ आपको आपकी फैमिली कैसी। आपकी फैमिली ने मेरे पेरेंट्स से 100 करोड़ रुपए दहेज लिया है। तो राज पंडित, shame on you and shame on all of you। क्या आपने आपकी शादी में दहेज दिया था? नहीं तो आप कैसे समझेंगे कि मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है? आप एक डॉक्टर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, हो तो आपको इस घर में दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं तो एक ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपने होनहार डॉक्टर राज बेटे से मेरी शादी कराकर मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। अब एहसान कर रहे हैं तो उसकी एक कीमत भी होगी, राइट? इंस्पेक्टर सर, इन लोगों ने मेरे फैमिली से 100 करोड़ रुपए दहेज लिया है और ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है जिसके लिए आप मिस्टर सुनील टंडन, उनकी वाइफ डिंपल टंडन, उनके बेटे विश्वास टंडन और राज टंडन को अरेस्ट कीजिए। इन लोग को इनके किए की सजा मिलनी चाहिए राइट नाउ।
1: ऐसे में राज के मम्मी पापा सभी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने वो दहेज नहीं लिया है, बल्कि नायरा के मम्मी पापा ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है जिससे वो कुछ चैरिटी का काम करेंगे।
8: मॉम, मैं ना आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आपने नायरा के पेरेंट से दहेज मांगा था या नहीं मांगा था? जस्ट से यार,
6: हमने कोई गलत काम नहीं किया है। बार बार दहेज शब्द इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। नायरा के पेरेंट्स ने उसे सिर्फ एक गिफ्ट दिया है, हमने बस एक्सेप्ट किया है उसे। और इन पैसों से हम हमारे हॉस्पिटल में नायरा के नाम का एक नया चैरिटी विंग खोलने वाले थे। गरीबों की मदद करने जा रहे हैं, आप हमें को क्रिमिनल ठहरा रहे हैं।
9: सुन लिया आपने? सुना आप लोगों ने? आप मुझे बताइए, हमारी शक्ल पर ऐसा लग रहा है कि हम लोग दहेज लेंगे? दहेज लेने वालों से दिखाई देते हैं हम लोग आपको? बताइए, यही तो प्रॉब्लम है हम लोगों की। अमीर है हम लोग तो आप लोग कोई भी बहाना ढूंढते हमें बदनाम करने का, ये कोई इंसाफ है? ये सही बात नहीं है, बंद करिए ये बातें। स्टॉप इट। मैं जो कह रही हूँ वो सच है, समझी? मैं जो कह रही हूँ वो सच है, वो सच नहीं है जो आप लोग फैला रहे हैं अपने मीडिया के जरिए, गलत है। आप लोगों को क्या लगता है कुछ भी कहकर हमें बदनाम कर देंगे आप लोग? हमारे ऊपर कीचड़ उछाल देंगे आप लोग? मुजरिम हम लोग नहीं है, आप लोग हैं। आप लोग, आप बताइए इंस्पेक्टर साहब, ये इंसाफ है? ये कोई इंसाफ है लोगों को करना?
1: लेकिन ये बात नायरा को ही नहीं बल्कि ध्रुव को भी पसंद नहीं आई और वो भी मिस्टर एंड मिसेस टंडन के खिलाफ बोलने लगा। तभी आया विश्वास और ऐसे में ध्रुव और विश्वास के बीच ही बहसबाजी शुरू हो गई।
9: घर पे खड़े होकर हमें को बदनाम करके हमें को मुजरिम साबित कर रहे हैं। सुन लिया आपने ना इंस्पेक्टर साहब, ये है हमारी सच्चाई, ये है।
10: आप लोगों ने जो किया, जो खर्चा किया, जो सब किया, मर्जी से किया, तो ये सबके सामने बातें सुनाने का कोई पॉइंट नहीं है। उल्टा आप लोगों ने इनसे दहेज मांगा है और आप कह रहे हैं कि वो
11: आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। और क्यों बोल रहे हैं?
12: होते कौन हैं आप बीच में बोलने वाले?
11: जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस एंड शट अप।
10: नो, आई विल नॉट। डॉक्टर विश्वास, फैमिली मैटर नहीं है, क्राइम है। दहेज लेना इतना तो पता होगा आपको, पता नहीं आप लोगों ने कभी? सो आई विल नॉट शट अप। इतने बड़े सर्जन है ना आप सब, पूरा परिवार डॉक्टर का परिवार है, शर्म नहीं आई एक बार भी आप लोगों को दहेज मांगते हो? और शर्मिंदा होने के बजाय आप मुझे कह रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं भाई? एक लड़की के साथ गलत हो रहा है, अगर आज नहीं बोलू तो कब बोलू? चुपचाप बैठे रहूं मैं, कब बोलू जब उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाए? आपके घर में आप लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब रो रो के पागल हो जाए, वो हार जाए, इतनी टूट जाए कि कोई गलत कदम उठा ले?
11: सब कुछ नहीं हो रहा है नायरा के साथ। पढ़े लिखे समझदार इज्जतदार लोग हैं हम, हमारे यहाँ लड़कियों बहुओं के साथ ये सब नहीं होता मिस्टर ध्रुव चावला। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो मेरी वाइफ से पूछ लीजिए। और यहाँ ना प्लीज, ये मेरी वाइफ है आरंभी टंडन। शादी के 10 साल के बाद इसने तय किया इसे अपना करियर बनाना है, फिर से डॉक्टर बनना है, वो भी हमें बिना बताए। पर जब हमें पता चला तो इसे इसे अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोका, टॉर्चर किया इसे? नो, हम सब ने आरंभी को सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैंने खुद अपने हॉस्पिटल में आरंभी को जॉब दी है। ये है हमारी तमीज, ये है हमारे परिवार के संस्कार। बताओ आज तक तुम्हें इस घर में कभी कुछ तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ? जिस तरह
10: मिसेज आरंभी टंडन चाहती है कि पहले इन दोनों की शादी हो, रिश्ता जुड़े, उसके बाद ये डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है, इस क्राइम को कैसे सॉल्व करना है। नायरा की शादी शादी नहीं आ रही, एक डिसीज भी है, शौरा है।
1: इनकी बहसबाजी तो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आरंभ भी कर रही है कोशिश। केस तो बाद में होता रहेगा, फिलहाल नायरा और राज की शादी होना जरूरी है, लेकिन ध्रुव इस बात के लिए नहीं मान रहा। तो वहीं राज भी नायरा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं।
13: बेसिकली नायरा को पता चल चुका है कि टंडन ने मेरे घर वालों से दहेज लिया है, जो कि नायरा के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नायरा का हार्ट ब्रेक हो गया और अब नायरा बिल्कुल किसी की बात नहीं सुन रही है, ना ही मान रही है। सो नायरा इसके लिए सबको ये चीज़ें इसलिए बोल रही है क्योंकि नायरा को ऐसा लगता है कि वो एक ग्रेजुएटेड भी नहीं है, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, और आरंभी भाभी जो है वो बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो नायरा को ऑफकोर्स बहुत ही लो फील हो रहा है कि शायद आरंभी भाभी से इसलिए दहेज नहीं लिया क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी है, और नायरा पढ़ी लिखी नहीं है तो उस पर कीमत लगाई जा रही है, उसकी उसके साथ शादी करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जो नायरा के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यस यस, तो पुलिस को नायरा बुला रही है, और नायरा बहुत ही प्लानिंग के साथ है इस बार की भाई टंडन को तो अंदर करवा के रहूंगी क्योंकि नायरा के साथ जो भी हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है।
1: तो ऐसे में अब क्या वाकई आरंभी के सास ससुर को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी या फिर आरंभी इसका कोई सलूशन निकालेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: यह तू मुझ में इस तरह कि सुगंध मेरी तुतसी आती है, इत्र चाहे कोई भी लगा लूं, महक तो बस तेरी आती है। ओ माय गॉड, कुछ ऐसा ही है यहाँ पर देवांश के दिल का हाल भी। वैसे देवांश वसुधा के दिल का हाल भी वही है। अब वो अलग बात है कि कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नोकझोंक हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि शायद दूसरा इंसान हमसे प्यार नहीं करता। लेकिन जहाँ होता है ना प्यार, वहाँ वो प्यार कम नहीं होता, और जहाँ होता है प्यार वहाँ होता है विश्वास भी। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के सेट पर।
1: वसुधा की अचार फैक्ट्री में पहुंची उषा। लगे वसुधा पर इल्जाम। घर में शुरू हुआ नया तमाशा। जी टीवी की सीरियल वसुधा में आज रिपोर्टर उषा पहुंच गई है वसुधा की इस अचार फैक्ट्री में, और उसने लगा दिया है वसुधा के अचार पर इल्जाम कि उसके अचार में कीड़ा है। ऐसे में वसुधा देखिए हो गई है परेशान, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता है कि ये सारा किया धरा समर का है।
14: इस बैग में समर के अचार की सारी बोतलें।
1: ऐसे में देखिए कैसे वसुधा उषा से सवाल जवाब कर रही है, लेकिन उषा है कि वसुधा पर इल्जाम लगाए जा रही है।
14: कोई स्टोरी टेलर नहीं है, जो जी में आ रहा है आप कहानियां सुनाई जा रही हैं। आपका काम जनता तक सच को पहुंचाना है, ये नहीं है कि आप झूठी खबरें फैलाएं।
15: अच्छा,
16: अब मैं झूठ बोल रही हूँ?
14: आपने कहा कि हमारे यहाँ अचार में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर कोई भी नजर ना रखे, यो भी झूठ है। आपने झूठ बोला तो बोला, लेकिन इन सारी औरतों में जिनके हाथों को अन्नपूर्णा माना जा रहा है, आपने उन पर अनपढ़ होने का इल्जाम लगाया है। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप उषा जी? एक औरत होकर ही आप एक औरत की ताकत क्यों ना पहचाने? औरत की ताकत हो गई रसोई बनाने की कला, जो हमें दादी और नानी से मिले हैं। और पता है, दादी नानी की पाठशाला से बढ़कर और कोई भी स्कूल कॉलेज ना हो गए, कितनी बड़ी रिपोर्टर होने के बाद भी आपको ये मालूम है कि हमारे यहाँ आज भी औरतें अपने घर में अचार बना रहे हैं ताकि अपने परिवार और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके।
15: चौहानों का एक गुण तो तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, ज्ञान और भाषण दोनों बखूबी देने लगी हो। कौन कहेगा कि तुम वही वसुधा हो जिसके कैमरा के सामने सवाल पूछते ही आंखों से आंसू आने लगे थे। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ये मामला अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। वसुधा जी सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनकी सास उन्हें अपना ले, इसलिए अपनी सास को खुश करने के लिए ही उन्होंने अपना ये बिजनेस खोला। लेकिन वसुधा जी, अपनी सास को खुश करने के लिए आम लोगों की जान को जोखिम में डाल दोगी क्या?
17: सो उषा जो है वो बिल्कुल वसु और उसकी पूरी रजवाड़ी चटका जो कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट की है इसके बिल्कुल खिलाफ है. वो सारे मेजर्स करना चाहती है जिससे नाम खराब हो. तो आज वो एक नया कुछ लेकर आई है जहाँ पे वो आती है, रिकॉर्डिंग्स बनाती है, कुछ ऐसी फुटेज इकट्ठी करती है जिससे बाद में हमें थ्रेट कर रही है कि मैं ये पब्लिक कर दूंगी और तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी. तुम्हारी नहीं, पूरा चौहान ग्रुप के अंदर जो भी बिजनेस है वो सारा मैं खराब कर दूंगी. तो दिस इज वॉट हैपन्स, पर हमारे पास एक प्लान है.
1: वहीं दूसरी तरफ उषा तो घर पर पहुंच गई है जहां पर परिवार वाले मौजूद हैं. ऐसे में उषा मांगती है पैसे ताकि वो वसुधा और उसके आचार की इमेज ठीक कर सके. और चंद्रिका इस बात के लिए मान भी जाती है, लेकिन बदले में वो जानना चाहती है कि ये सब किसने किया है. और उषा बता भी देती है कि ये सारा किया धरा समर का ही है जिसने उषा को ये सब करने के लिए कहा था.
18: 15% वो भी कैश. अरे आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? 15 करोड़ आपके लिए तो बस हाथ का मैल. और इस पैसे के बदले में मैं वसुधा की फैक्ट्री के खिलाफ जो मेरे पास सबूत है ना, उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर. जैसे कि अभी देव ने कहा कि चंद्रिका जी की बरसों की हुई मेहनत पर इस बात के बाद ना मिट्टी नहीं बची.
19: जो अंजाम हो हमने बार बार वसुधा से कहा कि बिजनेस उसकी बस की बात नहीं है, और आपने तो अक्षय और इसकी जिद इन सबकी वजह से ये सब हुआ है. तो हम इसे खुद भुगतना पड़ेगा. हम इस औरत को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे. जो भी करना है खुशी खुशी कर.
20: आज तक हमें इस काम में एक चूक भी ना होगी. मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती? जरूर किसी की साझे शरीर
19: कोई ठोस सबूत है नहीं ना, तो फिर लोग तो वही मानेंगे जो देखेंगे. इसके बारे में हमें और बात नहीं कर सकते.

0: तुमसे यही उम्मीद थी। हम जानते थे कि तुम एक बहुत ही लालची और बेईमान औरत हो, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ 15 नहीं दो कर। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें भी तुमसे कुछ काम है। हमें ये जानना है कि वो कौन सा इंसान है जिसके कहने पर तुमने ये सब कुछ किया। बॉस कौन?
1: तो भाई अब देखना होगा कि कैसे वसुधा और देव मिलकर समर को सबक सिखाते हैं। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबा में बोल कभी। अरे वाह वाह वाह वाह, कुछ ऐसा ही कह रही हैं यहाँ पर हमारी मन्नत। वैसे मन्नत, देखिए जब हम मीठा बोलते हैं ना तो हम वैसे ही लोगों का दिल जीत लेते हैं। पता नहीं लोग कड़वा क्यों बोलते हैं, किसी के लिए बुरा क्यों बोलते हैं। अगर सब बोले मीठा, सब सबको एक साथ लेकर चले तो ये दुनिया बन जाएगी ना अ बेटर प्लेस। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको मन्नत के पास और देखते हैं किस तरह आगे बढ़ रही है। आज
1: किडनैप हुई दुआ, अपनी बेटी को बचाने पहुंची मन्नत। बच पाएगी दुआ।

0: टीवी के सीरियल मन्नत में। मन्नत काफी परेशान है क्योंकि उसकी बेटी दुआ को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन आखिरकार मन्नत उस जगह पहुंची गई जहां दुआ को किडनैप कर बांध कर रखा हुआ है। और देखिए कैसे वो इस गोडाउन में पहुंची है और अपनी बेटी दुआ को ढूंढ रही है। भाई मन्नत तो मर्दानी है, वो अपनी बेटी को बचा कर ही रहेगी। भाई ये फायरवर्क्स के गोडाउन में दुआ को छुपा कर रखा हुआ है, ऐसे में मन्नत ने भी लगाया तिकड़म और एक पटाखा जलाया ताकि दुआ को पता चल सके कि मन्नत यहाँ पर है। और देखिए कैसे वो शीशे का टुकड़ा भी दुआ के पास फेंक रही है ताकि दुआ अपनी रस्सी खोले और वहाँ से भाग जाए। और देखिए दुआ ने किया भी कुछ ऐसा ही। भाई पहले तो वो रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उसने अपने आप को छुड़वाया, रस्सी काटी और वहाँ से भाग निकली। ऐसे में जब दुआ भाग रही होती है तो एक गुंडा वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से देखिए कैसे गुंडे के हाथ पर काट कर दुआ वहाँ से 9-11 हो जाती है।
1: और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसे हमने यहाँ रखा है।
2: सर आप टेंशन मत लीजिए, कड़ी नजर इस पर मिली।
3: एक्चुअली मैं किडनैप हो गई हूँ, मैं रूम में सो रही थी, अंकल आते हैं और मुझे उठा के किडनैप करके ले जाते हैं। फिर यूवी भी चाहता है पर वो उसको धक्का देके मुझे वापस ले आते हैं इधर। फिर वो मुझे किडनैप करते हैं तो मम्मा को पता चलता है मेरा किडनैप हुआ है, तो वो वेयर हाउस पहुँचती है। वहाँ मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, बेहोश हूँ। फिर जैसे ही मेरा होश आता है तो मैं देखती हूँ कौन है, मेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। फिर तब तक मम्मा मुझे बोलती है, कांच देती है मुझे कांच। फिर मैं कांच को लेती हूँ, वो ऐसे पास करती है कांच को, ऐसे स्टंट मार के लेती हूँ और काट देती हूँ रस्सी और भाग जाती हूँ मम्मा के साथ।
0: भाई ऐसे में दुआ और मन्नत यहाँ से भाग तो गए हैं, लेकिन मन्नत को पता लगाना है कि इन सब के पीछे कौन है और वो ऐसा कर कर ही दम लेगी। अब देखना होगा कि कैसे धीरे धीरे मान्यता की बहन का खुलासा होगा। तो रही सीरियल की बात जिसमें कई सारे ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन बात करें बिहाइंड द सीन की तो यहाँ पर हो रहा है सेलिब्रेशन। पर सीरियल मन्नत के 500 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, ऐसे में जश्न मनाना तो बनता है। तो आज है मन्नत, धैर्य, मल्ला और बच्चे जो 500 एपिसोड का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, काट रहे हैं केक, एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं और इसी के साथ कर रहे हैं शेयर अपने हैप्पी मोमेंट्स। वैसे आज सेट पर बाकी की कास्ट मौजूद नहीं है, लेकिन जितने भी लोग मौजूद हैं वो कर रहे हैं सेलिब्रेशन।
4: तो सास बहू और बेटियां का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके ऑडियंस का। आप सब लोगों से इतना प्यार मिलता है, इतने सारे पोस्ट मिलते हैं, एडिट्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं। वी मे नॉट बी एबल टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू, बट इट्स ऑलवेज वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी। जो माँ बाप है ना उनको मालूम है, बच्चों को एक नाखून या नाक या कान अच्छा नहीं होता, उनको पूरा बच्चा ही अच्छा लगता है। सो एंटायर मन्नत इज ब्यूटीफुल, इट्स बिकॉज ऑफ दोज सीन्स मन्नत बिकम्स ब्यूटीफुल। एंड आई ऑलवेज से लाइक दैट, व्हेन यू वॉच अ फिल्म यू लाइक दैट फिल्म बिकॉज ऑफ 2, 3, 4, 5 सीन्स इज वॉट मेक्स द यू नो फिल्म लुक्स ब्यूटीफुल और योर फेवरेट। एंड आई थिंक मन्नत कैन टेल यू बेटर।
5: मेरे हिसाब से धैर्य जी बिल्कुल, मतलब मन्नत सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हमारा एक बेबी है एंड हर सीन उसको उसकी कहानी को एक स्टेप आगे, दैट इज़ हाउ मन्नत की कहानी है अभी जहाँ है। एंड एक भी सीन आप हटाएंगे तो वो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, तो एवरी सीन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विद डन विद सो मच लव। एंड आई थिंक इट्स अ बेटर क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस के कौन सा सीन उनके लिए सबसे फेवरेट है। आई एम श्योर वी इन्जॉय डूइंग ऑल द सीन्स, बहुत मजे आते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू नाउ। डेफिनेटली समटाइम्स इट्स लाइक आपको लगता है कि यू नो द न्यूनेस एंड द फ्रेशनेस जो लकीली अच्छी मुझे अच्छा लगता है पर्सनली कि थोड़ा टाइम का लीप लेते हैं इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग द सेम स्टोरी.
6: तो देखा आपने एंटरटेनमेंट की खुशबू से आज महका दिया ना हमने एंटरटेनमेंट का ये आंगन. लेकिन क्या करें अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का. तो मुलाकात होगी आपसे कल जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
8: है. Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
13: गुड न्यूज टुडे.
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे. मुझे तकरीबन

0: नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: हिमाचल के लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी, प्रकृति ने बिछा दी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट। कटरा में फंसे तीर्थयात्रियों के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू की मुफ्त लंगर सेवा, श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जा रही है मदद, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। खराब मौसम के बावजूद चार धाम में श्रद्धालुओं का जोश हाई, फिर से केदारनाथ यात्रा शुरू, बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों की लगी लंबी कतारें। असम में बाढ़ प्रभावित जिलों में भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन जल राहत, 3 प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से राहत बचाव कार्य किया शुरू, जवानों ने 150 से अधिक लोगों को बचाया। रजौरी में उफनते नाले में फंसे लोगों के लिए सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 13 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू, बचाए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग। पुरी में बावड़ा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण, तकनीकी जांच के साथ ही सभी आवश्यक मरम्मत और सफाई का काम जारी, 24 जुलाई को गुंडीचा मंदिर से रवाना होंगे भगवान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, बारिश ने हवा की गुणवत्ता में किया सुधार, उमस और गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजौरी में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई। घाटी में हुई बारिश से स्थानीय किसान हुए खुश, हालांकि कुछ जगहों पर यातायात हुआ प्रभावित। डोडा में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश ने निखारा डोडा का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ और वादियां बारिश के बाद और भी मनमोहक नजर आने लगी। लगातार बारिश से प्रकृति ने ओढ़ी हरियाली की चादर, पूरे इलाके में बड़ा ठंड का एहसास। बारिश का लोगों ने लिया जमकर आनंद, बारिश की मेहरबानी से खिल उठा डोडा। ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम को बनाया खुशनुमा, प्राकृतिक नजारों की खूबसूरती हो गई दोगुनी। श्रीनगर की डल झील पर पर्यटकों की बड़ी आमद, शिकारा राइड के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। बढ़ते टूरिस्ट से होटल और शिकारा कारोबारियों की कमाई भी पकड़ रही है रफ्तार, सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। डल झील बनी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, शिकारा राइड के बढ़ते क्रेज से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बड़ा सहारा। डल झील की वादियों में लौट आई चहल पहल, होटल बुकिंग में तेजी, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। श्रीनगर की खूबसूरती सैलानियों को कर रही है अपनी ओर आकर्षित, घाटी में पर्यटन सीजन ने पकड़ी रफ्तार। बद्रीनाथ में बारिश के बीच भी आस्था बरकरार, मॉनसून अलर्ट के बावजूद श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह कायम। बारिश के बीच भी यात्रा सुचारू, भक्तों को आसानी से हो रहे हैं दर्शन, रात की बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है, अलकनंदा नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी, श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील। बद्रीनाथ धाम में मिली सुविधाओं से श्रद्धालु दिखे संतुष्ट, फिलहाल बद्रीनाथ यात्रा मार्ग सुरक्षित और सामान्य। सोमवार को दिन भर स्थगित रही केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू, आज सुबह सोन प्रयाग से लगभग 1000 भक्तों को धाम भेजा गया।

0: हिमाचल के लाहौल स्पीति में ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी, जुलाई में स्पीति में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। लोग बर्फ की मोटी परत और ठंडी हवाओं के बीच नजारा कैद करते नजर आए, गर्मी के मौसम में बर्फ की सफेद चादर ने लोगों को किया हैरान। बर्फ से ढकी पहाड़ियां बन गई आकर्षण का मुख्य केंद्र, स्पीति में मौसम का अनोखा नजारा नजर आया। ऊंची चोटियों पे बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया, हालांकि अचानक बदले मौसम ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाई। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का ये बदलाव है आम, धूप के बीच अचानक गिरी बर्फ। राजौरी में सेना का साहस, तेज बहाव वाले नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 61 राष्ट्र राइफल्स के जवानों ने रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाई। जान की परवाह किए बिना जवानों ने उफनते नाले में दिखाया जज्बा, बचाए गए लोगों और स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना को अपना असली जीवन रक्षक बताया। मेजर मोहित बिष्ट की अगुवाई में चले रेस्क्यू ऑपरेशन ने बड़ा हादसा होने से टाल दिया, अचानक आई बाढ़ की वजह से फंस गए थे 13 लोग। नवसारी जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति। जल स्तर बढ़ने से लो लेवल ब्रिज पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिसके चलते यातायात बंद कर दिया गया। केदारनाथ हाईवे पे सोनप्रयाग के निकट मुकटिया स्लाइडिंग जोन में फंसी महिला यात्री के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, बारिश के बीच महिला का किया गया सफल रेस्क्यू। देश के कई राज्यों में मॉनसून हुआ एक्टिव, मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद, बारिश से प्रभावित 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना, असम और मेघालय के लिए भी मौसम का रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी, पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट किया गया जारी, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग में हो सकती है भारी बारिश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 4 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों और बाजारों तक पानी भर गया, अस्पताल परिसर में भी जलभराव होने से मरीज प्रभावित हुए। भारी बारिश के कारण असम के कई जिलों में भरा बाढ़ का पानी, 16 जिलों के 3,62,000 लोग हुए से प्रभावित, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम लगातार जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के चलते शहर की कई सड़कें अचानक पानी में डूब गईं, सिटी मजिस्ट्रेट ने जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तमिलनाडु के वेल्लोर में जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से अचानक निचले इलाकों में आया मलबा, प्रशासन और राहत टीम अलर्ट पर। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन टनल में करीब 17 मजदूर फंसे, समरडो मामरिंग टनल में बचाव अभियान जारी। मूसलाधार बारिश के बाद टिहरी जिले में चारधाम यात्रा मार्ग पर आई चट्टाने और मलबा, प्रशासन ने कई घंटों में मशीनों के जरिए मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। लैंडस्लाइड के चलते देहरादून मसूरी हाईवे को हुआ नुकसान, प्रशासन ने हाईवे को ट्रैफिक के लिए किया बंद। पटना में बारिश की वजह से बेकाबू हुई कार नाले में गिरी, हादसे में बाल बाल बची ड्राइवर की जान। अमेठी के सुनील के लिए सीएम विवेकाधीन कोष बना सहारा, मुफ्त में हुआ उनका इलाज। आर्थिक तंगी नहीं बनी इलाज में रुकावट, सरकारी योजना से मिली नई जिंदगी। सरकारी मदद से बची जमीन बेचने की नौबत, परिवार ने जताया मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का आभार। वैष्णो देवी यात्रा मौसम खराब होने से फिलहाल रुकी, कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर की व्यवस्था। कटरा में फंसे श्रद्धालुओं की मदद के लिए श्राइन बोर्ड पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे, जिला प्रशासन के साथ मिलकर हालात पे 24 घंटे रखी जा रही है नजर। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल के अंतिम चरण में पहुंची तैयारियां, कल से शुरू होगा 7 दिवसीय खर्ची महोत्सव। मंदिर में रंगाई पुताई और सजावट का काम लगातार तेज, श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां पूरी। उत्सव के दौरान पुलिस और प्रशासन अलर्ट, भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था। मेले में संस्कृति की दिखेगी झलक, 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और पारंपरिक आयोजनों से सजेगा खर्ची मेला। चतुर्दश देवता मंदिर विशेष तौर पर सजाया गया, हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Nora Jones, Daniel Caesar. Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: हिमाचल के लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी, प्रकृति ने बिछा दी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट। कटरा में फंसे तीर्थयात्रियों के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू की मुफ्त लंगर सेवा, श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जा रही है हर संभव मदद, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह। खराब मौसम के बावजूद चार धाम में श्रद्धालुओं का जोश हाई, फिर से केदारनाथ यात्रा शुरू, बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों की लगी लंबी कतारें। असम में बाढ़ प्रभावित जिलों में भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन जल राहत, 3 प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से राहत बचाव कार्य किया शुरू, जवानों ने 150 से अधिक लोगों को बचाया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: जय जय जय जय।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। आस्था कहते हैं कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भक्त जाकर प्रसाद तो चढ़ाते हैं लेकिन वहां से प्रसाद का अंश मात्र भी साथ लेकर नहीं आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मंदिर में दर्शन के बाद हम ईश्वर की मूर्ति का दीदार पलटकर भी करते हैं, भक्ति भाव से ईश्वर को एक बार फिर से निहारते हैं, पर यहां हनुमान जी के मंदिर में उन्हें पलटकर क्यों नहीं देखा जाता? आज हम आपको दर्शन करवाएंगे हनुमान जी के ऐसे ही अनोखे मंदिर की, जहां की मान्यताएं दूसरे मंदिरों से काफी अलग है।

0: कैसा मंदिर जहाँ मेहंदीपुर बालाजी की लगती है अदालत।
1: चरणों में बैठे हनुमान।
0: एक ऐसा अद्भुत धाम जहाँ बंद तालों में कैद हो जाती है पूरी ऊर्जा। जहाँ हर आमो खास संकटों से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं वो है मेहंदीपुर बालाजी का सिद्ध दरबार। जहाँ दावा किया जाता है कि इस धाम ने उठाया है भक्तों की पीड़ा का भार।
2: बाबा की तो कृपा ऐसी है कि लोगों का संकट ही काट देते हैं बाबा।
3: और यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स हैं जो हमें यहाँ पे आके सारी चीजें मनोकामना पूरी होती हैं।
0: जिनके चमत्कारों से पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि मान्यता है यहाँ संकट से घिरे हर भक्त को मिलता है समाधान।
4: यही बालाजी की कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। कलयुग के राजा हैं ये, और कलयुग में सबसे ज्यादा अगर कि चलता है तो बालाजी का ही चलता है।
5: सब नेगेटिव एनर्जी क्या ये समझ लो कि आपको सुकून, जीवन में सुकून मिल जाता है।
0: दावा किया जाता है कि हनुमान जी के इस धाम में भक्त शारीरिक और मानसिक बाधाओं से घिरे आते हैं और मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से हंसते मुस्कुराते लौट जाते हैं।
6: आज तक तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, कहीं गए यहाँ से सही होकर, जो रोड पे पड़े हुए वो भी सही होकर के गए।
7: बाबा हमको बहुत शक्ति दिए, हम बच्चे को कंट्रोल में कर ले, नहीं दबाव का काम नहीं कर रहा था।
0: माना जाता है कि ये दिव्य स्थान का प्रताप है जो भक्तों की पीड़ाओं का अंत सदियों से करता आ रहा है। लेकिन हैरानी तो इस मंदिर की परंपराओं और उसके पालन से जुड़ी है। आखिर ये कैसी मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन के बाद उसे मुड़कर नहीं देखा जाता।
8: जो बोलते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए या फिर प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ये भी सब गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
3: यहाँ पे किसी को कुछ किया कराया हो कुछ है, यहाँ पे सब आगे सब बाधाएं विघ्न दूर हो जाती हैं।
0: आखिर ये कैसी परंपराएं हैं जो मंदिर के प्रसाद समेत वहाँ की निशानियों को घर लाने पर प्रतिबंध लगाती है।
9: प्रसाद कहते हैं नहीं ले जाना चाहिए, हम भी नहीं ले जाते, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए, हम नहीं देखते, ऐसी मान्यता है यहाँ।
4: दूसरी बात, यहाँ पर पीछे मुड़ के न देखना, प्रसाद न खाना, और तरह तरह की यहाँ की भ्रांतियाँ फैलाएगी।
0: मान्यता है कि हनुमान जी को समर्पित मंदिर में मेहंदीपुर बालाजी के साथ ही भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार की कृपा जनमानस के भरोसे का पर्याय बन चुकी है। हम किसी भी प्रकार की बीमारी में देवस्थल के दर्शन को वरीयता नहीं देते हैं। इसके लिए तो आपके किसी डॉक्टर या मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन ये आस्था ही तो है जो कहती है कि यहाँ आकर मानसिक बाधाओं से पार पाया जा सकता है, मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से सेहतमंद हुआ जा सकता है। हम भी इस अलौकिक कहे जा रहे मेहंदीपुर बालाजी सरकार मंदिर के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए हम पहुंच गए देश की राजधानी दिल्ली से करीब 240 किलोमीटर का सफर तय करके राजस्थान के दौसा में बने मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में, जहां से जुड़ी अद्भुत मान्यताओं ने इस मंदिर को पूरी दुनिया में विख्यात कर रखा है।
10: कि हनुमान जी महाराज का जो यह रूप है मेहंदीपुर बालाजी में, जो यह स्वरूप है, यह नकारात्मक ऊर्जाओं को मुक्ति प्रदान करने का एक जगह है। यदि आप इनका दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति कितना भी चाहेगा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग करना, वह नहीं कर पाएगा और आप सुरक्षित होंगे।
0: माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मारुति ने बचपन से ही लीलाओं का आरंभ कर दिया था, तभी तो वो सूर्य को फल समझकर निगलने चले थे। श्री रामायण कहती है कि श्री राम पर जब भी कोई संकट आया तो उस संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान जी ने। माना जाता है कि यहाँ मेहंदीपुर बालाजी में भी दुखियारों के दुखों का अंत बालाजी सरकार की कृपा से हो जाता है।
10: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी महाराज बाल रूप में यहां प्रकट होकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, उससे छुटकारा प्रदान करते हैं।
0: माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी की उपासना परम कल्याणकारी है, तभी तो देश के हनुमान मंदिरों में मंगलवार और शनिवार को भक्तों का हुजूम अपने आराध्य के दरबार में अर्जी लगाता है। मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी में भी हनुमान जी की ही सत्ता चलती है और जिसने भी यहाँ आकर बालाजी सरकार का आशीर्वाद पा लिया तो उसकी कामना का भार स्वयं हनुमान जी उठाते हैं। आगे हम इस धाम से जुड़ी और भी चमत्कारी कही जा रही मान्यताएं आपको बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
11: राजस्थान के दौसा में बने इस मंदिर में भक्तों की अगाध आस्था है जो कई मान्यताओं के साथ ही रहस्यों से भरा हुआ है। हनुमान जी के इस मंदिर में भक्त सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते बल्कि उन मान्यताओं का भी पालन करते हैं जो यहाँ पर सदियों से चली आ रही हैं, जिन्हें देखकर आप दंग हो जाएंगे और सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है।

0: महावीर वो मंगलकारी हैं तो साथ में संकटहारी हैं। वो सबसे बड़े राम भक्त हैं तो साथ ही अष्ट सिद्धियां और नौ निधियों को ग्रहण करने वाले हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम को जितना पावन और दिव्य माना जाता है उतना ही कामना पूर्ति का सिद्ध स्थान माना जाता है। माना जाता है कि हर मंदिर की अपनी परंपरा होती है, लेकिन इस मंदिर में भगवान के दर्शन से पहले नियमों के दर्शन होते हैं। दावा किया जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी का ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में बना है। दो पहाड़ियों के बीच में बना होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम भी कहते हैं।
1: दो पहाड़ों के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ पर हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हुए हैं, प्रेतराज सरकार भैरव बाबा के साथ। नियमित रूप से इनका दर्शन करने से ऐसी मान्यता है कि किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर सकती।
0: माना जाता है कि पूरे संसार में हनुमान जी की ऐसी दूसरी प्रतिमा नहीं मिलती जो इस मंदिर में मिलती है। मान्यता है कि इस धाम में केवल मेहंदीपुर बालाजी के ही दर्शन नहीं होते बल्कि और भी कई देवों के अनिवार्य दर्शन की परंपरा है।
1: मेहंदीपुर बालाजी में तीन मूर्तियां एक साथ प्रकट हुई थी, जिसमें स्वयं हनुमान जी बालाजी महाराज के रूप में प्रकट हुए। दूसरी मूर्ति जो प्रकट हुई वो भैरवनाथ के भैरव बाबा के रूप में प्रकट हुई। तीसरी मूर्ति प्रेतराज सरकार के रूप में।
0: मान्यता कहती है कि ये बाबा की कचहरी है क्योंकि यहाँ कोतवाल भी हैं तो साथ में प्रेतराज सरकार और दीवान सरकार भी हैं। चलिए आपको मंदिर से जुड़ी परंपराओं के बारे में बताते हैं। भक्तों को बालाजी का प्रसाद ले जाना मना है। मंदिर में दर्शन से पहले लहसुन और प्याज का त्याग करना पड़ता है, साथ ही मांसाहार और मदिरा भी छोड़ना होता है। दरबार में प्रवेश से पहले इत्र और परफ्यूम न लगाएं। दर्शन के बाद भी 40 दिनों तक सात्विकता का पालन करें। मंदिर में पीड़ितों को छूना या बातचीत करना मना है। बालाजी के साथ ही प्रीतराज सरकार और भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है। सबसे जरूरी बात, मंदिर से निकलते समय पीछे मुड़कर देखना मना है। अद्भुत है मेहंदीपुर बालाजी की छवि। यहाँ बालाजी दरबार के सामने ही प्रभु श्री राम और माता सीता का दरबार है और यहाँ मारुति अपने प्रभु के सानिध्य में ही वास करते हैं। यही कारण है कि बालाजी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और यहाँ आने वाले भक्तों की विषम से विषम परेशानियों को हर लेते हैं। माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति स्वयं भू है। मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जो भी सच्चे मन और भाव से अर्जी लगाता है उसके मन्नत अवश्य ही पूर्ण होती है। कहते हैं कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता।
2: 100% मनोकामना पूरी होती है। जब से आए हैं, जब से बाबा की इतनी कृपा हुई हमारे ऊपर कि हम बस वर्णन नहीं कर सकते।
3: घर पे मेरे पे टहलने भी नहीं जा सकता और यहाँ पे मैं दौड़ दौड़ के चलती हूँ।
0: दावा किया जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में हर प्रकार की समस्या का समाधान मिल जाता है, चाहे वो परेशानी मानसिक हो या किसी तंत्र मंत्र की बाधा हो। लोगों का दावा है कि उनकी सभी परेशानियों का अंत मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से हो जाता है।
4: मेहंदीपुर धाम ऐसा धाम है जो कष्टों को निवारण करता है, सुखों को प्रदान करता है।
5: जैसे अर्जी लगाते हैं, अर्जी लगा के फिर बालाजी महाराज उनको ठीक कर देते हैं। अर्जी का प्रसाद लगता है, जिनको कोई दिक्कत है परेशानी है फिर बालाजी महाराज उनको ऊपर कृपा कर देते हैं, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं।
0: हम एक बार फिर कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की बीमारी में देव दर्शन की वकालत नहीं करते। आस्था हमारे लिए भी सर्वोपरि है। किसी भी प्रकार की बीमारी में आपको मेडिकल साइंस का सहारा लेना चाहिए, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में भक्तों की आस्था सारे तर्कों पर भारी पड़ती दिखाई देती है।
1: इन चार जगहों पर पेशी होती है। पेशी का अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी की बुरी नजर है, कोई मंत्र से जप करा करके सम्मोहन क्रिया कराया हुआ है, जो वहां पर जाते हैं और जिनके साथ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन लोगों ने अपने अनुभव बताए, वह अपने आप ही भगवान के निकट, हनुमान जी महाराज के निकट खींचा चला आता है और जब उनके निकट पहुंच जाता है तो उसे शांति प्राप्त होती है, स्थिरता मिलती है।
0: मेहंदीपुर बालाजी धाम में कदम रखते ही भक्त सब कुछ भूलकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। बालाजी के प्रताप से उनके दरबार में श्रद्धा से शीश नवाते हैं और अपने संकटों से मुक्ति पा जाते हैं।
6: कोई इसे हनुमान जी का सिद्ध दरबार कहता है तो कोई इसे लोगों की आस्था और विश्वास से जोड़ता है, लेकिन अद्भुत है यहाँ की परंपराएं, हतप्रभ करने वाले हैं यहाँ आने वाले भक्तों के अनुभव, और इंसानी सोच से परे है वो अनुभव जिससे यहाँ आने वाले भक्त भी दंग हो

0: आस्था कहती है कि भक्तों का कल्याण करने के लिए ही मेहंदीपुर बालाजी धरती पर विराजमान है। यहाँ विश्वास का संसार तर्क से नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था से चलता है। माना जाता है कि यहाँ आठों पहर की प्रार्थनाएं गूंजती रहती हैं और कृपा रूपी उम्मीद की लौ जलती रहती है। दावा किया जाता है कि जो अपनी पीड़ा से ना उम्मीद हो चुके होते हैं वो मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। दावा किया जाता है कि अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो एक बार आपको यहाँ दरबार में हाजिरी अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ बाल हनुमान के बारे में मान्यता है कि वो मनचाही मुराद पूर्ण करते हैं।
1: और हमें कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था तो हम बाबा के दर्शन करने आते हैं तो हमें बहुत ही यहाँ पे सुकून मिलता है आके।
2: ऐसा जगह है कि आपका हर एक एक चीज जो काम नहीं बनेगा यहाँ पे बन जाएगा।
3: और इसी आस्था के लिए लोग बाग यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ संकट कटते लोगों ने अपने प्रत्यक्ष देखा है और कटते भी हैं।
0: माना जाता है कि जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी संकटों से जूझता ही है, चाहे वो संकट मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक। कहते हैं कि यहाँ बालाजी महाराज हर संकट का समाधान करते हैं। विज्ञान कहता है कि ऊपरी बाधा जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन यहाँ आने वाले अनेक श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ राहत मिली, मानसिक शांति मिली।
4: हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील होता है, मतलब हर जगह पॉजिटिव वाइब्स है
5: कि पीछे मुड़के मत देखना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ बाबा साथ है तो सब साथ है जी।
3: यहाँ से संकट भी कट रहे हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है, जब भी तो इतनी तादाद में भीड़ उमड़ रही है।
0: मंदिर की आभा का साक्षात्कार कर चुके भक्त बताते हैं कि बालाजी के दर्शन मात्र से मन प्रसन्न और शांत हो जाता है, अंतर मन को अपार सुख की अनुभूति होती है। माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने से पहले एक खास रस्म का पालन करना होता है। जानकार बताते हैं कि अगर आप भी इस मंदिर में अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको तन और मन में सात्विकता के साथ ही बालाजी के प्रति श्रद्धा भाव रखकर ही यहां आना होगा, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा।
6: मेहंदीपुर बालाजी जाने से 21 दिन पूर्व पवित्रता का ध्यान रखना है, सात्विकता का ध्यान रखना है। पूर्ण रूप से सात्विक होकर के हनुमान जी महाराज के दरबार में आप पहुंचिए, वहां पर अर्जी लगाइए। अर्जी लगाने का अर्थ है कि आप कुछ लड्डुओं का प्रसाद होता है उसे आप अंदर लेकर जाइए और भगवान जी से उस निमित्त अपने जीवन के कल्याण के निमित्त प्रार्थना करिए। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, यही प्रक्रिया भैरव जी के पास होती है, यही प्रक्रिया प्रेतराज सरकार के पास होती है, यही प्रक्रिया दीवान जी सरकार के पास होती है।
0: बालाजी महाराज के सामने हो तो कीर्तन भजन में पूरे मन से शामिल हो, दूसरे यात्रियों और श्रद्धालुओं के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बालाजी के भजन या जयकारे के बीच व्यर्थ की बातचीत से बचें, ईश्वर में मन लगाएं। श्री बालाजी का प्रसाद श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। बालाजी के साथ भैरव और प्रेत महाराज के भी दर्शन करने चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी के धाम में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस मंदिर से कई अद्भुत परंपराएं जुड़ी हैं। मान्यताएं कहती हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम वहां पूरी ऊर्जा से मुक्ति के लिए जाते हैं। माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से उस नकारात्मकता का अंत नहीं होता, इसलिए माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद को भी अपने साथ घर नहीं लाया जाता।
6: तो ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कुछ प्रसाद के साथ कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां या प्रेत बाधा उस प्रसाद के साथ घर पहुंच जाती है, क्योंकि वो खाने का पदार्थ होता है, पीने का पदार्थ होता है, तो उस पर वो लग करके साथ में आ जाएंगे और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जीवन में फिर से बढ़ता है, या फिर जिससे हम खिलाएंगे उसके अंदर भी थोड़ी सी नकारात्मकता आ सकती है, ऐसा मान्यता है।
0: दावा किया जाता है कि मंदिर में श्री राम और जानकी को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे आप घर ले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में सदियों से चली आ रही मान्यताएं इतनी प्रबल हैं कि भक्त मंदिर की कोई भी सामग्री घर लेकर नहीं जाते। श्री राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति जगजाहिर है। अपनी अतुल्य भक्ति के कारण ही बजरंग बली को भक्त शिरोमणि का स्थान मिला है, इसलिए तो जो भी मेहंदीपुर बालाजी की कृपा पाना चाहता है उसे श्री राम नाम का सुमिरन अवश्य करना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी को लोग अवतार मानते हैं और कहते हैं कि संकट भी उसी के कटते हैं जिसके मन में बालाजी महाराज के प्रति अपार श्रद्धा है। आगे हम आपको मंदिर से जुड़े कुछ और रहस्यों के बारे में बताएंगे।
7: यहाँ लोग सिर्फ अपनी प्रार्थना लेकर नहीं आते बल्कि एक उम्मीद लेकर आते हैं कि यहाँ आकर उनकी सभी बाधाओं का निवारण हो जाएगा। हमने भी इस चमत्कारी कहे जा रहे मंदिर में इसकी पड़ताल की जो लोग आस्था से तो जुड़े हैं, लेकिन हमें ये परंपराएं हैरान कर रही थी। कहीं तालों की पहेली थी तो कहीं हथेलियों के निशान से जुड़ी आस्था थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आखिर यहाँ पीछे पलट कर देखना क्यों मना है।

0: माना जाता है कि सदियों पुराना यह धाम केवल रहस्य का बिंदु नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ कोई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना लेकर पहुँचता है तो नौकरी मिल जाने की कामना में दौड़ा चला आता है, तो कोई कारोबार में उन्नति होने का अरमान लिए यहाँ हाजिरी लगाता है। चलिए अब आपको इस मंदिर से जुड़ा एक और परिवार का अनुभव बताते हैं।
1: 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता था शारीरिक कष्ट के कारण। वह घंटों लाइन में लगकर दर्शन करने लगा और फिर वो बताए कि आज 15 वर्षों का समय हो गया है, हम नियमित परिवार के साथ यहां आते हैं और हमारी अच्छी प्रगति हुई है। अब कारण क्या था और निवारण कैसे हुआ ये प्रभु जाने, हनुमान जी महाराज जाने।
0: अद्भुत है मंदिर की मान्यताएं। जब हम मंदिर में पड़ताल कर रहे थे तो हमारी नजर यहाँ लटके हुए हजारों तालों पर पड़ी। आप भी सुनिए आखिर इन तालों में कौन सा रहस्य छिपा है।
2: ये ताला क्या है, जैसे अपने कोई कष्ट है परेशानी उसको यही कैद करने के लिए बांधते हैं कि जो हमारी दिक्कत है वो यही रह जाए, हमारे साथ हमारे घर पे नहीं जाए। तो ऐसी मतलब मान्यता है कि ताला लगाने से हमारी दिक्कत यही कैद हो जाती है।
0: श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जब भी किसी भक्त को मंदिर में बालाजी सरकार की कृपा से उसकी समस्या का निवारण हो जाता है तो वो यहाँ प्रतीक स्वरूप में एक ताला लटकाकर उसे चाबी से बंद कर देता है। ऐसा माना जाता है कि उसकी परेशानी सदा के लिए यहीं कैद होकर रहेगी और दोबारा वो परेशानी उन्हें परेशान नहीं करती है।
3: मेरे को यहाँ आते आते 20 साल हो गए करीब। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, 6 महीने इलाज कराया मैंने कम से कम 5-6 डॉक्टर से, अच्छे से, पर मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। अब बिल्कुल स्वस्थ है, 8 बार आ गया मैं यहाँ।
0: जब तक हम तालों की पहेलियों की मान्यता को समझ पाते हमारे सामने थी हथेलियों के निशान की परंपरा। आखिर दीवार पर इतने सारे हाथों के निशान बनाने के पीछे कौन सा राज छिपा था। दावा किया जाता है कि ये उन श्रद्धालुओं के निशान हैं जो संकटों से मुक्ति पा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो मंदिर के दर्शन करने के बाद उसे निहारने से लेकर जुड़ा था। दावा किया जा रहा था कि यहाँ मंदिर से निकलने के बाद उसे मुड़कर नहीं देखा जाता। कुछ भक्तों का मानना था कि ये सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, बल्कि कुछ लोगों का मानना था कि ये सब अफवाहें हैं। आखिर ऐसा क्यों है वो भी आपको भक्तों की जुबानी सुना देते हैं।
4: ये अफवाह है कि पीछे मुड़के नहीं देखना, प्रसाद नहीं खाना, जो आप अपना प्रसाद है वो आप ही ग्रहण करना चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पर बहुत चमत्कार देखे हैं, बालाजी की बहुत शक्ति है हमारे में।
5: जो लोग ये कहते हैं मेहंदीपुर जाके ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, ये सब बेकार की बात है।
0: भक्तों का मानना था कि हर सुनी सुनाई बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए, लेकिन आस्था का सम्मान होना चाहिए। स्थानीय लोग बताते हैं कि सारे नियम परेशान लोगों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए ये मंदिर आम मंदिरों की तरह ही है। आप भी सुनिए।
2: तो ये क्या है, जिनको कोई दिक्कत है परेशानी है उनके लिए नियम है, बाकी आम आदमी कोई दर्शन करने आता है वो प्रसाद भी ले जाते हैं और खूब चले जाते हैं आराम से। और जिनको कोई दिक्कत परेशानी है उनको यहाँ से जाने के बाद जैसे नियम करने पड़ते हैं।
6: ये सिर्फ अफवाहें हैं लोगों की, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने से घर ले जाने से कुछ फायदा ही मिलता है, ना कि कोई नुकसान।
0: तो देखा अपने प्रसाद को लेकर भी तरह तरह की बातें लोग कहते हैं। लोगों का मानना है कि ये सिर्फ भ्रांतियां हैं, इसमें नाम मात्र की भी सच्चाई नहीं है।
7: जैसे लोगों की मान्यताएं है कि भाई हाँ यहाँ पे प्रसाद लेके नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपने आराम से प्रसाद लेके जा सकते, इसलिए इस टाइप की कोई मान्यता पे विश्वास ना करें आप।
8: बालाजी महाराज के यहाँ प्रसाद चढ़ाओ, खाओ, बांटो, घर ले जाओ, कुछ भी करो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रसाद नहीं ले जाते, ये तो लोगों ने एक अफवाह बना रखी।
0: मंदिर में हमारे सामने भक्तों की आस्था साफ दिखाई दे रही थी। कहीं मंदिर पर बंद तालों की भरमार थी तो कहीं दीवारों पर हथेलियों की छाप, तो इसी मंदिर से जुड़ी थी पीछे ना मुड़ने की परंपरा। जैसे जैसे हम इस मंदिर की पड़ताल कर रहे थे हमारे सामने भक्तों की आस्था टकरा रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये दावा कर रहे थे कि इस मंदिर से अफवाहों को जोड़ दिया गया है, इसका किसी अनुष्ठ से कोई सरोकार नहीं है। आस्था कहती है कि जहाँ हनुमान जी का वास है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रह सकती। कहा भी गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और मेहंदीपुर बालाजी को हनुमान जी का ही स्वरूप माना जाता है, जो यहाँ आने वाले भक्तों और पीड़ितों का सदियों से उत्थान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इंस्ट्रे।
9: तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
11: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
12: To right field, and it will leave.
11: From the first pitch of the season to the stretch run,
12: and that's the ball game.
11: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: यूरोप में इन दिनों गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। ग्रीस में मौसम ने ऐसा तेवर दिखाया है कि पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और देखिए, हालात ऐसे हैं कि लोग धूप से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं ग्रीस में आने वाले सैलानियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, प्रशासन इसकी भी व्यवस्था कर रहा है।
13: ये धुंध नहीं बल्कि गर्मी से राहत की उम्मीद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सूरज की तपश बढ़ी है, ऐसे में हर शख्स ठंडी हवा, पानी की फुहार और छांव की तलाश में नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स में मिस्ट फैन चल रहे हैं, तो शहर के फव्वारे लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गए हैं। ग्रीस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, ऐसे में कोई पानी की बोतल से खुद को हाइड्रेट रख रहा है, तो कोई बैग और छाते को ही धूप से बचने की ढाल बना चुका है। गर्म हवाओं के बीच भी ग्रीस का इतिहास जानने आए सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि गर्मी चाहे जितनी हो, ग्रीस के एथेंस की रौनक अभी भी बरकरार है। रेस्टोरेंट से लेकर चौक चौराहों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। पर्यटकों को गर्मी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब जरा इस रेस्टोरेंट का नजारा देखिए, किस कदर यहाँ मिस्ट फैन लगातार लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। इसलिए तो दुनिया भर से आए पर्यटक गर्मी में भी एथेंस की प्राचीन विरासत का दीदार कर रहे हैं। रोमन अगोरा जैसी प्राचीन धरोहरों पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी पेड़ों की छांव और छातों के नीचे अपना काम मुस्तैदी से करते दिखे। ग्रीस में हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर में एयर कंडीशन राहत केंद्र खोले गए हैं, इसके साथ ही लोगों को हाइड्रेटेड रहने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें

0: पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: टीआईटी भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: असम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। हिमाचल के लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी, प्रकृति ने बिछा दी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट। पुरी की सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला, गुंडीचा मंदिर में भक्त कर रहे महाप्रभु के दर्शन, बाहुड़ा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण। खराब मौसम के चलते कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू की मुफ्त लंगर सेवा, तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह। स्नो वर्ल्ड में 10 पेंगुइन्स की एंट्री, पर्यटकों के लिए पेंगुइन परेड की शुरुआत, गर्मी के बीच खास तरह से डिजाइन किया गया पार्क।

मिशन डीयू एडमिशन, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। आज हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे। आज अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन की रेस में हैं, अगर आपको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना मनपसंद कॉलेज और कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो ये घंटा आपके लिए बहुत अहम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दाखिले की प्रक्रिया जारी है। अब तक लाखों छात्र छात्राएं अपने सपनों को साकार करने की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। किसी की चाहत देश के नामी कॉलेज में पढ़ने की है, तो कोई अपने पसंदीदा कोर्स के जरिए बेहतर भविष्य और मजबूत करियर की नींव रखना चाह रहा है। और यही वजह है कि हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की जबरदस्त होड़ देखने को मिलती है। इस बार भी सीयूजी यूजी 2026 के नतीजों के बाद से एडमिशन प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली। तो कैसे मिलेगा अपने पसंदीदा कोर्स और कॉलेज में एडमिशन, कैसे पूरी करें दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक, हर जानकारी आज आपको गुड न्यूज टुडे पर मिलेगी। तो आज बात दिल्ली यूनिवर्सिटी दाखिले की दौड़ की होगी। इस साल भी यहां छात्रों में दाखिले के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। फर्स्ट फेज में फीस भुगतान का आखिरी दिन है। आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि पहली कट ऑफ आ चुकी है और उसी पहली कट ऑफ का फीस भुगतान का आज आखिरी दिन है। समय क्या है नोट कर लीजिए, आज रात 11:59 तक आपको अपनी फीस जमा कर देनी है। फिर उसके बाद 25 जुलाई को दूसरी कट ऑफ लिस्ट आएगी और ऐसे में सीट स्वीकार करने की तारीख जो सेकंड लिस्ट होगी उसमें 25 और 26 जुलाई रखी गई है। 16 जुलाई को सीट अलॉटमेंट की पहली लिस्ट आ चुकी है। यूजी कोर्सेज के लिए 200,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसमें 71,000 से ज्यादा सीटें हैं। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया हो रही है। हालांकि उसके बारे में तमाम डिटेल्स वहां भी हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप फीस भरने जा भी रहे हैं या कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ आज अगर आप चाहें तो अपग्रेड भी कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को, तो ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं इस पोर्टल पर, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल पर, वो जरूर पढ़ लें और उसके बाद ही आगे बढ़े। इस बार आपको ये भी बता दें कि 73 यूजी कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन हो रहा है। खेलकूद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के दाखिले के लिए हर बार की तरह 5% की छूट है, यानी कि 5% एक्स्ट्रा बच्चों को वो फायदा भी होगा। सीयूटी यूजी 2026 के स्कोर के आधार पर दाखिला हो रहा है। तीन चरणों में पूरी एडमिशन प्रक्रिया

0: प्रक्रिया चलती है। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन हुआ था, दूसरे चरण में कोर्स और कॉलेज का चयन और फिर तीसरे चरण में सीट अलॉटमेंट का पूरा स्केड्यूल और फिर 28 जुलाई से कॉलेज कक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी। लिहाजा अगले एक हफ्ते में मिशन एडमिशन को लेकर राजधानी में बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिलेगी। तो एडमिशन प्रोसेस में हालांकि यहां पर यह पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा सामने आ रहा है और इसी पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को कड़ी चेतावनी दे दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगर किसी भी उम्मीदवार ने आवेदन के दौरान एआई से तैयार या एडिटेड डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो फिर उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है। इस बार ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, इसलिए आप भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एआई से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप भेजते हैं, सबसे पहली बात तो कॉलेज उसको वेरीफाई करेगा और अगर वेरीफाई करने के बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट एआई से बना हुआ निकला तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो यहां पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, इन मामलों में फीस भी वापस नहीं की जाएगी, ये क्लॉज भी जोड़ा गया, और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, इसका भी ख्याल रखिएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेक्शन की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें कुछ उम्मीदवारों ने एआई की मदद से डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और इसके साथ ही कई फर्जी दस्तावेज बदले गए हैं। इन हालातों में दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स को हिदायत ये दी गई है कि वो केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही और उनकी स्कैन कॉपी ही अपलोड करें। यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि मार्कशीट, प्रमाण पत्र, पहचान पत्र या किसी भी दूसरे दस्तावेज में डिजिटल एडिटिंग, एआई से जुड़े बदलाव, फोटोशॉप या फिर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर तुरंत उस छात्र की उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया जाएगा। और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए एडवांस वेरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल भी कर रही है। चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर शिखा दरबारी फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, एजुकेशनिस्ट भी हैं। प्रोफेसर सतिन कुमार हैं किरोड़ी मिल कॉलेज से हमारे साथ। जतिन चावला जी हैं करियर काउंसलर हैं और सुनील त्रिपाठी जी भी करियर काउंसलर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सतिन, आप ही से शुरुआत करूंगी क्योंकि आजकल आप सुबह से ही पूरा काम शुरू हो जाता है और 28 तारीख तक डेडलाइन भी है और उसके अलावा जो बच्चों के लिए, क्योंकि पहली कट ऑफ आ चुकी है, उनके लिए जो डेडलाइन है फीस भरने की वो आज रात 11:59 पर है। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, और वो लोग, वो छात्र या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और वो छात्र खासतौर पर जिनका पहली लिस्ट में नाम आ चुका है, वहीं से शुरुआत करूंगी कि उनकी जो फीस सबमिशन की लास्ट डेट है वो आज है। अब एक पहला दो सवाल, पहली बात तो ये गलतियां कहां नहीं करनी है फीस को लेकर, ये बताएगा। दूसरी बात ये है, बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल भी चल रहा होगा कि हम फीस ना जमा करें, हम सेकंड लिस्ट का इंतजार करें, इस पर आपकी राय क्या है ये भी बताते चलिए।
1: नहीं, अगर वो फीस नहीं जमा करेंगे बच्चे और ये एडमिशन वो छोड़ देते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने वाले किसी भी लिस्ट में उनका कंसीडर नहीं होगा। अगर वो फीस जमा करके एडमिशन ले लेंगे तब उनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो अपग्रेड में जाएं, अगर उनको मनपसंद कॉलेज कोर्स नहीं मिला तो अपग्रेड के लिए जो भी ऑप्शन उन्होंने दिए हैं कॉलेजेस के, फर्दर ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कि 20 कॉलेज का उन्होंने दिया प्रिफरेंस ऑर्डर और 10वें नंबर पे दयाल सिंह कॉलेज है वो उनको मिल गया, तो सेकेंड कट ऑफ जो सेकेंड जो सी एस आएगा उसमें उनका तभी कंसीडर होगा जब वो एडमिशन लेंगे। एडमिशन तभी माना जाता है जब वो फी पेमेंट करेंगे, तो वो एडमिशन ले तभी, अब तब तो वो ड्यू एडमिशन सिस्टम से ही बाहर हो जाएंगे अगर उन्होंने फी नहीं जमा किया तो।
0: नहीं नहीं, एक और तो, चीज क्लियर करते चलिए, यानी आपका पहली लिस्ट में नाम आया, आपने सीट एक्सेप्ट की और आपको फीस भरनी पड़ेगी, आपका नाम आया दयाल सिंह में, आप चाह रहे किरोड़ी मल कॉलेज, उसके लिए क्या अलग से कोई प्रोसेस होगा या फिर सेकेंड लिस्ट में भी चेंज ओवर हो सकता है?
1: नहीं, उसमें यह हो सकता है कि मैडम जैसे उनको 10वें प्रीफरेंस दयाल सिंह कॉलेज था तो उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया, उनके पास दो ऑप्शन, या तो उसको सीट को फ्रीज करें, फ्रीज करने का मतलब होता है कि उनको फर्दर कोई और ऑप्शन आगे के कॉलेज में अपग्रेड नहीं चाहिए, और अगर उनको अपग्रेड चाहिए तो अपग्रेड का ऑप्शन उनके पोर्टल पे सी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है जिसमें उन्होंने अप्लाई किया था जिसके थ्रू एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं उसमें अपग्रेड का ऑप्शन उसमें क्लिक कर देंगे उनका जो भी उनके मेरिट के हिसाब से अपग्रेड का और जहां पे उन्होंने ऑप्शन दिया है वहां पे उनको अपग्रेड अगले लिस्ट में जो 25 तारीख को दूसरी लिस्ट आ रही है उसमें मिल जाएगा उनको अगर
0: कितने
1: होगा
0: चांसेस
1: तो।
0: होते हैं अपग्रेड करने पर मिल जाए कॉलेज या फिर रिस्क ना लें बच्चे अभी फीस भर दें उसी कॉलेज की?
1: नहीं अपग्रेड फीस तो भरेंगे एडमिशन लेंगे तभी उनका अपग्रेड भी होगा अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तब तो वो सिस्टम से ही बाहर हो गए अब तो वो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो ही नहीं पाएगा अगर वो एडमिशन ले लेते तभी वो फ्रीज कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेड करने का राउंड है कि जब तक लिस्ट आ रही है जैसे उनका 10वां नंबर प्रीफरेंस अगर दयाल सिंह कॉलेज है और उनका फर्स्ट प्रीफरेंस सेंट स्टीफेंस कॉलेज है तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जब तक उनका नहीं आ जाता है तब तक वो अपग्रेड ले सकते हैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी लिस्ट लगातार निकाल रही है तो
0: और अगर नहीं भी आता तो उनका दयाल सिंह में एडमिशन फिक्स
1: तो है
0: बिल्कुल जब
1: अगले राउंड में कोई और अच्छा कॉलेज कैंपस का मिल जाए खालसा कॉलेज मिल जाए रामजस कॉलेज तो उसमें जो फर्दर ऑर्डर उसमें आ जाएंगे वो
0: यानी कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से ही आपको वो कॉलेज अलॉट हो सकता है अगर सेंट स्टीफन नहीं आपने सेकंड नंबर पे खालसा भरा या थर्ड पे आपने केएमसी भरा है या रामजस भरा है तो उनमें भी कहीं आ सकता है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से
1: नहीं तो प्रायोरिटी लिस्ट में तभी आएगा प्रायोरिटी लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसाइड आपके प्रेफरेंस के अनुसार डिसाइड करती है आपका अगर मार्क्स बहुत अच्छा है सीयूईटी में तो आपके प्रेफरेंस चलेंगे नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज अलॉट करेगी
0: ठीक है अब एक और बात सर फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी प्रायोरिटी लिस्ट को अपग्रेड करने सेकेंड कट ऑफ से पहले प्रायोरिटी लिस्ट को अपग्रेड करने का भी आखिरी समय है
1: प्रायोरिटी लिस्ट तो मैम ऑलरेडी अपग्रेड उसमें सिस्टम में है वो हम जब एडमिशन अभी मैं एडमिशन कमिटी में किरोड़ी मल में हूँ मैम तो सिस्टम में उनके प्रेफरेंसेस का ऑर्डर मुझे दिखता है कि कौन सा प्रेफरेंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिस्टम में है जो फर्दर प्रेफरेंसेस उनको मेरिट के हिसाब से मिलेगा जो सीबीटी का स्कोर है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अलॉटमेंट करती है सीएसएस के थ्रू उससे मिल जाएगा उनको कुछ नहीं देना है उन्होंने तो दे दिया ऑलरेडी
0: ठीक है
1: अगर बीच में कोई राउंड आता है जिसमें वो ऑप्शन दिए जाते हैं मिड राउंड आता है तो उसमें कर सकते हैं अभी तो उनके पास कोई ऑप्शन उन्होंने तो ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है
0: ठीक है तो फीस भरने में देरी ना करें अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है रात 11:59 का समय है याद रखिए कि तब तक आपको फीस भरनी ही है
1: तो है
0: जी जी जी
1: देर ना करें वो फिर नेटवर्क का इशू हो जाता है सर्वर पे प्रेशर होता है फिर वो होता है नहीं हो पाए
0: हाँ.
1: अगर अभी करें अविलंब करें अगर उनको लेना है तो और नहीं लेना है तो मत ले क्योंकि बाद में मैंने देखा है मैडम कि बच्चे के फिर कल कॉल आने लगते हैं आज 11:59 हो गया तो फिर मॉर्निंग में बच्चों के कॉल आएंगे सर मेरा तो फीस ही नहीं जमा हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते आप अभी करो अगर नेटवर्क का इशू 11:59 के पहले 11 बजे से हो गया तो कैसे फीस जमा करेंगे वो
0: बिल्कुल तो देर नहीं करनी चाहिए अभी से अगर आप फीस भर रहे हैं तो बिल्कुल उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए मैं आपके पास आगे लौट
1: नहीं लेना है तो फिर छोड़ दें
0: ठीक है जल्दी से जतिन जी वो तमाम छात्र जिनका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया भाई मार्क्स बहुत अच्छे आए सीयूईटी में हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था बावजूद इसके मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है क्या किया जाए कॉलेज तो मिला लेकिन मनपसंद नहीं मिला है उनके लिए क्या कहेंगे क्योंकि आज उनको रात 11:59 तक फीस भी भरनी है
2: सो दो चीजें हैं अभी फीस भरो और अपग्रेड के लिए अप्लाई करो आपके लिए अभी फर्स्ट सेकंड राउंड थर्ड राउंड भी होगा उसके बाद दो और चीज होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसे बोलते हैं एक तो होती है मिड एंट्री जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ पहले क्योंकि कई लोग बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उनके लिए मिड एंट्री आएगा अभी और दूसरा होता है स्पॉट राउंड तो स्पॉट राउंड में क्या होता है कि अगर किसी को एलोकेशन नहीं हुआ तो आपको मिलेगा तो उन बच्चों के लिए नहीं खैर जिन्होंने कहीं एडमिशन अभी मिल गया है अगर एडमिशन मिल गया है तो आज फीस भरो और अपग्रेड के लिए सेकेंड राउंड में जाओ अपने प्रेफरेंस लिस्ट रीऑर्डर कर सकते हो बहुत ध्यान से करना है क्योंकि आपको खाली चेज मत करो कॉलेज नेम या इवन कोर्स अगर टॉप के 8-9 कॉलेज हैं तब तो कॉलेज नेम का बहुत इम्पैक्ट है उसके बियॉन्ड गो फॉर योर कोर्स मतलब कई लोग पूछते हैं भाई कैसे करें तो टॉप के 8-9 कॉलेज आपको समझ में है पिछले कई उसमें और कई रैंकिंग्स भी मिलती हैं 8-9 है तब तो आप करो नहीं तो आप कोर्स की तरफ जाओ कोई ऐसे अनवांटेड ऑप्शंस हो तो अपने हायर प्रेफरेंस उनसे हटा भी सकते हो जब आप फीस करोगे और फिर से रीऑर्डर करोगे तो आप हटा सकते हो और ये बात बहुत अच्छी है कि किसी भी फ्रॉड मतलब अभी मैम ने भी बोला नवजोत मैम ने कि कोई भी AI एडिट मत करना AI एडिट डॉक्यूमेंट्स मत करो साइबर फ्रॉड से बच के रहो DU के पोर्टल से करो किसी और थर्ड पार्टी पे विश्वास मत करो, कोई आगे मैं वहां करा देता हूँ, मैं यहाँ इस समय खूब लोग घूम रहे होते हैं, ट्राई टू मेक अ स्केटबोर्ड आउट ऑफ यू, जो कोशिश करेंगे फ्रॉड करने की, मत पढ़ना। एक पूरा सिस्टमाइज तरीका है, उसी में ही जाके आप करो। अगर नहीं मिला कॉलेज, आप साथ साथ अच्छी इंटर्नशिप करना, रिसर्च पेपर करना, पब्लिश करना, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना, अपनी बुक लिखना, मेरे स्टूडेंट ने लिखी है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी तो कोई भी कंपनी ले लेगी। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जो टॉप, मतलब टॉप 30 छोड़ो 50th इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट गए, पढ़ाई करी, लेकिन कंपनी उनको वैसी मिली जैसे कि टॉप 2 इंस्टीट्यूट में मिलती है, टॉप 1st में मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल अच्छी थी। फोकस ऑन प्रोफाइल, फोकस ऑन स्किल्स, नॉट ओनली कॉलेज एंड कोर्स।
0: ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से सुनील जी, आप भी जरा जो इस वक्त बच्चे फी डिपॉजिट कर रहे हैं या जिन्हें करनी है, जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ चुका है लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, नाम जरूर आया उनके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा?
3: नमस्कार मैम मुझे बुलाने के लिए, और जैसा जतिन जी ने बताया एकदम सही बताया, सब प्रोफेसर सत्येंद्र जी ने बताया, पहले हमें फीस जमा करनी है। हमें कॉलेज अपने मन का नहीं मिला है, जनरली कॉलेज वही मिला है, मतलब जनरली क्या सबको कॉलेज वही मिला जो हमने प्रेफरेंस लिस्ट में डाली थी, कोर्स भी वही मिला है जो हमने डाली थी, हमें कोई ऐसा नहीं मिला, जो भी हमने डाली थी वो मिला है हमें। अब फीस देने के बाद हमें फ्रीज नहीं करना है, हमें अपग्रेड ऑप्शन पे डालना है, और अपग्रेड करते समय एक चीज ध्यान रखना है कि ऊपर हम वही कॉलेज अब रखें जिसमें अगर हमें ऊपर कोई और कॉलेज मिले तो हमें नीचे वाले कॉलेज जाने का दुख ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऊपर कोई एक ऐसा कॉलेज है जो हमें मिल गया, बाद में हमें लगता है नहीं हमें तो पिछड़ा वाला ही ठीक था, वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो बचे हुए ऊपर कॉलेज हैं उसमें हमें ध्यान रखना है, अगर ऐसा कोई कॉलेज या कोर्स है जो हमने पहले तो प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दी थी लेकिन अब हमें लगता है ना हमें कॉलेज चाहिए ना कोर्स चाहिए, या जो हमें आज मिला है उससे वो बेटर नहीं है, तो उन्हें हम अपने प्रेफरेंस लिस्ट से हटा दें, उन्हें हम अपने प्रेफरेंस से हटा दें। जतिन जी की बात एक बहुत अच्छी है कि प्लीज हम कॉलेज और कोर्स बेसिस पे ना भागें, जो मिल रहा है उस पे जाएं, अपने प्रोफाइल पे वर्क करें। आज कंपनियां केवल और केवल स्किल को देख रही हैं। मैं एक एवरेज कॉलेज से भी अगर मैं इंटर्नशिप्स करता हूं, एनजीओ वर्क करता हूं, प्रोफाइल मेकिंग अपनी स्ट्रांग बनाता हूं, कुछ मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूं, कुछ सर्टिफिकेशंस करता हूं, तो मैं एक टॉप कॉलेज के बराबर का प्लेसमेंट ले सकता हूं। ये हमें हर बच्चे को बताना है, बिकॉज कंपनीज आर नॉट लुकिंग फॉर डिग्रीज और कॉलेज नेम, दे आर लुकिंग फॉर स्किल्स।
0: और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वैकल्पिक कोर्सेज भी होते हैं जो आप साथ ही साथ कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनको ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब एडमिशन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, फी जमा करने का जैसे हम आपको बता ही चुके हैं 11:59 तक आज रात आप फीस जमा कर सकते हैं। प्रोफेसर सत्येन लगातार आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको रात तक का इंतजार नहीं करना, आप तुरंत से फीस जमा कर दीजिए। अब एक चीज प्रोफेसर सत्येन जो इस बार स्पेशली देखी जा रही है वो ये देखा जा रहा है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली अगर हम कहें कि AI से जुड़ा फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, इस पर आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करेंगे? क्योंकि ये एक तरीके से हालांकि DU ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस निकाली है कि अगर कोई AI जनरेटेड सर्टिफिकेट लेता है तो पहली बात तो उसकी फीस भी वापस नहीं होगी और दूसरा एडमिशन भी नहीं होगा। एज अ प्रोफेसर क्योंकि आप इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, आपके लिए भी कितना सरदर्द है, किस तरीके से जो तमाम सर्टिफिकेट्स हैं उनको देखा जा रहा है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो बच्चों को ध्यान में रखने हैं?
1: देखिए एज अ एडमिशन कमिटी मेंबर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी सर्टिफिकेट वो अपलोड करते वो करते क्या है, अगर कैटेगरी में है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, 10th 12th का मार्कशीट होता है और 10th का सर्टिफिकेट होता है जिसमें उनका एज लिखा होता है और CUT का स्कोर होता है, इतने ही डॉक्यूमेंट वो अपलोड करते हैं। तो इसमें अगर वो कोई फेक सर्टिफिकेट या फिर AI जनरेटेड लगा रहे हैं हम उसको प्रॉपर वेरीफाई करते हैं, और जैसे उसमें बार कोड दिया रहता है उससे स्कैन करें तो उनकी दिखने लगती है, लेकिन अपने स्तर पे मतलब एडमिशन कमिटी के स्तर पे हम जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं लेते हैं, वैसे एडमिशन को हम लोग रिजेक्ट करते हैं या पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डाल करके क्वेरीज रेज करते हैं कि आप इतने तारीख तक आप जमा करो, इस सर्टिफिकेट में क्लैरिटी नहीं है दो, और अगर वो दे देते हैं और हमें लगता है कि वो सही है तो हम उनके एडमिशन का फर्दर प्रोसेस कर देते हैं, फीलिंग जनरेट हो जाता है, उनका एडमिशन हो जाता है। अगर वो फेक करते हैं आपका एडमिशन तो रद्द होगा ही, आपको फर्दर बैन किया जा सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे तो आप पे नेम्ड FIR भी कर सकता है, क्योंकि ये तो क्राइम है ना मैडम, भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप आप क्राइम कर रहे हो, साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड कर रहे हो, तो आप अपने एप्लीकेशंस को समझ लो, आप फ्रॉड करके नहीं निकल सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, प्रॉपर सिस्टम वर्क कर रहा है इसमें, ओरिजिनल है तभी लगाएं, और नहीं है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए छोड़ दें, क्योंकि आपको एडमिशन अगर ले भी लेते हैं आपका कैंसिल होगा, और वो कैंसिल होगा तो बहुत ही दुखदायी होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप पे FIR कर सकती है आप, और फर्दर लीगल प्रोसेस हम कर सकते हैं आपके खिलाफ, क्योंकि आपने तो फेक डॉक्यूमेंट दिया है।
0: बिल्कुल, अब जल्दी से एक बार शिखा दरबारी जी आपको इंक्लूड करूंगी, दो सवाल। पहली बात तो ये कि छात्रों को कितना अलर्ट इसमें हो जाना चाहिए, इसमें मैं चाहूंगी जरा छात्रों को ये भी आप गाइड कीजिए, फी पोर्टल कौन सा है, क्योंकि अभी जब आपसे चर्चा हो रही थी आप बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ड्यू के फी पोर्टल पर ना जाके, क्योंकि ऐसे लगातार फर्जी एडमिशन और फर्जी फी डिपॉजिट भी हो रहे हैं, तो उससे भी कैसे बचा जाए और छात्रों को कितना अलर्ट रहना है?
4: देखिए, इस बार ये AI जो है, AI की वजह से दोनों तरफ से तरह तरह की मुसीबतें आ जाती हैं। जैसा कि अभी सत्येंद्र जी कह रहे थे कि AI डिजिटली जो है वो उस तरह के सर्टिफिकेट्स बच्चे दे रहे हैं यहाँ पे जो उन्होंने AI से मॉडिफाई कर दिए हैं, तो उनके जितने नंबर नहीं है उन्होंने ज्यादा नंबर दिखा के कर दिए। अब उसमें क्या होता है, जब AI से आपका सर्टिफिकेट बनता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको सामने से देख के आप ये कर सकें कि हाँ भाई ये गलत सर्टिफिकेट है, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है उसके वेरिफिकेशन के लिए। अगर इमीडिएटली दिख जाता है तो जैसा वो कह रहे थे कि वो अपना एक्शन लेंगे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जिन्होंने भी ऐसा किया है, भारतीय न्याय संहिता में भी उनके अगेंस्ट हो सकता है। दूसरा जो है कि IT 2000 का जो एक्ट है उसमें भी अगर कोई इस तरह से फ्रॉड करता है, साइबर फ्रॉड कि गलत डिजिटल सर्टिफिकेट दे रहा है, तो उस बच्चे के अगेंस्ट भी हो सकता है। पर दूसरा जो सब बच्चों को इस वक्त जो है, जो आज लास्ट डेट है फीस जमा करने की, उस वक्त जो उनको इस वक्त सबसे ज्यादा सावधान रहना है वो इस बात के लिए रहना है कि वो फीस कहां पे जमा कर रहे हैं, जो उनको लिंक दिया गया है वो सच में दिल्ली यूनिवर्सिटी से या उनके कॉलेज से ही आया है या किसी ने, किसी और फ्रॉडस्टर ने तो उनको कोई लिंक नहीं भेज दिया, क्योंकि आजकल जिस तरह का साइबर क्राइम चल रहा है इसमें इस तरह की पॉसिबिलिटी से हम नहीं वो कर सकते हैं कि किसी ने लिंक भेज दिया और पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस जमा होने की जगह आपकी फीस कहीं और जमा हो गई और फिर आपको नहीं पता चलता कि हम क्या करें। तो इस तरह की चीजों में AI के लिए हमें बहुत सावधान रहना है। जिन बच्चों ने फ्रॉड किया है वो तो यूनिवर्सिटी उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी, पर बच्चों को जो सावधान रहना है वो फीस जमा करने में सावधान रहना है।
0: बिल्कुल, जल्दी से एक बार, क्योंकि फी डिपॉजिट में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। प्रोफेसर सत्येंद्र, जल्दी से हमारे स्टूडेंट्स को ये बता दीजिए, अगर वो फी जमा करने जा रहे हैं तो वो कौन सा पोर्टल है जहां पर जाके फी जमा करनी है ताकि वो किसी डिजिटल फ्रॉड के शिकार ना हो।
1: देखिए मैम, जो एडमिशन का पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको यूजर आईडी पासवर्ड मिला, वो उसे लॉग इन करे, उसी में फी का लिंक आता है, उनके व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, उनके अपने जो पोर्टल है उसी पे लिंक वो दिखता है, उसको एक्सेस करके आप जो लिंक दिया उस पर पेमेंट करें। फिर वॉलेट का भी सिस्टम है, अगर आपने पहले से मनी रख रखी है तो वो जल्दी ही उसका पेमेंट डन हो जाता है, लेकिन आप अपने पोर्टल के माध्यम से उसको एक्सेस करें, कहीं थर्ड पार्टी आता है उसकी बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, आपका पैसा तो जाएगा ही, उसके अलावा आपका एडमिशन नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा, अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया तो आप अपग्रेड के लिए भी एलिजिबल नहीं है, पूरे एडमिशन की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, तो प्लीज ऐसा मत करिए, केयरफुल रहिए। कुछ भी दिक्कत हो, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहां पे हमारे नंबर्स हैं एडमिशन इंचार्जेस के, आप उनको कॉन्टेक्ट करिए, हमको कॉल करिए, या जिस कॉलेज में जो कमिटी मेंबर्स हैं उनको कॉल करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, हम हमेशा उपलब्ध। अभी एडमिशन जब हम कर रहे हैं मैम, रात के 1:30 बजे 2-2 बजे तक जग के कर रहे हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए, और अपना मोबाइल में हमेशा ऑन में रखता हूं कि बच्चे का लेट नाइट भी कॉल आता है तो मैं पिक करके उनको गाइड करूंगा, और ये सारे टीचर्स कर रहे हैं।
0: बिल्कुल जितिन जी, इस पर आप भी थोड़ा सा गाइड कीजिए बच्चों को, पहले तो AI सर्टिफिकेट से थोड़ा सा सावधान रहने और दूसरा फी जमा करते हुए किसी फर्जीवाड़े का शिकार ना हो।
2: तो होता क्या है कि कई बारी हो सकता है, क्योंकि आप उस प्रोसीजर में हैं, हो सकता है किसी हैकर ने या हैकर ग्रुप ने कहीं से मोबाइल नंबर्स ले लिए और उनके पास ऑलरेडी वो डाटा आ गया किसी भी तरीके से, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, और जैसे ही वो आ गया आपके पास एक लिंक आया व्हाट्सएप पे कि भाई इस पर क्लिक कर दीजिए, और कई बारी मेरे फ्रेंड्स जैसे अलग अलग कंट्रीज में हैं तो उनके पास भी, उन्होंने कोई कभी ब्राउज कर रहे होते हैं तो एकदम से उनके पास कहीं से लिंक आया उन्हें लगता है कि उसी साइड से आए तो चलो यहाँ करके कर देते हैं, लेकिन जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा आपको अपना डीओ पोर्टल में उसी में अपना पासवर्ड यूज़ करके उसके थ्रू ही पेमेंट करनी है, एक ही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। कोई और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसमें फिर से जाके समझिए, हेल्प सेक्शन में देखिए या किसी अपने फ्रेंड से पूछिए, लेकिन करिए उसी के अंदर ही, एक बात ये है। दूसरा, किसी पे बिलीव नहीं करना कि कोई कहे मैं आपका करवा देता हूँ, मैं ऊपर करा देता हूँ, ऐसे नहीं करवा पाएंगे। पहले हर साल कोई ना कोई बच्चे या पेरेंट्स ड्यूप होते हैं, उन्हें कोई ना कोई मिल जाता है कि भाई कोई एजेंट है कोई भी करा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर विश्वास मत करिए। डोंट यूज़ मनी टू अपग्रेड, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। आप एक रेगुलर तरीके से जाएंगे तभी सही रहेगा। मेरे को याद है कि 3 साल पहले हुआ था तो और इस साइड में करीब 18 बच्चों के घर पुलिस गई थी और एक बहुत तगड़ा केस हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। तो इस तरह से मतलब डोंट टेक अ रिस्क। जो पेरेंट्स सुन रहे हैं आप लोग डेफिनेटली अपने बच्चों को गाइड कीजिए और उनके साथ रहिए इस प्रोसेस में, और सिंपल प्रोसेस है, काफ़ी वो नहीं है। दूसरा, चिंता मत करिए, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद बहुत सारा कुछ है, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, तो अपनी लाइफ को एक नेगेटिव बेस पे स्टार्ट नहीं करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है। दूसरा, हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखना है, हमें इंटर्नशिप्स करनी है, हमें प्रोजेक्ट्स करने हैं, हमें रिसर्च करना है, हमें अपनी पब्लिकेशंस करनी है। आप जितना अच्छा करोगे अपने आप जॉब्स मिलेंगी, अपने आप आपका लाइफ अच्छी चलेगी। सो गो विद दैट व्यू।
0: बिल्कुल सुनील त्रिपाठी जी, मैं चाहूंगी आप भी जरा बच्चों को गाइड कीजिए, लेकिन उससे पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है जो जितिन जी ने बात कही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी आपको कहता है कि वो आपका एडमिशन करा देता है तो आप बिल्कुल किसी की नहीं सुनिए, क्योंकि वहां पे ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं होता है। ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। आपने सीवीटी एग्जाम दिया, उसके बाद आपका स्कोर आया, उस स्कोर के हिसाब से ही आपको एडमिशन मिलेगी और ये पूरी तरह से पारदर्शी है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है और यहाँ कहीं कोई सिफारिश नहीं चलती है। इसलिए सीधा पोर्टल पर जाकर इंतजार कीजिए। पहली लिस्ट आ चुकी है कट ऑफ लिस्ट, सेकेंड आएगी कट ऑफ लिस्ट, थर्ड में भी कट ऑफ लिस्ट आएगी और उसके बाद क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था फोर्थ भी आते हैं और उसके बाद भी क्या क्या चांसेस बनते हैं इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी तरह से ये पारदर्शी है और ऑनलाइन है। तो ध्यान रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड जो करते हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहना है। और दूसरी बात यह है कि कहीं आप किसी साइबर क्राइम का शिकार ना हो जाए, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। सुनील जी,
3: लास्ट ईयर एक केस आया था जिसमें कुछ बल्क एसएमएस भेजे गए थे बच्चों को, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन एडमिटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी दिस दिस दिस, यू कैन पे योर फीस लाइक दिस। उसमें कुछ आई थिंक दिल्ली पुलिस ने और यूपी पुलिस ने, मेनली गाजियाबाद के आसपास का वो केस था, कुछ लोगों को पकड़ा भी था। उसके बाद आगे क्या हुआ मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन इस तरह का सिचुएशन दोबारा हो सकता है। कुछ लोग कहीं कहीं से डेटा उठा लेते हैं, कुछ लोग आई डोंट नो, कुछ लोग कहते हैं सीबीएसई उठाया, कहीं से उठाया। तो बच्चों को हमें बस ये बताना है कि हमें जो डीयू का पोर्टल है उस पोर्टल पे ही जाके लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जब एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद फीस पेमेंट का लिंक जनरेट होता है, वहीं पे जाके हमें पेमेंट करनी है। बहुत सारे ऑप्शंस है वहां पे पेमेंट करने की, जो भी ऑप्शन चूज करना चाहे वो बच्चे कर सकते हैं। जो आपने फेक डॉक्यूमेंट वाली बात बोली, देखिए डॉक्यूमेंट प्रोफेसर साहब ने जो बताया 4-5 डॉक्यूमेंट है जो हमें देने हैं, अल्टीमेटली वो डिजी लॉकर में भी है, अल्टीमेटली बच्चे ने जब सीयूटी का फॉर्म भरा है वहां पे भी उसने अपलोड किया।
0: जल्दी से बता ही दीजिए एक बार 4-5 डॉक्यूमेंट्स ताकि लोग बच्चे फिर भी कंफ्यूज नहीं हो।
3: बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड है, 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है और सीयूटी का स्कोर है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनके कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ स्पोर्ट्स कोटा में अगर जाते हैं तो उनके 3 साल का सर्टिफिकेट है।
0: लेकिन सर शायद वो कोटा वाली लिस्ट तो थर्ड लिस्ट होगी ना?
3: हाँ वो बाद में आएगी,
0: वो
3: अभी अभी,
0: हाँ।
3: अभी नहीं है, अभी उसके आई नहीं है, लेकिन क्योंकि सर डॉक्यूमेंट्स की बात हुई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, चाहे ईसीए के करने हैं, चाहे स्पोर्ट्स के करने हैं, जहां भी करने हैं, वो डॉक्यूमेंट अल्टीमेटली, अब ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वो मान लिया जाएगा, हर चीज वेरीफाइड है। आपका नंबर डाल के केवल, इवन सपोज आई बिलोंग टू वाराणसी, वहां वाराणसी के किस जगह से वो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है वो निकल जाता है। आज पता चले, 6 महीने बाद पता चले, बच्चों को दिक्कत होगी, उनका करियर इफेक्ट होगा। इसलिए मेरा हर पेरेंट से, हर बच्चे से सलाह है कि किसी और के चक्कर में ना पड़े किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे, हम मैं आपका ये डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा, ऐसे लोग भी मार्केट में मिलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी इनके झांसे में ना आए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है बिल्कुल उसी पर स्टिक रहे, किसी एआई या फर्जी डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल जमा नहीं कीजिए। इसको लेकर इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यही से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप भी हमारे साथ
5: Get in. into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: मिशन डी एडमिशन जिसको लेकर चर्चा हो रही है, फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है, दूसरी 25 तारीख को आएगी और फर्स्ट कट ऑफ में जिस जिस स्टूडेंट का नाम आया है आज रात 11:59 तक ही समय है फी डिपॉजिट का, फीस भरने का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें जो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट एआई जनरेटेड नहीं बना सकते हैं, किसी भी फर्जी पोर्टल पर नहीं जाइएगा, अगर आप फी डिपॉजिट कर रहे हैं तो भी साइबर क्राइम से बचिएगा। कुछ जल्दी से इम्पोर्टेंट टिप्स शिखा जी मैं चाहूंगी स्टूडेंट्स को दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम।
1: देखिए, अगर आप सोचिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये गाइडलाइंस क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि हर साल जो है फेक सर्टिफिकेट्स आते हैं और एआई के साथ क्या हो गया है कि जिस तरह के फेक सर्टिफिकेट्स बनाए जा सकते हैं, जिस तरह का वो डिजिटली उसको क्रिएट कर सकते हैं, वो आदमी को आसानी से पता ही नहीं चल सकता कि ये फेक सर्टिफिकेट है। अभी आपने आगे देखा होगा कि एंथ्रोपिक का फेबल 5 एक एआई टूल था जिसको कि बैन किया गया, और किस लिए बैन किया गया, क्योंकि वो इस तरह से सब चीज़ को कॉपी कर सकता है कि आम आदमी उसको देख के नहीं पता चला सकता कि वो कोई भी फेक चीज़ बनी है। तो उसमें क्या है ना कि जो एडमिशन का पूरा एक सेल बना हुआ है वो भी नहीं देख समझ पाते। तो अगर गलत आदमी का आपने एडमिशन ले लिया तो आप किसी और दूसरे के साथ तो एक तरह से आपने गलती कर दी ना, कि आपने किसी और का एडमिशन होना चाहिए था पर उसने फेक सर्टिफिकेट लगा दिया तो उसका उस अच्छे दूसरे स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। और दूसरा जो है कि इस तरह की एआई टूल्स जो हैं ये क्या करते हैं कि पूरा जो वेबसाइट होती है उसका जो पोर्टल है वो उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी आपको कहा जाता है कि आप बैंक जा रहे हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड संभाल के रखिए, वो कॉपी ना कर ले वहां पे वो मशीन जो है। तो इसी तरह से यहां पे भी जो है वो पूरा जो वेबसाइट का पोर्टल होता है जहां पे कि डिजिटली आपको पेमेंट करना है उसको भी बहुत सारे लोग कॉपी कर सकते हैं। यही एक साइबर फ्रॉड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसको कॉपी करके सपोज कोई आपके पास व्हाट्सएप भेजता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए और यहां पे अपना ओटीपी भेज दीजिए और आपका फीस डिपॉजिट हो जाएगा, तो बच्चों को इस बात से बहुत सावधान रहना है कि इस तरह के लिंक पे क्लिक ना करें। कोई भी आपसे, कोई थर्ड पार्टी अगर आपसे ओटीपी मांग रही है तो वो ओटीपी ना दें, क्योंकि क्या होगा ऐसे में आपके दो डबल नुकसान हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि आपका, क्योंकि फीस जो है वो जमा होनी थी डीयू पोर्टल पे, कोई और आदमी आपकी फीस जमा करा के ले गया तो डीयू पोर्टल पे आपकी फीस जमा नहीं हुई, तो उससे क्या हुआ कि जो आपका एडमिशन हो सकता था वो, पहली बात वो एडमिशन नहीं होगा, फिर आप चक्कर लगाते रहे कि नहीं साहब मैंने तो एडमिशन का फीस इस दिन करी थी, और दूसरी बात आप जो पैसे से जाएंगे वो तो अलग जाएंगे ही जाएंगे, तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा और आपकी जो फीस आपने दी वो भी आपकी कहीं और चली जाएगी। और इस तरह के फ्रॉड बहुत से होते हैं, तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि जिस वक्त आप बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही पोर्टल पे जाइए, वहां पे जो ORN है उसको पूरा एक बार दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए, अपने कॉलेज का एकदम अच्छे से चेक कर लीजिए और वहीं से आप पेमेंट करिए। कोई भी तीसरा आदमी या एजेंट आपको बोलता है कि अच्छा आप लाइए मैं करवा देता हूं, तो उस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है आपको, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है।
0: बिल्कुल, एक बार प्रोफेसर सतीन कुमार आपके पास आना चाहूंगी। इस बार ये खास तौर पर गाइडलाइंस, स्पेशली अगर मैं AI जनरेटेड सर्टिफिकेट्स की बात करूं, तो निकालनी पड़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। कोई ऐसा केस आपके पास आया है अभी तक?
2: मेरे पास पर्सनल लेवल पे मैम एक गार्डियन आए थे एक बच्चे का जिसका एडमिशन होना था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनको किसी ने ये भरोसा दिलाया था, बाहर से थे वो, दिल्ली से नहीं थे, लेकिन एडमिशन शुरू होने के पहले आ गए थे वो। उन्होंने पर्सनल मिलकर के मुझसे पूछा कि कुछ वैसे लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनका एडमिशन करा देंगे, वो फेक सर्टिफिकेट और ये सब का मामला नहीं था, कि हमारे लिंक्स है हम करा देते हैं। तो मैंने कहा कि अभी जो एडमिशन का ऑनलाइन सिस्टम है ये इतना अच्छा है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसमें तो स्कोप नहीं है। इस सिस्टम में मैम अगर PMO से और राष्ट्रपति भवन से भी कुछ आए तो हम नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे उस मेरिट में आए उन्हीं का कर सकते हैं, और सही में नहीं होता है ये तो वो। और दूसरी बात जो फ्रॉड का है, साइबर फ्रॉड तो के शिकार पढ़े लिखे अब बड़े बड़े लोग हो रहे हैं, एडवोकेट हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो रहे हैं, मिनिस्टर्स हो रहे हैं, तो बहुत ही केयरफुल रहना है। जो आपने लॉग इन किया है उसी से आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट में कुछ भी दिक्कत है हमें आप कॉल करिए, हर कॉलेज का हेल्पलाइन नंबर है, एडमिशन इंचार्जेस के नंबर हैं, एडमिशन इंचार्जेस के अलावा जो अलग अलग विषय के हैं, जैसे एक कॉलेज में 20 सब्जेक्ट्स में एडमिशन होता है तो सबके जो इंचार्जेस अलग अलग है, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में हूँ, आई मीन इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो उसी तरह से जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, BA प्रोग्राम है, सबके इंचार्जेस हैं, उनको आप कॉल करके कहिए कि प्लीज मुझे दिक्कत है, मुझे हेल्प करिए, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। अभी जो हमने एडमिशन कमेटी में रहना स्वीकार किया है तो ये जान के किया है कि मुझे रात रात भर जग के भी काम करना पड़ सकता है, हम आपके लिए हैं, आप हैं स्टूडेंट है तभी तो हमारी यूनिवर्सिटी है, तभी तो हम हैं, तो इस डेडिकेशन के साथ हम हैं। आपको कोई दिक्कत हो हमें कॉल करिए।
0: बिल्कुल, चलिए एक चीज तो क्लियर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहली बात तो ये है कि सब कुछ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, जो आधिकारिक पोर्टल है आप उसी पर जाइए और वहीं पर आप तमाम प्रक्रिया जो है आप उसको पूरा कर सकते हैं और प्रोफेसर खुद आपके लिए, आपकी मदद के लिए तैयार है। हॉट फेवरेट कोर्सेज की बात कर लेते हैं, जितिन जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप सबसे अच्छा गाइड कर पाएंगे स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ हमारे साथ सुनील जी भी मौजूद है, आप दोनों के पास आऊंगी। पहले जितिन जी, बीकॉम ऑनर्स इस बार जो सबसे हॉट फेवरेट है स्टूडेंट्स का, और साथ ही साथ बीकॉम प्रोग्राम, पहली लिस्ट आ चुकी है, नाम बीकॉम ऑनर्स में नहीं आया है, क्या किया जाए?
3: हम बीकॉम प्रोग्राम में अगर अच्छी जगह आया है तो वो ले सकते हैं, साथ साथ हम अलग से कोर्सेज करेंगे। कैसे कोर्सेज करेंगे? अगर मुझे फाइनेंस में जाना हो तो मैं CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स स्टार्ट कर लूंगा। सेकेंड, थर्ड ईयर में मैं CFA के लिए तैयार करूंगा, CFA पार्ट वन हम थर्ड ईयर में स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन है, पूरे वर्ल्ड में नाम है। थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ, मुझे अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो BSc इंडिया और NSE इनके प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन भी, और BSc का यहाँ राजेंद्र नगर में ऑफिस भी है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉपर प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम भी है, लंबा प्रोग्राम भी है, उसको कर सकते हैं, उसके थ्रू भी मतलब एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी है। उसके बाद अगेन डिपेंड करता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में जाना है, रिटेल मैनेजमेंट में जाना है, फैशन मैनेजमेंट में जाना है, तो निफ्ट के सर्टिफिकेट, निफ्ट सरकारी इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो निफ्ट के सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं जो कि कोई भी जना कर सकता है, मतलब कोई भी किसी भी एज का, और उसमें कोई ऐसा मतलब एंट्रेंस की मारामारी होनी है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम होती है कि इंडिया में सब लोग सेम चीज सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं बीकॉम ऑनर्स मिल जाए, एक बड़ी लंबी सी लाइन लग गई, लेकिन आप डिसाइड करो ना आपको रिटेल मैनेजमेंट में काम करना है। भाई रिटेल कितना अच्छा चल रहा है, सब लोग ऑर्डर करते हैं ब्लिंकेट, जेप्टो, इतने सारे फ्लिपकार्ट, तो सब क्या है, रिटेल मैनेजमेंट है। या आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाना है, उसके छोटे कोर्सेज हैं, जैसे हंसराज कॉलेज में, खुद भी हंसराज से पढ़ा हूँ, हंसराज में एड ऑन कोर्सेज हैं, कई और कॉलेज में एड ऑन कोर्सेज हैं छोटे छोटे, इवन एक्टिंग का कोर्स चलता है हंसराज कॉलेज में, उन्होंने किसी से टाइप कर रखा है, तो आप ऐसी चीजें ढूंढो ना। और ये चीज मेरे हिसाब से पेरेंट्स को और टीचर्स को भी बतानी चाहिए कि भाई देखो एक चीज है, उसके साथ में क्या कर रहे हो, क्या प्रैक्टिकल सीख रहे हो, उससे फर्क पड़ेगा, नॉट कि आपको बस एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं कि यही मिल गया मुझे तो। जी
0: इस पर ना जितिन जी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा सुनील त्रिपाठी जी, मैंने बीकॉम ऑनर्स की बात कर ली, बहुत सारे बच्चों का शौक होता है, मतलब बहुत सारे बच्चों का हॉट फेवरेट कोर्स जो इस बार मेरे पास लिस्ट आई उसमें बीकॉम ऑनर्स नंबर वन पे है, इसके बाद बी ऑनर्स इंग्लिश की अगर हम बात करें, अगर उसमें नंबर नहीं आया तो ऑप्शन क्या है वो बताइए, क्योंकि जितिन जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे उठाई है कि पेरेंट्स को स्कूल से टीचर्स को गाइड करना चाहिए, मैं उस पर बाद में आती हूँ, पहले इस पर क्लियर कर लेते हैं, BA इंग्लिश ऑनर्स इंग्लिश में अगर आपका नाम नहीं आया है तो ऑप्शन क्या है?
4: किसी भी ऑनर्स, इट इज नॉट ओनली इंग्लिश ऑनर्स, इट इज नॉट ओनली बीकॉम ऑनर्स, DU में ना बहुत सारे BA प्रोग्राम है कम्बिनेशन के साथ, इंग्लिश विद पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स। सपोज किसी को इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिला, वो सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स या इंग्लिश विद इकोनॉमिक्स में दे देता है, फिर आगे जाके फोर्थ ईयर में अब तो मेजर माइनर तक का प्रोविजन है, बच्चा आराम से जिसमें चाहे उसमें मेजर कर सकता है, फोर्थ ईयर कंटिन्यू कर सकता है और उसको ऑनर्स मिल जाती है। मजे की बात यह है जो हम बच्चों को बताते हैं, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर पेरेंट को पता होना चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए कि आप प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं लेकिन आप ऑनर्स की डिग्री लेकर निकल सकते हैं अगर आपने फोर्थ ईयर में कंटिन्यू कर लिया। प्रोफेसर साहब हमारे सामने बैठे हैं, क्या प्रोफेसर साहब आप इस पे जरूर, मैं चाहूंगा कि आपका इनपुट जरूर आए इसमें, बच्चों को इस समय कि हमारा प्रोग्राम में एडमिशन हुआ, हम ऑनर्स चाहते थे नहीं हुआ, तो क्या उनके पास आगे चल के ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस कैसे आप लोग देते हैं, ये अगर हम लोग यहां क्लियर करें तो मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स
0: चलिए जल्दी से प्रोफेसर साहब से पूछ लेते हैं।
2: जी हां मैम, अगर उनको ऑनर्स उन्होंने BA प्रोग्राम में ले लिया, डिफरेंट कम्बिनेशन है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंग्लिश सोशियोलॉजी, बहुत सारे हैं, हर कॉलेज में चार पांच कम्बिनेशन तो होते हैं, किरोड़ी मल में चार है, तो आप अगर प्रोग्राम में लेंगे तो आपकी डिग्री प्रोग्राम में होगी, ऐसा नहीं कि मिड वे आप सेकेंड थर्ड ईयर में ऑनर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर कर लेते हैं, फोर्थ ईयर में तो आजकल ज्यादातर रिसर्च के पेपर्स है, रिसर्च डिसर्टेशन लिखने होते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कॉम्बिनेशन किया है तो आपके MA में एडमिशन दोनों सब्जेक्ट में जिसमें आप CUET के माध्यम से आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, आपका इंग्लिश में भी हो गया, इकोनॉमिक्स में भी हो गया, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको MA किस में करना है, आपके तमाम ऑप्शन खुले रहते हैं। बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, अभी जो बता रहे थे बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया त्रिपाठी जी ने, ये तमाम ऑप्शन हैं। उसके अलावा बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज आपने ले लिया, कॉमर्स आपको ऑनर्स नहीं मिला, कॉमर्स आपको प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम मिल गया, तो आप बीकॉम प्रोग्राम करिए, कुछ एड ऑन कोर्सेज कर लीजिए फिनांस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। उसके अलावा हम कॉर्पोरेट से बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिसमें हम उनका प्लेसमेंट कराते हैं, मैं 5 साल की रोड़ीमल कॉलेज में प्लेसमेंट का भी इंचार्ज रहा हूं। तो कंपनीज आती है कि सर हम बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं और आपको एड ऑन कोर्सेज हम कराना चाहते हैं कैंपस में आकर के, आपका आप रूम्स दे दीजिए, बच्चे हमें प्रोवाइड कर दीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे
1: जी।
2: तो वो चाहते हैं, कंपनी चाहती है, कंपनी चाहती है कि हम वैसे बच्चे को हायर करें जो पहले से ग्रूम्ड हो, पहले से ट्रेंड हो, और उनको इंटर्नशिप दे करके उस कंपनी का जो कल्चर होता है, जो जिस तरह से फंक्शनिंग है, उसे बहुत वो रिसोर्सेज खर्च करते हैं। तो आज आपके लिए करियर, अगर डेली यूनिवर्सिटी में आप आ गए कोर्सेज में, किसी भी कोर्स में आप अगर चाहेंगे कैंपस प्लेसमेंट लेना, थोड़ा मेहनत करेंगे, हम आपका
1: बिल्कुल एड ऑन कोर्सेज आप कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। इसके अलावा अगर आप फोर्थ कोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली आप ऑनर्स की डिग्री आपको मिलती है। जितिन जी ने यहाँ पर एक सवाल उठाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शिखा जी नॉर्मली पेरेंट्स की हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, या हमारे बच्चे को ऑनर्स कोर्स मिल जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो ऑनर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बताना, और ये बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता है, बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, और वो स्टिक रहते हैं एक ही कोर्स पर, क्यों नहीं ये चीजें? आप खुद एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चलाती है, एजुकेशनिस्ट भी हैं, कमेटी में भी आप रही हैं एनईपी वाली में। मैम ये जानना चाहूंगी, 9th क्लास से जब स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, वहीं से क्यों नहीं बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन किया जाता, उस हिसाब से बताया जाता है कि आप एक जगह स्टिक नहीं रहिए, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को भी, आपके पास अगर आप इकोनॉमिक्स फील्ड में जा रहे हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, ये उनका डिप्रेशन भी कम होगा और वो रिलैक्स होकर आगे एग्जाम भी दे पाएंगे।
5: बिल्कुल, ये जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ना ये जो ब्यूटी है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है हमने पूरे एजुकेशन सिस्टम में, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसमें क्या है कि 9th-10th से ही अगर आपको जिस फील्ड में जाना है, वो फील्ड अगर आपके दिमाग में है, और सपोज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में, सपोज मैं इकोनॉमिक्स में जाना चाहती थी और मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिला, तो जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि इट इज़ वेरी इजी कि आपको जो अच्छा कॉलेज है आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, और आप एक और एड ऑन कोर्स ले लीजिए, और उसके अलावा जो बाकी भी बहुत सारे लोग दूसरे इंस्टीट्यूट्स के आते हैं और एड ऑन आपको कोर्सेज करा रहे हैं, जैसे आजकल अगर आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एक फील्ड निकल के आ रहा है और सब बच्चे उसमें जाना चाहते हैं, तो उसमें भी क्या है कि अगर आपको वो फील्ड नहीं मिली है तो आप उसके एड ऑन कोर्सेज ले लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और उसमें फिर फायदा क्या है कि अगर आपने बीए के टाइम पे 2-3 आपने एड ऑन कोर्सेज ले लिए, तो एक तो आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, पर जो आपके एड ऑन कोर्सेज भी होते हैं वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कर सकते हैं, और दूसरी बात जो 4th ईयर में जब आप डिसर्टेशन और रिसर्च वर्क करते हैं या प्रोजेक्ट वर्क करते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट आया तो उसके साथ आपने जो भी इंटर्नशिप करी, अगर उसमें आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिए, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको आगे तक जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या अपना कैरियर बनाने में वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वक्त अभी इतना ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और स्टूडेंट्स के तमाम डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है हमारे खास मेहमानों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: डेंगू से लड़ाई अब और आसान हो जाएगी। असल में भारत ने डेंगू की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ताकिदा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की वैक्सीन को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को बिना किसी जांच के 4 से 60 साल की उम्र के लोगों को लगवाया जा सकता है।

0: बरसात में सबसे ज्यादा जो चीज डराती है वो है बरसाती बीमारियाँ, और इनमें सबसे खतरनाक है डेंगू। हमारे देश में ये बीमारी हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो हर साल डेंगू से देश में औसतन 100 से 500 तक मौतें होती हैं। आंकड़ा बड़ा है, लिहाजा सरकार सालों से इससे बचाव के उपाय ढूंढ रही थी, और आखिरकार हम इसमें कामयाबी मिल गई है। देश में पहली बार डेंगू की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने टाकेदा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया की वैक्सीन क्यूरेंगा को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। कंपनी के मुताबिक ये वैक्सीन 4 से 60 साल तक के लोगों को लगाई जा सकेगी। इसकी डोज लेने से पहले डेंगू की जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। ये वैक्सीन डेंगू वायरस के सभी 4 सीरोटाइप से असरदार तरीके से सुरक्षा देगी। इसकी 2 डोज दी जाती हैं। प्रत्येक डोज 0.5 मिलीलीटर की होती है और त्वचा के नीचे इंजेक्शन के जरिए लगाई जाती है। दोनों डोज के बीच 3 महीने का अंतर रखा जाता है। क्यूरेंगा को WHO की प्री क्वालिफिकेशन भी मिल चुकी है, मतलब ये वैक्सीन गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरी है। क्यूरेंगा को भले ही अब भारत में मंजूरी मिली हो, 43 देशों में इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। क्यूरेंगा असल में जापानी कंपनी टाकेदा की खोज है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत इसका उत्पादन देश में ही होगा। इसके लिए टाकेदा ने हैदराबाद की जानी मानी फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ करार किया है। अगर इस वैक्सीन का निर्माण देश में ही होता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये आम लोगों की जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इतिहास जब किताबों के पन्नों से निकलकर आंखों के सामने जीवंत हो जाए तो नजारा सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि रोमांच से भर जाता है। रोमानिया में ऐसा ही अनोखा उत्सव हुआ जहां पर करीब 2000 साल पुराना रोमन और डेशियन दौर को रिक्रिएट किया गया।

0: चमकती ढालें, सिर पर लोहे के हेलमेट, हाथों में भाले और सीने में इतिहास को दोबारा जीने का जुनून। रोमानिया की खूबसूरत वादियों में जब अतीत ने दस्तक दी तो नजारा कुछ ऐसा था जिसे लोग बस देखते रह गए। रोमानिया के पुयाना में गेटोडावा महोत्सव में सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। जहां कभी रोमन साम्राज्य की ताकत की नुमाइश हुई तो कभी डैशियन योद्धाओं का साहस लोगों के आकर्षण का केंद्र बन। सिर्फ तलवारें ही नहीं, यहां हर हेलमेट, हर ढाल और हर पोशाक उस दौर की कहानी कह रही थी जिसे इतिहास की किताबों में पढ़ा जाता है। उसे इन कलाकारों ने अपनी मेहनत और जुनून से आंखों के सामने जीवंत कर दिया। ये उत्सव सिर्फ तलवारों के खनक तक सीमित नहीं था। एक तरफ जहां धनुष की प्रत्यंचा से छूटे तीर इतिहास के सटीक निशानों को भेद रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अप्सराओं के वेश में नृत्य करते कलाकारों ने माहौल में संगीत और रंग घोल दिए।
1: Foarte mic, cam m-am tot adus la festivale și vin pentru că am o pasiune pentru istorie și îmi place foarte mult aici.
0: गेटोडावा महोत्सव ये साबित करता है कि इतिहास अगर सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाए तो वो याद तो रहता है, लेकिन जब वही इतिहास आंखों के सामने जीवंत हो उठे तो वो आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा के लिए रच बस जाता है। ये उत्सव विरासत को संजोने का ऐसा खूबसूरत तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: सोचो जहां तक भी नजर जाए सिर्फ चमचमाती बर्फ की चादर हो, तापमान शून्य से नीचे हो, क्या ऐसी जगह है पर दौड़ना संभव है? भले ही आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, आपको ये भी लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे जुनूनी लोगों की कमी नहीं है जो बर्फीले महासागर पर आयोजित मैराथन में हिस्सा लेते हैं। आपको दिखाते हैं।
3: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के समंदर में खड़ा जहाज, एक एक का जहाज से उतरते प्रतिभागी, माइनस डिग्री में तापमान, चारों तरफ जमा देने वाली बर्फीली हवाएं। नॉर्थ पोल पर कुछ ऐसा ही नजारा था जब दुनिया की सबसे अनोखी नॉर्थ पोल मैराथन का आगाज हुआ। ले कमांडर शार्को जहाज पर सवार होकर 7 देशों के 22 जाबाज एथलीट नॉर्थ पोल मैराथन में शामिल होने पहुंचे। आलम यह था कि मैराथन का ट्रैक भी तैरती बर्फ की परत पर तैयार किया गया। ट्रैक 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा तैयार किया गया, जहां प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए पोलर बियर पेट्रोलिंग टीम भी तैनात रही ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे ये कोई आम मैराथन नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जहां सड़क नहीं बल्कि तैरती हुई बर्फ की चादर ट्रैक बनती है और कुछ ही घंटों बाद वही ट्रैक आर्कटिक महासागर में गायब हो जाता है। यहाँ तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, इसलिए धावकों को लाइफ जैकेट और थर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य था और मैराथन पूरी करने के लिए उन्हें ट्रैक के 40 चक्कर लगाने पड़े। इस अनोखे मैराथन में चीन के शंगशियान वांग ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, वही महिलाओं के वर्ग में डेनमार्क की रिक्के डैम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी अपने नाम की। कुल मिलाकर बर्फ, उबर खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और हर कदम पर चुनौती, लेकिन इन धावकों ने साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो दुनिया का आखिरी छोर भी मंजिल बनने से नहीं रुक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं? क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं? क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए 4 बजे से मैं आपके साथ शो कर रही थी, आपको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में बता रहे थे, तो मैं स्टूडियो से बाहर गई नहीं हूँ। मुझे नहीं पता बाहर का मौसम कैसा है, जरा इन सबसे पूछ रहे थे। आप लोग अभी अभी आए हैं,
4: धूप निकली है बाहर, अच्छा कि आप नहीं गए।
3: अच्छा,
4: बारिश होती तो मैं आपको बोलती कि आप जाइए बाहर,
3: पर दिन की शुरुआत अच्छी हुई थी क्योंकि बारिश हुई थी।
5: फाइनली हम कह रहे थे ना टीजर दे रहा है मानसून, अब फाइनली बारिश हो रही है,
3: हो रही है। अच्छा ठीक है, धूप तो खिली हुई लेकिन मौसम में ठंडक है या गर्मी
5: सी? थोड़ी ह्यूमिडिटी तो हो रही है ना,
4: इतनी खुल के बारिश नहीं हुई है, उसने ह्यूमिडिटी को और बढ़ाया है।
3: खुल के हमारे यहाँ हो ही नहीं पा रही है, लेकिन एक ही दिन बारिश हुई थी। तो यही है, कहीं धूप और कहीं बारिश, बस यही है आज की खबर। शुरुआत हम इसी से करेंगे, कहाँ कहाँ बादल बरस रहे हैं और कहाँ कहाँ लोग तरस रहे हैं बारिश के लिए, ये सब आपको आगे बताएंगे।
4: नमस्कार, मैं हर्ष गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक राहत के बादल बरस रहे हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव कई जगहों पर आफत लेकर आया है। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात और रिहायशी इलाकों में जल भराव में फंसे लोगों को कैसे बचाया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको देंगे।
5: नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए बात होगी मौसम की, क्योंकि बादल जो है फाइनली बरसने लगे हैं दिल्ली एनसीआर में, और बात होगी आस्था और भक्ति की, क्योंकि पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भक्तिमय माहौल है। देखिए महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में ठहरे हुए हैं फिलहाल, और कल हुई हेरा पंचमी के बाद अब एक और परंपरा जिसे कहते हैं दक्षिण मोड़ा वो निभाई गई। ये परंपरा क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे।
6: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज दोबारा से बड़े पर्दे पर जादू बिखेर रही है। अरिजीत की आवाज में एक नई फिल्म का टाइटल ट्रैक सुनकर म्यूजिक लवर्स और अरिजीत के फैंस का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ चुका है। तो क्या है ये पूरी खबर, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
4: चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.5 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी भी है। हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, 30 जुलाई से शुरू होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। पुरी की सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला, गुंडीचा मंदिर में भक्त कर रहे महाप्रभु के दर्शन, बाहुड़ा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा, श्राइन बोर्ड की भक्तों

0: जल पुलिस, पीएसी और एनडीआरएफ। असम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। शंघाई के आइस एंड स्नो वर्ल्ड में 10 पेंगुइन्स की एंट्री, पर्यटकों के लिए पेंगुइन परेड की शुरुआत, गर्मी के बीच खास तरह से डिजाइन किया गया पार्क। तो जो शुरुआत में हमने बात की है उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए जिस चीज का इंतजार था वो फाइनली एक छोटा सा टीजर, आई वुड से कि इट्स अ ट्रेलर, है ना, पिक्चर तो भी बाकी है।
1: कितना पिक्चर का इंतजार हम कर रहे हैं।
0: कब हम थिएटर में जाके फुल पिक्चर देखेंगे?
2: मैं उसके क्लाइमेक्स पे पहुंचना चाहती हूँ।
1: क्लाइमेक्स अभी कुछ दिन पहले आया था, क्लाइमेक्स जब दिल्ली एनसीआर में जम के बादल बरसे थे और हालात ये हो गए थे कि गुड़गांव या फिर कई ऐसी कंपनियां हैं दूर दूर, जब लोगों को कह दिया गया था एम्प्लॉयज को कि भाई वर्क फ्रॉम होम आप कर लो, और नोएडा का जो हाल था वो तो हमने देखा।
0: मैसेज करने वाली थी सब लड़कियों को कि आज मौसम बड़ा अच्छा है तो लेट्स डू द
3: फ्लोरल
0: बेस्ट, दोपहर आते धूप।
3: देखो शगुफ्ता दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो कहते हैं बारिश ही नहीं आ रही है, बारिश ही नहीं आ रही है, और दूसरे लोग वो होते हैं जो बारिश आनी शुरू होती है, यार इतनी बारिश आ रही है ऑफिस ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, जलमग्न हो गए हैं सड़कें हमारी।
1: नहीं, हम तो ऐसे लोग हैं जो हम चाहते हैं कि बारिश आए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये एक डेढ़ महीना दो महीने होते हैं जब आप मानसून को एंजॉय करते हो, अदरवाइज तो नॉर्मली दिन रहते हैं।
3: ये बात भी सही है।
0: देखिए हमें तो राहत चाहिए, हमें तो खुश करती है और मूड और अच्छा हो जाता है, तो चिपचिपी गर्मी से तो देखिए राहत मिलती है, मानसून फिर से एक्टिव हो गया है, दिस इज द गुड न्यूज। अब खास तौर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में राहत वाले मानसूनी बादल बरस रहे हैं, इनके अभी कुछ और दिन आसमान में रहने के पूरे आसार हैं।
3: तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर और कई दूसरे शहरों में मानसून की एक्टिविटी कैसी है।

एक बार फिर मॉनसून की झमाझम वापसी हुई है। गर्मी और उमस से आजादी मिली तो बरसात का एहसास भी ये बौछारें खूब दे रही हैं, हर दिल को सुकून पहुंचा रही हैं। दिल्ली के आसमान में कल से ही बादलों की आवाजाही लगी हुई है, कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई और ये सिलसिला आज सुबह भी नजर आया। राजधानी के आईटीओ, नीति बाग, जंतर मंतर और आईजीआई जैसे और इलाकों में सुबह सवेरे पड़ी बारिश की बौछारें ये दर्शाने के लिए काफी हैं कि अब मानसून स्पीड पकड़ रहा है। जाहिर है राजधानी और आसपास जिस तरह से कई दिनों उमस और चिपचिपी गर्मी पड़ रही थी उसकी मार को इन मानसूनी बयारों ने काफी कम कर दिया है। भले ही सड़कों पर रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है लेकिन मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया है। मौसम विभाग का भी कहना है कि दिल्ली और नोएडा, गुरुग्राम जैसे सटे एनसीआर के इलाकों में फिर से एक्टिव हुए मानसून की वजह से अगले 2 से 3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस लिहाज से इन जगहों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। वहीं इसी दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी संभावना है। मानसून के इस दौर में रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला 24 से 26 जुलाई तक जारी रहने का अनुमान है। फिलहाल तो दिल्ली आसपास आसमान में छाए बादलों के साए ने तापमान में गिरावट महसूस कराई हुई है जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी से काफी राहत मिल भी रही है। जाहिर है मैदानी क्षेत्रों के लिए बारिश गर्मी और उमस से राहत का पैगाम दे रही है तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए भी सौगात लेकर आई है। लेकिन मॉनसून केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी पूरी तरह एक्टिव हो गया है।

0: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है। इस लाजवाब मौसम का लुत्फ उठाने के लिए अच्छी खासी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख भी कर रहे हैं। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी की, जहां बारिश की फुहारों ने माहौल को एकदम कूल कूल कर दिया है। तो वहीं डोडा में भी मानसूनी बौछारों ने इलाके की हरियाली को तरोताजा कर दिया है। ये तस्वीर जम्मू में मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले पड़ाव कटरा यात्री निवास की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बावजूद तीर्थ यात्रियों का जोश बढ़ा हुआ है। हालांकि खराब मौसम को देखते हुए एहतियातन यात्रा को रोका गया है, लेकिन यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खाने पीने और ठहरने की माकूल व्यवस्था की हुई है। यही वजह भी है कि मानसूनी बौछारों को ये लोग इंजॉय करते भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो पूरे देश में मॉनसून एक्सप्रेस का इंजन दोबारा स्टार्ट हो गया है। बरसात के मौसम की गुड न्यूज भी दे रहा है। इन बादलों के कई राज्यों में बखूबी बरसने के भी आसार हैं, लेकिन मॉनसूनी बयार हो, फुहार हो या फिर बौछार, दिल को खुशी से भर देने वाला ये मौसम इस दौरान एहतियात बरतने का भी संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: प्रदेश में मानसून फुल रफ्तार में है। थोड़ी टेक्निकली अगर हम समझें तो 70% आसमान पर बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने कम से कम दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को गर्मी और उमस से राहत मिलने का संकेत दिया है।
2: तो चलिए आपको दिखाते हैं कि देश भर के मौसम का पूरा हाल, और साथ ही ये समझिए कि आखिर मानसून ने बरसने से पहले इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया।

0: ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि ब्रेक पर गया मॉनसून पुरानी रफ्तार में लौट आया है। कहीं फुहार, कहीं झमाझम तो कहीं मूसलाधार। एक तरह से कहें तो मॉनसून ने फिर से एक साथ कई दरवाजों पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर पंजाब तक आसमान में बादलों की कहीं कोई कमी नहीं है और अब ये बादल मॉनसून का बचा खुचा कोटा पूरा करने आ गए हैं।
1: लगातार उमस और बढ़ती गर्मी के बाद एक बार फिर से मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादलों का डेरा जो है वो लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। एक बार फिर से मॉनसून की वापस से एंट्री हो गई, हम ये बोल सकते हैं?
2: जी देखिए, मॉनसून की अभी फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं जिससे उत्तर पश्चिम भारत, उसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो है काफ़ी अच्छी वर्षा गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है। और हमारा अनुमान यही है, पूरा अनुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है।
0: लेकिन सवाल ये है कि आखिर मॉनसून ने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल कुछ दिनों के लिए बंगाल की खाड़ी शांत पड़ गई थी, नए लो प्रेशर सिस्टम नहीं बने, समंदर से नमी कम आई और मॉनसून की मुख्य पट्टी उत्तर की ओर खिसक गई। नतीजा ये हुआ कि बादलों ने कदम धीमे कर दिए, बारिश ने रफ्तार कम कर दी और कई राज्यों में सूरज ने फिर से अपना दबदबा बना लिया। लेकिन अब माहौल फिर से बदल गया है।
2: मॉनसून की जो वर्षा है वो बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस डिपेंड करती है, तो जिस क्षेत्र में अगर हम बात करें फेवरेबल मॉनसून की कंडीशंस बन रही होती है वहाँ पर वर्षा गतिविधि जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था जुलाई के पहले सप्ताह में जो पश्चिमी राज्य थे, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, साथ साथ में मध्य भारत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्वी भारत में उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में 9 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिली थी। अभी जो है मॉनसून एक्टिव कंडीशन देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है, जिसकी वजह से काफी अच्छी वर्षा जो है इन सभी क्षेत्रों में जो देखने की संभावना है।
0: अच्छी खबर यह है कि मॉनसून एक्सप्रेस का इंजन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। पूरे उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहां मैदानों में बारिश राहत लेकर आएगी, वहीं पहाड़ों में यही बारिश आफत बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, कुलगाम, श्रीनगर और अनंतनाग, जबकि उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है।
2: अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मैप में भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है।
0: इसकी वजह से अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी उमस से राहत का सीन दिल्ली एनसीआर में बन चुका है। मॉनसून की वापसी शानदार तो है, लेकिन ये वापसी कई इलाकों पर भारी भी पड़ सकती है। मसलन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ पहले ही बारिश से पूरी तरह।
3: देखिए, बारिश का इंतजार हम सभी को रहता है, लेकिन जब बारिश होती है तो कहते हैं ना, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो आफत भी लेकर आती है।
4: बिल्कुल, कुछ इलाकों की तस्वीरें तो हमने देखी हैं, दे आर नॉट गुड पिक्चर्स।
5: ज्यादातर हिल स्टेशंस पर ऐसी दिक्कतें होती हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम भी फिर अपना काम करती है, लोगों को बचाती है।
3: आपको लगता है, जो कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी दादी हमेशा कहती थी कि नदी और नाले इन दोनों ही जगह से दूरी बना के रखो, स्पेशली व्हेन इट इज रेनिंग, क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकता है।
6: इसीलिए थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, स्पेशली वो लोग जो पहाड़ों पर हैं, या फिर वो लोग जो अभी यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा हो, वैष्णो देवी यात्रा पर तो फिलहाल ब्रेक लगाई ही गई है।
3: बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो सैलानी है वो पहाड़ों का भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि मॉनसून है, मौसम सुहाना होता है और उसके साथ ही मुसीबत भी लेकर आता है। तो देखिए, पूरे देश में जहां एक बार फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है, देखिए जाहिर सी बात है कि गर्मी से बड़ी राहत भी ये दे रहा है, लेकिन वहीं इन मॉनसूनी बादलों के बरसने से कई राज्यों में नदियां और बरसाती नाले खतरनाक स्तर पर बह रहे हैं।
4: बिल्कुल, लोगों से लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, इन जगहों से आप दूर रहिए, हिदायत यही दी जा रही है, अपना बचाव खुद कीजिए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं।

0: उफनता दरिया और इस सैलाब के बीच फंसी जिंदगी को बचाने की कवायद। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में इन दिनों मानसून अपने तेवर दिखा रहा है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में भी पानी दाखिल होने लगा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में जब पानी के तेज बहाव में 13 जिंदगियां फंस गईं, तो भारतीय सेना के जवान फौरन हरकत में आ गए। थामंडी इलाके में फंसे लोगों को बचाने के लिए 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक तरफ जवान थे तो दूसरी तरफ मुसीबत में फंसे 13 लोग। बीच में बह रहा था उफनता दरिया। राष्ट्रीय राइफल्स के इन जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक छोर से दूसरे छोर तक एक मजबूत रस्सी बांधी। इस रस्सी के सहारे एक एक कर सभी लोग दूसरी तरफ आ गए। जो लोग खुद इस रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जाने लायक नहीं थे, उन्हें इन जवानों ने अपनी पीठ पर बैठाकर महफूज ठिकानों तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत की बारिश ने तमाम क्षेत्रों में लोगों के सामने नई चुनौतियां पेश कर दी हैं। गुलमर्ग श्रीनगर रोड पर तंग मार्ग में सड़क किनारे पानी का तेज बहाव कुदरत की चुनौती पेश कर रहा है।
1: मैं राजौरी की मनोवर नदी के नजदीक मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से उफान पे है राजौरी की ये मनोवर नदी। ये वही नदी है जिस नदी ने कहर मचाया था और कई लोगों को बेघर किया था। बड़ी प्राप्ति का लाश राजौरी जिला में हुआ था। इसी नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे वो लोग आज माइग्रेंट हैं। आज माइग्रेंट कैंप में वो लोग जो हैं रह रहे हैं। उफान पे है ये नदी। आप जरसर देख सकते हैं किस तरह से बड़ा हुआ है। लगातार हो रही राजौरी में बारिश की वजह से इस नदी का जलस्तर जो है वो उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये राजौरी की मनोवर नदी जो शहर के बीचों बीच होके जाती थी, इस नदी के उफान पे आने के बाद तबाही का मंजर राजौरी में देखने को मिला। और इस वक्त राजौरी जिला में जोरदार बारिश सुबह से हो रही है और जली नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि वो नदी के नजदीक ना जाएं, दूर रहें, बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें।
0: तेज बारिश की वजह से पुंछ के बुफियाज इलाके में पानी के तेज बहाव ने एक पुल को नुकसान पहुँचाया। इस नुकसान की खबर मिलते ही SDRF के जवानों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। गुरेज और किश्तवाड़ इलाके में फ्लैश फ्लड में ढेर सारा मलबा बहता दिखा। कारगिल में भी भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के बीच एक मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आर्मी के जवानों ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर यहां राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर किया। जम्मू कश्मीर ही नहीं, दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी इन दिनों आसमान से आफत की बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में तो कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। पांगी इलाके में नालों में आई बाढ़ की वजह से 11 मजदूर पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। इन मजदूरों को बचाने के लिए प्रशासन ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने एक मजबूत सीढ़ी की मदद से बहते दरिया को पार करने के लिए एक पुल बनाया। इस सीढ़ी की सहायता से ही मुसीबत में फंसे सभी 11 मजदूरों को बचा लिया गया। जुलाई के महीने आसमान से बरसता पानी लगातार नई चुनौतियां पेश कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि अगर हौसले बुलंद हों और तैयारियां पूरी हों तो कुदरत की चुनौतियों का सामना करना मुश्किल नहीं होता। गुरेज से मीर फरीद, राजौरी से शक्ति शर्मा और चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, अब अगर मॉनसून की एक्टिविटी के दौरान भारी बारिश हो रही है तो एहतियात जरूर बरतिए, ताकि अगर आप घर से बाहर निकले कहीं घूमने जाएं तो वो सैर सपाटा खुश तस्वीरों की याद आपको दे जाए। और अब क्योंकि कई टूरिस्ट प्लेसेस पर बारिश भी खूब हो रही है तो मौसम भी सुहाना बना हुआ है। ऐसे में खास तौर से पहाड़ों की हरियाली और वादियां पूरी तरह से खिल उठी हैं। कुछ ये तस्वीरें इन दिनों श्रीनगर में भी नजर आ रही हैं।
3: श्रीनगर में सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। डल झील की तस्वीरें आप देखिए, कैसे शिकारी की सैर हो रही है। मुगल गार्डन की हरियाली भी लोगों को खूब लुभा रही है। हर जगह पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ है। हवाएं ठंडी हैं, खुला आसमान है, हरियाली सैलानियों के सफर को यादगार बना रही है। होटल, हाउस बोट, स्थानीय बाजारों में भी पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग बेहद खुश हैं।
4: का जो पानी के ऊपर बोट पे रहने का इंतजाम है, ये देख के दिल खुश हो गया। तो ये तो पहले देखा हमने, पहले कभी नहीं देखा था। मौसम अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, तो मैंने सुना क्लियर होगा तो ज्यादा इसका जो गर्जियस ने सो निकल के आएगा। हमारा वहाँ अभी भी एसी चलाना पड़ता है, तो यहाँ का जो मौसम है मतलब बहुत ही आरामदायक है।
3: अब देखिए उत्तराखंड में तो मॉनसून के बीच आस्था का प्रवाह लगातार हो रहा है। चमोली में बसे बद्रीनाथ धाम में तेज बारिश और बढ़ती ठंड के बावजूद श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं।
2: और वहीं उत्तराखंड में पारंपरिक हरेला पर्व से हुआ सावन के महीने में पार्वती कुंड पर श्रद्धालु की काफी चहल पहल देखी जा रही है। दरअसल भारत चीन बॉर्डर से सटे पार्वती कुंड में हर साल सावन के अवसर पर सीमांत क्षेत्र के ग्रामीण जुटते हैं और वो वहां पवित्र स्नान कर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर श्रद्धा परंपरा और विश्वास की अद्भुत मिसाल पेश करते हैं।

0: पहाड़ों पर बरसते बादल, ठंडी हवाएं और हर कदम पर मौसम की परीक्षा, लेकिन भगवान बद्री विशाल के दर्शन की आस में श्रद्धालुओं का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालु सहज दर्शन भी कर रहे हैं। मानसून के बीच बद्रीनाथ यात्रा लगातार जारी है, तो ऐसे में रात के समय अक्सर बारिश होती है, जबकि सुबह मौसम साफ हो जाता है। इसी कारण श्रद्धालु आराम से दर्शन भी कर पा रहे हैं। बारिश के चलते अलकनंदा उफान पर जरूर है, लेकिन प्रशासन ने यात्रियों से इस दौरान खराब मौसम में एहतियात बरतने की सलाह खासतौर पर दी हुई है।
1: धाम में आना लगातार जारी है। मौसम की बात करें तो रोजाना रात्रि में चमोली जनपद में बारिश हो रही है, हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों में नुकसान की भी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जो बद्रीनाथ यात्रा मार्ग है वो तड़के सुबह ही पूरी तरह से खुला हुआ है और यात्रा लगातार जारी है बद्रीनाथ धाम में। इस समय जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, अच्छे दर्शन और सुगम यात्रा उनकी हो रही है, क्योंकि दिन भर बारिश पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही है। ऐसे में रात्रि की बारिश यात्रा पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्री इस समय बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, बहुत ही सुंदर उनके दर्शन हो रहे हैं और यात्री भी पूरी तरह से गदगद। हालांकि बद्रीनाथ धाम में बारिश, जो रात्रि की बारिश है, उसके बाद अलकनंदा नदी का जो बहाव है वो अपने पूरे विकराल रूप पे यहां पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मंदिर की बात करें या पैदल रास्तों की बात करें, यहां पे हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार मंदिर आते हुए और दर्शनों की लाइन में दिखाई दे रही है।
0: इस बीच धाम पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह भी बड़ा हुआ है। बारिश में लगातार भक्त मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि यात्रा का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए यादगार बन रहा है। दूसरी तरफ सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भारत चीन सीमा से सटी नीत घाटी का पार्वती कुंड भी श्रद्धा का केंद्र इन दिनों बना हुआ है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र स्थल पर दूर दराज गाँव के लोग विशेष अनुमति लेकर आए। उन्होंने पार्वती कुंड में स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की और पवित्र जल अपने गांव के शिव मंदिरों के लिए साथ लेकर गए।
1: चमोली में नीति घाटी में बाड़ा होती बॉर्डर, जो भारत चीन सीमा के समीप स्थित है, भारत चीन सीमा पर ही लगा हुआ है, यहीं पर मौजूद है पार्वती कुंड। पौराणिक से यहाँ की जो यात्रा है वो यहाँ के लोग करते हैं, खासकर नीति घाटी के जो भोटिया जनजाति के लोग हैं वो भारत चीन सीमा, भारत तिब्बत व्यापार जब होता था तब इसी रास्ते को यूज करते थे, इसी रास्ते का उपयोग करते थे, यहीं पे वे लोग सामान लेकर आते थे। और यहाँ पे पार्वती कुंड है जिसे पवित्र माना जाता है, और खासकर सावन का महीना जब पहाड़ों में शुरू होता है तो नीति घाटी के अलग अलग गाँव के जो दर्जनों गाँव हैं, यहाँ पे भोटिया जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों की जो यात्रा होती है, ये लोग यहाँ से पार्वती कुंड जाते हैं और वहाँ से जल लेकर वहाँ पे पहले तो वहाँ पे पूजा स्नान करने के बाद स्नान करते हैं और उसके बाद वहां का जल वो लेकर आते हैं और सावन के महीने में भोलेनाथ पर ये चढ़ाते हैं, इसलिए वो लोग सावन में वहां जाते हैं, खासकर अष्टमी और जो रक्षाबंधन है इस दौरान भी वहां पे पहुंचते हैं।
0: दरअसल भोटिया समाज के इन लोगों की ये परंपरा सदियों पुरानी है। हर सावन मास में ये समाज इसी तरह इस कठिन यात्रा को पूरा करता है। प्रशासन, भारतीय सेना और ITBP पूरे रास्ते भर सुरक्षा, चिकित्सा और भोजन जैसी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं। अब सीमा दर्शन योजना और आसान इनर लाइन परमिट व्यवस्था की वजह से ही देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु भी इस पवित्र स्थान तक पहुंचने लगे हैं। एक तरफ बादलों की चुनौती, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ों का कठिन रास्ता, लेकिन आस्था का सफर हमेशा हर मुश्किल से बड़ा साबित होता रहा है। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल का दर्शन हो या पार्वती कुंड में सदियों पुरानी परंपरा, आज भी उसी श्रद्धा के साथ आस्थावान यहां पर पहुंच रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फिलहाल एक ब्रेक और आगे देखिए। सांवलिया सेठ मंदिर में सामने आया करीब 29,68,00,000 रुपए का चढ़ावा।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
3: इसके ऊपर
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में आ रुकाव चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नगद के अलावा सोना चांदी की भी भेंट। हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, 30 जुलाई से शुरू होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। पुरी की सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला, गुंडीचा मंदिर में भक्त कर रहे हैं महाप्रभु के दर्शन, बहुड़ा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कटरा में फंसे श्रद्धालु के लिए मुफ्त लंगर सेवा, श्राइन बोर्ड की भक्तों से अपील, बनाए रखे धैर्य। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाट समेत कई छोटे मंदिरों पर आया बाढ़ का पानी, अलर्ट पर जल पुलिस, पीएससी और एनडीआरएफ। चलिए आपको पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। आज छठा दिन है, महाप्रभु अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में पधारे हुए हैं, जहां श्रद्धालु उनका स्वागत कर रहे हैं, दर्शन भी हो रहे हैं।
8: मोड़ा तो क्या है ये परंपरा, अब भगवान के रथ यात्रा में आगे क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं।

0: गुंडीचा मंदिर के बाहर सुसज्जित भगवान जगन्नाथ के इस रथ पर इन दिनों करोड़ों भक्तों की आस्था उमड़ रही है। महाप्रभु के रथ के साथ साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ भी गुंडीचा मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का छठा दिन है। भगवान अपनी मौसी के घर पधारे हुए हैं। भगवान के दर्शन के लिए अडापा मंडप में भक्तों की भीड़ है। भक्तों को यहाँ जगत के नाथ को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। जय जगन्नाथ के जय घोष हर ओर गूंज रहे हैं और गुंडीचा मंदिर की रौनक तो है ही अलग। हीरा पंचमी पर माँ लक्ष्मी के आगमन से उत्सव का रंग कुछ और गहरा हो गया है। माँ लक्ष्मी कल रात जब गुंडीचा मंदिर पहुंची तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। उनकी डोली के पहुंचने के बाद सबसे पहले उनका स्वागत किया गया, उनकी आरती उतारी गई, फिर माँ लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर के अडापा मंडप की ओर प्रस्थान की। माँ लक्ष्मी की सवारी देख भक्तों का उत्साह देखने लायक था। रथ यात्रा का आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। इस उत्सव की महिमा ही अनोखी है कि दूर दूर से लोग यहां खींचे चले आते हैं। हीरा पंचमी के अवसर पर भी यहां श्रद्धालुओं का मेला लगा है।
1: My first visit to Puri. How is my first visit to Puri? Very nice. It's the best experience of my life being here for Rath Yatra.
2: I love Rath Yatra. I never miss it.
3: Past time in Puri.
2: No, I've been in Puri 39 times. I used to live here.
0: एक और परंपरा भी निभाई गई, इसे दक्षिण मोड़ा कहते हैं। इस प्रक्रिया में वापसी की यात्रा के लिए रथों को मोड़ा जाता है। इसके बाद ये जांचा जाता है कि रथ ठीक है या नहीं, या फिर उन्हें मरम्मत की जरूरत है। अगर जरूरत है तो फिर उनकी मरम्मत की जाती है।
4: हम खुद देखते हैं कि रथ में अगर कुछ टूट गया हो, कुछ कील वील निकल गया तो सबको चेकिंग करते हैं और कुछ होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो नहीं करेगा। अभी तो इतना ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा मोरा कुछ खेल वेल कर दिया तो हमने शिपिंग कर लिया। फिर कल तो दक्षिण मोड़ बोलते हैं रथ को यूटर्न करना है।
0: जब से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ गुंडीचा मंदिर पधारे हैं, धूप हो या बारिश, भक्तों की लंबी कतारें हर दिन देखने को मिल रही हैं और उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, जहां सांवलिया सेठ मंदिर में आस्था और विश्वास का अद्भुत संसार समाया है। देश भर से लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां पहुंचते हैं और अब इस आस्था के केंद्र से करोड़ों के चढ़ावे का आंकड़ा भी सामने आया है।
6: बिल्कुल, इस महीने सांवलिया सेठ मंदिर की दान पेटियां खुली तो नोटों की गड्ढियां और सिक्कों का अंबार निकला। गिनती पूरी हुई तो सामने करीब 29 करोड़ 68 लाख रुपए का चढ़ावा आया।

मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवरिया सेठ के प्रति भक्तों की आस्था अत्यंत गहरी है। यहाँ हर दिन देश और दुनिया से भक्त आते हैं और सांवरिया सेठ का दर्शन कर भाव विभोर हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगने पर सांवरिया सेठ उसे जरूर पूरा करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ दिल खोल कर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस बार चढ़ावे की मासिक गणना के दौरान मिल रही भारी भरकम राशि को देखकर साफ हो जाता है कि सांवलिया सेठ के प्रति आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

जुलाई महीने में अब तक 6 चरण की मासिक गणना का काम पूरा हो चुका है और इन 6 चरणों में 29 करोड़ 68 लाख 83 हजार 955 रुपए की नकद राशि प्राप्त हो चुकी है। चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी। पहले ही दिन की गणना में जब 10 करोड़ 11 लाख की राशि मिलने की पुष्टि हुई तो मंदिर प्रशासन को ये लग गया कि भक्तों ने तो खुले दिल से दान दिया है। आपको बता दें कि भंडार से मिला सोना चांदी का वजन और भेंट कक्ष में नकद मनी ऑर्डर और भेंट स्वरूप मिले सोने चांदी की गणना अभी हो रही है। गणना का काम संपन्न होने के बाद ही पता चल पाएगा कि मंदिर में दान स्वरूप कितना सोना चांदी मिला है। हालांकि इस बीच सावलिया सेठ के किसी श्रद्धालु ने 20 लाख रुपए की सोने की बांसुरी जरूर भेंट की है, जो चर्चा का विषय बन गई है।

0: आपको बता दें कि सांवलिया सेठ मंदिर में मिले चढ़ावे की गणना काफी पारदर्शी तरीके से की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और कई बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि श्री सांवलिया सेठ पर अर्पित प्रत्येक भेंट केवल दान नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और भक्ति की अभिव्यक्ति है, जो इस पावन धाम की आध्यात्मिक महिमा को और ज्यादा गौरवान्वित करती है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, भले ही बप्पा के आगमन में अभी लगभग 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन उनके स्वागत की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो चुकी हैं। देखिए, गणपति दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं।
2: बिल्कुल, देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा पंडाल के बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में बप्पा के स्वागत की तैयारियां की जा रही है। यहाँ अलग अलग डिजाइन, इको फ्रेंडली आसन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।

0: गणेश चतुर्थी में अभी वक्त है, लेकिन उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए, लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है, और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहति जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: ये बापा के लिए आसन है एक से बढ़कर एक, शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वाटरफॉल आसन तक, और छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन तक भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साईं रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बाप्पा के लिए इस आसन को चुन रहे हैं। जब मौका बाप्पा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बाप्पा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स और उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं। इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाला सारा सामान पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। अब बस बाप्पा के भक्तों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ पंडालों, घरों और दफ्तरों में बाप्पा की मूर्तियां स्थापित होंगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे किस बॉलीवुड फिल्म में गूंज रही प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह की एक बार फिर से आवाज।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं, क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: और असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है।
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: इनकी आवाज जब दोबारा से मैंने सुनी है ना, ये गाना जब मैंने सुना है तो एक तो मैं नॉस्टैल्जिया में चली गई, 90s में चली गई, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों मैं फिर से लव सॉन्ग्स को सुनना पसंद करती हूँ। इतनी अच्छी आवाज, इतना अच्छा गाना सुना
2: ना, खाना के उनके आवाज है ना, जादू कर देते
3: हैं। और एक दौर भी ऐसा आया था कि सिर्फ उन्हीं के गाने आते थे हर मूवीज में, क्योंकि तुम ही हो, मतलब वो तो एक एंथम बन गया था, लव एंथम सबके लिए।
1: जो कोई फेवरेट सॉन्ग है?
4: नहीं नहीं, सारे इनके बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं।
1: आवारापन देखी ना?
4: आवारापन देखी, और अब हम सेकंड का भी वेट कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि उससे पहले वन शायद से दोबारा रिलीज हो रही
3: है, होनी चाहिए।
4: अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज एक बार फिर से आपको बड़े पर्दे पर सुनने को मिलेगी। अरिजीत सिंह ने इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म आवारापन 2 के टाइटल ट्रैक का ये आवारापन है गाना जो इसको आवाज दी है।
5: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है।

0: क्या अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग में कमबैक कर लिया है? क्या सचमुच अरिजीत सिंह ने सन्यास के अपने फैसले को पलटते हुए फिल्मी दुनिया में वापसी कर ली है? अगर ऐसा है तो फिर बीते 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि अरिजीत सिंह को वापसी पर मजबूर होना पड़ा है? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन मुकेश भट्ट की अपकमिंग फिल्म आवारापन 2 के रिलीज हुए टाइटल ट्रैक ये आवारापन की बात की जाए तो इस सैड सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने अपनी दर्द भरी आवाज से पिरोया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट से वापसी करते हुए आवारापन 2 का ये गाना गाया है, या अरिजीत इस गाने की रिकॉर्डिंग पहले ही कर चुके थे, या फिर ये गाना भी उनके संन्यास से पहले के कमिटमेंट का हिस्सा है, जैसा कि आमिर खान की फिल्म एक दिन के लिए उन्होंने एक गाना गाया था। दरअसल इसी साल 27 जनवरी की रात 9 बजे अरिजीत सिंह ने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए प्लेबैक सिंगिंग से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अरिजीत ने कहा था कि आगे से प्लेबैक सिंगर के तौर पर वो कोई नया असाइनमेंट नहीं लेंगे, मतलब वो अब से फिल्मी गाने नहीं गाएंगे। हालांकि उनका संगीत का सफर जारी रहेगा, जो कि उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट के जरिए जारी भी रखा है। अब करीब 6 महीने बाद सुरों के इस शहंशाह की आवाज में एक नया गाना सामने है। वजह जो भी हो, लेकिन सच तो यही है कि उनकी आवाज के मुरीदों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। बताया ये भी जा रहा है कि आवारापन 2 के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट के कहने पर ही अरिजीत ने अपने फैसले में बदलाव किया है। विशेष भट्ट और विशेष फिल्म से अरिजीत का दरअसल 15 साल पुराना रिश्ता है। विशेष फिल्म्स ने ही सबसे पहले अरिजीत सिंह पर भरोसा किया और उन्हें मर्डर 2 में फिर मोहब्बत गाना दिया था, जिसने अरिजीत सिंह को एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। इसके बाद तो अरिजीत ने विशेष फिल्म्स के लिए कई सारे सुपरहिट गाने गाए। शायद यही वजह है कि पुराने दिनों को याद कर अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के अपने कमिटमेंट पर काबिज न रह सके हों और विशेष फिल्म्स के आग्रह पर गाने के लिए तैयार हो गए हों। फिलहाल ये सब कयास हैं। सच क्या है ये तो अरिजीत सिंह ही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्म मातृभूमि की, जिसको लेकर काफी बज भी बहुत लंबे समय से बना हुआ है। देखिए, फिल्म के रिलीज में हो रही देरी की खबरों के बीच अब मेकर्स ने फिल्म मातृभूमि का एक नया पोस्टर जारी कर दिया है।
2: बिल्कुल, दरअसल इस पोस्टर में लिखा है 2026, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म इसी साल रिलीज होगी। हालांकि डेट अभी कंफर्म नहीं है। इससे पहले ऐसी खबरें भी आ रही थी कि फिल्म 2027 के लिए टाल दी गई है।

मातृभूमि का ये पोस्टर रिलीज डेट का ऐलान नहीं, एक इशारा है जो ये बताता है कि सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2026 यानी इसी साल रिलीज होगी।

फिल्म के पोस्टर पर 2026 में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे इस बात का हिंट मिलता है कि ये फिल्म इसी साल रिलीज हो जाएगी। हालांकि मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर किसी तरह के रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस पोस्टर ने फिल्म के रिलीज को लेकर फैंस की क्यूरियोसिटी तो बढ़ा ही दी है।

0: मातृभूमि का पोस्टर सलमान खान फिल्म्स की तरफ से जारी किया गया है। कैप्शन में लिखा है, एक सैनिक का वादा, एक परिवार की ताकत, एक राष्ट्र का गौरव। इसी के साथ पोस्टर पर हरसाज भारत के लिए कुछ बॉन्ड खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं, दिल से देश के लिए, ऐसे स्लोगन लिखे गए हैं। यहाँ गौर करने वाली एक बात और है, पोस्टर पर सलमान खान द्वारा निर्मित फिल्म लिखा गया है। पोस्टर से डायरेक्टर अपूर्वा लखिया का नाम गायब है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अपूर्वा इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। पहले खबरें आ रही थी कि फिल्म 2027 के लिए टल गई है, हालांकि सलमान खान ने इस बात का खंडन किया था। और अब मातृभूमि का यह नया पोस्टर भी यही हिंट दे रहा है कि फिल्म इसी साल रिलीज की जा सकती है।
1: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और अब राजनीति में कदम रख चुके विजय थलपति की फिल्म जननायकन को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है और मेकर्स ने इसका एक नया जबरदस्त टीजर जारी किया है। सुपरस्टार विजय एक बार फिर से बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाने को तैयार है। फिल्म जननायकन 23 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।
2: बिल्कुल, फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक्शन, दमदार डायलॉग्स और विजय का स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। विजय इस फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज उनका देखने को मिल रहा है। वजह सिर्फ विजय की स्टार पावर नहीं बल्कि फिल्म से जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं हैं। विजय तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हैं, ऐसे में उनकी फिल्म जननायकन को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है।
3: किसने भेजा है?
4: Come, let's play a game. आज से 30 दिन बाद।
5: तो चलिए, यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: पॉज, अनरैप अ पीस ऑफ फाइव गम, लेट द कूल रश ऑफ पेपरमिंट फ्लड द मोमेंट, द इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑफ स्पीयरमिंट अवेकन योर पैलेट, फील अवेयरनेस अराइज, द एटमॉस्फेयर It crackles with the thrill of being alive. Listen, taste, smell, feel, observe. That presence, that's the power of Five. Five gum. Stimulate your senses. It starts at your local Speedway.
8: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: Good news today isliye acha lagta hai, iske andar na उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देखिए, सपना तो कोई भी देख सकता है मगर उसे सच करने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाते हैं। ऐसे ही दो होनहारों की आपको कहानी आज दिखाते हैं, जो राजस्थान के कोटा के रहने वाले हैं। सूरज और आर्यन नाम के इन युवाओं ने जिंदगी की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए नीट क्लियर किया है।
2: बिल्कुल, देखिए, सूरज, सुमन और आर्यन ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो गरीबी, अभाव और मजबूरियां भी मंजिल का रास्ता नहीं रोक पाती। यानी अब इनके हाथ स्टेथोस्कोप थामकर मरीजों का इलाज भी करेंगे।
10: जो हाथ कभी गांव कस्बों में लोगों के घरों की पुताई कर परिवार का खर्च चलाने में मां का सहारा बनते थे, वो हाथ अब स्टेथोस्कोप थामकर मरीजों का इलाज करेंगे। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे के रहने वाले सूरज सुमन ने साबित कर दिया है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें देखने का साहस रखते हैं। पैसों की तंगी के बावजूद अभाव और गरीबी को सूरज ने कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। घर चलाने के लिए माँ बहन खेतों में मेहनत मजदूरी करती रहीं, रंगाई पुताई करती थीं, जिसमें सूरज भी हाथ बटाया करते थे। बावजूद इसके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए सूरज दिन रात जुटे रहे। नतीजा, नीट परीक्षा में सूरज ने 583 अंक हासिल किए।
11: उसमें मैंने सेल्फ स्टडी से ही वो पेपर दिया था जिसमें मुझे 350 अंक मिले थे, जिससे उसका कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर मैंने एक साल ड्रॉप लेके एलन से नीट की तैयारी की और इस साल मेरा बेहतर रिजल्ट और परिणाम आया है।
10: सूरज के सपने को पूरा करने में कोटा के एक कोचिंग संस्थान का भी खासा योगदान रहा, जिसका शिक्षा संबल कार्यक्रम सूरज के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसे पढ़ाई के साथ रहने खाने पीने समेत तमाम सुविधाएं मिली, जिसका सूरज ने अपने सपने को साकार करने में पूरा फायदा भी उठाया। सूरज की तरह ही आर्यन ने भी जिंदगी की तंगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आर्यन के पिता पूरे परिवार के साथ पहले ही बूंदी से कोटा आकर बस गए थे। घर चलाने के लिए स्टेशनरी का छोटा मोटा काम करते थे। पिता को पैरालिसिस अटैक के बाद बड़े भाई ने घर चलाने की जिम्मेदारी संभाली। छोटे से घर में संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की नहीं। पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहे आर्यन को स्कॉलरशिप मिली और आर्यन ने खुद को मेडिकल की तैयारी में झोंक डाला। आर्यन को नीट परीक्षा में 610 नंबर मिले। अब अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का इंतजार है।
12: तो मेरे पापा को पैरालिसिस आ गया था जब मैं 11th में मोशन में था, तो फिर पापा को जैसे पैरालिसिस आया तो फिर मन में डर बैठने लगा कि अब घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, कैसे क्या होगा, मेरी फीस कौन जमा करेगा, क्योंकि पापा ही करता धरता थे सब, पापा ही कमाने वाले थे। पापा की जो वन साइड थी वो पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, तो फिर पापा की जॉब भी हाथ से चली गई थी। तो फिर भैया ने सारी चीजों को संभाला, भैया ने खुद की पढ़ाई रोकी और भैया ने बोला कि मैं घर गृहस्थी को संभालूंगा, तो तेरी पढ़ाई को जा।
10: सूरज और आर्यन की कहानी बताती है कि हालात कठिन क्यों ना हो, इरादे अगर मजबूत हो, संकल्प पक्का हो, परिवार का साथ हो, तो एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, रखिए अपना ख्याल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात 5:00 PM चाय पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं, क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
14: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
2: चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोने चांदी की भी भेंट। हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, 30 जुलाई से शुरू होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। पुरी की सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला, गुंडचा मंदिर में भक्त कर रहे महाप्रभु के दर्शन, बाहुड़ा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण किया गया। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा, श्राइन बोर्ड की भक्तों से अपील, बनाए रखें धैर्य। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाट समेत कई छोटे मंदिरों पर आया बाढ़ का पानी, अलर्ट पर जल पुलिस, PSC और NDRF।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता, साहिल देव, आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। GNT स्पेशल में आज बात उस छप्पड़ फाड़ चढ़ावे की जो दिया गया है उनके द्वार पर, जो खुद दुनिया को सब कुछ देते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर, सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भगवान के खजाने में जमकर धन बरसा है। एक महीने के भीतर भक्तों ने भगवान के दर पर इतना चढ़ावा अर्पित किया कि ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई। आपको ये बता दें कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण के सांवलिया सेठ स्वरूप की पूजा की जाती है। सांवलिया सेठ को श्रद्धालु अपने कारोबार का साझेदार मानते हैं और अपने व्यापार के हानि लाभ का भागीदार मानकर न केवल उनकी पूजा करते हैं बल्कि अपने मुनाफे का भाग भी उन्हें अर्पित कर देते हैं। भगवान को भक्त न केवल कैश बल्कि सोने चांदी और दूसरे रूपों में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं और यही वजह है कि साल दर साल भगवान श्री सांवलिया सेठ जी का खजाना भरता ही जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं आपकी बार सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने कितना और क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया है।

जिनसे पाया उन्हीं को दिया, भेजने वाले भी वो और पाने वाले भी वो। यूं तो भक्त और भगवान के बीच भाव के सिवा किसी और पूंजी का कोई मोल नहीं, लेकिन फिर भी आस्था में अभिभूत भक्त अपने आराध्य के दर पर खाली हाथ कहा जाते हैं। और फिर सावलिया

0: रुपए के करीब नकद राशि दान पेटी से निकली है, जबकि लगभग 8,45,00,000 रुपए मनी ऑर्डर के जरिए और ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भक्तों ने सावलिया सेठ के दरबार में 1 किलो 48 ग्राम सोना और 103 किलो 497 ग्राम चांदी भी अर्पित की है। चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी, उसके बाद से 7 चरण में गणना का काम पूरा हुआ है।
1: 7 चक्रों में गणना हुई है 7 दिन तक लगातार, उसमें 38,23,13,000 रुपया और 1 क्विंटल 3 किलो चांदी और 1 किलो 147 ग्राम सोना, 1 किलो 148 ग्राम और कुछ मिलीग्राम सोना है। ये भेंट कक्ष और भंडार दोनों को मिला करके ये दान राशि प्राप्त हुई है।
0: सोने के आभूषणों के अलावा सांवरिया सेठ को एक श्रद्धालु ने 20,00,000 रुपए की सोने की बांसुरी भी अर्पित की है। आपको बता दें कि पिछले साल भक्तों ने सांवरिया सेठ मंदिर में 337 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। 34 साल पहले सांवलिया सेठ मंदिर के ट्रस्ट का गठन हुआ था, उसके बाद से यानी पिछले 34 सालों से चढ़ावे की रकम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और पिछले 34 साल में ये एक साल में आए चढ़ावे का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि बीते लगभग 4 दशक में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मंदिर के चढ़ावे में कमी आई हो, हर साल चढ़ावे की रकम बढ़ती ही जा रही है। खास तौर पर पिछले 5 सालों में यहाँ पर चढ़ावे और दान की रकम का आंकड़ा करोड़ों से बढ़कर अरबों में दर्ज किया गया है। साल 2021-22 में यहाँ 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा अर्पित किया गया, तो वहीं साल 2022-23 में ये रकम बढ़कर 130 करोड़ 51 लाख रुपए तक पहुँच गई। इसी तरह साल 2023-24 में चढ़ावे का आंकड़ा 166 करोड़ 65 लाख रुपए तक रहा, तो वहीं 2024-25 यानी पिछले साल इस मंदिर में 235 करोड़ 96 लाख की रकम चढ़ावे के रूप में आई और इस साल यही रकम बढ़कर 337 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
1: मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि सांवलिया जी नगरी में जन्म लिया और मैं बड़ा हुआ हूं। जब मैं रुपए पैसे में समझने लगा उस समय 1,000 रुपए पूरे नहीं निकलते थे और हर बार जब 1,000 कम थे, 900 थे, वो 1,000 हुए, 1,000 से 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और आज करोड़ों में रुपया भंडार से निकलता है। तो भंडार सांवलिया सेठ का हमेशा बड़ा ही है, घटा कभी नहीं है। सांवलिया सेठ के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्योते बड़े बिन खर्चे घटी जात, पर हमने घटता हुआ देखा नहीं है, हमेशा बढ़ता हुआ ही देखा है।
0: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये भगवान श्री कृष्ण का अनोखा धाम है, जहां आकर न केवल बिगड़े काम बन जाते हैं बल्कि कारोबार भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से सांवलिया सेठ से मनोकामना मांगे तो वे किस्मत बदल देते हैं, व्यापार में उन्नति कराते हैं और जीवन के संकट दूर कर देते हैं।
1: श्री सांवलिया सेठ हर व्यक्ति का, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, जो अच्छी श्रद्धा से, श्रद्धा भाव से भगवान के यहाँ आकर के जो कुछ मांगता है वो श्री सांवलिया सेठ सबकी मनोकामना पूरी करता है।
0: मान्यता है कि ठाकुर जी यहाँ सेठ जी के रूप में विराजमान हैं। एक बार अगर उन्हें अपने व्यापार में पार्टनर बना लिया तो बिजनेस बढ़ता ही जाता है, इसलिए खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के कई श्रद्धालुओं ने सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना रखा है। हर बार व्यापार में होने वाले मुनाफे की तय रकम वो बेहद श्रद्धा के साथ सांवलिया सेठ मंदिर में अर्पित कर देते हैं। भक्त यहाँ बाकायदा स्टाम्प और अमाउंट लिखवा कर लाते हैं। मन्नत पूरी होने पर अपनी कंपनी के लेटर हेड पर लिखकर लाखों की राशि यहाँ चढ़ावे के रूप में अर्पित कर जाते हैं।
2: भगवान सांवरिया सेठ मेवाड़ के ही नहीं अपितु पूरे देश भर में और देश के बाहर भी सांवरिया सेठ की महिमा दिनों दिन बढ़ रही है और जैसे कि नाम से सांवरिया सेठ हैं, तो जो भी भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो भगवान को अपने आजीविका में से काम

0: समाज में, व्यापार में श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर भागीदार बनाते हैं।
1: इसी आस्था की वजह से साल दर साल श्री सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया और साथ ही बढ़ता गया यहाँ आने वाला चढ़ावा। आपको बता दें कि इसी साल केवल अप्रैल महीने में ही यहाँ 41 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि अर्पित की गई। एक महीने में ही चढ़ावे की रकम का 41 करोड़ से अधिक का आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है। यही नहीं, इस दौरान भक्तों ने अपने आराध्य को करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का सोना भी अर्पित किया, जबकि लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी भी उन्हें अर्पित की गई। इससे पहले साल 2025 में सिर्फ दिवाली के अवसर पर ही मंदिर में 51 करोड़ से ज्यादा की रकम के चढ़ावे का रिकॉर्ड है। मेवाड़ में भगवान श्री कृष्ण के श्री सांवलिया सेठ स्वरूप को व्यापार के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त अपने व्यवसाय में सांवलिया सेठ को साझेदार बनाता है, उसे कभी घाटा नहीं होता। यही वजह है कि किसान से लेकर बड़े उद्योगपति तक अपने व्यापार में मुनाफे का 10% से लेकर 50% तक का हिस्सा भगवान को समर्पित करते हैं।
2: अभी लगभग 1000 करोड़ के आसपास बैंकों में और इनमें संपत्ति मिला करके, संपत्ति तो और अलग से है पर इतना लगभग है।
1: फिर मुनाफा होने पर मंदिर में आकर भगवान का हिस्सा चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। यही अनोखी आस्था इस मंदिर को विशिष्ट बनाती है। इसी वजह से समय के साथ मंदिर में चढ़ावे की ये राशि छोटी मोटी रकम नहीं रही बल्कि करोड़ों में पहुँच गयी। आपको बता दें कि साल 91-92 में यहाँ 65 लाख रुपए की रकम दान के रूप में आई थी। यही वो साल था जब चढ़ावे का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था। ठीक एक दशक के भीतर यानी 10 साल बाद साल 2000 आते आते चढ़ावे की रकम करीब 4 करोड़ तक पहुँच गई और इसके बाद के 5 सालों में इस रकम में और इजाफा हुआ। साल 2006 आते आते चढ़ावे की रकम बढ़कर 6 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। वहीं साल 2010-11 में साल के चढ़ावे की रकम 22 करोड़ तक पहुंची। इसी तरह 2015-16 में मंदिर के खजाने में 51 करोड़ 36 लाख रुपए दान के रूप में आए, जबकि 2021-22 में चढ़ावे की ये रकम बढ़कर 86 करोड़ को पार कर गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 30 सालों में मंदिर का चढ़ावा 340 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इस तरह साल दर साल यहाँ चढ़ावे में बढ़ोतरी ही हो रही है। भक्त यहाँ सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में सोना चांदी भी अर्पित करते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के लिए बाकायदा खास सिस्टम बना हुआ है। मंदिर में 1992 से लेकर 2025 तक श्रद्धालुओं के सामने ही दान और चढ़ावे की रकम की काउंटिंग होती थी। पहले यहाँ आने वाले श्रद्धालु सांवलिया सेठ जी के दर्शन के साथ साथ दान की काउंटिंग भी देखते थे, लेकिन पिछले साल जुलाई के बाद से व्यवस्था में बदलाव किया गया ताकि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। नई व्यवस्था के तहत दान राशि की काउंटिंग अब सत्संग भवन में की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। हर महीने चतुर्दशी के दिन मंदिर के दान पात्र खुलते हैं। भगवान सांवलिया सेठ जी की राजभोग आरती के बाद चढ़ावे की काउंटिंग का काम शुरू होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए करीब 200 लोगों को लगाया जाता है। इनमें बैंकों के कर्मचारी और मंदिर प्रशासन के लोग शामिल होते हैं। काउंटिंग प्रक्रिया में पहले हाथों से पैसे गिने जाते हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस पूरे प्रक्रिया में करीब 5 से 10 दिन का समय लगता है। सबसे पहले नोटों को और सिक्कों को अलग किया जाता है, इसके बाद 5 मशीनों से इनकी काउंटिंग होती है और अंत में चढ़ावे में आए गहनों का वजन किया जाता है। मंदिर में कैश के साथ साथ चेक, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावे की रकम आती है। विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण सांवलिया सेठ के खजाने में अब काफी विदेशी मुद्रा भी आ रही है, लिहाजा इस मंदिर की संपत्ति 1000 करोड़ के पार पहुँच चुकी है।
2: मंदिर का जो भी राशि आती, पहले तो मंदिर निर्माण में खर्च हो रही थी। मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ है, इसके बाद यहाँ की धर्मशालाएं हैं, मंदिर सांवलिया जी के आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, आसपास की सड़कें हैं, 16 गांव के विद्यालय हैं, यहाँ का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले में गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग हो या सांवली जिम में हॉस्पिटल बनाना हो, और आसपास के गांवों के जितने भी विद्यालय हैं छात्रों के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशाला बनाना, रोड बनाना और यात्रियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो भी अब खर्च होगा सारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही खर्च किया जाएगा।

0: मंदिर में भक्त केवल धन ही नहीं बल्कि अपनी मन्नतों के अनुसार अद्भुत और प्रतीकात्मक भेंट भी चढ़ाते हैं। अच्छी फसल होने पर किसान गेहूं की बालियां, लहसुन प्याज की चांदी की प्रतिकृतियां अर्पित करते हैं, तो अफीम के किसान चांदी के डोडे चढ़ाते हैं। वहीं झूठे मुकदमों से राहत मिलने पर भक्त चांदी की हथकड़ियां और बंदूकें चढ़ाते हैं, जो न्याय और मुक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। पिछले दिनों एक कारोबारी ने अपने पेट्रोल पंप के शुभारंभ की खुशी में यहाँ चांदी का फ्यूल डिस्पेंसर चढ़ाया, तो एक युवक ने अग्निवीर में चयन होने पर AK-47 की चांदी की प्रतिकृति अर्पित की। ऐसी अनोखी भेंट न केवल भगवान सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि भक्त कितनी शिद्दत से अपने जीवन की हर उपलब्धि और संघर्ष को अपने आराध्य को समर्पित करते हैं।
1: अपने अपने श्रद्धा है, यात्री जो श्रद्धालु आते हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस में रखता है, कोई अपनी खेतीबाड़ी करता है उसमें भी अपना सांवरिया सेठ का हिस्सा रखता है, कोई नौकरी करता है या कोई मजदूरी भी करता है वो भी अब सांवरिया सेठ का अपना हिस्सा अलग से रखता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई 1% रखता है, कोई 5%, कोई 10%, वो कोई हमारे सामने कोई फिक्स नहीं है।
0: अनोखा है चित्तौड़गढ़ का ये कृष्ण धाम, जो आस्था, विश्वास और ईश्वर को भागीदार मानने की अनूठी परंपरा का जीवंत उदाहरण बन चुका है, जहां हर चढ़ावे की एक कहानी है, हर भेंट के पीछे अलग भावना है, और उसी भाव से अर्पित चढ़ावे में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। फिलहाल मंदिर के चढ़ावे में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में श्री सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को चर्चा का केंद्र बना दिया है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मथुरा हो या द्वारका, पुरी हो या उडुपी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत भूमि के हृदय में बसे हैं श्री कृष्ण। अलग अलग रूपों में भगवान कृष्ण की पूजा देश भर में की जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के नाम से क्यों पूजे जाते हैं श्याम, इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक ऐतिहासिक गाथा है। दूर दूर से लोग साल भर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि भगवान की वही प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है जिनकी पूजा स्वयं संत मीराबाई किया करती थी।

मेवाड़ जिसकी धरा में जन्मे वीर शिरोमणि, जिसकी माटी को सींचा है शूरवीरों के रक्त ने, जहां आज भी खिलते हैं शौर्य और स्वाभिमान के फूल। शौर्य तीर्थ मेवाड़ की उसी माटी में कभी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का ऐसा बीज पड़ा था जो आज भी आस्था का विशाल वट वृक्ष बनकर चित्तौड़ की धरा पर लहलहा रहा है और सुना रहा है किस्से प्रेम के, भक्ति के, मीरा और उनके गिरिधर गोपाल के।

0: अनोखा धाम है चित्तौड़ का श्री सांवलिया सेठ मंदिर। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस मंदिर की बात निराली है, क्योंकि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सांवलिया सेठ के रूप में होती है। सांवलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सांवलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे सदियों पुरानी कहानी है, जो खुद में समेटे है भारत के इस भूभाग का रोचक इतिहास। असल में भगवान सांवलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा सहित चार मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई। दरअसल संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई वर्षों तक वहीं दबी रही। 1840 में मंडफिया गांव के एक नौजवान भोला राम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गईं। सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के निर्देशन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित कर दिया गया, जबकि तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोला राम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित कर लिया, और चौथी मूर्ति खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और इसी स्थान पर उसे वापस दबा दिया गया।
1: ठाकुर जी की स्थापना का 200 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, महिमा तब से ही चली आ रही है। आज 200 वर्षों से पहले ठाकुर जी भक्ति से उत्पन्न हुए थे, यहाँ पे सात की मूर्ति, तो अब तो पुजारी परिवार के वंशज थे और उनके ऊपर एक भोले राम जी थे, और उनके जो सपन में आए थे और उनके साथ में स्थापना हुई 200 वर्षों से। चमत्कार के रूप में देखा जाए तो सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। लोग यहाँ पार्टनरशिप साझेदारी उसके लिए भी ठाकुर जी विख्यात है।
0: यहीं से शुरू हुई सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक रूप से पूजा। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों सहित तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सांवलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कहानी अनोखी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहाँ आकर सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे भागों के व्यापारी भी यहाँ आकर सांवलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती के रूप में कभी शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान किया करते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपनी दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सांवलिया सेठ के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सांवलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आकर लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। शौर्य तीर्थ मेवाड़ में शान से खड़ा ये मंदिर आज भी जिंदा रखे है मीराबाई और उनके गिरिधर गोपाल की आस्था में पगी कहानियों को, और उन्हीं कहानियों की डोर थामे इस दिव्य धाम को देखने दुनिया भर के भक्त यहां आते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
3: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं? क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 35.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नगद के अलावा सोना चांदी की भेंट। हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने की समीक्षा बैठक, 30 जुलाई से शुरू होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। पुरी की सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला, गुंडीचा मंदिर में भक्त कर रहे हैं महाप्रभु के दर्शन, बाहुड़ा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा, श्राइन बोर्ड की भक्तों से अपील, बनाए रखें धैर्य। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाट समेत कई छोटे मंदिरों पर आया बाढ़ का पानी, अलर्ट पर जल पुलिस, पीएसी और एनडीआरएफ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, उमस से राहत। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान में छाए बादल, तापमान में गिरावट महसूस हो रही, हवा की गुणवत्ता में सुधार। मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट जारी कर दिया, मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान। डोडा में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, बारिश के बाद और भी मनमोहक नजारा। ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम को बनाया खुशनुमा, प्राकृतिक नजारों की खूबसूरत दोगुनी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी, जुलाई में स्पीति में बर्फबारी से बदल गया मौसम का मिजाज। लोग बर्फ की मोटी परत और ठंडी हवाओं के बीच नजारा कैद करते हुए नजर आए, गर्मी के मौसम में बर्फ के सफेद चादर ने लोगों को हैरान किया। बर्फ से ढकी पहाड़ियां बन गई हैं आकर्षण का मुख्य केंद्र, स्पीति में मौसम का अनोखा नजारा। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया, हालांकि अचानक बदले मौसम ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का यह बदलाव, आम धूप के बीच अचानक गिरी बर्फ।

0: श्रीनगर की डल झील पर पर्यटकों की बड़ी आमद, शिकारा राइड के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। बढ़ते टूरिस्ट से होटल और शिकारा कारोबारी किए खिले चेहरे। डल झील बनी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, शिकारा राइड के बढ़ते क्रेज से स्थानीय पर्यटन कारोबार खुश। डल झील की वादियों में लौट आई चहल पहल, होटल बुकिंग में तेजी, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले। श्रीनगर के खूबसूरत सैलानियों को कर रही है आकर्षित, घाटी में पर्यटन सीजन में पकड़ी रफ्तार। राजौरी में सेना का साहस, तेज बहाव वाले नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकाला। जान की परवाह किए बगैर जवानों ने फंते नाले में दिखाया जज्बा, बचाए गए लोगों को स्थानीय और लोगों ने भारतीय सेना को अपना असली जीवन रक्षक बताया। मेजर मोहित भिष्ट की अगुवाई में चले ऑपरेशन में बड़ा हादसा होने से टला, अचानक आई बाढ़ की वजह से 13 लोग फंस गए थे। बाढ़ प्रभावित असम में भारतीय वायुसेना ने संभाला मोर्चा, बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित शिवसागर जिले में हवाई बचाव और राहत अभियान के जरिए हेलीकॉप्टर तैनात। असम और पड़ोसी राज्यों में लगातार बारिश के कारण उफान पर है नदियां, बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों का पता लगाकर उन्हें एयरलिफ्ट कराने में जुटी हुई है रेस्क्यू टीम। चंबा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई हिस्सों में भूस्खलन, यातायात प्रभावित। सड़कें बहाल करने में जुटा प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें, जेसीबी और अन्य मशीनों की सहायता से मलबा हटाया जा रहा है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई, तटवर्ती इलाकों में भर गया पानी। नवसारी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के कई इलाकों में जलजमाव। जलस्तर बढ़ने से लो लेवल ब्रिज पूरी तरीके से पानी में डूब गया, जिसके चलते यातायात बंद कर दिया गया। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा हुई स्थगित, श्राइन बोर्ड की भक्तों से धैर्य रखने की अपील। कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा, यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने समीक्षा बैठक की। देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के पावन धाम हरिद्वार में आने वाले सभी शिव भक्त कांवड़ियों का सहर्ष स्वागत करने के लिए राज्य सरकार तैयार, 23 जुलाई से शुरू होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। सहारनपुर में कांवड़ियों के डीजे में बजने पर गानों तक रहेगी पुलिस की नजर, डीजे संचालकों संग पुलिस की बैठक। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों ने लिया फिल दिया टूट आस्था का प्रमाण, आया रिकॉर्ड चढ़ावा, नकदी के साथ भारी मात्रा में सोना चांदी। मंदिर की मासिक गणना में अब तक 29.25 करोड़ से ज्यादा का नकद दान हुआ प्राप्त। अब तक हो चुके 6 चरणों में गणना पूरी, चढ़ाने की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी। भेंट कक्ष में नकद, मनी ऑर्डर और भेंट स्वरूप में मिले सोने चांदी की गणना भी अभी शेष। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि रहते हैं मौजूद। बद्रीनाथ में बारिश के बीच भी आस्था बरकरार, मानसून अलर्ट के बावजूद श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह कायम। बारिश के बीच भी यात्रा सुचारू, भक्तों को आसानी से हो रही है दर्शन, रात की बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई, अलकनंदा नदी के जल स्तर पर लगातार निगरानी, श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील। बद्रीनाथ धाम में मिली सुविधाओं से श्रद्धालुओं के खिले चेहरे, फिलहाल बद्रीनाथ धाम मार्ग पर सुरक्षित और सामान्य। सोमवार को दिन भर स्थगित रही केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई, आज सुबह सोनप्रयाग से लगभग 1000 भक्तों को धाम भेजा गया। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल की अंतिम चरण में पहुंच गई तैयारियां, कल से शुरू होगा 7 दिवसीय खर्ची महोत्सव। मंदिर में रंगाई पुताई और सजावट का काम तेज, श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां पूरी। उत्सव के दौरान पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में, भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था। मेले में संस्कृति की दिखेगी झलक, का 7 दिनों तक का संस्कृति कार्यक्रम, लोक नृत्य और पारंपरिक आयोजनों से सजेगा खर्ची मेला। चतुर्दश देवता मंदिर सजाया गया, हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव आज भी छठा उसका दिन, आड़वा मंडप में दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। पुरी में बारिश के दौरान भी रथ यात्रा उत्सव आस्था और उत्साह के साथ जारी है, तापमान में कमी आने से लोगों को मिली राहत। रथ यात्रा उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का होता है विशेष श्रृंगार, संध्या काल में निभाई जाती है संध्या धूप, विशेष आरती और भोगी परंपरा। पुरी में अड़पा मंडपम में दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं लाखों श्रद्धालु, मान्यता के मुताबिक अड़पा मंडपम दर्शन से कई गुना मिलता है पुण्य। 7 दिन मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में रहते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, 24 जुलाई को होगी वापसी। अमेठी के सुनील के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष बना सहारा, मुफ्त में हुआ इलाज। आर्थिक तंगी नहीं बनी इलाज में रुकावट, सरकारी योजना से मिल गई नई जिंदगी। सरकारी मदद से बची जमीन बेचने की नौबत, परिवार ने जताया मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का आभार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में राज्य स्तरीय शाला के प्रवेश उत्सव का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री साय ने छोटे स्कूली बच्चों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव के जरिए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना मकसद। महाराष्ट्र के अमरावती में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धालु और उल्लास के साथ निकाली गई, एस्कॉन की शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। फूलों से सजे रथ पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मनमोहक प्रतिमाएं विराजमान। जूनागढ़ में गिरनार निर्वाण लड्डू महोत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। गुजरात के भावनगर में ड्रैगन फ्रूट की खेती में जिले के किसानों की किस्मत बदल गई, पारंपरिक फसलों के मुताबिक आमदनी में बढ़ोतरी। भावनगर में 30 से ज्यादा किसान कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती, आमदनी बढ़ने से परिवारों की आर्थिक स्थिति हो रही है बेहतर। अगले महीने होने वाले FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स की भारतीय टीम की हो गई घोषणा। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह भी होंगे कप्तान और डिफेंडर अमनदीप नकड़ा नजर आएंगे साथ में। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान, 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा मुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होने जा रही है भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अहम है यह सीरीज। BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी कर दिया टेंडर। ओ माई गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म ओ माई डॉग का ट्रेलर हुआ रिलीज। सलापति विजय की जन नायकन की रिलीज में 2 दिन अब बाकी, नया प्रोमो हुआ रिलीज। नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रिलीज होने जा रही ऑपरेशन सफेद सागर की शौर्यगाथा से जुड़ी है कहानी। 17 साल बाद पर्दे पर लौट रहे हैं फुनसुक वांगडू, 4 सितंबर को थिएटर में री रिलीज होने जा रही है आमिर खान की 3 इडियट्स। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशाना चक्रवर्ती की हुई सगाई, अपने मंगेतर के साथ सगाई की तस्वीरें शेयर की। मार्वल स्टूडियोज के एडवेंजर्स डूम्सडे का पहला फुल ट्रेलर हुआ रिलीज। एक्टर सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर एक नया और अहम अपडेट निकलकर सामने आया। साल 2026 में ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी ने रिलीज के चौथे दिन भी भारत में 8.35 करोड़ की कमाई की। इमरान हाशमी स्टार फिल्म आवारापन 2 के सॉन्ग आवारापन को अरिजीत सिंह ने दी है आवाज। धमालपुर की रिलीज के 11वें दिन कमाई के मामले में वर्ल्ड वाइड किया धमाल, 11वें दिन करीब 7 करोड़ का कलेक्शन। चीन में खुला एशिया का पहला विशाल एलईडी इमर्सिव स्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर। चीन के मशहूर क्यानजिंग इकोलॉजिकल लॉबस्टर सिटी के सामने स्थित है यह थिएटर। लगभग 54 मीटर है इस एलईडी इमर्सिव स्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर के डायमीटर। इसके गोलाकार बाहरी हिस्से पर लगे हैं एलईडी पैनल जिससे इस लाइव आउटडोर स्पोर्ट्स नजर आता है। एलईडी से लैसी विशाल इमर्सिव डोम वेन्यू देता है सिनेमा का एक अलग अनुभव। हॉलीवुड की अपकमिंग डार्क कॉमेडी फिल्म डिगर के लिए वॉर्नर ब्रदर्स ने जारी कर दिया एक नया फीफा वर्ल्ड कप ट्रेलर। फिल्म में 64 साल के तेल कारोबारी का रोल निभा रहे हैं टॉम क्रूज। अरूबा की सारा क्विटा ऑफरिंगा ने जीता फ्री स्टाइल विंड सर्फिंग वर्ल्ड टाइटल। 16 बार फ्री स्टाइल और 5 बार वेव वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं ऑफरिंगा। अरूबा की इस राइडर ने 17वीं बार अपने नाम किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप का यह टाइटल। शंघाई के याओक्स्यू आइस एंड स्नोबर्ड में आए नए मेहमान इस पार्क में प्यारे पेंगुइन्स नजर आए। इस आइस एंड स्नो वर्ल्ड में रहने आया एडली और जेंटू पेंगुइन का एक ग्रुप। कुल 10 प्यारे पेंगुइन्स बने हैं याओक्यू आइस एंड स्नो वर्ल्ड के नए मेहमान। पार्क में अब रोजाना होती है इन क्यूट पेंगुइन्स की परेड जिससे विजिटर्स इन पेंगुइन को बर्फ पर चलते हुए देखते हैं। चिलचिलाती गर्मी के बीच भी विजिटर्स को मिलता है विंटर वंडरलैंड जैसा अनुभव। वर्ल्ड कप फाइनल हार के बाद टीम अर्जेंटीना पहुंची लेकिन टीम के कप्तान लियोनेल मेसी फ्लोरिडा रवाना हो गए। फैंस ने सड़क किनारे किया टीम का स्वागत। एयरपोर्ट से एएफए मुख्यालय तक हजारों समर्थकों ने खिलाड़ियों का आभार जताया। स्पेन ने तोड़ा अर्जेंटीना का सपना। एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस के गोल से स्पेन ने 1-0 से जीत लिया। साल बाद इतिहास रचने से चूका अर्जेंटीना टीम 1962 से ब्राजील के बाद लगातार 2 पुरुष वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनने से चूक गई। कैप्टन लियोनेल मेसी ने फाइनल में मिली हार को बेहद दर्दनाक बताया। चीन ने पेश किया पहला एम्बॉडीड इंटेलिजेंस स्पेशलिटी रोबोट। अब ऊंचाई पर इंसान नहीं रोबोट करेगा काम। दूर बैठा इंसान रोबोट को आसानी से चला सकेगा। रोबोट प्लस प्लस का ये रोबोट शिप बिल्डिंग केमिकल टैंक का मेंटेनेंस और अन्य जोखिम भरे काम करने में सक्षम। रोबोट जंग पेंटिंग ग्राइंडिंग और इंस्पेक्शन के लिए बहुत जरूरतमंद। ह्यूमनॉइड आर्म्स और मैग्नेटिक प्लेटफॉर्म से लैस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं? क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: May I have your attention, please?
4: College shouldn't waste your time or your money. That's why WGU's programs are built with input from industry experts and updated regularly. So what you learn is what employers need right now. Practical skills, recognized certifications, real-world relevance that opens doors. Get an education that actually delivers. It's one that prepares you for the career you're chasing today and the opportunities that will shape your tomorrow. Learn more at wgu.edu.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: आज से करीब 27 साल पहले 1999 में भारतीय सेना ने करगिल जंग में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसे हम सब ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। सिल्वर स्क्रीन पर LOC, कारगिल, शेरशाह समेत ऑपरेशन विजय से प्रेरित कई फिल्में अब तक रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें हमने भारतीय सेना की शौर्य और जाबाजी देखी है। लेकिन इसी करगिल जंग में भारतीय वायुसेना ने भी अपना सबसे खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से जाना जाता है।
5: पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी कारगिल द्रास सेक्टर की सारी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन पोस्ट से वो हमारी नेशनल हाईवे 1 को टारगेट कर रहे हैं।
6: कश्मीर छीनना है,
7: हम नीचे से कुछ नहीं देख पा रहे हैं और वो ऊपर से हमारी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। उनकी हाइट की एडवांटेज को काउंटर करने के लिए वी नीड द एयरफोर्स।
8: वो तारीख थी 26 मई 1999, जब भारतीय वायुसेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अपना सबसे जाबाज और खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया था।
9: वाजपेयी साहब, ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है,
10: ये मुजाहिदीन है।
11: मुजाहिदीन सिंगल फाइल में नहीं चलते, सिंगल फाइल में तो आर्मी वाले चलते हैं।
12: टारगेट 18,000 फीट पर है, बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी।
13: श्रीनगर जाना।
8: ऑपरेशन सफेद सागर दुनिया के सबसे मुश्किल मिशनों में से एक।
14: ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट्स टुमारो एट 0700 आवर्स।
8: मुश्किल इसलिए कि दुनिया में किसी भी देश की वायुसेना ने इससे पहले इतनी ऊंचाई पर जंग नहीं लड़ी थी। अब तक भारतीय सेना तोसा मैदान फायरिंग रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अभ्यास करती थी, लेकिन कारगिल में दुश्मन 14,000 से 18,000 की फीट ऊंचाई पर बैठा था। घुसपैठ का दायरा पश्चिम में द्रास से लेकर पूर्व में बटालिक तक फैला हुआ था। एयरफोर्स के पायलटों को 15,000 से 18,000 फीट की पहाड़ की दुर्गम चोटियों पर बम बरसाने थे। ये काम आसान नहीं था। एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन भारतीय सेना की मदद और पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया।
15: सर, उन्होंने अपने साथ मुझे,
16: हमारे भाइयों के सम्मान में हम लड़ेंगे।
8: 26 मई की सुबह MiG-21, MiG-23 और MiG-27 ने घुसपैठियों के शिविरों, उनके सामान और आपूर्ति मार्ग पर हमला किया। ये सभी इलाके द्रास, कारगिल और बटाली के आसपास के थे। ये पूरा हिमालय क्षेत्र बर्फ से ढका होने की वजह से सफेद समुद्र जैसा दिखता था, इसलिए इसे ऑपरेशन सफेद सागर का कोडनेम दिया गया। इस ऑपरेशन के कामयाब होने के लिए हमलों का सटीक होना बेहद जरूरी था। पहाड़ों की बनावट ऐसी थी कि अगर कोई बम अपने निशाने से 50 मीटर भी चूक जाता तो 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। इतनी ऊंचाई पर हमलावर हेलीकॉप्टर सही से काम नहीं कर रहे थे। दुश्मन ऊंचाई पर था, इसलिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों का निशाना बनाने का भी खतरा था। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद लड़ाकू विमानों ने पूरे सेक्टर में लगातार हमले जारी रखे। 16 जून 1999 को भारतीय वायुसेना ने मुंथो ढालों में पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स कैंप का पता लगाया। इसके बाद ऑपरेशन में एंट्री हुई वायुसेना के गेम चेंजर विमान मिराज 2000 की, जिसने जंग में पूरी कहानी बदल दी। वायुसेना के इंजीनियरों ने रातों रात विमान पर लेडर गाइडेड बमों को फिट किया। ये पहली बार था जब भारत लड़ाकू विमान से इतनी ऊंचाई पर लेजर गाइडेड बमबारी करने वाला था। मिराज 2000 ने 250 किलोग्राम के बमों से कारगिल की चोटी पर सुरक्षित बनाए गए पाकिस्तानी बंकरों पर हमला किया और उसे निस्तानाबूद कर दिया। मिराज के साथ साथ जगुआ लड़ाकू विमानों ने मुश्कोट घाटी में भी जमकर गाइडेड बम दागे। इन हमलों से बटालिक में पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। मिराज 2000 विमानों ने सटीक हमलों से ऐसा कहर ढाया कि पाकिस्तानी फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए कारगिल की लड़ाई जीत ली। भारतीय वायुसेना की यही गौरव गाथा अब नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त को ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज में दिखाई जा रही है। हाल ही में रिलीज हुए टीजर के बाद ऑपरेशन सफेद सागर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें वायुसेना की फैसले लेने की प्रक्रिया, पायलट की ट्रेनिंग और युद्ध के मैदानों की असलियत दिखाई गई है।
12: टारगेट 18,000 फीट पर है, बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी।
8: इस शो की शूटिंग भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन बेस पर बड़े पैमाने पर की गई है और इसमें मिग एयरक्राफ्ट और वायुसेना के जवान शामिल हैं।
0: इतिहास जब किताबों के पन्नों से निकलकर आंखों के सामने जीवंत हो जाए तो नजारा सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि रोमांच से भर देता है। रोमानिया में ऐसा ही एक अनोखा उत्सव हुआ जहां पर करीब 2000 साल पुराना रोमन और डेशियन दौर को रिक्रिएट किया गया। देखिए,

0: चमकती ढालें, सिर पर लोहे के हेलमेट, हाथों में भाले और सीने में इतिहास को दोबारा जीने का जुनून। रोमानिया की खूबसूरत वादियों में जब अतीत ने दस्तक दी तो नजारा कुछ ऐसा था जिसे लोग बस देखते रह गए। रोमानिया के पुयाना में गेटोडावा महोत्सव में सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। जहां कभी रोमन साम्राज्य की ताकत की नुमाइश हुई तो कभी डैशियन योद्धाओं का साहस लोगों के आकर्षण का केंद्र बन। सिर्फ तलवारें ही नहीं, यहां हर हेलमेट, हर ढाल और हर पोशाक उस दौर की कहानी कह रही थी जिसे इतिहास की किताबों में पढ़ा जाता है। उसे इन कलाकारों ने अपनी मेहनत और जुनून से आंखों के सामने जीवंत कर दिया। ये उत्सव सिर्फ तलवारों की खनक तक सीमित नहीं था। एक तरफ जहां धनुष की प्रत्यंचा से छूटे तीर इतिहास के सटीक निशानों को भेद रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अप्सराओं के वेश में नृत्य करते कलाकारों ने माहौल में संगीत और रंग घोल दिए।
1: Participo la astfel de festivale de când eram foarte mică, cam m-a tot adus la festivale și vin pentru că am o pasiune pentru istorie și îmi place foarte mult aici.
0: Gheturdava Mahotsav ye sabit karta hai ki itihas agar sirf kitabon tak simit reh jaye to wo yaad to rehta hai, lekin jab wahi itihas aankhon ke samne jeevant ho uthe तो वो आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा के लिए रच बस जाता है। ये उत्सव विरासत को संजोने का ऐसा खूबसूरत तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाए। Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price void in Florida.
4: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: चित्तौड़गढ़ के सवालिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा। मासिक गणना में 35.5 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट। हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामिनी की समीक्षा बैठक। 30 जुलाई से शुरू होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला। गुंडचा मंदिर में भक्त कर रहे हैं महाप्रभु के दर्शन। बाहुड़ा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा। श्राइन बोर्ड की भक्तों से अपील, बनाए रखें धैर्य। असम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज। सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा रेस्क्यू।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। भारी बारिश और खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित है, लेकिन कटरा में फंसे श्रद्धालुओं की सेवा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगातार जुटा हुआ है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है वैष्णो देवी यात्रा पर ब्रेक, श्रद्धालुओं को फ्री में खाना। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर, चाय, नाश्ते और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी यात्री को परेशानी का सामना ना करना पड़े। श्रद्धालु भी श्राइन बोर्ड और प्रशासन के इन प्रयासों की जमकर सराहना कर रहे हैं।

0: देवी का भव्य दरबार, जहां हर कदम आस्था और विश्वास के साथ बढ़ता है, जहां हर श्रद्धालु भरोसे के साथ पहुंचता है कि माँ अपने दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। और जब प्रकृति परीक्षा भी लेती है, तब भी माँ की सेवा और कृपा का प्रवाह कभी नहीं रुकता है। दरअसल भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से माँ वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। ऐसे में कटरा में रुके हजारों श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड निशुल्क लंगर और आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम कर रही है। कटरा बस स्टैंड के पास स्थित निहारिका कॉम्प्लेक्स में फंसे श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने निशुल्क लंगर की विशेष व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं को दिन भर गर्म भोजन, चाय, पीने का पानी और आराम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि यात्रा शुरू होने तक उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो।
1: सर, हम कल से इधर खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। खाने की फैसिलिटी, किसी के पैसा ना हो तो जहाँ से खाना खा सकता है, और काफ़ी संजोग करा स्टाफ भी जहाँ का खाने का, कोई खाना बाहर ले जा रहे है, थोड़ा सा इधर उधर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए भी खाना दे देते हैं।
0: यात्रा स्थगित करने की वजह बदलता मौसम है। मूसलाधार बारिश ने माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। बैटरी कार मार्ग, भैरव घाटी मार्ग और पारंपरिक यात्रा मार्ग के कुछ हिस्सों में भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई, लेकिन मार्ग

0: मौसम सामान्य होते ही श्रद्धालु एक बार फिर पूरी सुरक्षा के साथ माँ के दरबार तक पहुँच सके। प्रकृति की इस परीक्षा ने यात्रा की रफ्तार भले ही कुछ समय के लिए थाम दी हो, लेकिन सेवा और समर्पण का संकल्प आज भी अडिग है।
1: पिछले 3 दिन से यहाँ पे हूँ। 19 तारीख हम रात को यहाँ पे आ गए थे, पर श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था हो रही है सर, लोगों के लिए खाने के लिए, पानी व्यवस्था के लिए और रहने के लिए भी डोर मैट उन्होंने फ्री सुविधा कर रखी है। जब तक यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको श्राइन बोर्ड की तरफ से चाय, नाश्ता, पानी और डोर मैट्री के लिए व्यवस्था दे रखी है।
2: 4 रोज हो गया यहाँ का व्यवस्था, खाना का अच्छा लगा और 4 रोज से बंद है माँ वैष्णो देवी का। हम घूमने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे अच्छा लगा खाना का व्यवस्था। हम लोग 5 रोज से हैं, कहिए जय माता जी।
0: माँ के दर्शन के लिए इंतजार करना बड़ा है, लेकिन श्रद्धालुओं के चेहरे पर मायूसी नहीं बल्कि माँ से मिलने की अटूट आस साफ दिखाई दे रही है। उनके होठों पर शिकायत नहीं बल्कि संतोष की मुस्कान है, क्योंकि इस कठिन घड़ी में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उनकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रख रहा है। श्राइन बोर्ड, आपदा प्रबंधन दल और सफाई कर्मी लगातार मोर्चे पर डटे हैं। उनकी कोशिश यही है कि मार्ग जल्द से जल्द सुरक्षित बनाया जाए और श्रद्धालु फिर से श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ सके। जम्मू से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित सांवलिया सेठ के दरबार में भक्त खाली हाथ नहीं लौटते। आस्था के इस मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आया है। यहां कुल 38 करोड़ 23 लाख रुपए के चढ़ावे का आंकड़ा सामने आया है। ऐसे में आज की जो हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है वो है सांवलिया सेठ पर करोड़ों का चढ़ावा। आपको बता दें कि इस महीने मंदिर की दान पेटियां खुली तो नोटों की गड्डियां और सिक्कों का अंबार निकला। गिनती पूरी हुई तो सामने 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सामने आई। चढ़ावे की इस रकम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांवलिया सेठ में भक्तों का विश्वास अडिग है।

मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवरिया सेठ के प्रति भक्तों की आस्था अत्यंत गहरी है। यहाँ हर दिन देश और दुनिया से भक्त आते हैं और सांवरिया सेठ का दर्शन कर भाव विभोर हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगने पर सांवरिया सेठ उसे जरूर पूरा करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ दिल खोल कर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस बार चढ़ावे की मासिक गणना के दौरान मिल रही भारी भरकम राशि को देखकर साफ हो जाता है कि सांवलिया सेठ के प्रति आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

0: चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी। पहले ही दिन की गणना में जब 10 करोड़ 11 लाख की राशि मिलने की पुष्टि हुई तो मंदिर प्रशासन को ये लग गया कि भक्तों ने तो खुले दिल से दान दिया है। आपको बता दें कि भंडार से मिला सोना चांदी का वजन और भेंट कक्ष में नकद मनी ऑर्डर और भेंट स्वरूप मिले सोने चांदी की गणना अभी हो रही है।
1: श्रद्धा और अटूट विश्वास, यही वो शक्ति है जो हर महीने लाखों श्रद्धालुओं को सांवरिया सेठ के दरबार तक खींच के ले जाती है। आज भी सांवरिया सेठ के भंडार खुले हैं, दान पात्रों की राशि की गणना की जा रही है जो हर महीने बढ़ती ही जा रही है। भक्तों की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसी तरह यहाँ का खजाना भी बढ़ता जा रहा है। कहते हैं जहाँ विश्वास होता है वहाँ समृद्धि अपने रास्ते स्वयं बना लेती है। यही वजह है कि मेवाड़ के आराध्य श्री कृष्ण धाम सांवरिया सेठ को भक्त केवल अपने आराध्य नहीं बल्कि अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में जोड़ते जा रहे हैं।
0: आपको बता दें कि सांवरिया सेठ मंदिर में मिले चढ़ावे की गणना काफी पारदर्शी तरीके से की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और कई बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि श्री सांवरिया सेठ पर अर्पित प्रत्येक भेंट केवल दान नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और भक्ति की अभिव्यक्ति है जो इस पावन धाम की आध्यात्मिक महिमा को

0: कार्यान्वित करती है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पहाड़ों में सावन की शुरुआत हो गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में सावन की तैयारी शुरू हो गई है। हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, जिसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई है। लाखों शिव भक्तों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है कांवड़ मेले के लिए शहर शहर तैयारियों की लहर। जी हाँ, मेरठ से लेकर टिहरी तक कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मेरठ पहुंचे और कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन तथा प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, ट्रैफिक प्रबंधन, DJ और साउंड सिस्टम के निर्धारित मानकों का पालन तथा संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में ऐसे कई तीर्थ हैं जो कि सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, संस्कृति और इतिहास के साक्षी हैं। इन्हीं में से एक है श्रीनगर का प्राचीन विचार नाग मंदिर, जहां एक प्राकृतिक जल स्रोत आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है 37 साल बाद खुला कश्मीर का विचार नाग मंदिर। विचार नाग मंदिर कश्मीर की सनातन विरासत से जुड़ी एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसने करीब 37 साल का लंबा इंतजार देखा है। श्रीनगर का प्राचीन विचार नाग मंदिर अब एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है।

0: श्रीनगर का ऐतिहासिक विचार नाग मंदिर, जहां एक समय पूजा पाठ करना मानो सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था, लेकिन 37 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज फिर श्रद्धालुओं के कदम इस पावन धाम तक पहुंचे हैं और मंदिर एक बार फिर आस्था के रंग में रंग उठा है। 3 दशक से भी लंबा इंतजार है, एक ऐसा इंतजार जिसने आस्था को कभी टूटने नहीं दिया, विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने की उम्मीद को हमेशा जिंदा रखा। यहाँ 1989 के बाद पहली बार फिर से श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के सामने सिर झुकाया है। मंदिर के पुनरुद्धार के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंदिर का उद्घाटन किया और इस ऐतिहासिक धरोहर को एक बार फिर श्रद्धालुओं को समर्पित किया।
1: लंबे समय बाद इसमें आस्था रखने वाले लोगों ने आज आकर के यहाँ यज्ञ किया, हवन किया और भगवान शंकर की स्थापना की। यहाँ की जो मूल पहचान है अभिनव गुप्त जैसे विद्वानों की, मैं समझता हूँ कि आज से 2000 साल पहले दुनिया भर के विद्वान यहाँ बड़ी संख्या में आते थे। गणित हो, अध्यात्म हो, गणना हो, इन सब विषयों पर चर्चा करते थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि फिर से वह काल जम्मू कश्मीर में वापस आवे।
0: श्रीनगर के रैनावारी इलाके में स्थित विचार नाग मंदिर के पुनरुद्धार में विचार नाग आस्थापन ट्रस्ट की अहम भूमिका रही। इस ट्रस्ट ने ऐतिहासिक धरोहर को फिर से संवारने में अहम योगदान दिया है।
2: ये तो बहुत खुशी की बात है, जो इसकी रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रिशेप हो गया विचार नाग टेम्पल का, उसके साथ ही एरिया का भी रिशेप हो गया, लेवलिंग कर दी, फिलिंग कर दी, नालियां बना दी। हमें बहुत खुशी उसके लिए है। कम से कम एक जो ओल्ड कल्चरल एरिया है, मंदिर वगैरह जो है, तो रेस्टोर हो गया दोबारा। इसका कम से कम हिस्ट्री 5000 साल की है। राज तरंगी हमारी आपने भी पढ़ी, सुना भी होगा, उसमें भी इसका मेंशन है। यहाँ ह्यूनसांग भी इसका मेंशन है, ह्यूनसांग भी विचारनाग में आया था डिस्कस करने के लिए।
0: मंदिर खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचे और अपनी यादों को ताजा किया। श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में फिर से धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। कई श्रद्धालुओं की आंखें नम थी क्योंकि दशकों बाद वो अपने इस प्राचीन तीर्थ में फिर से माथा टेक पा रहे हैं।
3: बॉम्बे से स्पेशली इसी के लिए आया था ताकि मैं इस फंक्शन में जो ये रिवाइव हुआ है टेम्पल निसार साहब का, इसमें आ सकूं। इसलिए मैं आया था, बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। छोटा वाला नाग है, वहाँ पे हम आके डुबकियाँ मारा करते थे, उसके बाद यहाँ इसकी तरफ इसकी ज़मीन है, ज़मीन हुआ करती थी जिसमें हम क्रिकेट खेला करते थे और डेली यहाँ पे आते थे। फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे दोनों दिन बैठ के यहाँ शाम को आरती होती थी, भजन कीर्तन होता था, उसमें पूरी रात बैठ के 12-1 बजे तक बैठ के सुनते थे।
0: कश्मीर में ये जीर्णोद्धार केवल पत्थरों और दीवारों को संवारने का काम नहीं है, बल्कि कश्मीर की उस प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने की कोशिश है, जहाँ ज्ञान, संवाद, चिंतन और सनातन परम्परा सदियों से एक साथ प्रवाहित होती रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: त्रिपुरा का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन धार्मिक उत्सव खर्ची मेला एक बार फिर से भव्य आयोजन के लिए तैयार है। राजधानी अगरतला में इस ऐतिहासिक मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। एक हफ्ते तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत कल से होने जा रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है त्रिपुरा के पारंपरिक खर्ची त्यौहार की तैयारी तेज। त्रिपुरा का प्रसिद्ध खर्ची महोत्सव का इंतजार हर साल लाखों श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ करते हैं। अगरतला में इस साल भी खर्ची महोत्सव को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में रंगने लगा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में 14 देवताओं की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ये पूजा धरती, प्रकृति और सुख समृद्धि का संदेश देती है। इसी वजह से हर साल बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार विशेष ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को यात्रा में किसी तरह की परेशानी ना हो।
5: 22 तारीख से हमारा इधर जो ट्रेडिशनल खर्ची मेला, खर्ची पूजो एंड द एग्जीबिशन बेसिकली इधर जो स्टेट का जो काम हुआ डेवलपमेंट का सेंट्रल का सब कुछ ही इधर फोकस होगा। इसमें हमारा पूरा ये बहुत साल का पुराना मेला है, 7 दिन के मेला त्रिपुरा में तो नहीं है, शायद नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है। 20 से 25 लाख लोग आते हैं इधर। तो हमारा इधर जो अभी प्रिपरेशन चल रहा है आप लोग देख रहा है, बहुत सारी बिजनेसमैन आ रहा है बाहर से, स्टेट का बाहर से, स्टेट का अंदर से। ये हम ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लॉटरी से ये देता हूँ हम लोग। और इधर जो मंदिर का काम है, बाहर का जो मेला का काम है, गवर्नमेंट स्टॉल का जो एग्जीबिशन होगा ये भी काम चल रहा है।
4: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक अकेला इंसान भी इतिहास रच सकता है। बिहार की रहने वाली विनीता कुमारी ने यही कर दिखाया। उनकी वर्षों की मेहनत और संघर्ष की बदौलत बिहार की सदियों पुरानी पीढ़ियां पेंटिंग को GI टैग मिला है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि 6वीं गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है और वो है दुनिया तक पहुंची बिहार की पारंपरिक पीढ़िया कला। जी हाँ, आपको बता दें एक ऐसी कला जो कि कभी गांव की दीवारों तक सीमित थी अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। दीवारों से कैनवस पर पहुंची इस पीढ़िया पेंटिंग को दुनिया के सामने पहुंचाने का श्रेय हासिल किया है विनीता कुमारी ने।

0: कभी गांवों की मिट्टी की दीवारों पर उकेरी जाने वाली पीढ़िया पेंटिंग को अब वैश्विक पहचान मिल चुकी है। इस पारंपरिक कला को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है और कभी बिहार के भोजपुर इलाके की इस सांस्कृतिक पहचान को दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय जाता है विनीता कुमारी को। विनीता ने पुराने जमाने में दीवारों पर बनाई जाने वाली इस कला को कैनवास पर उतारकर इसे नए सिरे से दुनिया के सामने पेश किया है। इस कला को गांवों की महिलाएं पारंपरिक त्योहारों के दौरान दीवारों पर बनाती थीं। आज वही कला जीआई टैग हासिल कर चुकी है और इस खास उपलब्धि के पीछे है विनीता कुमारी का वर्षों का अथक संघर्ष। लोकगीत गाते हुए पेंटिंग तैयार करने वाली विनीता ने 12 साल की उम्र में पहली बार पीढ़िया पेंटिंग बनाई थी। इसके बाद उनके इस आर्ट को उनके दिवंगत हो चुके पति भुवनेश्वर भास्कर ने बढ़ावा दिया। उनके पति ने ही उन्हें सबसे पहले पीढ़िया पेंटिंग को कैनवास पर उतारने की सलाह दी थी। पति के निधन के बाद भी उन्होंने इस अभियान को रोका नहीं।
1: पहले हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि पीढ़िया मेरी इतनी मतलब स्थान तक पहुंचेगी, यहाँ मतलब एग्जीबिशन लगेंगे और इसे पुरस्कृत भी किया जाएगा, मुझे नहीं ये उम्मीद थी। लेकिन अब ये मतलब जब मैं करने लगी पेपर और कैनवास पे, जब से मैंने करना शुरू किया तब से पीढ़िया मतलब कैनवास पे की, पेपर पर की और एग्जीबिशन में भी इसको ले गई और काफ़ी लोगों ने सराहा।
0: पीढ़िया पेंटिंग बिहार की उन लोक कलाओं में शुमार है जो भाई बहन के स्नेह, पारिवारिक संबंधों और ग्रामीण जीवन की सांस्कृतिक स्मृतियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाती हैं।
1: मैं बिहार सरकार से आया चिट्ठी कि राजगीर जाना है, तो उपेंद्र महारथी संस्थान ने हमें भेजा वहाँ राजगीर में। तो हम लोग जब ये राजगीर में जब गए तो वहाँ ये राष्ट्रपति जी जा रहे थे झूला का उद्घाटन करने, तो उनके उपलक्ष में हमें राजगीर को सजाना था। तब हम लोग गए और वहाँ पर मतलब कई क्षेत्र से लोग गए, हाँ, तो उसमें मैं भी गई भोजपुरी क्षेत्र से।
0: जीआई टैग मिलने के बाद अब इस कला को कानूनी संरक्षण मिलेगा, कलाकारों को बेहतर पहचान और आर्थिक लाभ होगा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी पहुंच बढ़ेगी।
1: बिना डोली की शादी ब्याह नहीं होती थी, तो इसलिए हम डोली बनाते हैं। और फिर खटिया जो है हमारे जीवन में, ये पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी तो पहले खटिया हुआ करता था लोगों को सोने के लिए भी और बैठने के लिए भी। और ये मछली है तो इसको भी जीवन में रहना जरूरी है, हमारे जीवन में सांप को भी रहना जरूरी है। झाड़ू लक्ष्मी के प्रतीक हैं, इसलिए झाड़ू को भी हम बनाते हैं, ये भी लक्ष्मी के प्रतीक हैं। ढेका तो इसको भी बनाते हैं। चांद और सूरज के बिना हमारा जीवन नहीं है सर।
0: विनीता कुमारी की कहानी सिर्फ एक जीआई टैग हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का उदाहरण है कि अगर कोई अपनी संस्कृति और विरासत को बचाने का संकल्प ले तो एक व्यक्ति भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी लोक कला की तरफ खींच सकता है।
2: ना सिर्फ विनीता जी बिहार की एक लोक कला को बचा रही हैं, उसे नया जन्म दे रही हैं, देश दुनिया तक पहुंचा रही हैं, बल्कि जो गीत कभी नानी दादी गाया करती थीं उन गीतों को भी वो दूसरे के जहन में, नई पीढ़ी के जहन तक पहुंचा रही हैं, ताकि ये लोक कला, ये लोक गीत लंबे समय तक चलती रहें और हम सब अपनी जड़ों से जुड़े रहें। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
3: गुजरात में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। यहां के भावनगर जिले में ड्रैगन फ्रूट की ऑर्गेनिक खेती से किसान प्रति बीघा 2,00,000 रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। ड्रैगन फ्रूट की खेती से बदल रही किसानों की किस्मत। जी हाँ, भावनगर जिले के गोगा तालुका में खेती करने वाले किसान जगदीश भाई खासिया ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति बदल ली है। आमतौर पर राज्य में इस वक्त कपास, मूंगफली और बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती है, लेकिन अब किसान धीरे धीरे बागवानी फसलों की ओर भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उनसे अच्छी आमदनी हो रही है। ये फसलें कम जमीन में पारंपरिक अनाजों की तुलना में कहीं ज्यादा मुनाफा देती है। जिले में फिलहाल 30 से ज्यादा किसान अभी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। बागवानी की ये फसल जो सामान्य फसलों से ज्यादा आमदनी देती है कई किसानों को आकर्षित कर रही है। कृषि प्रधान देश में अब खेती के तरीके भी बदल रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति बदल रही है, इससे किसानों को मुनाफा हो रहा है जिससे उनको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में मदद मिल रही है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: Tune in is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
5: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उस

0: के ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नगद के अलावा सोने चांदी की भी भेंट। हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, 30 जुलाई से शुरू होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। पुरी की सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला, गुंडिचा मंदिर में भक्त कर रहे हैं महाप्रभु के दर्शन, पौड़ा यात्रा के पहले भगवान के रथों का निरीक्षण। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा, श्राइन बोर्ड की भक्तों से अपील, बनाए रखें धैर्य। असम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा रेस्क्यू।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर करना शुरू करते थे, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। वायरल वीडियो की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो, जहां बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया, महिला उसमें गिर गई, क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे जानिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, एक वकील और पुलिस कर्मी के बीच सड़क पर हो रही हाथापाई का ये पूरा वीडियो। दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
7: देश की सर्वोच्च अदालत में 10 जून को एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। प्रबल प्रताप नाम के एक याचिकाकर्ता ने बेंच को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। प्रताप ने अपनी फाइल हवा में उछाली और भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहे। अब एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में बवाल किया था। वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि वकील प्रबल प्रताप का वीडियो सामने आया है। वकील साहब एक पुलिस अधिकारी से मारपीट कर रहे हैं जैसे गली मोहल्ले के लोकल गुंडे करते हैं। पुलिस अधिकारी को बीच चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारना कहां तक उचित है? कानून की पढ़ाई करने वाले ही कानून का उल्लंघन और शर्मसार करने वाली हरकत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था, और वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमने काला कोट पहने हुए शख्स के चेहरे को जूम करके देखा। जब हमने इसे गौर से देखा तो ये साफ हो गया कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इन दो तस्वीरों को देख सकते हैं। एक तरफ वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाले व्यक्ति प्रबल प्रताप की तस्वीर है। वायरल वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसके बाल बड़े हैं और वो क्लीन शेवन है, जबकि प्रबल प्रताप की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें उसकी दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई हैं जबकि बाल छोटे हैं। मतलब ये है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई और है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए हर जगह पर सर्च भी किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करते कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई में ये सच होता तो फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहे शख्स की पहचान क्या है। देखिए रिपोर्ट।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित तमाम न्यूज रिपोर्ट मिल गई। 11 जुलाई की एक वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां सिविल लाइंस कचहरी के बाहर दो पुलिस वाले और एक वकील आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट के दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस में वकील का चेहरा साफ नजर आता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये प्रबल प्रताप नहीं बल्कि कोई और शख्स है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई और प्राथमिक जांच के बाद एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। एसीपी आनंद ओझा ने बताया कि दोनों पुलिस वालों में से एक काफी समय से निलंबित है और गैर हाजिर चल रहा है, वहीं दूसरे कांस्टेबल को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो यूपी के कानपुर का है, जो वकीलों पुलिस वालों के बीच हुए झगड़े को दिखाता है। इसमें दिख रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 9 जुलाई को हुई जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। अब इसी से जोड़ते हुए जलभराव में एक महिला के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो है, जहां पर बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया और महिला उसमें गिर गई। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
7: नोएडा में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद सेक्टर 58 में एक बेहद दुखद हादसा हुआ था, जहां जलभराव के कारण खुले पड़े एक नाले में गिरकर 27 वर्षीय युवक आर्यन की मौत हो गई थी। अब इसी संदर्भ में जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल जाती है। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के नोएडा का बताकर शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बारिश में नोएडा की सड़कों पर ध्यान से चले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक से सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल आती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि 9 जुलाई का ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में लड़की के पानी में गिरते ही कंक्रीट या फिर लोहे से बना भारी भरकम ढक्कन किसी हल्के प्लास्टिक या थर्मोकोल के टुकड़े की तरह पानी की सतह पर तैरने लगता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब युवती गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो हवा में ही हाथ घुमाकर किसी अदृश्य वस्तु को उठाती हुई नजर आ रही है, जबकि वहां वास्तव में कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये सब सामने आने के बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस वीडियो को नोएडा का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने पाया कि महिला के चलने और गिरने का तरीका काफी अटपटा है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 98.9% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिरती लड़की के वायरल वीडियो को हमने ट्रुथ स्कैन पर भी जांचा। इस टूल ने 75% स्कोर के साथ वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के साथ संभावित AI जनरेटेड बताया। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले और फिर इन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। चैनल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी जांच से साफ हो गया कि जलभराव में गिरती हुई महिला का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। AI से बने वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का वीडियो है। वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
7: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून को 1 मिनट के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। इसमें सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गई। भूकंप से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। अब इसी भूकंप से जोड़कर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंगों को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला बहुमंजिला इमारत नहीं जैसे तेज रफ्तार ट्रेन का डब्बा हो। इतने ताकतवर भूकंप की मार कितनी देर झेलती, दोनों औंधे मुंह गिरी, लोग क्या पता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान का यह वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इसे लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि 24 जून 2026 को 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने पूरे वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया था। राजधानी कराकास और उसके आसपास की सड़कें, इमारतें ढहकर कंक्रीट और स्टील के मलबे में तब्दील हो गई। कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे दब गए, लेकिन यह वीडियो उसी भूकंप के दौरान का है, यह जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर दोनों इमारतों के टकराने पर इनकी खिड़कियों का आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा दोनों इमारतें एक ब्लॉक की तरह ही गिर रही हैं, न कि बिखर कर रही हैं या टूट रही हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो को सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें कहीं भी वायरल वीडियो से जुड़ी खबरें नहीं मिली। इसके बाद हमने वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। इसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों इमारतों के हिलने और टकराने के बावजूद उनमें मौजूद खिड़कियों की दशा में कोई बदलाव नहीं होता है, इनकी आकृतियों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें इस वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। इसलिए हमने सबसे पहले AI डिटेक्टर टूल detectvideo.ai की मदद ली। वायरल वीडियो को स्कैन करने पर इस टूल के नतीजों ने इसके AI के बने होने की 73% संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को एक और AI डिटेक्टर टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस में वीडियो के 97.8% AI से बने होने की संभावना की पुष्टि हुई। इसी तरह साइट इंजन के एनालिसिस ने भी वायरल वीडियो के 99% AI से बने होने की पुष्टि की। इस तरह हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। वेनेजुएला में भूकंप के नाम पर इमारतों के टकरा कर गिरने का वायरल वीडियो फेक है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: सैलाब से लड़ाई, बचाव में सेना आई। मोबाइल लत पर मुग्धर प्रहार। भोजपुरी लोक कला को ग्लोबल पहचान, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर। प्रातार पिचर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: दो छोटे बच्चों का अपने पिता की शादी की पुरानी बारात का वीडियो देखकर किया गया मासूम डांस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में दो छोटे भाई बहन अपने कमरे में पूरी मस्ती के साथ डांस करते दिखाई देते हैं। दोनों को देखकर साफ महसूस होता है कि वो किसी बात की चिंता किए बगैर सिर्फ उस पल का आनंद ले रहे हैं। छोटी बच्ची के हाथ में एक गिलास और चम्मच है, वो उन्हें किसी संगीत वाद्य यंत्र की तरह बजा रही है और अपने ही अंदाज में ताल बना रही है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई भी पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहा है। दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान और बेफिक्र अंदाज देख किसी का भी दिल खुश हो जाए। पहले तो ऐसा लगता है शायद टीवी पर कोई फिल्मी गाना या बच्चों का पसंदीदा डांस वीडियो चल रहा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद असली बात पता चलती है। टीवी स्क्रीन पर उनके पापा की शादी का पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें बैंड बाजे के साथ बारात निकल रही है और शादी का पूरा माहौल नजर आ रहा है। बच्चे उसी वीडियो को देख ऐसे झूम रहे हैं जैसे वो खुद उस बारात का हिस्सा हों।

सबसे दिलचस्प बात यह कि दोनों बच्चों को शायद ये भी पूरी तरह समझ नहीं होगा कि स्क्रीन पर जो शादी दिख रही है वो उनके अपने पापा की है। फिर भी बैंड की धुन और बारात का माहौल उन्हें इतना रास आता है कि वो खुद को नाचने से रोक नहीं पाते।

गाजियाबाद की टीचर चांदनी भाटी अपने अनोखे टीचिंग स्टाइल से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वो बच्चों को डांस, गाने और मजेदार एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाती हैं, जिससे पढ़ाई आसान और रोचक बन जाती है। उनके वायरल वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं और लाखों लोग उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। चांदनी के क्लास में बच्चे सिर्फ कुर्सी पर बैठकर किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि डांस, एक्टिंग और मजेदार एक्सप्रेशन के जरिए नई नई चीजें सीखते हैं। यही वजह है कि उनके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में किसी बड़े स्टंटमैन या प्रोफेशनल खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक पिता और उसकी दो छोटी बेटियों का शानदार तालमेल नजर आता है। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उनकी मेहनत और अभ्यास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने घर के अंदर अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आता है। ऐसा लगता है वो काफी समय से उन्हें किसी खास तरह की ट्रेनिंग दे रहा है।

सबसे पहले वो एक टेबल पर एक बाल्टी को उल्टा रखता है। इसके बाद बाल्टी के ऊपर दो प्लास्टिक की बॉटल खड़ी कर देता है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो वो कुछ कदम पीछे हटता है और फिर एकदम सटीक निशाने के साथ दोनों बॉटल्स को एक ही किक में गिरा देता है। उसका बैलेंस और टाइमिंग देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इस कला का काफी अभ्यास किया है। इसके बाद वो चुनौती को थोड़ा और मुश्किल बना देता है। इस बार बाल्टी के ऊपर दो नहीं बल्कि तीन बॉटल रखी जाती हैं। फिर वो उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अपनी किक से तीनों बॉटल्स को एक साथ नीचे गिरा देता है। ये देख उसकी दोनों बेटियां भी काफी उत्साहित नजर आती हैं। अब बारी आती है उन दोनों बच्चियों की, तो पिता उन्हें भी वही स्टंट दोहराने के लिए कहता है। पहले एक बेटी आगे आती है और कुछ पल अपने निशाने पर ध्यान देती है, फिर बिल्कुल अपने पिता की तरह किक मारकर बॉटल्स को गिरा देती है। उसके बाद दूसरी बेटी भी अपनी बारी में वही कमाल करके दिखाती है। दोनों बच्चियों का आत्मविश्वास, संतुलन और सटीक निशाना देख ये साफ समझ आता है कि उन्होंने नियमित अभ्यास किया है। यही बात इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क पर पंचर साइकिल के साथ परेशान खड़ी एक छोटी बच्ची की मदद के लिए पुलिसकर्मी ने जो किया उसे देख हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज धूप में छोटी बच्ची अपनी पंचर साइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ी थी, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी वहां से गुजर रहे पुलिसकर्मी संतोष सरोज की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और उससे बात की। पहले उन्होंने उसे पानी पिलाया, फिर खुद अपनी बाइक पर बैठाकर पंचर की दुकान से उसकी साइकिल बनवाई।

0: साइकिल जब ठीक हो गई तो बच्ची ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पुलिसकर्मी को देने की कोशिश की। संतोष सरोज ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बच्ची से कहा, तुमने मुझे भैया बोला है तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा। ये चंद शब्दों की बात नहीं थी, ये एक रक्षक के भाव थे। उस पुलिसकर्मी ने न केवल एक पंचर ठीक किया बल्कि उस बच्ची के चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जिसे वो शायद उम्र भर याद रखेगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: सैलाब से लड़ाई, बचाव में सेना आई। मोबाइल लत पर मुग्धर प्रहार। भोजपुरी लोक कला को ग्लोबल पहचान। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर प्रातार पचक।
3: अब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है। चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं? क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंघावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। मानसून वाली आफत के बीच लोगों के लिए देवदूत बनी सेना, तस्वीरें दिखाएंगे आगे। मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए मुग्धर प्रहार, क्या है मुग्धर मैन की मुहिम, आगे जानिए। और कच्ची दीवारों से कैनवस तक, मीडिया पेंटिंग को ग्लोबल पहचान दिलाने वाली विनीता से मिलिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
2: चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में आ रिकॉर्ड चढ़ावा। मासिक

गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान नगद के अलावा सोने चांदी की भी भेंट। हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। 30 जुलाई से शुरू होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। पुरी की सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला, गुंडिचा मंदिर में भक्त कर रहे महाप्रभु के दर्शन। बाउडा यात्रा से पहले भगवान के रथों का निरीक्षण। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा। श्राइन बोर्ड की भक्तों से अपील, बनाए रखे धैर्य। असम में बाढ़ के बीच राहत और बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। अच्छी और सच्ची खबरों में बात हम सबसे पहले बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की करेंगे। देश के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लाखों लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम उत्तर भारत के तीनों पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्य असम और मेघालय की बात करें, जहां पर लोगों को बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को लगाया गया है, जो अब तक सैकड़ों जिंदगियों को सैलाब के संकट से बचा चुकी है। इसी कड़ी में आज राजौरी में सेना ने 13 लोगों को बचाया। करगिल में फ्लैश फ्लड के बाद सेना ने राहत बचाव कार्य चलाया। वहीं चंबा के पांगी में 11 मजदूरों को बचाया गया। और उधर असम में बाढ़ प्रभावित 15 जिलों में अब तक सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा चुका है।

0: मानसून सीजन में बादलों के बरसने की रफ्तार तेज हुई तो नदी नालों और झरनों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। कहीं फ्लैश फ्लड में सब कुछ किसी तिनके की तरह बहता नजर आया और कहीं उफान बह रही नदी तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसकर हाहाकार मचा रही है। ये हाल किसी एक शहर या फिर किसी एक राज्य का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर देखने को मिल रहा है। इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर राजौरी से सामने आई, जहां राष्ट्र राइफल्स के जवानों ने 13 लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जिस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन जवानों ने चलाया, पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें जवानों के लिए सीधे खड़े रहना भी मुश्किल था। बावजूद इसके राष्ट्रीय राइफल्स के जवान एक रस्सी के सहारे ह्यूमन चैन बनाकर खड़े हो गए। इसके बाद एक एक कर लोगों का रेस्क्यू किया गया। बचाए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल थे, जिन्होंने जवानों की बहादुरी की सराहना की और उनका शुक्रिया अदा किया।
1: ये मंजर जो है वो राजौरी जिला का हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो 300 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो जोरदार बारिश सुबह से हो रही है। राजौरी के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। सेना भी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसी मुनव्वर नदी में फंसे 13 लोगों को सेना ने महफूज तरीके से निकाला, उनकी जान सेना के सहयोग से बची है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन या फिर सेना, सभी जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद के लिए अलर्ट हैं और जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि मुश्किल के वक्त लोग उन नंबरों पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं।
0: रेस्क्यू की एक दूसरी तस्वीर कारगिल से सामने आई, जहां फ्लैश फ्लड की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और SDRF के जवान लोगों की मदद के लिए पहुंचे और कई लोगों को सकुशल बचा लिया गया। खराब मौसम और लगातार बारिश के बीच राज्य के कई हिस्सों में इस वक्त लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सेना, पुलिस, NDRF और SDRF को लगाया गया।
2: बीती रात बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड से कई सारे घर ढह गए। NDRF की टीमों को अब रेस्क्यू के काम में लगाया गया है, क्योंकि इन क्लाउड बस्ट से नदियां

0: तूफान पर हैं। प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया था, यानी मंगलवार और बुधवार को।
1: जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी मदद के लिए राहत और बचाव एजेंसियां खराब मौसम में भी मोर्चे पर डटी हुई है। चंबा जिले के पांगी में 11 मजदूर

0: चंबा जिले के पांगी में 11 मजदूरों को बचाने के लिए प्रशासन ने जोखिम भरा बचाव अभियान चलाया। बताया गया ये सभी मजदूर उदीन गांव में सरकारी परियोजना के तहत काम कर रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए लोहे की सीढ़ी का सहारा लिया गया। करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं चंबा में ही तीसा चंबा मार्ग पर कंदरा नाले में अचानक पानी बढ़ने से यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। बिना वक्त गवाए प्रशासन और स्थानीय लोगों ने फौरन बस में सवार लोगों को बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राज्य में हो रही भारी बारिश को देखते हुए लोगों से नदी नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की गई है।
1: प्रशासन ने रेड अलर्ट बताया है और सुरक्षा के लिए बोला है खड नालों के किनारे जाने से परहेज करें और ज्यादा बारिश में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं।
0: उधर पूर्वोत्तर के राज्य असम में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते 15 जिलों में करीब 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस, सेना, NDRF और SDRF के बाद एयरफोर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाना पड़ा। शिवसागर जिले में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है।
2: फ्लड थोड़ा ज्यादा ही है, हम लोग कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक कल हम लोग रात से 10-11 बजे से स्टार्ट किया है, अभी तक पूरा वो लागू है रेस्क्यू।
3: रात से
2: कोई जैसे हम लोग का इफेक्टेड जगह है, सेलेंगर हो गया, वहाँ पे ज्यादा अभी रेस्क्यू हो गया। काकोजन एरिया, अभी यहाँ में ट्योक एरिया में हमें हम लोग बहुत रेस्क्यू किया है।
0: असम के मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को प्रभावित इलाकों में भेजा है। साथ ही नदियों के बढ़ते जलस्तर और बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की गई है। श्रीनगर से अशरफ वानी, राजौरी से शक्ति शर्मा, चंबा से विशाल आनंद और जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए बात करते हैं मुग्धर मैन की, जिन्होंने बच्चों के हाथों से मोबाइल हटाकर मुग्धर थमाने का प्रण लिया है। इसके लिए दिल्ली के खेड़ा गांव के रहने वाले पहलवान हवा सिंह ने अभियान चला रखा है। वो बच्चों को फ्री में मुग्धर भी दे रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, हर घर मुग्धर। उनकी कोशिश है कि वो बच्चों के हाथों से स्मार्टफोन छुड़वाकर उनके हाथों में पारंपरिक मुग्धर थमा सके, ताकि देश का भविष्य मजबूत और स्वस्थ बने।

0: जब से स्मार्टफोन का आगमन हुआ है तब से वो सभी को अपनी ओर खींचता है। बच्चों की हालत तो ये है कि मोबाइल के बिना उनका खाना उनका पढ़ना तक नहीं हो पाता। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों से मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए हवा सिंह नाम के पहलवान ने अनोखी मुहिम चलाई है। हवा सिंह का एक ही लक्ष्य है, हर घर मुखदर। वे नई पीढ़ी के हाथों से स्मार्टफोन छुड़ाकर महाभारत कालीन पारंपरिक मुखदर थमा रहे हैं, जिससे देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। हवा सिंह ने बच्चों को मुफ्त में मुखदर बांटना शुरू किया है ताकि बच्चे मोबाइल की लत छोड़े और बचपन से ही फिट और सेहतमंद रहे। हवा सिंह अब तक 4000 से ज्यादा बच्चों को मुखदर गिफ्ट कर चुके हैं।
1: आजकल बच्चे हरदम फोन पे चिपके रहते हैं, किसी को भी देख लो कितनी उम्र हो जाए। और मैं खासकर देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 2 साल के, 1 साल का भी बच्चा है, वो भी फोन के अंदर घुस रहा है। तो ऐसा क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों के हाथ में फोन मत दो। पहले तो उनके माँ बाप बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं, उसके बाद वही माँ बाप उन बच्चों को फोन छुटवाने के लिए आदत, बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत ज्यादा पेरेंट्स इसमें परेशानी उठा रहे हैं, इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि बच्चों के हाथ में अब मोबाइल नहीं, हम मुखदर देंगे।
0: हवा सिंह पहलवान रह चुके हैं और अभी उनकी उम्र 60 साल है, लेकिन आज भी भारी से भारी मुखदर वो चंद सेकंड में घुमा लेते हैं। इसीलिए

0: वो चाहते हैं कि हर घर का बच्चा मजबूत बने और स्वस्थ रहे। इस अभियान के लिए भी दो नारे बनाए गए हैं, हर घर मुकद्दर, घर घर मुकद्दर।
1: ये हमारा मकसद है कि हर एक घर के अंदर एक मुकद्दर हो। मुकद्दर एक ऐसी चीज है कि एक ही मुकद्दर से पूरा परिवार एक्सरसाइज कर सकता है, इसीलिए हमने नारा दिया है हर घर मुकद्दर, घर घर मुकद्दर का। और दूसरा हमारा नारा है कि मुकद्दर घुमाओ और स्वस्थ भारत बनाओ।
0: दिल्ली के रिठाला के रहने वाले पहलवान हवा सिंह के पास कई माता पिता उनसे सलाह लेने आते थे कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से कैसे बचाए। शिकायतें सुन सुनकर हवा सिंह थक चुके थे, तब उन्होंने ये आइडिया निकाला कि क्यों ना बच्चों को बचपन से ही फिटनेस की आदत डाली जाए। इसलिए उन्होंने बच्चों को मुकद्दर की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। खास तौर पर उन सभी के बच्चों को इसमें शामिल किया गया जो शिकायत लेकर आ रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को बुलाकर मुकद्दर चलाना सिखाना शुरू किया। अब बच्चों ने मुकद्दर चलाना शुरू किया और उसी में वो बिजी रहने लगे और उन्हें इतना मजा आने लगा कि मोबाइल की लत करीब करीब छूट ही गई। और बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी बच्चों के मुकद्दर से जुड़ने से खुश हैं।
2: इनसे कॉन्टेक्ट किया और मैंने बच्चे यहाँ खेड़ा में भेजने शुरू किए, तो तब से डेली मैं अपने बच्चों को यहाँ शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए यहाँ लाते हैं और उससे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। और मोबाइल जो ये 6-6 घंटे 4-4 घंटे स्कूल से आने के बाद देखते थे, वो ना के बराबर हो चुका है। वो तो पहले हम किसी के भी बच्चे को अपने देते थे, खाना खाते हुए मोबाइल हाथ में दे देते, वो खाना नहीं खा रहे, वो मोबाइल में जो देख रहे हैं वो उल्टी सीधी चीज़ें ही खा रहे हैं, खाने का स्वाद ही नहीं ले पा रहे हैं, फ़ोन में घुसे रहते थे। अब बच्चे जाते हैं यहाँ से मेहनत करने के बाद, थकने के बाद अच्छी नींद आती है, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं।
3: पहले ये फ़ोन में लगा रहता था 3-3, 4-4 घंटे तक, ना तो कुछ खाना कुछ किसी और एक्टिविटी में कुछ वो नहीं था। लेकिन जब से हवा सिंह जी ने यह मुकद्दर की मुहिम चलाई है, जब से मेरा बच्चा थोड़ा एक्टिव हुआ है, इसने फोन देखना बंद कर दिया है, ढंग से ये खाना खा रहा है 2-3 घंटे तक, अभी रोज एक्सरसाइज भी करता है, मुकद्दर भी घुमाता है और घर में भी बहुत एक्टिव रहता है अभी, और अब इसने फोन बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ जी, और बड़े हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
0: रोजाना 10 से 15 मिनट सही तरीके से मुकद्दर घुमाया जाए तो पूरे शरीर की कसरत हो जाती है। ऐसे में मुकद्दर से बच्चों के जुड़ने से पेरेंट्स भी राहत की सांस ले रहे हैं।
1: दोनों हाथों में ऐसे,
0: उनका तो ये भी कहना है कि मोबाइल की लत से बच्चों का विकास लगभग रुक सा गया था, लेकिन जब से बच्चे ने मुकद्दर थामा है तब से हालात बदल से गए हैं।
3: बहुत परेशानी है, एक तो बच्चों की आंखें बहुत कमजोर होती है इससे, बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, फोन उनसे ले लो चिल्लाना मारना बहुत वो होता है। लेकिन जब से अब उसमें में हमारा बच्चा हुआ है, इसमें बहुत सुधार हुआ है।
0: मुहिम चलने लगी तो कारवा बनता गया और लोग भी इस अभियान से जुड़ते चले जा रहे हैं। हर कोई भारत के भविष्य की सेहत के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि बच्चे अक्सर घर में ही रहते हैं, ना वो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं और ना ही धूप में वक्त गुजारते हैं। ऐसे में उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता, शायद इसीलिए मुकद्दर अभियान को भरपूर समर्थन मिल रहा है।
1: बहुत अच्छे कर रहे हैं सभी बच्चे, शाबाश।
4: स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज है जिससे शरीर मजबूत होता है, दिमाग शांत होता है, बच्चा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है, अच्छा खाना खाता है, और आजकल तो स्पोर्ट्स में कैरियर भी बच्चों का बन रहा है, तो इससे अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा। बचपन से अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा।
5: बच्चे इस तरह से भटक रहे थे, बिल्कुल भी एक्सरसाइज का तो कोई मतलब ही नहीं था, खान पान का भी बहुत। और ये उतनी अच्छी मुहिम छेड़ी है, देखो इतने बच्चे एकदम से आ जाते हैं पे, तो बहुत अच्छी मुहिम है।
6: वो जरूरी है बच्चों की ये मुहिम,
5: वही हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ है तो वेल्थ सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। पहला सुख कहते हैं निरोगी काया, अगर निरोगी काया है तो सब कुछ सुख है फिर, तो ये बहुत जरूरी है। ये
0: मुकद्दर का इतिहास कोई नया नहीं, इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाने वाले महाबली भीम मुकद्दर गदा से ही अभ्यास किया करते थे। ये विशुद्ध रूप से भारतीय पारंपरिक व्यायाम पद्धति की देन है, जिसका जन्म व उदय भारत की पावर मिट्टी में हुआ। इसके इस्तेमाल से कलाई, कोहनी, कंधे और उंगलियों की पकड़ मजबूत होती है। इसका खास डिजाइन शरीर का संतुलन और पोस्चर शानदार बनाता है। मुकद्दर एक ऐसा संपूर्ण और जादुई टूल है जिसके इस्तेमाल से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन आपको बता दें कि मुकद्दर बनाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। इसके लिए शीशम या बबूल की लकड़ी को सबसे उपयुक्त और मजबूत माना जाता है। इसके निर्माण का मुख्य काम हरियाणा, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में किया जाता है। यह बच्चों के लिए 250 ग्राम से लेकर पहलवानों के लिए 30 किलो तक बनता है। ऐसा नहीं कि मुगदर की चर्चा सिर्फ भारत में होती है, अमेरिका समेत कई देशों ने इस भारतीय कला को अपनाया है। इसे कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेलों और कई वैश्विक खेल मंचों पर प्रस्तुत किया जा चुका है। विदेशों में इसे इंडियन क्लब्स के नाम से माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
6: चलिए अब आपको मिलवाते हैं विनीता कुमारी से, जिन्होंने गांव की कच्ची दीवारों और गोबर मिट्टी तक सीमित रहने वाली लुप्त होती कला को कागज, कपड़ों और कैनवस पर उकेर कर आधुनिक रूप दिया है और देश दुनिया तक पहुंचाया है। इस लोक कला का नाम है पीडिया लेखन। पीडिया लेखन एक तरह की पेंटिंग है जो बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में देखने को मिलती है। आमतौर पर इस चित्रकारी को गांव की दीवारों पर भाई दूज के अवसर पर बनाया जाता है, लेकिन विनीता कुमारी ने अपनी लगन और मेहनत से इस लोक कला को एक नई पहचान दिलवाई है।

कभी ये पेंटिंग गांव की दीवारों तक सीमित थी, लेकिन अब ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये पेंटिंग गांव की दीवारों से निकलकर कैनवास के रास्ते शहर महानगर होते हुए विदेशों तक पहुंच गई है। इसका नाम है पीडिया लेखन या पीडिया पेंटिंग, जो बिहार के भोजपुर और रोहतास जिले में खास तौर पर बनाई जाती है। लोक कलाओं में शुमार पीडिया पेंटिंग को असली पहचान दिलवाया है रोहतास की विनीता कुमारी ने। उनकी वर्षों की मेहनत और संघर्ष का ही परिणाम है कि सदियों पुरानी पीडिया पेंटिंग को नया आसमान मिला है और इसे देश दुनिया में जाना पहचाना जाने लगा है।

0: हमारे गांव देहात की परंपरा, लोकगीत, लोक कला जाती हुई पीढ़ियों के साथ वो भी चली गई हैं। हमारी दादी नानी पहले दीवारों पर जो लोक कलाएं, जो अलग अलग चित्र उकेर दिया करती थी मिट्टी की दीवारों पर, ना वो मिट्टी की दीवारें हैं, ना वो दादी नानी है, और ना ही कहीं ना कहीं वो लोक कला बची हुई है। लेकिन क्या हो अगर दीवार पर उकेरे जाने वाली उसी लोक कला को कोई कैनवस पर ले आए, कोई कागज़ पर ले आए, तब उसके ज़िंदा रहने के जो दिन है वो शायद बढ़ जाते हैं या फिर उसे एक नया जीवन मिल जाता है।
1: पहले भाई दूज त्योहार के वक्त पीढ़िया पेंटिंग को मिट्टी से बने घरों की दीवारों पर बनाया जाता था, जो भाई बहन के अटूट प्रेम, पारिवारिक संबंधों और ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन विनीता ने इस पेंटिंग को कैनवास पर उतारा, तब जाकर इसे असली पहचान मिली। विनीता ने इस पेंटिंग से लोगों को रूबरू कराने के लिए बहुत मेहनत की, तब जाकर पीढ़िया पेंटिंग को सही मायने में मुकाम हासिल हुआ।
2: पहले हम लोग त्योहार के रूप में ही केवल मनाते थे इसे। पहले हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि पीढ़िया मेरी इतनी मतलब स्थान तक पहुंचेगी, यहाँ मतलब एग्जीबिशन लगेंगे और इसे पुरस्कृत भी किया जाएगा, मुझे नहीं ये उम्मीद थी। लेकिन अब ये मतलब जब मैं करने लगी पेपर और कैनवास पे, जब से मैंने करना शुरू किया तब से पीढ़िया मतलब कैनवास पे की, पेपर पर की और एग्जीबिशन में भी इसको ले गई और काफी लोगों ने सराहा।
1: पीढ़िया पेंटिंग को भोजपुर क्षेत्र के गांव देहात में पीढ़िया लेखन कहते हैं, जिसे महिलाएं या लड़कियां ही भाई दूज पर प्राकृतिक रंगों से बनाती हैं। गोबर और मिट्टी से लिपी दीवारों पर प्रकृति, देवी देवताओं और लोक जीवन से जुड़ी आकृतियां बनाई जाती हैं। इसमें पीढ़िया की एक बड़ी हरे रंग की आकृति बनाई जाती है, जिनकी देवी माता के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें रक्षा करने वाली माना जाता है। विनीता ने इसकी शुरुआत महज 12 साल की उम्र में ही कर दी थी।
2: बारह साल की जब मैं थी तो हालांकि मैं पढ़ती थी उस समय गांव के स्कूल में, तो फिर मम्मी को देखते थे कि मम्मी मेरी दीवार पे कर रही हैं पीढ़िया लेखन और गीत भी गा रही हैं, तो मुझे भी धीरे धीरे लगा कि मैं भी करूं। तो फिर मम्मी बोलती थी कि छोटी हो बाद में करना, लेकिन मैं मतलब और लड़कियां करती थी तो साथ में मैं भी करने लगी, करते करते मतलब इसको दीवार पे पूरा करने लगी, इसको चित्र बना करके। हालांकि मैं जब शादी से पहले इसको जब बनाती थी तो सिंदूर से नहीं टिका जाता है, कुंवारी लड़कियां सिंदूर नहीं छूती हैं। अच्छा। तो हम लोग घी से टिक देते थे, डबल लाइन करते थे, इसका मतलब बेस मिट्टी का देते थे और सेम का पत्ता का रस निकाल करके और इसका ग्रीन ये बेस मारते थे। इसके बाद फिर डबल लाइन के लिए चावल खूब उत्सुकता से मतलब शाम में ही भिगो देंगे और सुबह में उसको पीस देंगे सिलबट्टा पे, पीस कर कपड़ा में छान लेंगे और फिर बांस का दो फकिया ब्रश जो होता है ना, तो उसको हम लोग मतलब एक छोटा सा दातुन की तरह तोड़ लेंगे, छोटा सा बाती, और उसको बीच में फाड़ देंगे और दोनों तरफ कपड़ा लपेट देंगे तो डबल ब्रश हो जाएगा, तो दीवार पे आसानी से बन जाता था डबल लाइन। तो ये हम लोग इतना तक करते थे, बाकी मम्मी करती थी वो सिंदूर से टिकती थी।
1: विनीता के इस मिशन की शुरुआत उनके दिवंगत पति भुवनेश्वर भास्कर के सपने से हुई थी। पति के निधन के बाद भी उन्होंने इस अभियान को नहीं रोका। उनके पति ने ही उन्हें सबसे पहले पीढ़िया पेंटिंग को कैनवास पर उतारने की सलाह दी थी।
2: हमें दिल्ली आना पड़ा और जब त्योहार आता था तो मुझे लगता था कि पीढ़िया का त्योहार अब छूट जाएगा लग रहा है, तब ये बोलते थे कि निराश मत हो, इसको पेपर पर करो, इसको दीवार तो नहीं मिलेगा यहाँ मगर इसको पेपर पर तुम करो, और गोधन भी यहाँ मनाया जाता है, हमारे क्षेत्र के कुछ लोग हैं अगल बगल में तो ये त्योहार लोग करते हैं, गोधन का तो करते ही हैं, पीढ़िया का भले नहीं लगाते हैं क्योंकि वो सारी घर नहीं रहा, गाय बैल जो बांधते हैं ना सारी घर वो नहीं रहा और शहरों में ये उपलब्ध भी नहीं है, ना मिट्टी का दीवार है, तो वो उन्होंने बोला पेपर पर करो, तो फिर मैं पेपर पर शुरू कर दी। एक दो बार की तो खराब हो गया क्योंकि लाइन खींचने में ही मुझे दिक्कत होती थी,
0: आदत नहीं रही
2: जी, दीवार पर करके आई थी काम और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें इसको पेपर पर, क्योंकि मतलब इसको उतारना तो था दीवार पर से, काफी कष्ट हुआ कुछ दिन तक, तो मैं लाइन खींचते रही, 3-4 महीना लग गया लाइन खींचने में, सीधी लाइन नहीं होती थी मुझसे। इसके बाद फिर कैनवास पे पेपर पर करने लगी, फिर कैनवास पे करने लगी, सब फिर बढ़िया होने लगा।
1: विनीता कुमारी की कोशिशों का ही नतीजा है कि पीडिया पेंटिंग को जून में भारत की सरकार ने GI टैग से नवाजा है। विनीता को पीडिया लेखन के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। विनीता पीडिया लेखन की कला का प्रसार भी करना चाहती हैं। तभी तो पीडिया पेंटिंग के सफर में विनीता अभी तक 50 से अधिक ग्रामीण लड़कियों और महिलाओं को ये कला सिखा चुकी है। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
5: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं? क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: Right field, and it will...
6: From the first pitch of the season to the stretch run.
7: And that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अवसाद की, यानी डिप्रेशन की। किन ग्रहों की वजह से जीवन में मानसिक अवसाद पैदा होता है, कौन से ग्रह जीवन में आपको डिप्रेशन देते हैं और ज्योतिष के अनुसार डिप्रेशन से निकलने के रास्ते क्या हैं? सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह अवसाद के लिए या डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन से ग्रहों की वजह से जीवन में डिप्रेशन होता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और डिप्रेशन में, अवसाद में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा की होती है। बुध आपके बुद्धि का, आपके सोचने समझने का मालिक है और ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करता है या बढ़ाता है। बुध डिप्रेशन का रेगुलेटर है। चंद्रमा अगर काफी कमजोर हो या चंद्रमा अगर काफी दूषित हो तो जीवन में डिप्रेशन यानी अवसाद होता है। और चंद्रमा को बहुत ज्यादा कमजोर करते हैं या दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। शनि, राहु या सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर पड़े तो इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। यानी अगर चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का एक्सिस हो, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो या चंद्र पर सूर्य का प्रभाव हो तो डिप्रेशन की जबरदस्त संभावना बनती है। और गलत दशा आने पर, खराब दशा आने पर ये डिप्रेशन निकल करके सामने आ जाता है। अवसाद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन का सुख मिलेगा, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर के मामले हल होंगे,
संपत्ति खरीद सकेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी होती है जब व्यक्ति को अवसाद होता है या डिप्रेशन होता है। देखिए, शनि या राहु अगर चंद्रमा को प्रभावित करें तो अवसाद की स्थिति बन जाती है, डिप्रेशन होता ही है। शनि वाला जो डिप्रेशन है ये कभी कभी अध्यात्म पैदा कर देता है, व्यक्ति साधना की तरफ या अध्यात्म की तरफ चला जाता है। राहु वाला जो डिप्रेशन है ये कल्पना की बीमारियां पैदा करता है, कुछ ना हो तब भी व्यक्ति काल्पनिक चिंताएं और काल्पनिक बीमारियां पैदा कर लेता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो जाए तो भी अवसाद की, डिप्रेशन की संभावना बन सकती है, ऐसी संभावना रहती है। अगर चंद्रमा खराब है और बुध आपका ठीक है तो व्यक्ति अवसाद से, डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर चंद्रमा भी गड़बड़ है और बुध भी गड़बड़ है तो अवसाद से निकल पाना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति बहुत शुभ है और चंद्रमा को थोड़ा भी प्रभावित कर देता है तो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। अवसाद के, डिप्रेशन के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन के खर्चों पर ध्यान दें, नौकरी में परिवर्तन ना करें, संयम से काम लें, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ज्योतिष के हिसाब से आपको अवसाद से, डिप्रेशन से बचने के उपाय बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए, किसी मनोचिकित्सक से मिलिए, उससे और जल्दी फायदा होगा उपायों के साथ। डिप्रेशन दूर करने में, अवसाद दूर करने में आसन और प्राणायाम बहुत उपयोगी हैं। आसन करने से, प्राणायाम करने से डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो भी लाभ होगा। अंधकार में मत रहें, ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करें तो बहुत बेहतर होगा। दिन भर में एक केला जरूर खाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। डिप्रेशन के मामले में सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। पन्ना डिप्रेशन के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। सामान्य स्थितियों में सलाह लेकर पन्ना पहनना बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको जबरदस्त डिप्रेशन रहता हो, आप अवसाद से गुजर रहे हो, तो डिप्रेशन की अवस्था में मोती नहीं पहननी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर और कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर दें तो दिन बेहतर होगा।

दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, डिप्रेशन हो जाने की संभावना कुंडली में आप शुरुआत से देख सकते हैं। अगर किसी कुंडली में डिप्रेशन होने की संभावना शुरुआत से दिख रही है तो उस व्यक्ति को शुरुआत से बुध या बृहस्पति का रत्न पहनाएं। उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के लिए या फिजिकल वर्क करने के लिए कहें और नियमित रूप से भगवान का नाम जप करने के लिए कहें। डिप्रेशन के मामले में भोजन की बड़ी भूमिका होती है, तो अगर कोई व्यक्ति सात्विक भोजन ग्रहण करता है, पवित्र आहार ग्रहण करता है, तो डिप्रेशन होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन हो जाता है अगर आपको, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसमें शर्माने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग के न्यूरॉन्स में जो प्रॉब्लम है, जो केमिकल की दिक्कतें आ गई हैं, वो दवाइयों से बेहतर होंगी। और अगर आप साथ में उपाय भी करेंगे तो दवाइयां ज्यादा बेहतर काम करेंगी, आप जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे। डिप्रेशन की दो स्थितियां ज्योतिष में होती हैं। एक स्थिति हल्की होती है कि डिप्रेशन हुआ, समय बदला, डिप्रेशन समाप्त हो गया। और एक स्थिति ऐसी होती है कि डिप्रेशन हो गया, वो जीवन भर चलता है, उसमें जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं और उपाय करने पड़ते हैं। तो आपका डिप्रेशन किस लेवल का है उसको समझ करके उसके हिसाब से उपाय करेंगे या उसके हिसाब से अगर दवाइयां खाएंगे, डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, तो आपको लाभ जरूर होगा। तो आज हमने बात की अवसाद की, डिप्रेशन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ जाता हो तो एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करें तो आपको लाभ होगा। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलें, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: देश में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, और इसे थोड़ा टेक्निकली समझें तो करीब 70% आसमान पर बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने कम से कम दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को गर्मी और उमस से राहत मिलने के संकेत दिए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि देश भर के मौसम का पूरा हाल क्या है, और साथ ही ये भी समझिए कि आखिर मॉनसून ने बरसने से पहले इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया।

0: ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि ब्रेक पर गया मॉनसून पुरानी रफ्तार में लौट आया है। कहीं फुहार, कहीं झमाझम तो कहीं मूसलाधार। एक तरह से कहें तो मॉनसून ने फिर से एक साथ कई दरवाजों पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर पंजाब तक आसमान में बादलों की कहीं कोई कमी नहीं है और अब ये बादल मॉनसून का बचा खुचा कोटा पूरा करने आ गए हैं।
1: लगातार उमस और बढ़ती गर्मी के बाद एक बार फिर से मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादलों का डेरा जो है वो लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। एक बार फिर से मॉनसून की वापस से एंट्री हो गई, हम ये बोल सकते हैं?
2: जी देखिए, मॉनसून की अभी फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं जिससे उत्तर पश्चिम भारत, उससे अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो है काफ़ी अच्छी वर्षा गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है। और हमारा अनुमान यही है, पूरा अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है।
0: लेकिन सवाल ये है कि आखिर मॉनसून ने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल कुछ दिनों के लिए बंगाल की खाड़ी शांत पड़ गई थी, नए लो प्रेशर सिस्टम नहीं बने, समंदर से नमी कम आई और मॉनसून की मुख्य पट्टी उत्तर की ओर खिसक गई। नतीजा ये हुआ कि बादलों ने कदम धीमे कर दिए, बारिश ने रफ्तार कम कर दी और कई राज्यों में सूरज ने फिर से अपना दबदबा बना लिया। लेकिन अब माहौल फिर से बदल गया है।
2: मॉनसून की जो वर्षा है वो बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन डिपेंड करती है, तो जिस क्षेत्र में अगर हम बात करें फेवरेबल मॉनसून की कंडीशन बन रही होती है वहाँ पर वर्षा गतिविधि जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था जुलाई के पहले सप्ताह में जो पश्चिमी राज्य थे, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, साथ साथ में मध्य भारत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्वी भारत में उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में 9 जुलाई तक यानी 1 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिली थी। अभी जो है मॉनसून एक्टिव कंडीशन देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है, जिसकी वजह से काफी अच्छी वर्षा जो है इन सभी क्षेत्रों में जो देखने की संभावना है।
0: अच्छी खबर यह है कि मॉनसून एक्सप्रेस का इंजन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। पूरे उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहां मैदानों में बारिश राहत लेकर आएगी, वहीं पहाड़ों में यही बारिश आफत बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, कुलगाम, श्रीनगर और अनंतनाग, जबकि उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है।
2: अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मैप में भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है।
0: इसकी वजह से अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी उमस से राहत का सीन दिल्ली एनसीआर में बन चुका है। मॉनसून की वापसी शानदार तो है, लेकिन ये वापसी कई इलाकों पर भारी भी पड़ सकती है। मसलन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ पहले ही बारिश से पूरी तरह।
1: बात यूरोप की करेंगे, जहां पर इन दिनों गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। ग्रीस में मौसम ने ऐसे तेवर दिखाए कि पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालात ऐसे हैं कि लोग धूप से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

0: ये धुंध नहीं बल्कि गर्मी से राहत की उम्मीद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सूरज की तपश बढ़ी है, ऐसे में हर शख्स ठंडी हवा, पानी की फुहार और छांव की तलाश में नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स में मिस्ट फैन चल रहे हैं तो शहर के फव्वारे लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गए हैं। ग्रीस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, ऐसे में कोई पानी की बोतल से खुद को हाइड्रेट रख रहा है तो कोई बैग और छाते को ही धूप से बचने की ढाल बना चुका है। गर्म हवाओं के बीच भी ग्रीस का इतिहास जानने आए सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि गर्मी चाहे जितनी हो, ग्रीस के एथेंस की रौनक अभी भी बरकरार है। रेस्टोरेंट से लेकर चौक चौराहों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। पर्यटकों को गर्मी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब जरा इस रेस्टोरेंट का नजारा देखिए, किस कदर यहाँ मिस्ट फैन लगातार लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। इसलिए तो दुनिया भर से आए पर्यटक गर्मी में भी एथेंस की प्राचीन विरासत का दीदार कर रहे हैं। रोमन अगोरा जैसी प्राचीन धरोहरों पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी पेड़ों की छांव और छातों के नीचे अपना काम मुस्तैदी से करते दिखे। ग्रीस में हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर में एयर कंडीशनड राहत केंद्र खोले गए हैं, इसके साथ ही लोगों को हाइड्रेटेड रहने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की
4: आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए MOU। स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। असम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों को किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भी भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में हुआ कैद। और आइए शुरू करते हैं न्यूज़ पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा जगह जगह कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर मंथन की भी है।
6: भगवान भोलेनाथ के प्रिय माँ सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर देश में अलग अलग जगहों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, ट्रैफिक प्रबंधन, डीजे और साउंड सिस्टम के निर्धारित मानकों का पालन करने के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते भी नजर आए। वहीं झारखंड के देवघर में भी श्रावणी मेले को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मेले को सफल, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने पर चर्चा हुई। श्रावणी मेले के दौरान बैद्यनाथ धाम में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल अर्पित करने पहुंचते हैं, जिसको लेकर दुरुस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर है। उधर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी 30 अगस्त से शुरू होने वाले कांवड़ मेले को लेकर समीक्षा बैठक में डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा पर स्थित पार्वती कुंड में स्नान ध्यान और पूजा अर्चना कर लौटा श्रद्धालुओं का दल। इस दल में शामिल श्रद्धालु पार्वती कुंड का पवित्र जल भी लेकर साथ लौटे हैं, जिसे वो अपने गांव के शिवालयों में अर्पित करेंगे। नीति घाटी के बड़ाहोती इलाके में स्थित ये पवित्र कुंड समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। नीति घाटी के भोटिया जनजाति के लोग सदियों से सावन महीने में पार्वती कुंड पहुंचकर स्नान करते हैं और कुंड का पवित्र जल लाकर शिवालयों में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। पार्वती कुंड तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक स्तर से लेकर भारतीय सेना और आईटीबीपी के समन्वय से विशेष अनुमति की व्यवस्था की जाती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर के दान पात्र में गिनती चरणबद्ध तरीके से जारी है। छठे चरण की मासिक गिनती में अब तक 29,68,83,955 रुपए नगद प्राप्त हो चुके हैं। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को दान पात्र को गिनती के लिए खोला गया था। भंडार से प्राप्त सोना चांदी का वजन के साथ ही भेंट कक्ष का नगद, मनी ऑर्डर और भेंट स्वरूप में ले सोने चांदी की गिनती अभी बाकी है। मंदिर मंडल के मुताबिक बाकी राशि और सोने चांदी की गिनती सातवें चरण में की जाएगी। श्रद्धालुओं के मुताबिक श्री सांवलिया सेठ पर अर्पित प्रत्येक भेंट केवल दान ही नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और भक्ति की अभिव्यक्ति है, जो इस पावन धाम की आध्यात्मिक महिमा को और अधिक गौरवान्वित करती है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हेरा पंचमी के बाद भी अडापा मंडप में दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है और हर दिन बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहां पहुंच रहे हैं। 24 जुलाई को होने वाली पहुड़ा यात्रा तक भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर में ही प्रवास कर रहे हैं। यहां 7 दिनों के प्रवास के बाद तीनों मुख्य मंदिर लौटेंगे, जिसके साथ ही रथ यात्रा उत्सव का समापन होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में भी एक विशेष परंपरा निभाई गई। यहाँ का एक परिवार पिछली कई पीढ़ियों से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं की विधि विधान से पूजा करता आ रहा है। आषाढ़ अमावस्या के बाद पहले सोमवार को यहाँ परंपरा के मुताबिक प्रसाद की मटकी भरने की विशेष रस्म निभाई गई। इस विशेष प्रसाद को भगवान के सामने 24 घंटे तक रखा जाने के बाद श्रद्धालुओं को महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अकोला के पुराने शहर स्थित गुप्ता परिवार का ये घर वर्षों से भगवान जगन्नाथ की भक्ति का केंद्र बना हुआ है। इस परिवार के पूर्वज जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं लेकर आए थे और तभी से यहां पूरे भक्तिभाव के साथ उनकी पूजा अर्चना होती है।

0: ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि एक बार फिर से मॉनसून लौट आया है। कहीं हल्की फुहार तो कहीं झमाझम मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लेकर पंजाब तक आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और अब ये बादल मॉनसून की शेष बारिश का कोटा पूरा करने वाले हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति से आई हैं, जहां ताजा बर्फबारी से पूरी घाटी में सफेद चादर बिछी हुई है। जुलाई के महीने में जब देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी और बारिश का दौर है, तो वहीं स्पीति घाटी की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी ने सभी को हैरान कर दिया। स्पीति घाटी के लांगजा गाँव की ऊंची पहाड़ियों पर अचानक हुई बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद हो गया। सामने आए वीडियो में बर्फबारी के बाद का पूरा नजारा नजर आ रहा है। जमीन पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। वीडियो में एक शख्स हाथ से बर्फ को छूकर उसकी मोटाई दिखाता भी दिख रहा है। इस दौरान लोग बर्फबारी के इस अनोखे नजारे को अपने मोबाइल फोन में कैद भी करते दिखे। गर्मियों के बीच बर्फ से ढकी पहाड़ियों का ये नजारा जहां बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, तो वहीं मौसम के अचानक बदलते मिजाज ने स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया है। जुलाई में मनाली में भारी बर्फबारी होना आम नहीं है। आमतौर पर जुलाई के महीने में स्पीति घाटी का मौसम सूखा और धूप वाला ही रहता है, लिहाजा बर्फबारी होना आम नहीं है। हालांकि समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलना आम बात है। यहां कुछ ही घंटों में तेज धूप के बाद बादल छा सकते हैं और बारिश या बर्फबारी शुरू हो सकती है।
1: देखिए, जहाँ तक ऑब्जर्वेशन की बात है तो हमारे किसी भी ऑब्जर्वेशन में ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हालांकि जो हायर रीचेस होते हैं, जो पहाड़ के जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं, जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी होना जो नेचुरल और संभव है।
0: रेस्क्यू की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में बादल फटने से नालों में बाढ़ आ गई। वहीं पांगी के उदीन में नाले का जलस्तर बढ़ने से 11 मजदूर फंस गए। हालांकि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं लगातार हो रही बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 3 युवक फंस गए, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर आई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तेज बहाव के बीच जवान नाव के सहारे युवकों तक पहुंचे और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भी बारिश के बीच सेना, पुलिस और एसडीआरएफ ने मिलकर बड़ा राहत अभियान चलाया। उफनते नालों और तेज बहाव के बीच फंसे 5 बच्चों समेत कुल 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
2: जम्मू कश्मीर में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ आ गई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके सबसे अधिक प्रभावित हैं इस बाढ़ और बारिश के कारण। राजौरी और पुंछ जिलों में जानो माल का काफी नुकसान हुआ है इस बाढ़ और बारिश के कारण। राजौरी और पुंछ जिलों में काफी तबाही हुई है, मकान जो है ढह गए हैं, रिहायशी इलाकों में भी पानी आ गया है और लोग वहां त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में टीम्स भेजी जा रही है ताकि लोगों को कुछ राहत पहुंचाई जा सके। वहीं प्रशासन ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को जो है सुरक्षित भी निकाला है खतरनाक इलाकों से और उनको अब सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। कई स्कूल जो हैं राजौरी में, उनको राहत शिविर के तौर पर अब बनाया गया है और वहां पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था रखी गई है। वहां प्रशासन जो है उनको भोजन भी मुहैया करवा रहा है।
0: जबकि राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली है। दिल्ली के आसमान में कल से ही बादलों की आवाजाही लगी हुई है। कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई और ये सिलसिला आज सुबह भी दिखा। जाहिर है राजधानी और आसपास जिस तरह से कई दिनों की उमस और चिपचिपी गर्मी पड़ रही थी, उसकी मार को इस बारिश ने काफी कम कर दिया है। भले ही सड़कों पर रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और एनसीआर में फिर से एक्टिव हुए मॉनसून के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस लिहाज से इन जगहों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। वहीं इसी दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी उम्मीद है। मॉनसून के इस दौर में रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला 24 से 26 जुलाई तक जारी रहने का अनुमान है।
1: देखिए, अभी जो एक ये इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी का जो ये दौर चल रहा है, इसमें जरूर 2 से 3 दिन के बाद थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी जो है।

0: हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का जो फोरकास्ट चल रहा है उसमें दो दिन के बाद में जो हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी इंटेंसिटी में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी जो वर्षा गतिविधि है वो अभी अच्छी रहने की संभावना है, मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिम भारत है, मध्य भारत है, इन सभी क्षेत्रों में जो अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी जो है देखने को मिल सकती है। देखिए अभी हम देखेंगे तो अगले दो दिनों के दौरान जैसे बताया भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है पहाड़ी राज्यों में भी, साथ साथ में जो प्लेन एरियाज हैं, वहीं पश्चिम भारत में हम देखेंगे तो राजस्थान में भी जो वर्षा गतिविधि जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अगले चार से पाँच दिनों के दौरान जो है आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है।
1: फिलहाल दिल्ली और आसपास आसमान में छाए बादलों के कारण तापमान में गिरावट आई है। जाहिर है मैदानी क्षेत्रों के लिए बारिश गर्मी और उमस से राहत का पैगाम दे रही है, तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए भी सौगात लेकर आई है। लेकिन मॉनसून केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया है।
0: देखिए अभी भी अगले दो दिनों को देखेंगे तो भारी से बहुत भारी वर्षा चेतावनी यानी कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी चेतावनी जो है वो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जारी है, साथ साथ में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आज के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू में कहीं कहीं कुछ स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि अत्यधिक भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में देखेंगे बाकी का जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के जो अभी इस मैप में देख सकते हो साथ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई।
1: फिलहाल गुड न्यूज ये है कि मॉनसून दोबारा एक्टिव हो चुका है, लिहाजा मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट दिया है। जहां मैदानों में बारिश राहत लेकर आएगी, वहीं पहाड़ों पर यही बारिश आफत बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, कुलगाम, श्रीनगर और अनंतनाग, जबकि उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है।
0: आज के लिए रेड अलर्ट है, पूरा जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद कल के लिए फिलहाल के लिए ऑरेंज अलर्ट रखा गया है, जहां जहां पर बहुत भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है, जहां पर अत्यधिक भारी वर्षा चेतावनी वहां पर रेड अलर्ट कंटिन्यू रहे। तो हम देखेंगे तो वर्षा गतिविधि बढ़ेगी, जब वर्षा गतिविधि बढ़ेगी तो साथ साथ में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट देखी जाएगी। कल 36 से 38 डिग्री के आसपास जो अधिकतम तापमान थे, हमारा अनुमान ये कि 3-4 दिन के बाद में ये 32 डिग्री के आसपास आने की संभावना है, जो सामान्य से कम हो जाएंगे।
1: मॉनसून की वापसी शानदार तो है, लेकिन ये वापसी कई इलाकों पर भारी भी पड़ सकती है। मसलन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ पहले ही बारिश से पूरी तरह भीग चुके हैं। अब अगर बादल और खुलकर बरसे तो नदियां उफान पर आ सकती हैं और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की हुई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कटरा में फंसे श्रद्धालुओं को मिली राहत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा लगातार दूसरे दिन यानी आज भी स्थगित ही रही। कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा पर रोक जारी रखी है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। श्राइन बोर्ड ने भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। वहीं कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा आयोजित की जा रही है और उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बाढ़ प्रभावित असम में भी भारतीय वायुसेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित शिवसागर जिले में हवाई बचाव और राहत अभियान के लिए वायुसेना ने हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। असम और पड़ोसी राज्यों में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, इसलिए सेना के जवानों की रेस्क्यू टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों का पता लगाकर उन्हें एयरलिफ्ट करने में जुटी हैं। गुजरात के जामनगर जिले के आमरा गांव में लगभग 500 साल पुरानी अनोखी आस्था से जुड़ी एक परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। इस परंपरा के जरिए गांव वाले हर साल बारिश का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि बारिश कब होगी और कितनी होगी। परंपरा के तहत गांव की महिलाएं विशेष विधि से बड़ी रोटी तैयार करती हैं। रोटी तैयार होने के बाद ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ ग्रामीणों का एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस गांव में कुएं के किनारे बनी सती माता जी मंदिर पहुंचता है, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और ध्वजारोहण होता है। फिर परंपरा के अनुसार तयशुदा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक उस रोटी को कुएं में प्रवाहित करता है। मान्यता है कि कुएं में डाली गई ये रोटी जिस दिशा में आगे बढ़ती है उसी के आधार पर बारिश की दिशा और मात्रा का संकेत मिलता है। इस साल रोटी के संकेतों के आधार पर ग्रामीणों ने अच्छी और भरपूर बरसात होने की उम्मीद जताई है। अमेठी में सीएम आरोग्य योजना बेहद चर्चा में है। यहाँ सुनील तिवारी नाम के एक शख्स को कूल्हे की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से करीब 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली, जिससे उनका सफल और निशुल्क इलाज संभव हो सका। आर्थिक तंगी के चलते सुनील के इलाज में रुकावटें आ रही थी। हालात ये रहे कि उनके सामने जमीन बेचने की नौबत तक आ गई। ऐसे समय में सीएम आरोग्य योजना के तहत सीएम विवेकाधीन कोष उनका सहारा बना। अब परिवार आभार जताते हुए सीएम आरोग्य योजना को राज्य के लोगों के लिए भाग्यशाली बता रहा है।
2: और अब श्रीनगर के विचार नाग मंदिर की 37 सालों के बाद कश्मीर के सौरा क्षेत्र में एक मंदिर खोला गया। विचार नाग के नाम से जाना जाने वाला ये मंदिर 1990 के दशक में एक अहम स्थान रहता था। मंदिर के दोबारा खुलने पर मुस्लिमों के साथ कश्मीरी पंडित भी काफी खुश दिखे और वहां इस मौके पर भारी संख्या में मौजूद भी रहे। विचार नाग मंदिर कश्मीर की सनातन विरासत से जुड़ी एक ऐतिहासिक धरोहर है। श्रीनगर में भगवान शिव को समर्पित ये एक प्राचीन मंदिर है जो कभी केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि सदियों पहले यहाँ विद्वान जुटते थे, पंचांग तैयार होता था और भविष्य की योजनाओं पर मंथन होता था।

0: ये तस्वीरें श्रीनगर के ऐतिहासिक विचारनाग मंदिर की है, जहां एक समय पूजा पाठ करना सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था। लेकिन 37 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज फिर से यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया और विचारनाग मंदिर एक बार फिर आस्था के रंग में रंग उठा। 37 साल बाद यानी कि 3 दशक से भी लंबा शिव भक्तों का इंतजार, जिसने आस्था को कभी टूटने नहीं दिया, विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने की उम्मीद को हमेशा जिंदा रखा। यहां 1989 के बाद पहली बार फिर से श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के सामने सिर झुकाया है। इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के उद्घाटन पर पहुंचे सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने इसका स्वागत किया और कहा कि ये यकीन करना मुश्किल है कि हम यहाँ वापस आ गए हैं और जो जगह खंडहर हो चुकी थी वो अब फिर से चमक रही है।
1: सैटरडे संडे दोनों दिन बैठ के यहाँ शाम को आरती होती थी, भजन कीर्तन होता था, उसमें पूरी रात बैठ के 12-1 बजे तक बैठ के सुनते थे। वो यादें हैं,
2: ताजा होगी, सारी यादें
1: ताजा होंगी। जब ये शुरू होगा भजन कीर्तन वापस आएगा। अभी तो बड़ी खुशी है कि बेचार साहब वापस आ गया, एटलीस्ट दरवाजे से आज हम अंदर आ सके, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: इस मंदिर के पुनरुद्धार के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंदिर का उद्घाटन किया और इस ऐतिहासिक धरोहर को एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया।
3: देखिए, विचारनाग का यहाँ के सांस्कृतिक आध्यात्मिक इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है और ये मैं समझता हूँ बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि लंबे समय बाद जो ज्ञान का केंद्र रहा है, दुनिया भर के विद्वान जहाँ करके आपस में विमर्श किया करते थे, उस स्थल को पुनर्जीवित करने में सफलता मिली है। मैं इस कार्य से जुड़े सभी लोगों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि लंबे समय बाद इसमें आस्था रखने वाले लोगों ने आज आकर के यहाँ यज्ञ किया, हवन किया और भगवान शंकर की स्थापना की। यहाँ की जो मूल पहचान है अभिनव गुप्त जैसे विद्वानों की, मैं समझता हूँ कि आज से 2000 साल पहले दुनिया भर के विद्वान यहाँ बड़ी संख्या में आते थे, गणित हो, अध्यात्म हो, गणना हो, इन सब विषयों पर चर्चा करते थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से वह काल जम्मू कश्मीर में वापस आवे।
0: मंदिर खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचे और अपनी यादों को ताजा किया। मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में फिर से धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। इस मौके पर कई श्रद्धालुओं की आंखें नम थी क्योंकि दशकों बाद वे अपने इस प्राचीन तीर्थ में फिर से माथा टेक पा रहे हैं।
1: मेरे लिए ये बचपन जो है ये वापस आया है। मैं बचपन में यहाँ आया करता था, मेरा ननिहाल यही है, ये यहाँ से करीबन 40 मीटर की दूरी पे है मेरे को। मैं बॉम्बे में हूँ अभी, मैं बॉम्बे से स्पेशली इसी के लिए आया था ताकि मैं इस फंक्शन में जो ये रिवाइव हुआ है टेंपल बेचार साहब का, इसमें आ सकूं, इसलिए मैं आया था, बहुत खुश हूं।
0: श्रीनगर के रैनावारी इलाके में स्थित विचारनाग मंदिर के पुनरुद्धार में विचारनाग आस्थापन ट्रस्ट की अहम भूमिका रही। ट्रस्ट ने इस ऐतिहासिक धरोहर को फिर से संवारने में अहम योगदान दिया है। वहीं मंदिर खुलने से यहाँ के स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं।
4: मैं भी आया शिरकत करने के लिए यहाँ ही मंदिर के वास्ते, क्योंकि हमारे हमसाये पंडित लोग हैं वो आए हैं, इससे मुलाकात किया और हम आपस में गले लग गए। ये नई बात है हमारे लिए, 35 साल के बाद हम आपस में मिल गए, ये आंसू आता है। एक पंडित है इनमें से, उसका नाम है, हम उसको साहब जी बोलते थे, वो मुझे मेरी बीवी को वो मासी बोलता है, मेरे बच्चे उसने पढ़ाए हैं, इसीलिए उनके साथ मुझे ज्यादा दिल की वाबस्तगी है।
0: विचारनाग मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां एक झरने में प्रमुख शिवलिंग स्थित है। माना जाता है कि ये मंदिर प्राचीन काल का है। अनुमानों के अनुसार ये लगभग 5000 साल पुराना है। जब कश्मीरी पंडित समुदाय अस्तित्व में आया था, हालांकि इसके निर्माण की सटीक तारीखें निश्चित नहीं है। विचारनाग वो जगह है जहां प्राचीन काल में हिंदू विद्वान साल के आखिरी दिन एक साथ बैठकर अगले साल की योजनाओं पर चर्चा करते थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि वे हिंदुओं के लिए नए साल का कैलेंडर भी जारी करते थे, जिसे नक्षत्र पत्र कहा जाता था।
4: ये तो बहुत खुशी की बात है जो इसकी रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रिशेप हो गया विचारनाग टेम्पल का, उसके साथ ही एरिया का भी रिशेप हो गया, लेवलिंग कर दी, फिलिंग कर दी, नालियां बना दी। हमें बहुत खुशी उसके लिए है। कम से कम एक जो ओल्ड कल्चरल एरिया है, मंदिर वगैरह जो है, तो रेस्टोर हो गया दोबारा। इसका कम से कम हिस्ट्री 5000 साल की है। राज तरंगी हमारी आपने भी पढ़ी, सुना भी होगा, उसमें भी इसका मेंशन है। यहाँ ह्यूनसांग भी इसका मेंशन है। ह्यूनसांग भी विचारनाग में आया था डिस्कस करने के लिए। विचारनाग में एक खास खासियत यह है, जो साल का कैलेंडर निकलता है, वो आर्य जो विद्वान है, आलम थे, वो आते थे, डिस्कस करते थे लास्ट डे ऑफ द ईयर, वो उस पर आपस में सहमत बना के अगले साल के पहले दिन से वो शुरू होता था। उसको बोलते हैं पंचांग, आजकल भी निकलता है, यंत्र जिसको हम बोलते हैं आजकल, वो आजकल उसी वजह से ज्यादा फेमस है।
0: श्रीनगर के पुराने शहर में स्थित विचारनाग मंदिर का नवीनीकरण कश्मीरी पंडितों का भरोसा फिर से जीतने की दिशा में एक अहम कदम है। नौशेरा इलाके में स्थित ये मंदिर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए बहुत सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है और कश्मीर की मिली जुली विरासत को दिखाता है। विचारनाग मंदिर से पहले भी कश्मीर में कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। कश्मीर घाटी में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उपेक्षित पड़े मंदिरों को फिर से जीवंत किया गया है। श्रीनगर के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर का भी कुछ महीने पहले जीर्णोद्धार किया गया। रामनवमी के अवसर पर इस मंदिर को 36 साल बाद आम जनता के लिए फिर से खोला गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि मंदिर के शुद्धिकरण और उद्घाटन में स्थानीय मुस्लिम परिवारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कश्मीर में ये जीर्णोद्धार केवल पत्थरों और दीवारों को संवारने का काम नहीं है, बल्कि कश्मीर की उस प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने की कोशिश है, जहाँ ज्ञान, संवाद, चिंतन और सनातन परंपरा सदियों से एक साथ प्रवाहित होती रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। 21 जुलाई मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 238 अंकों की गिरावट के साथ 77,470 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर्स वाला एनएसई निफ्टी 50 अंकों की गिरावट के साथ 24,187 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में फिर मजबूती देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 800 रुपए चढ़कर 1,47,700 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 21 जुलाई को भी 2,21,500 रुपए पर बनी रही। 21 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में मजबूती देखने को मिली। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 96.24 के स्तर पर बंद हुआ।
5: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू। स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों को किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में सवार 30 करोड़ से ज्यादा का दान, नगद के अलावा सोना चांदी की भी भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में हुआ कैद। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
6: सोशल मीडिया पर इस मजदूर को इतनी मेहनत करने के बावजूद मुस्कुराते देखना लोगों को बहुत भा रहा है। हर कोई ये समझ रहा है कि इस मुस्कान के पीछे न जाने कितनी अधूरी ख्वाहिशें दबी हैं, और इतनी मेहनत आखिर एक बाप, एक बेटा या एक भाई क्यों करता है। इन तस्वीरों को देख लोग कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां हर इंसान को जीना सिखा देती हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप बेशक भावुक हो जाएंगे और इस बच्चे पर आपको बेहद प्यार भी आएगा। बच्चे की माँ सबवे में थकान से जूझते हुए सो जाती है। अब इस माँ के इस छोटे से बेटे को बस एक ही चिंता है कि कहीं नींद में झटके से माँ को चोट ना लग जाए, इसलिए वो पूरी कोशिश में है कि माँ को चोट लगने से बचा ले। अब जो भी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देख रहा है, माँ बेटे की इस बॉन्डिंग और छोटे से बेटे को चिंतित देखकर इमोशनल हो रहा है। दादा और पोती के बीच का प्यार और बॉन्डिंग देखनी है तो ये तस्वीरें देखिए। दादा खाना खा रहे हैं और पोती बड़े प्रेम से किचन में रोटी बनाती अपनी माँ से गर्मा गर्म रोटी लेकर दादा को देने जा रही है। रोटी मिलने के बाद दादा अपनी पोती को प्यार भरा आशीर्वाद भी देते हैं। मानो बस इसी आशीर्वाद और प्यार के लिए पोती दादा को गर्मा गर्म रोटियां परोस रही है। लोग इस वीडियो को देख इमोशनल हैं और दादा पोती की इस बॉन्डिंग पर प्यार लुटा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे स्कूल न जाने के लिए न सिर्फ बहाने बनाते हैं बल्कि दहाड़े मार कर रोते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बच्चे की तस्वीरें काफी वायरल हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल नहीं जा रहा है बल्कि किसी भी मुसीबत को पार कर सिर्फ स्कूल जाना चाहता है। उसके रास्ते में नदी का बहाव है लेकिन वो अकेला ही उसे पार कर दूसरी तरफ जाता है। लोग उसके साहस को सलाम कर रहे हैं क्योंकि ये छोटी सी जान लोगों को सिखा रही है कि मंजिल चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हौसले और इरादे हमेशा मजबूत होने चाहिए। डॉग्स पपी जिसके पास भी होते हैं वो जानते हैं कि उनको सिखाना कितना मुश्किल है, लेकिन इस पपी की टीचर भी खुद बच्ची है जो उसे सीढ़ी से कैसे उतरते हैं ये सिखा रही है, और ये पपी इतना अलर्ट और अटेंटिव है कि बस दो बार बताने के बाद ही एकदम समझ जाता है और सीढ़ी से उतरकर अपनी छुटकी टीचर को खुश कर देता है। पपी और लिटिल गर्ल का ये वीडियो अब सुर्खियों में है।
5: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली की एक कामकाजी महिला के वायरल पोस्ट की, जो कि उसने प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर शेयर किया है। दिल्ली की वर्किंग लेडी का ये पोस्ट शादी के एक अच्छे प्रस्ताव को ठुकराने के बारे में है, जो कि सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बन गया है। इस वायरल पोस्ट ने करियर, जेंडर एक्सपेक्टेशन और मॉडर्न रिलेशनशिप को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। सत्य घटना पर आधारित टाइटल वाले इस पोस्ट में महिला ने बताया कि उसने क्यों 48 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लड़के से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। महिला के अनुसार दोनों परिवार शुरुआती तौर पर शादी को लेकर तैयार लग रहे थे, लेकिन लड़के वालों की तरफ से आई एक डिमांड ने सब कुछ पलट दिया। दरअसल लड़के के घर वालों ने ये मांग रखी थी कि शादी के बाद लड़की को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, लेकिन महिला ने खुद को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और अपने करियर के प्रति लगाव का हवाला देकर शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। महिला ने पोस्ट में लिखा कि वो 48 लाख रुपए सालाना कमाता है, लेकिन वे चाहते थे कि मैं शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दूं। मैंने पूरी विनम्रता के साथ उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। पोस्ट में महिला ने तर्क दिया कि उसके लिए जॉब कोई हॉबी नहीं, जिसे वो किसी के कहने पर बदल दे। महिला ने साफ कहा कि ये फैसला लड़की की सैलरी या फिर आर्थिक सुरक्षा को लेकर कभी नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर था। लिंक्डइन पर शेयर किया गया ये पोस्ट काफी वायरल हो गया है, जिस पर हजारों यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। ज्यादातर यूजर्स ने अपने रुख पर कायम रहने और मूल्यों के साथ समझौता न करने के लिए इस कामकाजी महिला की तारीफ की है। कई यूजर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के युवा पेशेवर लोगों में शादी को लेकर सोच बदल रही है। आज के दौर में पार्टनर्स एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए बढ़ावा देते हैं। इस वायरल पोस्ट को लेकर हमने जयपुर में युवाओं से बात की और उनकी राय जानी।
8: मेरे को ऐसा बोला जाए कि मुझे शादी के बाद काम नहीं करना है तो मैं वो शादी नहीं करूंगी, बिकॉज मेरा फर्स्ट मोटिव इज टू बी इंडिपेंडेंट। तो मेरा मेन मोटिव तो यही है कि क्योंकि ऐसा होता है कि शादी के बाद आपको हर चीज़ के लिए पैसे मांगने पड़ते, तो मेरी आइडियोलॉजी तो ये है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो और खुद अर्न करो ताकि किसी से मांगना नहीं पड़े।
9: वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैंने अपना पैशन इतने फॉलो करा है तो ऑब्वियसली मेरे को करना पड़ेगा, और मैं अगर अर्न कर रही हूँ तो मैं खुद के लिए अर्न कर रही हूँ, मेरे को अपने इन लॉस से बार बार पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए कि मैं अपना खुद का खर्चा उठा सकती हूँ और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर खर्चा करा है तो मैं पढ़ाया लिखा है तो ऑब्वियसली मेरे को भी उनको कुछ देना पड़ेगा। खुद के ऊपर आइडेंटिटी ऑब्वियसली एक लड़की की होनी चाहिए, कहीं पता चले आगे चल के उनके इन लॉज ने उसके साथ कुछ करा तो वो खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है एक लड़की।
10: मेरे हिसाब से लड़कियों को काम करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पे बोला जाता है कि लड़कियाँ क्या कर रही हैं, घर पे रहती हैं स्पेशली, तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नहीं, अगर शादी के बाद अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे काम नहीं करना है तो आई विल प्रेफर कि मैं उसे छोड़ दूँ इंस्टेड ऑफ लीविंग माई जॉब, क्योंकि वो जॉब मुझे फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंस दे रहा है एंड अगर मुझे कुछ लेना है या फिर मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है तो वो मुझे अच्छा इंडिपेंडेंस देता है। एंड कल को अगर मेरा हस्बैंड अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ करता है या फिर मेरे साथ कुछ गलत करता है तो एंड अगर मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट ना करें तो बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं खुद के पैसे कमा रही हूँ तो खुद का स्टैंड ले सकती हूँ।
11: नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज शी सेड। एंड ऑल्सो कि अगर आप 45 लाख भी कमा रहे हो, अगर लड़की है वो अगर अपने जीने के लिए अपने लिविंग के लिए अगर वो 30,000 या 40,000 भी कमा रही है वो भी इनफ है इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, तो ये चीज़ तो नहीं, बहुत आई वुड से ये बहुत गलत हुआ। मेरा मानना है कि ये जो हो रहा है जो मतलब अपना बनाना अपना वो करना काम करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग के भी फैमिली वाले क्या कहते हैं कि हमारा शादी होना इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हमारा मतलब काम करना, अगर पति हम लोग का जो हस्बैंड है अगर वो हम लोग को नहीं चाहता कि मैं काम करूं तो मेरे पेरेंट्स ये कहेंगे कि आप फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ ये डूइंग जॉब। तो अपना नाम कमाना हाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा।
5: फिल्म ओ माई डॉग का ट्रेलर मेकर्स ने किया रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
6: फिल्म ओ माई गॉड 2 के निर्देशक अमित राय की नई फिल्म ओ माई डॉग का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में इंसानों और डॉग के बीच बिना शर्त प्यार, वफादारी और साथ को दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत भी टीजर की तरह ही अमिताभ बच्चन के मशहूर गीत मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो से होती है।
12: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो,
6: और कुछ संवाद के बाद ट्रेलर समाप्त भी इसी गीत के ट्यून पर हो जाता है। फिल्म ओ माई डॉग में पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा, माही राय, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा, विजय मिश्रा, सुलक्षाना बरुआ, डॉग स्टार्स ब्रूनो और ऑस्कर के साथ ही 250 से ज्यादा डॉग्स नजर आएंगे। एक नन्हे बच्चे और डॉग के बीच के खूबसूरत बंधन की दिल छू लेने वाली कहानी को बयां करती ये फिल्म 31 जुलाई को इसी साल रिलीज हो रही है।

0: फिल्म आवारापन 2 का दूसरा गाना ये आवारापन भी रिलीज हो गया, जो फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी है। इस दर्द भरे गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है, जिसे इमरान हाशमी पर फिल्माया गया है। गाने का संगीत अमाल मलिक ने दिया है, जबकि इसे लिखा है रश्मि विराग ने। इस गाने में विरह का दर्द और तड़प जैसे इमोशंस के साथ ही विजुअल्स भी बेहतरीन हैं। आवारापन 2 साल 2007 में आई फिल्म आवारापन का सीक्वल है। इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी मुख्य भूमिका में दिखेंगी। नितिन कक्कड़ निर्देशित फिल्म आवारापन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और मशहूर एक्टर थलापति विजय की फिल्म जननायकन की रिलीज से पहले इसका नया टीजर भी सामने आ चुका है, जिसमें विजय अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। टीजर में विजय को दुश्मनों पर गोलियां चलाते और तलवार से लड़ते हुए एक्शन पैक्ड अवतार में दिखाया गया है। इसमें विजय जेल की वर्दी से अपने मुख्यमंत्री के लुक में बदलते भी दिखाई देते हैं। जननायकन 23 जुलाई को सिनेमाघरों में आ रही है। मिलिट्री ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का ट्रेलर लॉन्च हो गया। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के चलाए गए ऑपरेशन की वीरगाथा से जुड़ा ये ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 7 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो रही सीरीज में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, वरुण सोबती, अभय वर्मा, दिया मिर्जा, प्राजक्ता कोहली और मेहर आहूजा नजर आएंगे।
1: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि स्वस्थ रहना सबसे जरूरी। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो देश की प्रगति में मददगार बनेंगे। हालांकि मौजूदा समय में मोबाइल पर लोगों का ज्यादा जोर नजर आता है, यहां तक कि बच्चों को भी इसकी आदत से लग गई है। इसी को लेकर दिल्ली के एक पहलवान ने खास मुहिम की शुरुआत की है। कौन है ये पहलवान और क्या है उनकी मुहिम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।

0: इस तरह की तस्वीर अब नहीं के बराबर देखने को मिलती है। बच्चे पारंपरिक खेलों से दूर होकर अक्सर मोबाइल में डूबे नजर आते हैं, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर भी पड़ रहा है। बच्चों की आदत कई अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, जिसे छुड़ाने का बीड़ा उठाया है दिल्ली के रेसलर हवा सिंह ने। समयपुर बादली इलाके के खेड़ा कलां गांव के रहने वाले हवा सिंह हर घर मुगदर नाम की एक अनोखी मुहिम चला रहे हैं, जिसका मकसद बच्चों को शारीरिक रूप से एक्टिव रखने और मोबाइल फोन पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हवा सिंह बच्चों को सिर्फ मुफ्त में मुगदर बांटते ही नहीं, बल्कि उन्हें इसे चलाने की ट्रेनिंग भी मुफ्त में ही दे रहे हैं।
1: मुगदर सिखाने का हमारा मकसद ये है बच्चों को, आजकल बच्चे हरदम फोन पे चिपके रहते हैं, किसी को भी देख लो कितनी उम्र हो जाए, और मैं खासकर देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 2 साल के, 1 साल का भी बच्चा है, वो भी फोन के अंदर घुस रहा है। तो ऐसा क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों के हाथ में फोन मत दो। पहले तो उनके माँ बाप बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं, उसके बाद वही माँ बाप उन बच्चों को फोन छुटवाने के लिए आदत, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेरेंट्स इसमें परेशानी उठा रहे हैं। इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि बच्चों के हाथ में अब मोबाइल नहीं, हम मुगदर देंगे।
0: हवा सिंह पहलवान रह चुके हैं और 60 साल की उम्र में आज भी भारी से भारी मुगदर को आसानी से चलाते हुए नजर आते हैं। मुगदर पारंपरिक और प्राचीन फिटनेस का बड़ा साधन है, जो अब विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन हवा सिंह अपनी मुहिम के जरिए न सिर्फ बच्चों को फिट रखने में मदद कर रहे हैं, बल्कि उन्हें मोबाइल से दूर करने में भी मददगार साबित हो रहे हैं, साथ ही मुगदर को विलुप्त होने से बचाने का काम भी कर रहे हैं।
1: हमारा मकसद है कि हर एक घर के अंदर एक मुगदर हो। मुगदर एक ऐसी चीज है कि एक ही मुगदर से पूरा परिवार एक्सरसाइज कर सकता है, इसीलिए हमने नारा दिया है हर घर मुगदर, घर घर मुगदर का। और दूसरा हमारा नारा है कि मुगदर घुमाओ और स्वस्थ भारत बनाओ। ये इतना अच्छी एक्सरसाइज है मुगदर की कि आप इसको घर में ही कर सकते हैं, इसमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर अगर जो मुगदर है, किसी टाइम भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक मुगदर की एक्सरसाइज कर दोगे तो आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी। रही जिम की बात, जिम खराब चीज नहीं है, हम ऐसे नहीं कहते कि जिम खराब है, नहीं, लेकिन जिम के अंदर भी कोशिश करें कि देसी एक्सरसाइज जरूर जोड़े और मुगदर तो जरूर जोड़े जिम के अंदर भी।
0: हवा सिंह अपनी मुहिम के तहत अब तक बच्चों को 4000 से ज्यादा मुगदर मुफ्त में बांट चुके हैं। उनकी इस पहल का बच्चों पर साफ असर भी हो रहा है, वो मुगदर की ट्रेनिंग लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उनकी मोबाइल से दूरी भी बन रही है, जिससे अभिभावक भी बेहद खुश हैं।
2: मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 8 साल का, एक बेटी है 12 साल की। वो मोबाइल में 5-5, 6-6 घंटे एक दिन में घुसे रहते थे। फिर मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया और मैंने बच्चे यहाँ खेड़ा में भेजने शुरू किए, तो तब से डेली मैं अपने बच्चों को यहाँ शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए यहाँ लाते हैं और उससे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। और मोबाइल जो ये 6-6 घंटे 4-4 घंटे स्कूल से आने के बाद देखते थे, वो ना के बराबर हो चुका है।
3: पहले ये फोन में लगा रहता था 3-3, 4-4 घंटे तक, ना तो कुछ खाना, ना कुछ किसी और एक्टिविटी में कुछ वो नहीं था। लेकिन जब से हवा सिंह जी ने यह मुक्तर की मुहिम चलाई है, जब से मेरा बच्चा थोड़ा एक्टिव हुआ है, इसने फोन देखना बंद कर दिया है, ढंग से ये खाना खा रहा है 2-2, 3-3 घंटे तक, अभी रोज एक्सरसाइज भी करता है, मुगदर भी घुमाता है और घर में भी बहुत एक्टिव रहता है अभी, और अब इसने फोन बिल्कुल छोड़ दिया है।
0: हवा सिंह अपनी एकेडमी में बच्चों को मुगदर का इस्तेमाल करने वाली पारंपरिक भारतीय कसरत की ट्रेनिंग देते हैं और जो बच्चे एकेडमी नहीं आ पाते उन्हें घर पर इस्तेमाल करने के लिए मुगदर देते हैं, ताकि वो कसरत जारी रख सके और शारीरिक रूप से एक्टिव रह पाएं। हवा सिंह की इस मुहिम की हर कोई तारीफ करता नजर आ रहा है।
4: हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ है तो वेल्थ सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। पहला सुख कहते हैं निरोगी काया, अगर निरोगी काया है तो सब कुछ सुख है फिर, तो ये बहुत जरूरी है। ये
5: मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको दोनों को यहाँ लेके आता हूँ। मैंने बोला है कि यहाँ जरूर आए, मैं ना भी हूँ तब भी आए, क्योंकि ये एक ऐसी मुहिम है जिससे बच्चे स्पोर्ट्स से दूर हो रहे हैं, जो उनको टच में लेके आना है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज़ है जिससे शरीर मजबूत होता है, दिमाग शांत होता है, बच्चा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है, अच्छा खाना खाता है, और आजकल तो स्पोर्ट्स में कैरियर भी बच्चों का बन रहा है, तो इससे अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा बचपन से ही। अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा, और जिस भी स्पोर्ट्स में जाएंगे ये मुगदर जो मुहिम है उनके काम आएगी।
0: बच्चों के साथ साथ समाज के सभी लोगों तक मुगदर की जागरूकता फैलाने के लिए हवा सिंह ने इस मुहिम की शुरुआत की है, ताकि लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। उनकी इस मुहिम का ही असर है कि अब महिलाएं भी मुगदर चलाती नजर आ रही हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: शंघाई के आइस एंड स्नो वर्ल्ड में पेंगुइन परेड शुरू। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: चीन के शंघाई में गर्मी के बीच खास तरह से डिजाइन किया गया पार्क सबसे आकर्षण का केंद्र बन गया है। पार्क का नाम आइस एंड स्नो वर्ल्ड रखा गया है। इस पार्क में अब 10 पेंगुइन्स की एंट्री हुई है और पर्यटकों को लुभाने के लिए यहां पेंगुइन परेड की शुरुआत की गई है। दूर दूर से लोग पार्क में पेंगुइन परेड देखने आ रहे हैं। चीन ने पहला एम्बॉडेड इंटेलिजेंस स्पेशलिटी रोबोट पेश किया है, जो दीवारों पर चढ़कर वेल्डिंग और ग्राइंडिंग जैसे मुश्किल काम कर सकता है। इस रोबोट को दूर बैठा इंसान आसानी से चला पाएगा। इससे ऊंची और खतरनाक जगहों पर काम करने का जोखिम अब कम हो जाएगा। रोबोट प्लस प्लस का ये रोबोट शिप बिल्डिंग, केमिकल टैंक मेंटेनेंस और दूसरे जोखिम भरे औद्योगिक कामों के लिए तैयार किया गया है। ये रोबोट जंग, पेंटिंग, ग्राइंडिंग और इंस्पेक्शन की जरूरत को खुद ही पहचान लेगा और समस्या का समाधान करेगा। ह्यूमनॉइड आर्म्स और मैग्नेटिक प्लेटफॉर्म से लैस ये रोबोट एम्बॉडेड इंटेलिजेंस युग की ओर चीन की नई तकनीक उपलब्धि माना जा रहा है। AI और ह्यूमनॉइड रोबोट क्षेत्र में उभरते चीन ने दावा किया है कि दुनिया के आधे से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट मॉडल अब चीन में ही डेवलप हो रहे हैं। MIIT के अनुसार चीन ने 400 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट मॉडल तैयार कर लिए हैं। चार पैरों वाले रोबोट के करीब 70% बिक्री चीनी कंपनियां कर रही हैं। वहीं इंटेलिजेंट रोबोटिक सेक्टर में भी चीन ने दुनिया में मजबूत बढ़त बना ली है। चीन के बड़े उद्योगों में AI इस्तेमाल 30% के पार चला गया है। रोबोटिक्स और AI के दम पर चीन की टेक इंडस्ट्री ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। ह्यूमनॉइड रोबोट निर्माण में चीन बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है और रोबोटिक्स में चीन का वैश्विक दबदबा बढ़ गया है। चीन का ओपन सोर्स AI लार्ज मॉडल के 10 अरब से ज्यादा वैश्विक डाउनलोड का दावा है। नई ऊर्जा और बायोमेडिसिन सेक्टर में भी चीन की यूनिकॉर्न कंपनियां जमकर उभरी हैं। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें AI के ग्लोबल पार्टनर के रूप में चीन की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया गया है। चीनी AI मेडिकल समाधानों ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। AI एजेंट अब MRI स्कैन से 74 तरह की बीमारियों की पहचान करने में सक्षम हो चुके हैं। इंग्लैंड में फार्नबरो इंटरनेशनल एयर शो का शुभारंभ हुआ। दुनिया की बड़ी विमान बनाने वाली कंपनियां इस शो में शामिल हैं। इस एयर शो में अनोखे डिजाइन वाले विमानों का भी प्रदर्शन किया गया है। रॉयल इनफोर्स का जंबो साइज विमान भी एयर शो में शामिल किया गया है। विमानों के साथ साथ मिसाइल्स और ड्रोन का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। शो में डिफेंस कंपनीज ने कम लागत वाली इंटरसेप्टर मिसाइल्स और ड्रोन भी पेश किए हैं। दुनिया के सबसे बड़े एयरोस्पेस और डिफेंस आयोजन में शामिल किए गए हैं। डिफेंस और एयरक्राफ्ट डील्स पर इसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्धों के चलते मजबूत एयर डिफेंस क्षमताओं की मांग बढ़ी है। आयोजन में विमान बनाने वाली कंपनीज ने शुरुआती कमर्शियल डील हासिल की है।
6: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
8: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
10: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
9: More top sports.
11: And he's gonna go! There's the tying goal!
9: And everything in between.
11: This game is over!
9: Upgrade now for the premium listening experience.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
6: हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान, युवाओं को मिला मौका। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
14: अगले महीने होने वाले FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा हो गई। पेरिस ओलंपिक में भारत को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाने वाले अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान रहेंगे। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 41 साल का इंतजार खत्म कर भारत को कांस्य दिलाने वाले मनप्रीत सिंह मिडफील्ड की रीढ़ होंगे। डिफेंडर अमनदीप लाकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल और रविंद्र चंद्र मोइरांगथाम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्ती टीम में जगह नहीं बना पाए। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ अभियान शुरू करेगी और 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भारतीय टीम का मुकाबला होगा। इस बार वर्ल्ड कप का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां एडिशन शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये गेम्स 23 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पिछले 32 सालों का सबसे छोटा एडिशन बनने जा रहा है। इस बार कॉमनवेल्थ में सिर्फ 10 खेल आयोजित होंगे, जबकि बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट और टेबल टेनिस जैसे कई लोकप्रिय खेल बाहर कर दिए गए हैं। इसमें 6 पैरा स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। ग्लासगो इतिहास का पहला शहर होगा जो इतने कम समय में दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले इस शहर ने 2014 में भी इस इवेंट का सफल आयोजन किया था। आयरलैंड और इंग्लैंड में T20 सीरीज 0-2 और 0-4 से हारने के बाद भारतीय टीम अब जिम्बाब्वे दौरे पर है, जहां हरारे में स्पोर्ट्स क्लब में इन दोनों के बीच 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज होगी। इस सीरीज का आगाज 2 दिन बाद 23 जुलाई से होगा। यहां एक बार फिर सबकी निगाहें भारतीय टीनेजर ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी। वो तीनों मैचेस में बतौर सलामी बल्लेबाज उतर सकते हैं क्योंकि संजू सैमसन को पहले ही इस सीरीज से बाहर कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचेस के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए टेंडर जारी किया है। मौजूदा स्पॉन्सर IDFC फर्स्ट बैंक का 3 साल का करार अगस्त के महीने में खत्म हो रहा है। बोर्ड ने एसोसिएट पार्टनर राइट्स के लिए भी आवेदन मांगे हैं। IDFC से पहले टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार मास्टर कार्ड के पास था, उसके बाद पेटीएम के पास था। कनाडा के ओंटारियो में हो रही वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में भारत की टॉप सीड अनाहत सिंह ने आसानी से न्यूजीलैंड की क्वालिफायर लिली विल्सन को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। महिलाओं के पहले राउंड में अनिका दुबे ने जापान की अन्ना कुआहारा को सीधे गेम में हराया और सानवी कलंकी ने 5 गेम के कड़े मुकाबले में नीदरलैंड्स के LK मोल्स को मात दी।
6: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
10: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है।

0: का है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Summer's too good to run on empty. Save 30% on more than 4,000 vitamin and body care items at Fresh Time Market from July 22nd through July 28th. Stock up on your wellness essentials like Mary Ruth's multivitamins, Truvani plant-based protein powder, Brownie's facial patches, and Sunbum sunscreen. Because feeling your best should be part of every summer adventure. See you and your friends July 22nd through the 28th. Fresh Time Market, rooted in your well-being.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
5: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने के लिए MOU, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। असम में बाढ़ के बीच रात बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों को किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट।

0: दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ। जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता। खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में हुआ कैद।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं ऐसे छात्रों की जिनके नाम इस साल नीट की नतीजों में वो शामिल हो गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इन छात्रों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी लगन और मेहनत के दम पर ये कामयाबी हासिल की है। देखिए, मेडिकल कॉलेज में दाखिल के लिए नीट क्लियर करना लाखों छात्रों का सपना होता है। इसके लिए संसाधनों की जरूरत होती है और मुकाबला भी कड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसे छात्रों की भी कमी नहीं है जो गांव या छोटे शहरों में पढ़कर गुर्बत से लड़कर और तमाम पारिवारिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऐसे ही कई छात्रों से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के सूरत से। देखिए, नीट में जिनकी सफलता एक मिसाल बन गई है, कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो गरीबी सपनों की राह रोक नहीं सकती। ऐसे सूरज ने साबित करके दिखाया है। देखिए, रंगाई पुताई का काम करके परिवार का हाथ बटाने वाले सूरज ने कठिन परिस्थितियों के बीच पढ़ाई जारी रखी। बेहतर तैयारी के लिए कोटा पहुंचे, जहां मेहनत और सही मार्गदर्शन ने उनके सपने को उड़ान दी। नीट में शानदार प्रदर्शन के बाद सूरज के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की राह खुल गई है। सूरज की सफलता उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचने का हौसला रखते हैं।

0: और साथ में मेरी पढ़ाई भी निशुल्क थी। और इसी वर्ष मैंने नीट की परीक्षा दी है, जिसमें मुझे मेरी उम्मीदों से बेहतर रिजल्ट मिले हैं। मेरी मौसी मुझे एलन लेके आई थी और उन्होंने ही मुझे एलन के बारे में बताया, और मुझे लगा कि यहीं से मेरे डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है।
1: सूरज को जो गाइडेंस चाहिए थी उसे कोटा ने मुहैया कराई, लेकिन उसकी लगन की आजमाइश तो अभी होनी थी, क्योंकि मुकाबला देश भर के लाखों छात्रों के साथ था। इसीलिए सूरज ने भी दिन रात एक कर दिया।
0: 12वीं के साथ भी नीट का पेपर दिया था, उसमें मैंने सेल्फ स्टडी से ही वो पेपर दिया था, जिसमें मुझे 350 अंक मिले थे, जिससे उसका कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लेके एलन से नीट की तैयारी की, और इस साल मेरा बेहतर रिजल्ट और परिणाम आया है।
1: कोटा में कोचिंग से पहले सूरज को अपने पहले प्रयास में नाकामी मिली थी, इसीलिए उसने रणनीति बदली, 1 साल का वक्त लिया और फिर पूरी तैयारी के साथ 2026 के नीट में शामिल हुआ और नतीजा उम्मीदों के अनुरूप मिला। सूरज को कुल 583 अंक के साथ 99.159 परसेंटाइल हासिल हुआ। ओबीसी कैटेगरी में रैंक 7800 और जनरल रैंक 16569 हासिल करके उसने सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का रास्ता बना लिया। जिन हाथों में कभी रंगाई पुताई के ब्रश हुआ करते थे, अब वो हाथ स्टेथोस्कोप थामेंगे। जिसकी अब तक की जिंदगी संघर्षों में गुजरी, वो अब लोगों को तकलीफों से निजात दिलाएगा। लेकिन जो बात सबसे अहम है वो ये कि सूरज सुमन अब सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल है जो गुर्बत में पढ़ने वाले छात्रों को हौसला और उम्मीद देता रहेगा। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, सफलता जो है रोज की मेहनत, हर दिन के संघर्ष और टूटने के बाद फिर से खड़े होने का नाम है। सफलता की ऐसी कहानियां सिर्फ रिजल्ट नहीं बताती, बल्कि सिखाती हैं कि सपनों की कीमत क्या होती है। किराए का एक छोटा कमरा, पिता की बीमारी, घर की आर्थिक तंगी और इन चुनौतियों के बीच एक लड़के ने नीट में सफलता का कहानी ऐसी जड़ी। कोटा के आर्यन ने जिस तरह मुश्किल को पार करते हुए डॉक्टर बनने की राह पर मजबूत कदम बढ़ाया, वो एक मिसाल है। रिपोर्ट देखिए।

0: एक छोटा सा कमरा, सीमित कमाई, पिता की बीमारी, बड़े भाई का अधूरा सपना और बीच में एक ऐसा बेटा जिसने ऐसी हर मुश्किल को सफलता की सीढ़ी बना लिया। ये कहानी सिर्फ नीट में अच्छे अंक लाने वाले एक छात्र की नहीं, बल्कि उस परिवार की है जिसने हार मानने की जगह उम्मीद को चुना और अपने सपने को पूरा किया। कोटा, देश की शिक्षा नगरी, जहां हर साल लाखों विद्यार्थी डॉक्टर बनने का सपना लेकर पहुंचते हैं, इन्हीं लाखों चेहरों के बीच एक नाम है आर्यन मालव का। बूंदी जिले के एक साधारण परिवार से आने वाले आर्यन के पिता स्टेशनरी का छोटा कारोबार कर घर चलाते हैं। जाहिर है किराए के छोटे से मकान में रहने वाले इस परिवार के पास साधन संसाधन कम है, लेकिन आर्यन के इरादे इससे कमजोर नहीं पड़े। आर्यन मालव को 10वीं में 94% अंक मिले थे, तभी आर्यन के परिवार ने सपना देखा कि बेटा डॉक्टर बने, मगर कोचिंग की फीस सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में स्कॉलरशिप ने रास्ता आसान किया और आर्यन को पढ़ाई का अवसर मिला।
1: कहना चाहूंगा कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छी मेहनत करी और 24 घंटे में से 18 घंटे रेगुलर पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया और 11वीं और 12वीं के साथ उसने रेगुलर 18 घंटे रेगुलर पढ़ाई करी। रात को 12-12, 1 बजे तक पढ़ता था। जैसे हम सुबह उठते थे तो हमें पढ़ा हुआ मिलता था, जब हम रात को सोते थे जब भी पढ़ा हुआ मिलता था, प्लस रात को 12-1 बजे से पहले नहीं सोता था और सुबह 5 बजे पढ़ाई शुरू करता था। हमने सोचा था कि मेहनत तो अच्छी है, डॉक्टर बनने लायक ही है, कि डॉक्टर बन जाएगा। पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। ये हम दोनों का सपना था, मेरा भी था, मेरे वाइफ का भी सपना था कि अपना बेटा डॉक्टर बने।
2: पढ़ाई छूट जाएगी तब आपने क्या सोचा?
1: हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे अपने पैरालिसिस का अटैक आ गया कि बीच में हो सकता है कि बेटे का सपोर्ट कौन करेगा, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसको कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, इसकी प्रोग्रेस कौन करेगा, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में 20 दिन तक बीमार रहा था, वहाँ पे एडमिट रहा था। तो फिर बड़े भैया ने इसका सपोर्ट अच्छा किया, हर जगह बड़े बेटे ने इसका साथ दिया, कोचिंग छोड़ना, लाना, ले जाना। इसमें सबसे ज्यादा जो रहा बड़े बच्चे का याद रहा।

0: आज कैसा लग रहा है आपको?
1: आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया।
0: क्या
1: ये कहना चाहेंगे कि जैसे मेरा बेटा डॉक्टर बना, सबके बेटे इसे मेहनत करके डॉक्टर बने।
2: कोचिंग शुरू हुई ही थी कि परिवार पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पिता को लकवे का अटैक हुआ, लेकिन इसके बाद घर की जिम्मेदारी बड़े भाई ने संभाली। सभी चाहते थे कि आर्यन की पढ़ाई बीच में न रुके। घर इतना छोटा था कि पढ़ने के लिए अलग जगह भी नहीं थी। उसी कमरे में एक कोने में बैठकर आर्यन ने घंटों पढ़ाई की। उसने तय कर लिया कि कोई क्लास नहीं छोड़ेगा, हर टेस्ट देगा, हर गलती सुधारेगा और हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करेगा। 12वीं में फिर फीस की चिंता सामने आई, लेकिन दूसरी दफा भी स्कॉलरशिप ही मिली। इसके बाद उसने मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। उसकी दुनिया सिर्फ पढ़ाई, परिवार और लक्ष्य तक सीमित रह गई।
3: पापा को पैरालिसिस आ गया था, तो मेरे मन में डर बैठ गया था कि अब अपनी पढ़ाई जारी रहेगी या रुक जाएगी। तो उस टाइम पे तो मन में डर रहता ही, फिर भी मैंने मेरी पढ़ाई को जारी रखा और नीट में मैंने सिलेक्शन लिया। सोशल मीडिया से दूरी मैंने ऐसे बना के रखी क्योंकि मेरे पास पहले से मोबाइल कीपैड था, बड़ा मोबाइल तो मेरे पास था ही नहीं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। खुद में मोटिवेशन था इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ाई की। बुक्स तो नहीं देखते थे, पर एनवी सर की, हमारे मोशन डायरेक्टर कोचिंग कोटा के जो डायरेक्टर है एनवी सर, उनके मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पर, जो मोटिवेशन वीडियोस डालते रहते हैं, तो उससे मैं मोटिवेट रहता था। उसके बाद परिवार वाले, जो मम्मी पापा भैया, वो भी मुझे फुल मोटिवेट रखते थे, फुल मेरा विश्वास बढ़ा के रखते थे कि तू कर लेगा और नीट क्लियर कर सकता है। उनको यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय पे जो पेपर्स आ रहे हैं वो काफी हार्ड आ रहे हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। कुछ भी उनके जर्नी में मुसीबतें, परेशानियां जो भी आती है, उनसे वो घबराए नहीं, अच्छे से उसका सामना करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर उसके पास सिलेक्शन लें।
2: पहली नीट परीक्षा में आर्यन ने 648 अंक हासिल किए। परिवार को लगा कि अब सरकारी मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन परीक्षा रद्द होने की खबर ने सारी खुशियां रोक दी। एक बार फिर तैयारी शुरू हुई। इस बार परीक्षा के दौरान भी मुश्किलें सामने थी, घर की कुछ मुश्किलें सामने थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं भटकने दिया। आर्यन ने परीक्षा पूरी की और रिजल्ट आने पर 610 अंक हासिल किए। इन अंकों के साथ अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की पूरी उम्मीद है।
4: हमारा सपना यही था कि भाई बचपन से ही कहता है मम्मा डॉक्टर बनूंगा।
2: आर्यन अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता, बड़े भाई, शिक्षकों और ईश्वर को देते हैं। उसका सपना अब डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना है। आर्यन मालव की इस उपलब्धि ने उनके परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। घर में खुशी का माहौल छाया हुआ है।
3: सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि सबका मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। पापा मम्मी भैया का, सारी उन्होंने मेरी जिम्मेदारियां संभाली और ऐसे मम्मी पापा भैया सबको दे, कोचिंग से भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। और मुख्य योगदान हमारे लड्डू गोपाल जी महाराज करा, जो मुझे इतनी सारी परेशानी आने के बाद भी मेरा विश्वास कम नहीं होने दिया, मेरा विश्वास बरकरार रखा और आज मेरे नीट में सिलेक्शन।
2: ये कहानी सिर्फ एक छात्र की सफलता नहीं बल्कि उस भरोसे की जीत है जो हर कठिन समय में इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, सपने देखना आसान है पर उन्हें पूरा करने में बड़ी मेहनत लगती है। नीट के इस साल के नतीजों में कई ऐसे छात्र हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी लगन से कामयाब हुए हैं। जबलपुर के फुटपाथ पर बैग बेचने वाले पिता के बेटे ओम चौकसे और लखनऊ के एक छोटे से गांव की नीलू ने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से अपनी तकदीर खुद लिखी है। इनकी कहानी बताती है कि मजबूत इरादे, मेहनत और परिवार का साथ हर चुनौती को आसान कर देता है। रिपोर्ट देखिए।
6: ये उम्र और ऐसी सोच, देखकर सुनकर हैरानी होती है, लेकिन कुछ प्रतिभाएं होती हैं जो सोने की तरह संघर्ष की आग में तपकर कुंदन बन जाती हैं। ओम उनमें से एक है। कल तक किसी को यकीन नहीं होता कि फुटपाथ पर बैग बेचने वाले रमेश चौकसे का बेटा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन अब ये हकीकत है। इस साल नीट क्लियर करने वाले छात्रों में ओम चौकसे का नाम भी शामिल है और वो भी अच्छे परसेंटाइल के साथ।
7: मेरी 10th में 7th रैंक आई थी ऑल एमपी में, और एमपी स्टेट मेरिट लिस्ट में जब मेरी 7th रैंक आई तो मेरे अंदर हौसला बढ़ा कि मुझे आगे जाके एमबीबीएस की फील्ड में कुछ अच्छा करना है।
6: जबलपुर के जिस मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में ओम ने पढ़ाई की, उसी स्कूल के सामने फुटपाथ पर पिता स्कूल बैग की दुकान लगाते हैं। कमाई बस इतनी कि घर चलता रहा और ओम की पढ़ाई भी। लेकिन इस यात्रा में संघर्ष बहुत था। ओम पिता के साथ पहले दुकान पर जाता और दुकान पर कुछ देर बैठने के बाद स्कूल। स्कूल की छुट्टी होती तो फिर दुकान पर पिता का हाथ बटाता। लेकिन इस जद्दोजहद में डॉक्टर बनने का सपना एक बार भी आंखों से ओझल नहीं हुआ।
7: अब नीट में सिलेक्शन भी हो गया है और मुझे मतलब अपनी फाइनेंस, अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हमेशा एक अंदर से रहा कि मुझे मेहनत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके किसी भी तरीके से अपने फैमिली तो सपोर्ट करना है। मैं मतलब दिन में पापा की दुकान तो खुलवा देता था और बैग टान के और ये कवर टान के और छाते आते खोल देता था, और इसके बाद शाम को गाड़ी ले जाता था और शाम को फिर मैं कोचिंग जाता था और डेली कोचिंग जाके कोचिंग की मॉड्यूल्स को रिवाइज करता था, और इसके बाद सेल्फ स्टडी करने के बाद शाम को पापा की दुकान बंद करवाने आता था और फिर हम और पापा साथ में चले जाते थे घर।
6: 10वीं में ओम ने मध्य प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया और फिर 12वीं में उसने टॉप 10 छात्रों में अपनी जगह बनाई। 10वीं और 12वीं में शानदार सफलता ने ओम के इरादों को और मजबूत कर दिया। दादी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, इसलिए बड़ा होकर कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सपना पूरा करने के लिए ओम ने 12वीं के बाद नीट की तैयारी में खुद को झोंक दिया और पहली बार में ही नीट क्लियर करके अपना टैलेंट दिखा दिया।
7: मैं अपने साथियों को यही बोलना चाहूँगा कि आपको भी मेहनत करना है और हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क करना है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करना है। आपको मेनली रेलेवेंट क्वेश्चन करने हैं। इररेलेवेंट क्वेश्चन करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर अगर आपने रेलेवेंट क्वेश्चन किए तो आप कम मेहनत पे भी अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट लाते, अच्छे से अच्छी रैंक पा सकते।
6: 720 में से 521 अंक हासिल किए हैं। इस साल पहले नीट में भी उसने 625 अंक हासिल किए थे। जब पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द हुई तो बजाय निराश होने के ओम और भी ताकत से तैयारी में जुट गए। बेटे की कामयाबी ने माता पिता के लंबे संघर्ष को मायने दिए हैं, जो उनके चेहरे से जाहिर है।
7: सपोर्ट करना मैं आपको करके दिखाऊंगा एक दिन, और वो वादा बच्चे ने मेरे साथ बच्चे ने किया, बताया जाए नीट पास किया, 12th में टॉप आया, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे
8: मैं आगे सपना यही देखती कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर बने और समाज की सेवा कर सके, गरीबों की मदद करे, जैसा मैं नहीं कर पाए अपन पैसे की वजह से तो कम से कम ये कर सकूं।
6: ओम की तरह की कामयाबी की कहानी नीलू की है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक गांव है डिगडिया। छोटे से गांव की रहने वाली इस लड़की ने नीट क्लियर करके कमाल कर दिया है। कमाल इसलिए क्योंकि लाखों छात्रों के साथ प्रतियोगिता से पहले गरीबी से भी मुकाबला था। गंभीर बीमारी से पिता की मौत हुई थी और परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे, तभी नीलू ने पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का सपना देखा था। आज वो सपना सच हो गया है।
9: For need, I had a coaching which was also supported by study hall only, where we get prepared for JEE and NEET. From there, I studied for the NEET, and for my hard work and all, I just cleared it.
6: पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी माँ राजकुमारी के कंधों पर आ गई, जो एक अस्पताल में सहायक के रूप में काम करती है और घरों में जाकर झाड़ू पोछा भी करती है। महीने में मुश्किल से 10,000 से 11,000 रुपए कमाई के बावजूद राजकुमारी ने अपनी बेटी की पढ़ाई रुकने नहीं दी। नीलू ने भी 10वीं में 86% और 12वीं में 94% अंक हासिल करके अपनी प्रतिभा दिखा दी। इस दौरान नीलू को स्कॉलरशिप भी मिली। माँ की मेहनत और दुआओं ने रंग दिखाया, नीलू की लगन काम आई। नीट के नतीजों में जब बेटी का नाम आया तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नीलू का सपना कार्डियोलॉजिस्ट बनने का है, ताकि वो गरीब तबके के मरीजों का सस्ता इलाज कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: इस साल नीट के नतीजों में बेटियों ने कमाल करके दिखाया। बारामती की श्रावणी कुदले ने ऑन इंडिया रैंक में पांचवां स्थान हासिल किया है, जबकि पूरे देश में लड़कियों में वो पहले पायदान पर हैं। श्रावणी के माता पिता जिला परिषद स्कूल में टीचर हैं। श्रावणी से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए।
10: पिछले महीने जो नीट की परीक्षा हुई उसमें पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक में पांचवें क्रमांक पर आई श्रावणी कृष्णा कुदरे जो बारामती की है, हमारे साथ है। बहुत बहुत बधाई, अच्छी रैंक हासिल की है। क्या लगता है, क्या भावना है आपकी?
11: अगर मतलब इतनी अच्छी रैंक आई है तो खुशी हो रही है कि मैंने जो 2-3 साल अच्छे से पढ़ाई की उसका रिजल्ट अब मुझे मिल रहा है।
10: आपने शिक्षा कहाँ से हासिल की? क्योंकि प्राथमिक जो है चौथी तक अपने प्राथमिक शिक्षा स्कूल से की है। क्या उसके बारे में क्या बताएंगे, कैसे रही जर्नी आपकी?
11: मैंने चौथी कक्षा तक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाए, मेरे पापा ही मुझे पढ़ाते थे। उसके बाद शारदा नगर से मैंने हाई स्कूलिंग करी है और 3 साल यहाँ पे सक्सेस कोड एकेडमी में पढ़ती हूँ नीट के लिए।
10: अभी आपका रिजल्ट आया है, जो लड़कियां है उसमें आपका देश में पहला नंबर है, ऑल इंडिया रैंक में पांचवा नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि खुशी है, सब घर के परिवारों में खुशी है। आपके परिवार के लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा क्या करती है, आपको इतना हौसला कहाँ से मिला?
11: मेरे मम्मी पापा दोनों भी टीचर है और मैंने बचपन से उन्हें काम करते देखा है, उनका 100% देते देखा है। वो जितना डेडिकेटेडली काम करते हैं उनसे देखकर मुझे ये लगा कि हम मुझे भी 100% देना है मेरा। तो मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे 100% देना है, मैं जो भी काम करूंगी उसमें।
12: आपने पूरी जी जान लगाकर जब पढ़ाई करोगे तो सक्सेस मिलेगा ही, इसलिए पूरी जान से पढ़ना जरूरी है।
13: सरकारी स्कूल का टीचर हूँ, मुझे उसको यही मैं बताता था कि मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूँ, तू विद्यार्थी है तो तू तेरा काम ईमानदारी से कर, और यही हमारे तरफ देखकर ही वो पूरी उसकी पढ़ाई करती थी। कभी भी उसने पढ़ाई के लिए टाला नहीं, कुछ कारण बताए नहीं, अपना खुद काम वो बहुत ईमानदारी से करती थी। कभी भी उसको तू पढ़ाई कर, तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। खुद ही वो बहुत डिसिप्लिन है और उसे देखकर कुछ चीजें हम भी सीखते हैं कि कितना डिसिप्लिन रहना चाहिए। इसलिए उसने जो डिसिप्लिन से काम किया है 2-3 साल में, उसका फल उसको मिला है।
5: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
1: जाती है।
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: हमारी जिम्मेदारी। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम में बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। असम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मकसद का हाथ, अब तक 571 लोगों को किया जा चुका है सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भी भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: असम में बाढ़ के गंभीर हालात के बीच देवदूत बने सेना के जवान, ऑपरेशन जल राहत के तहत भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 571 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 45 सैनिकों वाली 3 विशेष राहत टीमें असम के शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट सहित सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में तैनात। प्रशासन के साथ मिलकर जवान मोटर बोटों के माध्यम से संभाल रहे हैं राहत और बचाव कार्य, बच्चों बुजुर्गों और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का सिलसिला तेज। प्रभावित लोगों को समय पर मदद पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर काम कर रही है भारतीय सेना, तेजी से चल रहा है लोगों तक खाना और बाकी राहत सामग्री पहुंचाने का काम। लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से काफी नुकसान है एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सेना मिलकर कर रही है बाढ़ पीड़ितों की मदद। करगिल में आई फ्लैश फ्लड के बाद देवदूत बनकर सामने निकलकर आई रेस्क्यू टीमों की जवान। राजौरी में सेना का साहस, तेज बहाव वाले नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजौरी, पुंछ, खुरेज, करगिल और तंगमर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित। भूस्खलन के बाद सड़कों पर भी आकर गिरा मलबा और चट्टान, जेसीबी की मदद से रास्ता साफ करने की कोशिश। चंबा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई हिस्सों में भूस्खलन, यातायात प्रभावित। विदर्भ के भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान के आसपास, तटवर्ती इलाकों में भर गया पानी। पठानकोट में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न, लोगों की मदद करने में जुटी पुलिस और प्रशासन। नवसारी जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी, जुलाई में स्पीति में बर्फबारी से बदल गया मौसम का मिजाज। लोग बर्फ की मोटी परत और ठंडी हवाओं के बीच नजारा कैद करते हुए नजर आए, गर्मी के मौसम में बर्फ की सफेद चादर। बर्फ से ढकी पहाड़ियां बन गई हैं आकर्षण का मुख्य केंद्र, स्पीति में मौसम का अनोखा नजारा। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया, हालांकि अचानक बदले मौसम ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का यह बदलाव है आम, धूप के बीच अचानक गिरी बर्फ। श्रीनगर की डल झील पर पर्यटकों की बड़ी आमद, शिकारा राइड के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। बढ़ते टॉरस से होटल और शिकारा कारोबारियों के चेहरे के लिए डल झील बनी पर्यटकों की पहली पसंद, शिकारा राइड के बढ़ते क्रेज को देखते हुए स्थानीय पर्यटन खुश। डल झील की वादियों में लौट आई चहल पहल, होटल बुकिंग में तेजी। श्रीनगर की खूबसूरती सैलानियों को कर रही आकर्षित, घाटी में पर्यटन सीजन में पकड़ी रफ्तार। कल ASW वॉरशिप मालवान भारतीय नौसेना में होगा कमीशन अध्यक्षता, एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण है वॉरशिप मालवान, इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों का हुआ इस्तेमाल। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और ट्रैक करने में जबरदस्त सक्षम। आकार में छोटा लेकिन तेज गति, फुर्ती और लंबी अवधि तक अभियान चलाने की क्षमता से लैस। मालवन के नौसेना में शामिल होने से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की नई पीढ़ी का होगा विस्तार। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज, रेलवे 22 जुलाई को चला रही है 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेन। झारखंड के गढ़वा जिले के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने खोली 3 कृषक पाठशाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद गढ़वा जिले के भवनापुर की कृषि पाठशाला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जानकारी ली। दिल्ली के रोहताश चौधरी ने रच दिया इतिहास, पीठ पर 27 किलो से ज्यादा वजन रखकर 1 घंटे में मारे 847 पुशअप। भारत के पुशअप मैन के नाम से मशहूर रोहताश चौधरी ने बनाया नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सीरिया के सामी को हरा दिया। अमेठी के सुनील के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष बना सहारा, मुफ्त में हुआ इलाज। आर्थिक तंगी नहीं बनी इलाज में रुकावट, सरकारी योजना से मिली नई जिंदगी। सरकारी मदद से बची जमीन बेचने की नौबत, परिवार ने जताया मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का आभार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव के जरिए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है मकसद, बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर में भक्ति अटूट आस्था देखने को मिली, रिकॉर्ड चढ़ावा। मंदिर की मासिक गणना में अब तक 29.25 करोड़ से ज्यादा का नकद दान हुआ है प्राप्त, चरणबद्ध तरीके से जारी है दान पात्र की गणना। अब तक हो चुकी है 6 चरणों की गणना, चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी। भेंट कक्ष में नकद, मनी ऑर्डर और भेंट स्वरूप में सोने चांदी की गणना अभी भी शेष। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि शामिल। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल के अंतिम चरण में पहुंच गई तैयारियां, कल से शुरू होगा 7 दिवसीय खर्ची महोत्सव। मंदिर में रंगाई पुताई और सजावट का काम तेज, श्रद्धालुओं के स्वागत की पूरी तैयारियां। उत्सव के दौरान पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में, भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था। मेले में संस्कृति की देखेगी शानदार झलक, 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और पारंपरिक आयोजन। चतुर्दश देवता मंदिर सजाया गया, हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, श्राइन बोर्ड की भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील। कटरा में बसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा, यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज, कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने समीक्षा बैठक की। देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के पावन धाम हरिद्वार में आने वाले सभी शिव भक्त कांवड़ियों का सहर्ष स्वागत करने के लिए राज्य सरकार तैयार। सहारनपुर में कांवड़ियों के डीजे में बजने वाले गानों तक रहेगी पुलिस की नजर। बद्रीनाथ में बारिश के बीच भी आस्था बरकरार, मॉनसून अलर्ट के बावजूद श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह कायम। बारिश के बीच भी यात्रा सुचारू, भक्तों को आसानी से हो रही है दर्शन, रात के बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है। अलकनंदा नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी, श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील। बद्रीनाथ धाम में मिली सुविधाओं से श्रद्धालु दिखे संतुष्ट, फिलहाल बद्रीनाथ धाम मार्ग सुरक्षित और सामान्य। सोमवार को दिनभर स्थगित रही केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई। आज सुबह सोनप्रयाग से लगभग 1000 भक्तों को धाम भेजा गया। अगले महीने होने वाले FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स की भारतीय टीम की हो गई घोषणा। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान। 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होने जा रहा है मुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला। आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अहम सीरीज। BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी कर दिया टेंडर। ओ माई गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म ओ माई डॉग का ट्रेलर हुआ आउट, 31 जुलाई को होगी दस्तक। दलपति विजय की जननायकन की रिलीज डेट 2 दिन में अब बाकी है, नया प्रोमो हुआ रिलीज। नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रिलीज होने जा रही ऑपरेशन सफेद सागर की शौर्य गाथा से जुड़ी कहानी 7 अगस्त 2026 को OTT पर होगी स्ट्रीम। 17 साल बाद पर्दे पर लौट रहे हैं फुनसुक वांगडू, 4 सितंबर को थिएटर्स में री रिलीज होने जा रही आमिर खान की 3 इडियट्स। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की हुई सगाई, अपने मंगेतर माइल्स के साथ सगाई की। मार्वल स्टूडियोज की एवेंजर्स डूम्सडे का पहला फुल ट्रेलर हुआ आउट। एक्टर सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर एक नया अपडेट और निकलकर सामने आया, साल 2026 में ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी ने रिलीज के चौथे दिन भारत में 8.5 करोड़ की कमाई की। इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवारापन 2 के सॉन्ग की आवारापन को अरिजीत सिंह ने दी है आवाज। धमालपुर की रिलीज के 11वें दिन कमाई के मामले में वर्ल्ड वाइड किया धमाल, 11वें दिन करीब 7 करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन। चीन में खुला एशिया का पहला विशाल LED इमर्सिव स्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर, दुनिया का दूसरा LED इमर्सिव स्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर है। चीन की मशहूर क्यान जियांग इकोलॉजिकल लॉबस्टर सिटी के सामने स्थित है यह थिएटर। लगभग 55 मीटर है इस LED इमर्सिव स्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर की डायमीटर, इसकी ऊंचाई 40.5 मीटर। इसके गोलाकार बाहरी हिस्से पर लगे हैं LED पैनल, जिससे ये लाइव आउटडोर स्पोर्ट्स और ब्रॉडकास्ट और चैरिटी फिल्म स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त। एलईडी से लैस ये विशाल इमर्सिव डोमा वेन्यू देता है सिनेमा का एक अद्भुत अनुभव। हॉलीवुड की अपकमिंग डार्क कॉमेडी फिल्म डिगर के लिए वार्नर ब्रदर्स ने जारी कर दिया नया फीफा वर्ल्ड कप का ट्रेलर। फिल्म में 64 साल के तेल कारोबारी का रोल निभा रहे हैं टॉम क्रूज। अरूबा की सारा क्विटा ऑफ्रिंगा ने जीता फ्री स्टाइल विंड सर्फिंग वर्ल्ड टाइटल। 16 बार फ्री स्टाइल और 5 बार वेव वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं ऑफ्रिंगा। अरूबा के इस राइडर ने 17वीं बार अपने नाम किया वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल। शंघाई के याओक्स्यू आइस एंड स्नो वर्ल्ड में नजर आए मेहमान। इस आइस एंड स्नो वर्ल्ड में रहने आया है एडली और जेंटी पेंगुइन का एक ग्रुप। कुल 10 प्यारे पेंगुइन्स बने हैं याओक्स्यू आइस एंड स्नो वर्ल्ड के नए मेहमान। पार्क में अब रोजाना होती है ना क्यूट पेंगुइन्स की परेड जिससे विजिटर्स को होती है खुशी। चिलचिलाती गर्मी के बीच विजिटर्स को मिलता है विंटर वंडरलैंड जैसा नजारा। वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद भी टीम अर्जेंटीना पहुंची लेकिन टीम के कप्तान लियोनेल मेसी फ्लोरिडा रवाना हो गए। फैंस ने सड़क किनारे टीम का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से एएफए मुख्यालय तक हजारों समर्थक खिलाड़ियों का आभार जताते हुए नजर आए। स्पेन ने तोड़ा अर्जेंटीना का सपना। एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस के गोल से स्पेन ने 1-0 से फाइनल जीत लिया। 63 साल बाद इतिहास रचने से चूका अर्जेंटीना टीम 1962 के ब्राजील के बाद लगातार 2 पुरुष वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनने से चूक गई। कप्तान लियोनेल मेसी ने फाइनल में मिली हार को बहुत दर्दनाक बताया। चीन ने पेश किया पहला एम्बॉडीड इंटेलिजेंस स्पेशलिटी रोबोट। अब ऊंचाई पर इंसान नहीं रोबोट करेगा काम और दूर बैठा इंसान रोबोट को आसानी से चला सकेगा। रोबोट प्लस प्लस का ये रोबोट शिप बिल्डिंग केमिकल टैंक मेंटेनेंस और अन्य जोखिम भरे काम करने में सक्षम। रोबोट जंग पेंटिंग ग्राइंडिंग और इंस्पेक्शन के लिए माहिर। ह्यूमनॉइड आर्म्स और मैग्नेटिक प्लेटफॉर्म पर करता है काम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: देश में मॉनसून एक बार फिर से पूरी रफ्तार के साथ नजर आ रहा है। इसे थोड़ा टेक्निकली समझें तो करीब 70% आसमान पर बादलों का डेरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कम से कम दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को गर्मी और उमस से राहत मिलने के संकेत दे दिए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश भर के मौसम का पूरा हाल, साथ ही साथ ये भी समझिए कि आखिर मॉनसून ने बरसने से पहले इतना लंबा ब्रेक क्यों लगाया।

0: ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि ब्रेक पर गया मॉनसून पुरानी रफ्तार में लौट आया है। कहीं फुहार, कहीं झमाझम तो कहीं मूसलाधार। एक तरह से कहें तो मॉनसून ने फिर से एक साथ कई दरवाजों पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर पंजाब तक आसमान में बादलों की कहीं कोई कमी नहीं है और अब ये बादल मॉनसून का बचा खुचा कोटा पूरा करने आ गए हैं।
1: लगातार उमस और बढ़ती गर्मी के बाद एक बार फिर से मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादलों का डेरा जो है वो लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। एक बार फिर से मॉनसून की वापस से एंट्री हो गई, हम ये बोल सकते हैं?
2: जी देखिए, मॉनसून की अभी फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं जिससे उत्तर पश्चिम भारत, उसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो है काफ़ी अच्छी वर्षा गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है। और हमारा अनुमान यही है, पूरा अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है।
0: लेकिन सवाल ये है कि आखिर मॉनसून ने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल कुछ दिनों के लिए बंगाल की खाड़ी शांत पड़ गई थी, नए लो प्रेशर सिस्टम नहीं बने, समंदर से नमी कम आई और मॉनसून की मुख्य पट्टी उत्तर की ओर खिसक गई। नतीजा ये हुआ कि बादलों ने कदम धीमे कर दिए, बारिश ने रफ्तार कम कर दी और कई राज्यों में सूरज ने फिर से अपना दबदबा बना लिया। लेकिन अब माहौल फिर से बदल गया है।
2: मॉनसून की जो वर्षा है वो बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन पर डिपेंड करती है, तो जिस क्षेत्र में अगर हम बात करें फेवरेबल मॉनसून की कंडीशन बन रही होती है वहाँ पर वर्षा गतिविधि जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था जुलाई के पहले सप्ताह में जो पश्चिमी राज्य थे, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, साथ साथ में मध्य भारत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्वी भारत, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में 9 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिली थी। अभी जो है मॉनसून एक्टिव कंडीशन देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है, जिसकी वजह से काफी अच्छी वर्षा जो है इन सभी क्षेत्रों में जो देखने की संभावना है।
0: अच्छी खबर यह है कि मॉनसून एक्सप्रेस का इंजन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। पूरे उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहां मैदानों में बारिश राहत लेकर आएगी, वहीं पहाड़ों में यही बारिश आफत बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, कुलगाम, श्रीनगर और अनंतनाग, जबकि उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है।
2: अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखें मैप में भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है।
0: इसकी वजह से अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी उमस से राहत का सीन दिल्ली एनसीआर में बन चुका है। मॉनसून की वापसी शानदार तो है, लेकिन ये वापसी कई इलाकों पर भारी भी पड़ सकती है। मसलन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ पहले ही बारिश से पूरी
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: खबरें कभी रफ्तार रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
12: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए MOU, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ आज चर्चा होने वाली है नवमांश कुंडली के बारे में। नवमांश कुंडली का रहस्य क्या है? पंडित जी आज आपको जानकारी देंगे कि ज्योतिष में नवमांश कुंडली होती क्या है, इसका हमारे और आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव होता है, इसके बारे में पंडित जी विस्तार से आपको समझाएंगे और उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र कौन सा है।
1: बाहर जो आप जूते चप्पल पहनते हैं उनको घर में पहनकर मत घूमिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। बाहर के जूते चप्पलों को घर के बाहर या घर के बाहरी हिस्से के किसी कोने में रखकर तब घर में प्रवेश करिए। बाहर पहने जाने वाले जूते चप्पलों को सामान्यतः घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए।
0: तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको जानकारी दी है कि नवमांश कुंडली के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न पंडित जी से यही है कि क्या होती है नवमांश कुंडली और पंडित जी इसका महत्व क्या होता है हमारे जीवन में?
1: जी देखिए, आम तौर पर ज्योतिष में हम ज्यादातर भविष्यवाणियां जन्म लग्न से करते हैं या लग्न कुंडली से करते हैं, लेकिन अगर आप केवल लग्न कुंडली से भविष्यवाणी करेंगे तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगी, बहुत सही नहीं होगी। ज्योतिष के अध्ययन में वैसे तो जन्म लग्न कुंडली महत्वपूर्ण होती है, मुख्य होती है। उसके साथ जन्म लग्न के साथ सहायक रूप से 15 कुंडलियां जुड़ी होती हैं, तो कुल मिलाकर 16 कुंडलियां हो जाती हैं। इन लग्न और सहायक कुंडलियों को मिलाएं तो 16 कुंडली होंगी और इनको षोडश वर्ग कहा जाता है। इन कुंडलियों में लग्न कुंडली यानी जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सप्तांश भी है, द्रेशकांड भी है, पंचमांश भी है, बहुत सारी कुंडलियां हैं, लेकिन लग्न और नवमांश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर लग्न कुंडली शरीर है तो नवमांश उसकी आत्मा है। केवल शरीर को देख करके आप जीवन का विचार नहीं कर सकते। बिना नवमांश कुंडली को देखे जन्म कुंडली पर विचार करना कभी सही परिणाम नहीं देता है। नवमांश कुंडली से आप ग्रहों की शक्ति जान सकते हैं, वैवाहिक सुख जान सकते हैं और आपके जीवन के तमाम रहस्य कौन से हैं। जितनी बढ़िया लग्न कुंडली दिख रही है, क्या वास्तव में उतनी बढ़िया है या नहीं है, ये आप नवमांश कुंडली से जान सकते हैं।
0: चलिए, नवमांश कुंडली के महत्व के बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से पूछेंगे। अब आते हैं राशिफल पर। पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या है।
1: मेष राशि, व्यर्थ की चिंता आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन का सुख मिलेगा, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए, नवमांश कुंडली के बारे में आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, तो पंडित जी अब आपसे अगला सवाल यही है कि नवमांश कुंडली का रहस्य क्या है?
1: देखिए, लग्न कुंडली में ग्रहों की डिग्री होती है 30, भाव भी 30 अंश के होते हैं, तो मुख्यतः उनका जो नवा हिस्सा है 3 degrees 20 minutes, ये जो नवा हिस्सा है इससे एक अलग कुंडली बनाई जाती है जिसको नवमांश कुंडली कहते हैं। क्या बता देती है ये? देखिए, किसी भी कुंडली का जो आधार है, कुंडली को हम समझते हैं, जानते हैं ग्रहों के माध्यम से और उनकी शक्ति के माध्यम से। बिना नवमांश को जाने हुए आप ग्रहों की क्षमता और उनकी ताकत कभी नहीं जान सकते।

0: और अगर कोई राजयोग या कोई बुरा योग नवमांश कुंडली में बनता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। राजयोग या दुर्योग लग्न कुंडली में भी असर डालता है, लेकिन अगर नवमांश में कोई राजयोग बने या नवमांश में कोई धन योग बने या दुर्योग बने तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। नवमांश कुंडली अलग से भी देखी जाती है लग्न कुंडली के साथ मिलाए बिना। तो जब आप नवमांश कुंडली अलग से देखते हैं तो दरअसल ये विवाह के लिए देखा जाता है, और अगर विवाह पर विचार करना है या वैवाहिक जीवन को गहराई से जानना है तो आपको अलग से नवमांश कुंडली देखनी चाहिए। अगर आप अलग से नवमांश कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किए बिना विवाह का निर्णय लेंगे तो विवाह का निर्णय गलत हो सकता है।
1: चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब वापस आते हैं राशिफल पर। अगले तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की।
0: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर के मामले आपके हल होंगे, कोई संपत्ति आप खरीद सकेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन के खर्चों पर ध्यान दें, नौकरी में परिवर्तन ना करें, संयम से काम लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं आप सबके सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले कि पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका, पूछना चाहते हैं पंडित जी से, ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज दीजिए, हम आपके शो आपके सवालों के शो में सम्मिलित करेंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ पंडित जी बढ़ते हैं और जानते हैं किस दर्शक का है पहला सवाल।
0: जी, आज का पहला प्रश्न महिमा गुप्ता ने हमें लिखा है, और महिमा हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मई 1985, दोपहर में 2:40, जन्म स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। ये कह रही

0: वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है और मैं अपने पति से पिछले 1.5-2 साल से दूर रह रही हूं, तो क्या ये शादी चलेगी या इसमें सेपरेशन होने की संभावना बनती है? महिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह के चल पाने की संभावना कमजोर है, विवाह चलना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत तक आपसी सुलह समझौते से आपका सेपरेशन होगा। दूसरा विवाह करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर आप दूसरी शादी भी करेंगी तो मामला वहां भी बहुत बेहतर नहीं दिखेगा। आपका करियर बेहतर हो, आपका जीवन अच्छा रहे, आप जल्दी से मुक्त हो जाएं अपने वैवाहिक झंझट से, उसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है अगला सवाल। पंडित जी,
0: जी। अगला प्रश्न प्रांजल ने हमें लिखा है और प्रांजल हमें मेल लिखते हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 2002, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है नोएडा। प्रांजल कह रहे हैं कि मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए मैनेजमेंट का क्षेत्र बेहतर होगा या मुझे किसी और क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए? प्रांजल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है और ज्योतिष के हिसाब से अगर आप कोशिश करना शुरू करें तो साल 2027 के आरंभ से किसी अच्छे संस्थान से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। मैनेजमेंट की पढ़ाई बढ़िया है और आगे आप मैनेजमेंट में, फाइनेंस में बहुत अच्छा करियर बना सकेंगे, ये संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे आने वाले समय में बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं और सवाल पंडित जी आपसे अब ये है कि नवमांश कुंडली का जिक्र हो रहा है तो नवमांश कुंडली से विवाह के बारे में निर्णय कैसे लिया जा सकता है?
0: देखिए, अलग से अगर हम नवमांश कुंडली को देखें तो मुख्यतः ये विवाह के बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देती है। कैसे निर्णय लें? लग्न कुंडली के साथ मिला करके नवमांश को देखें तो ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाई देंगे। लग्न में शुक्र कैसा है और नवमांश में शुक्र की स्थिति कैसी है, इस पर विचार करिएगा। लग्न में शुक्र बहुत ही कमजोर है, लेकिन नवमांश में अगर शुक्र मजबूत हो गया है तो चीजें बेहतर हैं। इसके अलावा कुंडली में तत्व का विचार जरूर करिए, एलिमेंट का। लग्न कुंडली में ज्यादातर ग्रह किस तत्व में बैठे हैं और नवमांश में किस तत्व में बैठे हैं, ये भी देख लीजिए। नवमांश कुंडली में ये जरूर देखिए कि 8वें स्थान की, अष्टम भाव की और द्वादश भाव यानी बारहवें स्थान की स्थिति क्या है, और नवमांश कुंडली में ये भी देख लें कि मंगल कैसा है। लग्न कुंडली में तो मंगल अच्छा है लेकिन नवमांश के आठवें स्थान में चला गया तो मंगल नकारात्मक हो गया, सतर्क रहें। लग्न और नवमांश को मिलाकर भी नवमांश को देख सकते हैं, और आप नवमांश कुंडली को अलग से इंडिपेंडेंट कुंडली मानकर भी देख सकते हैं, और लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को देख करके ही विवाह का सही निर्णय आपको लेना चाहिए। केवल लग्न कुंडली देख करके अगर आप विवाह का निर्णय लेंगे तो जो इसके रिजल्ट हैं, जो इसके परिणाम हैं, वो परिणाम गलत होंगे।
1: और चलिए इसी के साथ राशिफल पर आते हुए अगली तीन राशियों का भी हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा है इनका भाग्य। तुला, वृश्चिक और धनु वालों की बारी है।
0: तुला राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। पंडित जी, सवाल अगला आपसे ये है कि अगर जीवन में या ग्रहों में नवमांश कुंडली के कारण कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए कौन से उपाय हैं जो आप बताएंगे?
0: देखिए, हो सकता है कि लग्न कुंडली से समस्या समझ में ना आ रही हो, लेकिन आपने नवमांश को देखा, आपको तुरंत समझ में आ गया कि समस्या कहां है। तो अगर नवमांश कुंडली की वजह से जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर नवमांश कुंडली की वजह से विवाह तय होने में दिक्कत आ रही है, शादी तय नहीं हो पा रही है, तो एक मंत्र पढ़िएगा, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिएगा, आपका विवाह शीघ्र तय होगा। अगर नवमांश कुंडली में ग्रह गड़बड़ हैं और वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। अगर नवमांश कुंडली की वजह से कुंडली के शुभ योग नष्ट हो रहे हों तो सूर्य देव को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो नवमांश कुंडली की अशुभता कम हो जाएगी। अगर आपको नवमांश कुंडली को मजबूत करना है और जीवन में सफलताएं बढ़ानी हैं तो देवी की उपासना करनी चाहिए, मां दुर्गा की उपासना करना बेहतर होगा। अगर आपकी नवमांश कुंडली बहुत कमजोर है, उसमें ताकत नहीं है, उसमें शुभता नहीं है तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें या ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का अगर जप करें तो नवमांश कुंडली ताकतवर होगी, इसकी शुभता और पवित्रता का आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ। अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए इसी के साथ आपके फिर से सवाल लेने का वक्त आ चला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं, आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न हमें दामिनी वर्मा ने लिखा है और दामिनी जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 26 नवंबर 1991। जन्म का समय सुबह के 7:55। जन्म का स्थान है लखनऊ। दामिनी कह रही हैं कि मेरी एक शादी होकर के टूट चुकी है और परिवार के लोग हम सब दूसरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या मेरा दूसरा विवाह होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दामिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपकी दूसरी शादी होगी, लखनऊ या लखनऊ के आसपास ही होगी और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और अगर संभव हो तो सोमवार का उपवास रख करके भगवान शिव की पूजा करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी से ही जान लेते हैं कौन से दर्शक का है पंडित जी अंतिम सवाल।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न जितेंद्र जी ने हमें लिखा है और जितेंद्र जी हमें गुजरात अहमदाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1982। जन्म का समय है सुबह के 6:55। जन्म का स्थान है भोपाल। में लिखते हैं अहमदाबाद से। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी में परिवर्तन के 2 ऑफर आए हैं, तो क्या इस समय नौकरी में परिवर्तन करना मेरे लिए बेहतर होगा। जितेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी में परिवर्तन करने का सही समय नहीं चल रहा है। आप जिस नौकरी में हैं वहीं पर आपकी प्रगति अगले 6 महीने में अवश्य हो जाएगी, लेकिन नौकरी में परिवर्तन करने से हो सकता है बीच में आपको नौकरी छोड़नी पड़े, जो आपके लिए उचित नहीं होगा। कुंडली के हिसाब से करियर में रिस्क नहीं लेना चाहिए, जहां पर हैं वहीं पर बने रहिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है का हैप्पी बर्थडे उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: आने वाले वर्ष में करियर में बड़ा परिवर्तन होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य कुल मिलाकर मध्यम रहेगा, साल के अंत में स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे, पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का जन्म उसी परिवार में होता है, क्या ऐसा होता है। देखिए, मृत्यु के समय व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं उसी प्रकार का जीवन आगे मिलता है। चूंकि मरते समय आदमी को अपने परिवार की याद बहुत आती है, बच्चों की, पति पत्नी की, माता पिता की, परिवार का ही ध्यान करता रहता है, इसीलिए ज्यादातर लोगों का अगला जन्म उसी परिवार में होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम निरंतर जप किया जाए, भगवान का नाम निरंतर जपा जाए, ताकि मृत्यु के समय में परिवार की याद ना रहे, मृत्यु के समय में भगवान के नाम का स्मरण रहे। तो सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, नॉर्मली मृत्यु के बाद उनका जन्म अपने ही परिवार में होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के श्रद्धालु होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों का जन्म वहां होता है जहां उनको अगले जन्म में भी ईश्वर की उपासना करने का अवसर मिल सके।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं शुभपहर के बारे में।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर होगी।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुडलक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा कैसी रहती है। आज की गुडलक राशि है मिथुन। इनकी शिक्षा सामान्यतः ठीक रहती है। एक साथ कई कोर्स कर लेते हैं या कई डिग्री इकट्ठी कर लेते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, आपको शिक्षा में लाभ होगा।
1: और चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने आपके साथ साझा कर दी हैं। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है वो भी आपसे जानते हैं।
0: जी, अगर आप बेवजह झूठे इल्जाम में, झूठे चक्कर में, किसी मुकदमे में फंस गए हैं तो क्या करेंगे? बेर का एक पौधा लगा सकते हैं घर के बाहर या पार्क में, और रोज सुबह बेर के पौधे में जल डालिए। लाल रंग के हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाएं या लाल रंग के हनुमान जी की एक मूर्ति लगाएं, उनकी रोज पूजा करें, और सुबह के समय हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करेंगे तो जिस तरह के मुकदमे में भी आप फंसे हैं उससे आपको मुक्ति जल्दी मिलेगी।
1: तो पंडित जी महा उपाय बताने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
4: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: आइए बात करते हैं बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की। देश के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लाखों लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना लगातार कर रहे हैं। खासकर उत्तर भारत के तीनों पहाड़ी राज्य यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, और पूर्वोत्तर के राज्य असम और मेघालय, जहां लोगों को बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां मुस्तैद हैं।
2: मानसून सीजन में बादलों के बरसने की रफ्तार तेज हुई तो नदी नालों और झरनों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। कहीं फ्लैश फ्लड में सब कुछ किसी तिनके की तरह बहता नजर आया और कहीं उफान बह रही नदी तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसकर हाहाकार मचा रही है। ये हाल किसी एक शहर या फिर किसी एक राज्य का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर देखने को मिल रहा है। इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर राजौरी से सामने आई, जहां राष्ट्र राइफल्स के जवानों ने 13 लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जिस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन जवानों ने चलाया, पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें जवानों के लिए सीधे खड़े रहना भी मुश्किल था। बावजूद इसके राष्ट्र राइफल्स के जवान एक रस्सी के सहारे ह्यूमन चैन बनाकर खड़े हो गए। इसके बाद एक एक कर लोगों का रेस्क्यू किया गया। बचाए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल थे, जिन्होंने जवानों की बहादुरी की सराहना की और उनका शुक्रिया अदा किया।
7: ये मंजर जो है वो राजौरी जिला का हम आपको बता रहे हैं, जहां लोग जो हैं वो 300 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिन्हें रिलीफ कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो जोरदार बारिश सुबह से हो रही है। राजौरी के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हैं इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। सेना भी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसी मुनव्वर नदी में फंसे 13 लोगों को सेना ने महफूज तरीके से निकाला, उनकी जान सेना के सहयोग से बची है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन या फिर सेना, सभी जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद के लिए अलर्ट हैं और जिला प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि मुश्किल के वक्त लोग उन नंबरों पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं।
2: रेस्क्यू की एक दूसरी तस्वीर कारगिल से सामने आई, जहां फ्लैश फ्लड की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और SDRF के जवान लोगों की मदद के लिए पहुंचे और कई लोगों को सकुशल बचा लिया गया। खराब मौसम और लगातार बारिश के बीच राज्य के कई हिस्सों में इस वक्त लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सेना, पुलिस, NDRF और SDRF को लगाया गया।
8: बीती रात बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड से कई सारे घर ढह गए। NDRF की टीमों को अब रेस्क्यू के काम में लगाया गया है, क्योंकि इन क्लाउड बस्ट से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी किया था, यानी मंगलवार और बुधवार को।
2: जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी मदद के लिए राहत और बचाव एजेंसियां खराब मौसम में भी मोर्चे पर डटी हुई है। चंबा जिले के पांगी में 11 मजदूरों को बचाने के लिए प्रशासन ने जोखिम भरा बचाव अभियान चलाया। बताया गया ये सभी मजदूर उदीन गांव में सरकारी परियोजना के तहत काम कर रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए लोहे की सीढ़ी का सहारा लिया गया। करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं चंबा में ही तीसा चंबा मार्ग पर कंदरा नाले में अचानक पानी बढ़ने से यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। बिना वक्त गवाए प्रशासन और स्थानीय लोगों ने फौरन बस में सवार लोगों को बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राज्य में हो रही भारी बारिश को देखते हुए लोगों से नदी नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की गई है।
9: प्रशासन ने रेड अलर्ट बताया है और सुरक्षा के लिए बोला है खड नालों के किनारे जाने से परहेज करें, और ज़्यादा बारिश में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं।
2: उधर पूर्वोत्तर के राज्य असम में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते 15 जिलों में करीब 3,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस, सेना, NDRF और SDRF के बाद एयरफोर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाना पड़ा। शिवसागर जिले में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है।
10: मुश्किलात थोड़ा ज्यादा ही है। हम लोग कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक कल हम लोग रात से 10-11 बजे से स्टार्ट किया है, अभी तक पूरा वो लागू है रेस्क्यू। रात से कोई जैसे हम लोग का इफेक्टेड जगह है कि सेलेंगर हो गया, वहाँ पे ज्यादा अभी रेस्क्यू हो गया। काकोजन एरिया अभी यहाँ पे ट्योक एरिया में हमें हम लोग बहुत रेस्क्यू आदमी को रेस्क्यू किया है।
2: असम के मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को प्रभावित इलाकों में भेजा है। साथ ही नदियों के बढ़ते जलस्तर और बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की गई है। श्रीनगर से अशरफ वानी, राजौरी से शक्ति शर्मा, चंबा से विशाल आनंद और जोरहाट से पूर्ण विकास बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करते हैं मुग्धर मैन की, जिन्होंने बच्चों के हाथों से मोबाइल हटाकर मुग्धर थमाने का प्रण लिया है। जी हाँ, इसके लिए दिल्ली के खेड़ा गांव के रहने वाले पहलवान हवा सिंह ने अभियान ये चला रखा है। वो बच्चों को फ्री में मुग्धर बांट रहे हैं।

0: जब से स्मार्टफोन का आगमन हुआ है तब से वो सभी को अपनी ओर खींचता है। बच्चों की हालत तो ये है कि मोबाइल के बिना उनका खाना, उनका पढ़ना तक नहीं हो पाता। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों से मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए हवा सिंह नाम के पहलवान ने अनोखी मुहिम चलाई है। हवा सिंह का एक ही लक्ष्य है, हर घर मुखदर। वे नई पीढ़ी के हाथों से स्मार्टफोन छुड़ाकर महाभारत कालीन पारंपरिक मुखदर थमा रहे हैं, जिससे देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। हवा सिंह ने बच्चों को मुफ्त में मुखदर बांटना शुरू किया है, ताकि बच्चे मोबाइल की लत छोड़े और बचपन से ही फिट और सेहतमंद रहे। हवा सिंह अब तक 4000 से ज्यादा बच्चों को मुखदर गिफ्ट कर चुके हैं।
1: बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, बहुत बढ़िया बच्चा। आजकल बच्चे हरदम फोन पे चिपके रहते हैं, किसी को भी देख लो कितनी उम्र हो जाए। और मैं खासकर देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 2 साल के, 1 साल का भी बच्चा है, वो भी फोन के अंदर घुस रहा है। तो ऐसा क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों के हाथ में फोन मत दो। पहले तो उनके माँ बाप बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं, उसके बाद वही माँ बाप उन बच्चों को फोन छुटवाने के लिए आदत। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेरेंट्स इसमें परेशानी उठा रहे हैं। इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि बच्चों के हाथ में अब मोबाइल नहीं, हम मुखदर देंगे।
0: हवा सिंह पहलवान रह चुके हैं और अभी उनकी उम्र 60 साल है, लेकिन आज भी भारी से भारी मुखदर वो चंद सेकंड में घुमा लेते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हर घर का बच्चा मजबूत बने और स्वस्थ रहे। इस अभियान के लिए भी 2 नारे बनाए गए हैं, हर घर मुखदर, घर घर मुखदर।
1: ये हमारा मकसद है कि हर एक घर के अंदर एक मुखदर हो। मुखदर एक ऐसी चीज है कि एक ही मुखदर से पूरा परिवार एक्सरसाइज कर सकता है। इसीलिए हमने नारा दिया है हर घर मुखदर, घर घर मुखदर का। और दूसरा हमारा नारा है कि मुखदर घुमाओ और स्वस्थ भारत बनाओ।
0: दिल्ली के रिठाला के रहने वाले पहलवान हवा सिंह के पास कई माता पिता उनसे सलाह लेने आते थे कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से कैसे बचाए। शिकायतें सुन सुनकर हवा सिंह थक चुके थे, तब उन्होंने ये आइडिया निकाला कि क्यों ना बच्चों को बचपन से ही फिटनेस की आदत डाली जाए।
1: ऐसे बहुत अच्छा।
0: इसलिए उन्होंने बच्चों को मुखदर की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। खास तौर पर उन सभी के बच्चों को इसमें शामिल किया गया जो शिकायत लेकर आ रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को बुलाकर मुखदर चलाना सिखाना शुरू किया। अब बच्चों ने मुखदर चलाना शुरू किया और उसी में वो बिजी रहने लगे और उन्हें इतना मजा आने लगा कि मोबाइल की लत करीब करीब छूट ही गई। और बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी बच्चों के मुखदर से जुड़ने से खुश हैं।
2: इनसे कांटेक्ट किया और मैंने बच्चे यहाँ खेड़ा में भेजने शुरू किए, तो तब से डेली मैं अपने बच्चों को यहाँ शाम को 5 से 7 बजे तक 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए यहाँ लाते हैं और उससे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। और मोबाइल जो ये 6-6 घंटे 4-4 घंटे स्कूल से आने के बाद देखते थे, वो ना के बराबर हो चुका है। वो तो पहले हम किसी के भी बच्चे को अपने देते थे, खाना खाते हुए मोबाइल हाथ में दे देते, वो खाना नहीं खा रहे, वो मोबाइल में जो देख रहे हैं वो उल्टी सीधी चीजें ही खा रहे हैं, खाने का स्वाद ही नहीं ले पा रहे हैं, फोन में घुसे रहते थे। अब बच्चे जाते हैं यहाँ से मेहनत करने के बाद, थकने के बाद अच्छी नींद आती है, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं।
3: पहले ये फोन में लगा रहता था 3-3, 4-4 घंटे तक, ना तो कुछ खाना, कुछ किसी और एक्टिविटी में कुछ वो नहीं था। लेकिन जब से हवा सिंह जी ने ये मुखदर की मुहिम चलाई है, जब से मेरा बच्चा थोड़ा एक्टिव हुआ है, इसने फोन देखना बंद कर दिया, ढंग से ये खाना खा रहा है, 2-2, 3-3 घंटे तक अभी रोज एक्सरसाइज भी करता है, मुखदर भी घुमाता है और घर में भी बहुत एक्टिव रहता है अभी। और अब इसने फोन बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ जी, और मेरे हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
0: रोजाना 10 से 15 मिनट सही तरीके से मुखदर घुमाया जाए तो पूरे शरीर की कसरत हो जाती है। ऐसे में मुखदर से बच्चों के जुड़ने से पेरेंट्स भी राहत की सांस ले रहे हैं।
1: दोनों हाथों में ऐसे।
0: उनका तो ये भी कहना है कि मोबाइल की लत से बच्चों का विकास लगभग रुक सा गया था, लेकिन जब से बच्चे ने मुखदर थामा है तब से हालात बदल से गए हैं।
3: बहुत परेशानी है, एक तो बच्चों की आंखें बहुत कमजोर होती है इससे, बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, फोन उनसे ले लो चिल्लाना मारना बहुत वो होता है। लेकिन जब से अब उसमें मैं हमारा बच्चा हुआ है, इसमें बहुत सुधार हुआ है।
0: मुहिम चलने लगी तो कारवा बनता गया और लोग भी इस अभियान से जुड़ते चले जा रहे हैं। हर कोई भारत के भविष्य की सेहत के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि बच्चे अक्सर घर में ही रहते हैं, ना वो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं और ना ही धूप में वक्त गुजारते हैं। ऐसे में उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता, शायद इसीलिए मुग्धर अभियान को भरपूर समर्थन मिल रहा है।
1: बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चे, शाबाश।
4: स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज है जिससे शरीर मजबूत होता है, दिमाग शांत होता है, बच्चा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है, अच्छा खाना खाता है, और आजकल तो स्पोर्ट्स में कैरियर भी बच्चों का बन रहा है, तो इससे अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा। बचपन से अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अच्छा स्टेमिना क्रिएट होगा।
5: बच्चे एक तरह से भटक रहे थे, बिल्कुल भी एक्सरसाइज का तो कोई मतलब ही नहीं था, खान पान का भी बहुत। और ये इतनी अच्छी मुहिम छेड़ी है, देखो इतने बच्चे एकदम से आ जाते हैं पे, तो बहुत अच्छी मुहिम है ये।
6: वो जरूरी है बच्चों की ये मुहिम,
5: वही हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ है तो वेल्थ सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। पहला सुख कहते हैं निरोगी काया, अगर निरोगी काया है तो सब कुछ सुख है फिर, तो ये बहुत जरूरी है ये।
0: मुग्धर का इतिहास कोई नया नहीं, इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाने वाले महाबली भीम मुग्धर गदा से ही अभ्यास किया करते थे। ये विशुद्ध रूप से भारतीय पारंपरिक व्यायाम पद्धति की देन है, जिसका जन्म व उदय भारत की पावर मिट्टी में हुआ। इसके इस्तेमाल से कलाई, कोहनी, कंधे और उंगलियों की पकड़ मजबूत होती है। इसका खास डिजाइन शरीर का संतुलन और पोस्चर शानदार बनाता है। मुग्धर एक ऐसा संपूर्ण और जादुई टूल है जिसके इस्तेमाल से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन आपको बता दें कि मुग्धर बनाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। इसके लिए शीशम या बबूल की लकड़ी को सबसे उपयुक्त और मजबूत माना जाता है। इसके निर्माण का मुख्य काम हरियाणा, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में किया जाता है। ये बच्चों के लिए 250 ग्राम से लेकर पहलवानों के लिए 30 किलो तक बनता है। ऐसा नहीं कि मुग्धर की चर्चा सिर्फ भारत में होती है, अमेरिका समेत कई देशों ने इस भारतीय कला को अपनाया है। इसे कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेलों और कई वैश्विक खेल मंचों पर प्रस्तुत किया जा चुका है। विदेशों में इसे इंडियन क्लब्स के नाम से माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
7: आज से करीब 27 साल पहले यानी 1999 में भारतीय सेना ने करगिल जंग में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसे हम सब ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी करगिल जंग में भारतीय वायुसेना ने भी अपना सबसे खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया था, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से जाना जाता है।
8: पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी कारगिल द्रास सेक्टर की सारी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन पोस्ट से वो हमारी नेशनल हाईवे 1 को टारगेट कर रहे हैं।
9: कश्मीर छीनना है,
10: हम नीचे से कुछ नहीं देख पा रहे हैं और वो ऊपर से हमारी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। उनकी हाइट की एडवांटेज को काउंटर करने के लिए वी नीड द एयर फोर्स।
11: वो तारीख थी 26 मई 1999, जब भारतीय वायुसेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अपना सबसे जाबाज और खतरनाक हवाई मिशन शुरू किया था।
12: वाजपेयी साहब, ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है,
13: ये मुजाहिदीन है।
14: मुजाहिदीन सिंगल फाइल में नहीं चलते, सिंगल फाइल में तो आर्मी वाले चलते हैं।
15: टारगेट 18,000 फीट पर है, बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी।
16: श्रीनगर जाना।
11: ऑपरेशन सफेद सागर दुनिया के सबसे मुश्किल मिशनों में से एक।
15: ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट्स टुमारो एट 0700 आवर्स।
11: मुश्किल इसलिए कि दुनिया में किसी भी देश की वायुसेना ने इससे पहले इतनी ऊंचाई पर जंग नहीं लड़ी थी। अब तक भारतीय सेना तोसा मैदान फायरिंग रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अभ्यास करती थी, लेकिन कारगिल में दुश्मन 14,000 से 18,000 की फीट ऊंचाई पर बैठा था। घुसपैठ का दायरा पश्चिम में द्रास से लेकर पूर्व में बटालिक तक फैला हुआ था। एयरफोर्स के पायलटों को 15,000 से 18,000 फीट की पहाड़ की दुर्गम चोटियों पर बम बरसाने थे। ये काम आसान नहीं था, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन भारतीय सेना की मदद और पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया।
17: सर, उन्होंने अपने साथ मुझे,
18: हमारे भाइयों के सम्मान में हम लड़ेंगे।
11: 26 मई की सुबह MiG-21, MiG-23 और MiG-27 ने घुसपैठियों के शिविरों, उनके सामान और आपूर्ति मार्ग पर हमला किया। ये सभी इलाके द्रास, कारगिल और बटाली के आसपास के थे। ये पूरा हिमालय क्षेत्र बर्फ से ढका होने की वजह से सफेद समुद्र जैसा दिखता था, इसलिए इसे ऑपरेशन सफेद सागर का कोडनेम दिया गया। इस ऑपरेशन के कामयाब होने के लिए हमलों का सटीक होना बेहद जरूरी था। पहाड़ों की बनावट ऐसी थी कि अगर कोई बम अपने निशाने से 50 मीटर भी चूक जाता तो 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। इतनी ऊंचाई पर हमलावर हेलीकॉप्टर सही से काम नहीं कर रहे थे। दुश्मन ऊंचाई पर था, इसलिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों का निशाना बनाने का भी खतरा था। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद लड़ाकू विमानों ने पूरे सेक्टर में लगातार हमले जारी रखे। 16 जून 1999 को भारतीय वायुसेना ने मुंथो ढालों में पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स कैंप का पता लगाया। इसके बाद ऑपरेशन में एंट्री हुई वायुसेना के गेम चेंजर विमान मिराज 2000 की, जिसने जंग में पूरी कहानी बदल दी। वायुसेना के इंजीनियरों ने रातों रात विमान पर लेडर गाइडेड बमों को फिट किया। ये पहली बार था जब भारत लड़ाकू विमान से इतनी ऊंचाई पर लेजर गाइडेड बमबारी करने वाला था। मिराज 2000 ने 250 किलोग्राम के बमों से कारगिल की चोटी पर सुरक्षित बनाए गए पाकिस्तानी बंकरों पर हमला किया और उसे निस्तानाबूद कर दिया। मिराज के साथ साथ जगुआ लड़ाकू विमानों ने मुश्कोट घाटी में भी जमकर गाइडेड बम दागे। इन हमलों से बटालिक में पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। मिराज 2000 विमानों ने सटीक हमलों से ऐसा कहर ढाया कि पाकिस्तानी फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए कारगिल की लड़ाई जीत ली। भारतीय वायुसेना की यही गौरव गाथा अब नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त को ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज में दिखाई जा रही है। हाल ही में रिलीज हुए टीजर के बाद ऑपरेशन सफेद सागर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें वायुसेना की फैसले लेने की प्रक्रिया, पायलट की ट्रेनिंग और युद्ध के मैदानों की असलियत दिखाई गई है।
15: टारगेट 18,000 फीट पर है, बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी।
11: इस शो की शूटिंग भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन बेस पर बड़े पैमाने पर की गई है और इसमें मिग एयरक्राफ्ट और वायुसेना के जवान शामिल हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
19: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज।

0: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
2: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
1: More top sports.
3: And he's gonna go! There's the tying goal!
1: And everything in between.
3: This game is over!
1: Upgrade now for the premium listening experience.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। असम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता। साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस छप्पड़ फाड़ चढ़ावे की जो दिया गया है उनके द्वार पर, जो खुद दुनिया को सब कुछ देते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भगवान के खजाने में जमकर धन बरसा है। एक महीने के भीतर भक्तों ने भगवान के दर पर इतना चढ़ावा अर्पित किया कि ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई। आपको ये बता दें कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण के सांवलिया सेठ स्वरूप की पूजा की जाती है। सांवलिया सेठ को श्रद्धालु अपने कारोबार का साझेदार मानते हैं और अपने व्यापार के हानि लाभ का भागीदार मानकर ना केवल उनकी पूजा करते हैं बल्कि अपने मुनाफे का भाग भी उन्हें अर्पित कर देते हैं। भगवान को भक्त ना केवल कैश बल्कि सोने चांदी और दूसरे रूपों में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं और यही वजह है कि साल दर साल भगवान श्री सांवलिया सेठ जी का खजाना भरता ही जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं अब की बार सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने कितना और क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया है।

0: जिनसे पाया उन्हीं को दिया, भेजने वाले भी वो और पाने वाले भी वो। यूं तो भक्त और भगवान के बीच भाव के सिवा किसी और पूंजी का कोई मोल नहीं, लेकिन फिर भी आस्था में अभिभूत भक्त अपने आराध्य के दर पर खाली हाथ कहा जाते हैं। और फिर सावलिया जी को तो भक्त बेहद प्यार और मनुहार से बुलाते ही हैं, सावलिया सेठ, वो दाता जो हमेशा भक्तों की झोली भरते हैं। सो अब की बार आस्थावान भक्तों ने उन्हीं सेठ के मंदिर का खजाना भर दिया है। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ धाम में हमेशा की तरह ही इस बार भी भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाया है। एक महीने में भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 38 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया है, जिसमें 29 करोड़ 77 लाख रुपए के करीब नकद राशि दान पेटी से निकली है, जबकि लगभग 8 करोड़ 45 लाख रुपए मनी ऑर्डर के जरिए और ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भक्तों ने सावलिया सेठ के दरबार में 1 किलो 48 ग्राम सोना और 103 किलो 497 ग्राम चांदी भी अर्पित की है। चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी, उसके बाद से 7 चरण में गणना का काम पूरा हुआ है।
1: 7 चक्रों में गणना हुई है 7 दिन तक लगातार, उसमें 38 करोड़ 23 लाख 13 हजार रुपया और 1 क्विंटल 3 किलो चांदी और 1 किलो 147 ग्राम सोना, 1 किलो 148 ग्राम और कुछ मिलीग्राम सोना है। ये भेंट कक्ष और भंडार दोनों से को मिला करके ये दान राशि प्राप्त हुई है।
0: सोने के आभूषणों के अलावा सावरिया सेठ को एक श्रद्धालु ने 20 लाख रुपए की सोने की बांसुरी भी अर्पित की है। आपको बता दें कि पिछले साल भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 337 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। 34 साल पहले सावलिया सेठ मंदिर के ट्रस्ट का गठन हुआ था, उसके बाद से यानी पिछले 34 सालों से चढ़ावे की रकम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और पिछले 34 साल में ये एक साल में आए चढ़ावे का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि बीते लगभग 4 दशक में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मंदिर के चढ़ावे में कमी आई हो, हर साल चढ़ावे की रकम बढ़ती ही जा रही है। खास तौर पर पिछले 5 सालों में यहां पर चढ़ावे और दान की रकम का आंकड़ा करोड़ों से बढ़कर अरबों में दर्ज किया गया है। साल 2021-22 में यहां 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा अर्पित किया गया, तो वहीं साल 2022-23 में ये रकम बढ़कर 130 करोड़ 51 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह साल 2023-24 में चढ़ावे का आंकड़ा 166 करोड़ 65 लाख रुपए तक रहा, तो वहीं 2024-25 यानी पिछले साल इस मंदिर में 235 करोड़ 96 लाख की रकम चढ़ावे के रूप में आई, और इस साल यही रकम बढ़कर 337 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
1: मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि सावलिया जी नगरी में जन्म लिया और मैं बड़ा हुआ हूं। जब मैं रुपए पैसे में समझने लगा उस समय 1000 रुपए पूरे नहीं निकलते थे, और हर बार जब 1000 कम थे, 900 थे, वो 1000 हुए, 1000 से 10000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, और आज करोड़ों में रुपया भंडार से निकलता है। तो भंडार सावलिया सेठ का हमेशा बड़ा ही है, घटा कभी नहीं है। सावलिया सेठ के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्योत्यो बड़े बिन खर्चे घटी जात, पर हमने घटता हुआ देखा नहीं है, हमेशा बढ़ता हुआ ही देखा है।
0: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये भगवान श्री कृष्ण का अनोखा धाम है, जहां आकर न केवल बिगड़े काम बन जाते हैं बल्कि कारोबार भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से सावलिया सेठ से मनोकामना मांगे तो वे किस्मत बदल देते हैं, व्यापार में उन्नति कराते हैं और जीवन के संकट दूर कर देते हैं।
1: श्री सावलिया सेठ हर व्यक्ति का, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, जो अच्छी श्रद्धा से, श्रद्धा भाव से भगवान के यहाँ आकर के जो कुछ मांगता है, वो श्री सावलिया सेठ सबकी मनोकामना पूरी करता है।
0: मान्यता है कि ठाकुर जी यहाँ सेठ जी के रूप में विराजमान हैं। एक बार अगर उन्हें अपने व्यापार में पार्टनर बना लिया तो बिजनेस बढ़ता ही जाता है। इसलिए खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के कई श्रद्धालुओं ने सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना रखा है। हर बार व्यापार में होने वाले मुनाफे की तय रकम वो बेहद श्रद्धा के साथ सांवलिया सेठ मंदिर में अर्पित कर देते हैं। भक्त यहाँ बाकायदा स्टाम्प और अमाउंट लिखवा कर लाते हैं। मन्नत पूरी होने पर अपनी कंपनी के लेटर हेड पर लिखकर लाखों की राशि यहाँ चढ़ावे के रूप में अर्पित कर जाते हैं।
2: भगवान सांवरिया सेठ मेवाड़ के ही नहीं अपितु पूरे देश भर में और देश के बाहर भी सांवरिया सेठ की महिमा दिनों दिन बढ़ रही है। और जैसे कि नाम से सांवरिया सेठ हैं, तो जो भी भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो भगवान को अपने आजीविका में से कामकाज में व्यापार में श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर भागीदार बनाते हैं।
0: इसी आस्था की वजह से साल दर साल श्री सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया और साथ ही बढ़ता गया यहाँ आने वाला चढ़ावा। आपको बता दें कि इसी साल केवल अप्रैल महीने में ही यहाँ 41 करोड़

0: कीमत का सोना भी अर्पित किया, जबकि लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी भी उन्हें अर्पित की गई। इससे पहले साल 2025 में सिर्फ दिवाली के अवसर पर ही मंदिर में 51 करोड़ से ज्यादा की रकम के चढ़ावे का रिकॉर्ड है। मेवाड़ में भगवान श्री कृष्ण के श्री सांवलिया सेठ स्वरूप को व्यापार के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त अपने व्यवसाय में सांवलिया सेठ को साझेदार बनाता है, उसे कभी घाटा नहीं होता। यही वजह है कि किसान से लेकर बड़े उद्योगपति तक अपने व्यापार में मुनाफे का 10% से लेकर 50% तक का हिस्सा भगवान को समर्पित करते हैं।
1: अभी ये लगभग 1000 करोड़ के आसपास बैंकों में और इनमें संपत्ति मिला करके, संपत्ति तो और अलग से है पर इतना लगभग है।
0: फिर मुनाफा होने पर मंदिर में आकर भगवान का हिस्सा चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। यही अनोखी आस्था इस मंदिर को विशिष्ट बनाती है। इसी वजह से समय के साथ मंदिर में चढ़ावे की ये राशि छोटी मोटी रकम नहीं रही बल्कि करोड़ों में पहुँच गयी। आपको बता दें कि साल 91-92 में यहाँ 65 लाख रुपए की रकम दान के रूप में आई थी। यही वो साल था जब चढ़ावे का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था। ठीक एक दशक के भीतर यानी 10 साल बाद साल 2000 आते आते चढ़ावे की रकम करीब 4 करोड़ तक पहुंच गई। और इसके बाद के 5 सालों में इस रकम में और इजाफा हुआ। साल 2006 आते आते चढ़ावे की रकम बढ़कर 6 करोड़ रुपए तक पहुँच गयी। तो वहीं साल 2010-11 में साल के चढ़ावे की रकम 22 करोड़ तक पहुंची। इसी तरह 2015-16 में मंदिर के खजाने में 51 करोड़ 36 लाख रुपए दान के रूप में आए, जबकि 2021-22 में चढ़ावे की ये रकम बढ़कर 86 करोड़ को पार कर गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 30 सालों में मंदिर का चढ़ावा 340 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इस तरह साल दर साल यहाँ चढ़ावे में बढ़ोतरी ही हो रही है। भक्त यहाँ सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में सोना चांदी भी अर्पित करते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के लिए बाकायदा खास सिस्टम बना हुआ है। मंदिर में 1992 से लेकर 2025 तक श्रद्धालुओं के सामने ही दान और चढ़ावे की रकम की काउंटिंग होती थी। पहले यहाँ आने वाले श्रद्धालु सांवलिया सेठ जी के दर्शन के साथ साथ दान की काउंटिंग भी देखते थे, लेकिन पिछले साल जुलाई के बाद से व्यवस्था में बदलाव किया गया ताकि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। नई व्यवस्था के तहत दान राशि की काउंटिंग अब सत्संग भवन में की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। हर महीने चतुर्दशी के दिन मंदिर के दान पात्र खुलते हैं। भगवान सांवलिया सेठ जी की राजभोग आरती के बाद चढ़ावे की काउंटिंग का काम शुरू होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए करीब 200 लोगों को लगाया जाता है। इनमें बैंकों के कर्मचारी और मंदिर प्रशासन के लोग शामिल होते हैं। काउंटिंग प्रक्रिया में पहले हाथों से पैसे गिने जाते हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 5 से 10 दिन का समय लगता है। सबसे पहले नोटों को और सिक्कों को अलग किया जाता है, इसके बाद 5 मशीनों से इनकी काउंटिंग होती है और अंत में चढ़ावे में आए गहनों का वजन किया जाता है। मंदिर में कैश के साथ साथ चेक, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावे की रकम आती है। विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण सांवलिया सेठ के खजाने में अब काफी विदेशी मुद्रा भी आ रही है, लिहाजा इस मंदिर की संपत्ति 1000 करोड़ के पार पहुँच चुकी है।
1: मंदिर का जो भी राशि आती, पहले तो मंदिर निर्माण में खर्च हो रही थी। मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ है, इसके बाद यहाँ की धर्मशालाएं हैं, मंदिर सांवलिया जी के आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, आसपास की सड़कें हैं, 16 गांव के विद्यालय हैं, यहाँ का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले में गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग हो या सांवलिया जी में हॉस्पिटल बनाना हो, और आसपास के गांवों के जितने भी विद्यालय हैं, छात्रों के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशाला बनाना, रोड बनाना और यात्रियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो भी अब खर्च होगा सारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही खर्च किया जाएगा।

0: श्री सांवरिया सेठ के इस मंदिर में भक्त केवल धन ही नहीं बल्कि अपनी मन्नतों के अनुसार अद्भुत और प्रतीकात्मक भेंट भी चढ़ाते हैं। अच्छी फसल होने पर किसान गेहूं की बालियां, लहसुन प्याज की चांदी की प्रतिकृतियां अर्पित करते हैं, तो अफीम के किसान चांदी के डोडे चढ़ाते हैं। वहीं झूठे मुकदमों से राहत मिलने पर भक्त चांदी की हथकड़ियां और बंदूकें चढ़ाते हैं, जो न्याय और मुक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। पिछले दिनों एक कारोबारी ने अपने पेट्रोल पंप के शुभारंभ की खुशी में यहाँ चांदी का फ्यूल डिस्पेंसर चढ़ाया, तो एक युवक ने अग्निवीर में चयन होने पर AK-47 की चांदी की प्रतिकृति अर्पित की। ऐसी अनोखी भेंट न केवल भगवान सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि भक्त कितनी शिद्दत से अपने जीवन की हर उपलब्धि और संघर्ष को अपने आराध्य को समर्पित करते हैं।
1: अपने अपने श्रद्धा है, यात्री जो श्रद्धालु आते हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस में रखता है, कोई अपनी खेतीबाड़ी करता है उसमें भी अपना सांवरिया सेठ का हिस्सा रखता है, कोई नौकरी करता है या कोई मजदूरी भी करता है वो भी अब सांवरिया सेठ का अपना हिस्सा अलग से रखता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई 1% रखता है, कोई 5%, कोई 10%, वो कोई हमारे सामने कोई फिक्स नहीं है।
0: अनोखा है चित्तौड़गढ़ का ये कृष्ण धाम, जो आस्था, विश्वास और ईश्वर को भागीदार मानने की अनूठी परंपरा का जीवंत उदाहरण बन चुका है, जहां हर चढ़ावे की एक कहानी है, हर भेंट के पीछे अलग भावना है और उसी भाव से अर्पित चढ़ावे में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। फिलहाल मंदिर के चढ़ावे में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में श्री सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को चर्चा का केंद्र बना दिया है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मथुरा हो या द्वारका, पुरी हो या उडुपी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत भूमि के हृदय में बसे हैं श्री कृष्ण। अलग अलग रूपों में भगवान कृष्ण की पूजा देश भर में की जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के नाम से क्यों पूजे जाते हैं श्याम, इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक ऐतिहासिक गाथा है। दूर दूर से लोग साल भर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि भगवान की वही प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है जिनकी पूजा स्वयं संत मीराबाई किया करती थी।

मेवाड़ जिसकी धरा में जन्मे वीर शिरोमणि, जिसकी माटी को सींचा है शूरवीरों के रक्त ने, जहां आज भी खिलते हैं शौर्य और स्वाभिमान के फूल। शौर्य तीर्थ मेवाड़ की उसी माटी में कभी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का ऐसा बीज पड़ा था जो आज भी आस्था का विशाल वट वृक्ष बनकर चित्तौड़ की धरा पर लहलहा रहा है और सुना रहा है किस्से प्रेम के, भक्ति के, मीरा और उनके गिरिधर गोपाल के।

0: अनोखा धाम है चित्तौड़ का श्री सांवलिया सेठ मंदिर। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस मंदिर की बात निराली है, क्योंकि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सांवलिया सेठ के रूप में होती है। सांवलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सांवलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे सदियों पुरानी कहानी है, जो खुद में समेटे है भारत के इस भूभाग का रोचक इतिहास। असल में भगवान सांवलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा सहित चार मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई। दरअसल संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई वर्षों तक वहीं दबी रही। 1840 में मंडफिया गांव के एक नौजवान भोला राम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गईं। सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के निर्देशन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित कर दिया गया, जबकि तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोला राम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित कर लिया, और चौथी मूर्ति खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और इसी स्थान पर उसे वापस दबा दिया गया।
1: ठाकुर जी की स्थापना का गलत 200 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। महिमा कब से ही चली आ रही है। लाग 200 वर्षों से पहले ठाकुर जी भक्ति से उत्पन्न हुए थे, यहाँ पे 7 की उम्र थी। तो अब तो पुजारी परिवार के वंशज थे और उनके ऊपर एक भोले राम जी थे, उनके जो सपना में आए थे और उनके साथ में स्थापना हुई 200 वर्षों से। चमत्कार के रूप में देखा जाए तो सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। लोग यहाँ पार्टनरशिप साझेदारी उसके लिए भी ठाकुर जी विख्यात है।
0: यहीं से शुरू हुई सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक रूप से पूजा। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों सहित तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सांवलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कहानी अनोखी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहाँ आकर सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे भागों के व्यापारी भी यहाँ आकर सांवलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती के रूप में कभी शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान किया करते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपनी दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सांवलिया सीट के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सांवलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आकर लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। शौर्य तीर्थ मेवाड़ में शान से खड़ा ये मंदिर आज भी जिंदा रखे है मीराबाई और उनके गिरिधर गोपाल की आस्था में पगी कहानियों को, और उन्हीं कहानियों की डोर थामे इस दिव्य धाम को देखने दुनिया भर के भक्त यहां आते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
5: Keep it on smooth jazz.
6: This is Roots Reggae
7: exclusively on TuneIn.
8: This is classic hip hop
9: exclusively on TuneIn.
3: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: सोचो जहां जहां तक भी नजर जाए सिर्फ चमचमाती बर्फ की चादर हो, तापमान शून्य से नीचे हो, क्या ऐसी जगह है पर दौड़ना संभव है। भले ही आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, आपको ये भी लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे जुनूनी लोगों की कमी नहीं है जो बर्फीले महासागर पर आयोजित मैराथन में हिस्सा लेते हैं। आपको दिखाते हैं।
12: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के समंदर में खड़ा जहाज, एक एक का जहाज से उतरते प्रतिभागी, माइनस डिग्री में तापमान, चारों तरफ जमा देने वाली बर्फीली हवाएं। नॉर्थ पोल पर कुछ ऐसा ही नजारा था जब दुनिया की सबसे अनोखी नॉर्थ पोल मैराथन का आगाज हुआ। ले कमांडर शार्को जहाज पर सवार होकर 7 देशों के 22 जांबाज एथलीट नॉर्थ पोल मैराथन में शामिल होने पहुंचे। आलम यह था कि मैराथन का ट्रैक भी तैरती बर्फ की परत पर तैयार किया गया। ट्रैक 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा तैयार किया गया, जहां प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए पोलर बियर पेट्रोलिंग टीम भी तैनात रही, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे ये कोई आम मैराथन नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जहां सड़क नहीं बल्कि तैरती हुई बर्फ की चादर ट्रैक बनती है, और कुछ ही घंटों बाद वही ट्रैक आर्कटिक महासागर में गायब हो जाता है। यहाँ तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, इसलिए धावकों को लाइफ जैकेट और थर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य था, और मैराथन पूरी करने के लिए उन्हें इस ट्रैक के 40 चक्कर लगाने पड़े। इस अनोखे मैराथन में चीन के शंगशियान वांग ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, वही महिलाओं के वर्ग में डेनमार्क की रिक्के डैम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी अपने नाम की। कुल मिलाकर बर्फ, उबर खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और हर कदम पर चुनौती, लेकिन इन धावकों ने साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो दुनिया का आखिरी छोर भी मंजिल बनने से नहीं रुक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
9: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
11: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। वायरल वीडियो की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो, जहां बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया, महिला उसमें गिर गई, क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
11: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, एक वकील और पुलिसकर्मी के बीच सड़क पर हो रही हाथापाई का ये पूरा वीडियो। दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
14: देश की सर्वोच्च अदालत में 10 जून को एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। प्रबल प्रताप नाम के एक याचिकाकर्ता ने बेंच को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। प्रताप ने अपनी फाइल हवा में उछाली और भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहे। अब एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में बवाल किया था। वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि वकील प्रबल प्रताप का वीडियो सामने आया है। वकील साहब एक पुलिस अधिकारी से मारपीट कर रहे हैं, जैसे गली मोहल्ले के लोकल गुंडे करते हैं। पुलिस अधिकारी को बीच चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारना कहां तक उचित है? कानून की पढ़ाई करने वाले ही कानून का उल्लंघन और शर्मसार करने वाली हरकत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
11: दरअसल एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था, और वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमने काला कोट पहने हुए शख्स के चेहरे को जूम करके देखा। जब हमने इसे गौर से देखा तो ये साफ हो गया कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इन दो तस्वीरों को देख सकते हैं। एक तरफ वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाले व्यक्ति प्रबल प्रताप की तस्वीर है। वायरल वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसके बाल बड़े हैं और वो क्लीन शेवन है, जबकि प्रबल प्रताप की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें उसकी दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई हैं जबकि बाल छोटे हैं। मतलब ये है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई और है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए हर जगह पर सर्च भी किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करते कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई में ये सच होता तो फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहे शख्स की पहचान क्या है। देखिए रिपोर्ट।
14: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित तमाम न्यूज रिपोर्ट मिल गई। 11 जुलाई की एक वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां सिविल लाइन्स कचहरी के बाहर दो पुलिस वाले और एक वकील आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट के दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस में वकील का चेहरा साफ नजर आता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये प्रबल प्रताप नहीं बल्कि कोई और शख्स है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई और प्राथमिक जांच के बाद एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। एसीपी आनंद ओझा ने बताया कि दोनों पुलिस वालों में से एक काफी समय से निलंबित है और गैर हाजिर चल रहा है, वहीं दूसरे कांस्टेबल को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो यूपी के कानपुर का है, जो वकील और पुलिस वालों के बीच हुए झगड़े को दिखाता है। इसमें दिख रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
11: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 9 जुलाई को हुई जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। अब इसी से जोड़ते हुए जलभराव में एक महिला के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो है, जहां पर बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया और महिला उसमें गिर गई। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
14: नोएडा में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद सेक्टर 58 में एक बेहद दुखद हादसा हुआ था, जहां जलभराव के कारण खुले पड़े एक नाले में गिरकर 27 वर्षीय युवक आर्यन की मौत हो गई थी। अब इसी संदर्भ में जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में में देखा जा रहा है कि एक युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल जाती है। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के नोएडा का बताकर शेयर किया जा रहा है। एक एक्स्यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बारिश में नोएडा की सड़कों पर ध्यान से चले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
11: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक से सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल आती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि 9 जुलाई का ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में लड़की के पानी में गिरते ही कंक्रीट या फिर लोहे से बना भारी भरकम ढक्कन किसी हल्के प्लास्टिक या थर्मोकोल के टुकड़े की तरह पानी की सतह पर तैरने लगता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब युवती गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो हवा में ही हाथ घुमाकर किसी अदृश्य वस्तु को उठाती हुई नजर आ रही है, जबकि वहां वास्तव में कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये सब सामने आने के बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
14: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस वीडियो को नोएडा का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने पाया कि महिला के चलने और गिरने का तरीका काफी अटपटा है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 98.9% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिरती लड़की के वायरल वीडियो को हमने ट्रुथ स्कैन पर भी जांचा। इस टूल ने 75% स्कोर के साथ वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के साथ संभावित AI जनरेटेड बताया। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले और फिर इन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। चैनल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी जांच से साफ हो गया कि जलभराव में गिरती हुई महिला का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। AI से बने वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
11: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का वीडियो है। वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
14: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून को एक मिनट के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। इसमें सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गई। भूकंप से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। अब इसी भूकंप से जोड़कर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंगों को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला बहुमंजिला इमारत नहीं, जैसे तेज रफ्तार ट्रेन का डब्बा हो। इतने ताकतवर भूकंप की मार कितनी देर झेलती, दोनों औंधे मुंह गिरी, लोग क्या पता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
11: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इसे लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हां, ये बात बिल्कुल सच है कि 24 जून 2026 को 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने पूरे वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया था। राजधानी कराकास और उसके आसपास की सड़कें, इमारतें ढहकर कंक्रीट और स्टील के मलबे में तब्दील हो गई। कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे दब गए, लेकिन यह वीडियो उसी भूकंप के दौरान का है, यह जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर दोनों इमारतों के टकराने पर इनकी खिड़कियों का आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा दोनों इमारतें एक ब्लॉक की तरह ही गिर रही हैं, न कि बिखर कर रही हैं या टूट रही हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें कहीं भी वायरल वीडियो से जुड़ी खबरें नहीं मिली। इसके बाद हमने वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। इसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों इमारतों के हिलने और टकराने के बावजूद उनमें मौजूद खिड़कियों की दशा में कोई बदलाव नहीं होता है। इनकी आकृतियों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें इस वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। इसलिए हमने सबसे पहले AI डिटेक्टर टूल detectvideo.ai की मदद ली। वायरल वीडियो को स्कैन करने पर इस टूल के नतीजों ने इसके AI के बने होने की 73% संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को एक और AI डिटेक्टर टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस में वीडियो के 97.8% AI से बने होने की संभावना की पुष्टि हुई। इसी तरह साइट इंजन के एनालिसिस ने भी वायरल वीडियो के 99% AI से बने होने की पुष्टि की। इस तरह हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। वेनेजुएला में भूकंप के नाम पर इमारतों के टकरा कर गिरने का वायरल वीडियो फेक है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afrobeats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
2: Good news today is really अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: दो छोटे बच्चों का अपने पिता की शादी की पुरानी बारात का वीडियो देखकर किया गया मासूम डांस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में दो छोटे भाई बहन अपने कमरे में पूरी मस्ती के साथ डांस करते दिखाई देते हैं। दोनों को देखकर साफ महसूस होता है कि वो किसी बात की चिंता किए बगैर सिर्फ उस पल का आनंद ले रहे हैं। छोटी बच्ची के हाथ में एक गिलास और चम्मच है, वो उन्हें किसी संगीत वाद्य यंत्र की तरह बजा रही है और अपने ही अंदाज में ताल बना रही है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई भी पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहा है। दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान और बेफिक्र अंदाज देख किसी का भी दिल खुश हो जाए। पहले तो ऐसा लगता है शायद टीवी पर कोई फिल्मी गाना या बच्चों का पसंदीदा डांस वीडियो चल रहा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद असली बात पता चलती है। टीवी स्क्रीन पर उनके पापा की शादी का पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें बैंड बाजे के साथ बारात निकल रही है और शादी का पूरा माहौल नजर आ रहा है। बच्चे उसी वीडियो को देख ऐसे झूम रहे हैं जैसे वो खुद उस बारात का हिस्सा हों।

सबसे दिलचस्प बात यह कि दोनों बच्चों को शायद ये भी पूरी तरह समझ नहीं होगा कि स्क्रीन पर जो शादी दिख रही है वो उनके अपने पापा की है। फिर भी बैंड की धुन और बारात का माहौल उन्हें इतना रास आता है कि वो खुद को नाचने से रोक नहीं पाते।

गाजियाबाद की टीचर चांदनी भाटी अपने अनोखे टीचिंग स्टाइल से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वो बच्चों को डांस, गाने और मजेदार एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाती हैं, जिससे पढ़ाई आसान और रोचक बन जाती है। उनके वायरल वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं और लाखों लोग उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। चांदनी के क्लास में बच्चे सिर्फ कुर्सी पर बैठकर किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि डांस, एक्टिंग और मजेदार एक्सप्रेशन के जरिए नई नई चीजें सीखते हैं। यही वजह है कि उनके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में किसी बड़े स्टंटमैन या प्रोफेशनल खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक पिता और उसकी दो छोटी बेटियों का शानदार तालमेल नजर आता है। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उनकी मेहनत और अभ्यास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने घर के अंदर अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आता है। ऐसा लगता है वो काफी समय से उन्हें किसी खास तरह की ट्रेनिंग दे रहा है।

सबसे पहले वो एक टेबल पर एक बाल्टी को उल्टा रखता है। इसके बाद बाल्टी के ऊपर दो प्लास्टिक की बॉटल खड़ी कर देता है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो वो कुछ कदम पीछे हटता है और फिर एकदम सटीक निशाने के साथ दोनों बॉटल्स को एक ही किक में गिरा देता है। उसका बैलेंस और टाइमिंग देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इस कला का काफी अभ्यास किया है। इसके बाद वो चुनौती को थोड़ा और मुश्किल बना देता है। इस बार बाल्टी के ऊपर दो नहीं बल्कि तीन बॉटल रखी जाती हैं। फिर वो उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अपनी किक से तीनों बॉटल्स को एक साथ नीचे गिरा देता है। ये देख उसकी दोनों बेटियां भी काफी उत्साहित नजर आती हैं। अब बारी आती है उन दोनों बच्चियों की, तो पिता उन्हें भी वही स्टंट दोहराने के लिए कहता है। पहले एक बेटी आगे आती है और कुछ पल अपने निशाने पर ध्यान देती है, फिर बिल्कुल अपने पिता की तरह किक मारकर बॉटल्स को गिरा देती है। उसके बाद दूसरी बेटी भी अपनी बारी में वही कमाल करके दिखाती है। दोनों बच्चियों का आत्मविश्वास, संतुलन और सटीक निशाना देख ये साफ समझ आता है कि उन्होंने नियमित अभ्यास किया है। यही बात इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क पर पंचर साइकिल के साथ परेशान खड़ी एक छोटी बच्ची की मदद के लिए पुलिसकर्मी ने जो किया उसे देख हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज धूप में छोटी बच्ची अपनी पंचर साइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ी थी, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी वहां से गुजर रहे पुलिसकर्मी संतोष सरोज की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और उससे बात की। पहले उन्होंने उसे पानी पिलाया, फिर खुद अपनी बाइक पर बैठाकर पंचर की दुकान से उसकी साइकिल बनवाई।

साइकिल जब ठीक हो गई तो बच्ची ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पुलिसकर्मी को देने की कोशिश की। संतोष सरोज ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बच्ची से कहा, तुमने मुझे भैया बोला है तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा। ये चंद शब्दों की बात नहीं थी, ये एक रक्षक के भाव थे। उस पुलिसकर्मी ने न केवल एक पंचर ठीक किया बल्कि उस बच्ची के चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जिसे वो शायद उम्र भर याद रखेगी। इंसानियत से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे लाखों लोग देख चुके हैं और जमकर सराहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है। इसी दौरान एक महिला अपनी स्कूटी के साथ बीच सड़क पर फंसी हुई दिखाई देती है। पहली नजर में लगता है कि शायद स्कूटी बंद हो गई है, लेकिन जब सौरभ नाम का शख्स उसके पास पहुंचकर बात करता है तो पूरी स्थिति सामने आती है। महिला बताती है कि उसका पैर स्कूटी में कहीं बुरी तरह फंस गया है, इसी वजह से वो ना तो स्कूटी से उतर पा रही थी और ना ही उसे आगे बढ़ा पा रही थी। पानी से भरी सड़क के बीच खड़े रहना उसके लिए काफी परेशानी भरा हो गया था। महिला की बात सुनते ही सौरभ ने बगैर समय गंवाए अपनी बाइक एक तरफ खड़ी कर दी। उन्होंने सबसे पहले महिला को घबराने से मना किया और भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने ध्यान से देखा कि आखिर पैर किस जगह फंसा है। काफी सावधानी के साथ उन्होंने इस हिस्से को हटाया जिसकी वजह से महिला का पैर अटक गया था। कुछ ही देर की कोशिश के बाद महिला का पैर बाहर निकल गया और उसे राहत मिली। इसके बाद भी सौरभ वहीं नहीं रुके, उन्होंने महिला से पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और वो ठीक महसूस कर रही है या नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि महिला सुरक्षित है तब उन्होंने स्कूटी को भी सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर खड़ा करने में मदद की। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार जता रहे हैं।

0: सोशल मीडिया पर ये इमोशनल वीडियो खूब वायरल है। वीडियो में रात के समय एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक जवान अपने परिवार से विदा ले रहा है। जवान सिविल ड्रेस में नजर आता है और ट्रेन में सवार होने से पहले अपनी छोटी बेटी को गले लगाता है। बेटी अपने पिता से अलग होने को तैयार नहीं होती। वो उन्हें जाता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है, लेकिन मासूम बेटी लगातार अपने पिता की तरफ हाथ बढ़ाती रहती है। उसकी माँ उसे संभालने और पीछे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेटी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये पूरी तस्वीर इतनी भावुक है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
2: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बात यूरोप की करेंगे, जहां पर इन दिनों गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। ग्रीस में मौसम ने ऐसे तेवर दिखाए कि पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालात ऐसे हैं कि लोग धूप से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

0: ये धुंध नहीं बल्कि गर्मी से राहत की उम्मीद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सूरज की तपश बढ़ी है, ऐसे में हर शख्स ठंडी हवा, पानी की फुहार और छांव की तलाश में नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स में मिस्ट फैन चल रहे हैं तो शहर के फव्वारे लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गए हैं। ग्रीस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, ऐसे में कोई पानी की बोतल से खुद को हाइड्रेट रख रहा है तो कोई बैग और छाते को ही धूप से बचने की ढाल बना चुका है। गर्म हवाओं के बीच भी ग्रीस का इतिहास जानने आए सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि गर्मी चाहे जितनी हो, ग्रीस के एथेंस की रौनक अभी भी बरकरार है। रेस्टोरेंट से लेकर चौक चौराहों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। पर्यटकों को गर्मी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब जरा इस रेस्टोरेंट्स का नजारा देखिए, किस कदर यहाँ मिस्ट फैन लगातार लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। इसलिए तो दुनिया भर से आए पर्यटक गर्मी में भी एथेंस की प्राचीन विरासत का दीदार कर रहे हैं। रोमन अगोरा जैसी प्राचीन धरोहरों पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी पेड़ों की छांव और छातों के नीचे अपना काम मुस्तैदी से करते दिखे। ग्रीस में हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर में एयर कंडीशनड राहत केंद्र खोले गए हैं, इसके साथ ही लोगों को हाइड्रेटेड रहने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता। साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस छप्पड़ फाड़ चढ़ावे की जो दिया गया है उनके द्वार पर, जो खुद दुनिया को सब कुछ देते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भगवान के खजाने में जमकर धन बरसा है। एक महीने के भीतर भक्तों ने भगवान के दर पर इतना चढ़ावा अर्पित किया कि ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई। आपको ये बता दें कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण के सांवलिया सेठ स्वरूप की पूजा की जाती है। सांवलिया सेठ को श्रद्धालु अपने कारोबार का साझेदार मानते हैं और अपने व्यापार के हानि लाभ का भागीदार मानकर न केवल उनकी पूजा करते हैं बल्कि अपने मुनाफे का भाग भी उन्हें अर्पित कर देते हैं। भगवान को भक्त न केवल कैश बल्कि सोने चांदी और दूसरे रूपों में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं और यही वजह है कि साल दर साल भगवान श्री सांवलिया सेठ जी का खजाना भरता ही जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं आपकी बार सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने कितना और क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया है।

0: जिसे पाया उन्हीं को दिया, भेजने वाले भी वो और पाने वाले भी वो। यूं तो भक्त और भगवान के बीच भाव के सिवा किसी और पूंजी का कोई मोल नहीं, लेकिन फिर भी आस्था में अभिभूत भक्त अपने आराध्य के दर पर खाली हाथ कहां जाते हैं। और फिर सावलिया जी को तो भक्त बेहद प्यार और मनुहार से बुलाते ही हैं। सावलिया सेठ वो दाता जो हमेशा भक्तों की झोली भरते हैं। सो अब की बार आस्थावान भक्तों ने उन्हीं सेठ के मंदिर का खजाना भर दिया है। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ धाम में हमेशा की तरह ही इस बार भी भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाया है। एक महीने में भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 38 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया है, जिसमें 29 करोड़ 77 लाख रुपए के करीब नकद राशि दान पेटी से निकली है, जबकि लगभग 8 करोड़ 45 लाख रुपए मनी ऑर्डर के जरिए और ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भक्तों ने सावलिया सेठ के दरबार में 1 किलो 48 ग्राम सोना और 103 किलो 497 ग्राम चांदी भी अर्पित की है। चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी, उसके बाद से 7 चरण में गणना का काम पूरा हुआ है।
1: 7 चक्रों में गणना हुई है 7 दिन तक लगातार, उसमें 38 करोड़ 23 लाख 13 हजार रुपया और 1 क्विंटल 3 किलो चांदी और 1 किलो 147 ग्राम सोना, 1 किलो 148 ग्राम और कुछ मिलीग्राम सोना है। ये भेंट कक्ष और भंडार दोनों से को मिला करके ये दान राशि प्राप्त हुई है।
0: सोने के आभूषणों के अलावा सावरिया सेठ को एक श्रद्धालु ने 20 लाख रुपए की सोने की बांसुरी भी अर्पित की है। आपको बता दें कि पिछले साल भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 337 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। 34 साल पहले सावलिया सेठ मंदिर के ट्रस्ट का गठन हुआ था, उसके बाद से यानी पिछले 34 सालों से चढ़ावे की रकम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और पिछले 34 साल में ये एक साल में आए चढ़ावे का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि बीते लगभग 4 दशक में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मंदिर के चढ़ावे में कमी आई हो। हर साल चढ़ावे की रकम बढ़ती ही जा रही है, खास तौर पर पिछले 5 सालों में यहां पर चढ़ावे और दान की रकम का आंकड़ा करोड़ों से बढ़कर अरबों में दर्ज किया गया है। साल 2021-22 में यहां 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा अर्पित किया गया, तो वहीं साल 2022-23 में ये रकम बढ़कर 130 करोड़ 51 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह साल 2023-24 में चढ़ावे का आंकड़ा 166 करोड़ 65 लाख रुपए तक रहा, तो वहीं 2024-25 यानी पिछले साल इस मंदिर में 235 करोड़ 96 लाख की रकम चढ़ावे के रूप में आई और इस साल यही रकम बढ़कर 337 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
1: मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस सावलिया जी नगरी में मैंने जन्म लिया और मैं बड़ा हुआ हूं। जब मैं रुपए पैसे में समझने लगा उस समय 1000 रुपए पूरे नहीं निकलते थे और हर बार जब 1000 कम थे 900 थे वो 1000 हुए, 1000 से 10000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ और आज करोड़ों में रुपया भंडार से निकलता है। तो भंडार सावलिया सेठ का हमेशा बड़ा ही है, घटा कभी नहीं है। सावलिया सेठ के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घटी जात, पर हमने घटता हुआ देखा नहीं है, हमेशा बढ़ता हुआ ही देखा है।
0: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये भगवान श्री कृष्ण का अनोखा धाम है, जहां आकर न केवल बिगड़े काम बन जाते हैं बल्कि कारोबार भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से सावलिया सेठ से मनोकामना मांगे तो वे किस्मत बदल देते हैं, व्यापार में उन्नति कराते हैं और जीवन के संकट दूर कर देते हैं।
1: सावलिया सेठ हर व्यक्ति का, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, जो अच्छी श्रद्धा से, श्रद्धा भाव से भगवान के यहाँ आकर के जो कुछ मांगता है वो श्री सावलिया सेठ सबकी मनोकामना पूरी करता है।
0: मान्यता है कि ठाकुर जी यहाँ सेठ जी के रूप में विराजमान हैं। एक बार अगर उन्हें अपने व्यापार में पार्टनर बना लिया तो बिजनेस बढ़ता ही जाता है। इसलिए खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के कई श्रद्धालुओं ने सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना रखा है। हर बार व्यापार में होने वाले मुनाफे की तय रकम वो बेहद श्रद्धा के साथ सांवलिया सेठ मंदिर में अर्पित कर देते हैं। भक्त यहाँ बाकायदा स्टाम्प और अमाउंट लिखवा कर लाते हैं। मन्नत पूरी होने पर अपनी कंपनी के लेटर हेड पर लिखकर लाखों की राशि यहाँ चढ़ावे के रूप में अर्पित कर जाते हैं।
2: भगवान सांवलिया सेठ मेवाड़ के ही नहीं अपितु पूरे देश भर में और देश के बाहर भी सांवरिया सेठ की महिमा दिनों दिन बढ़ रही है। और जैसे कि नाम से सांवरिया सेठ हैं, तो जो भी भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो भगवान को अपने आजीविका में से कामकाज में व्यापार में श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर भागीदार बनाते हैं।
0: इसी आस्था की वजह से साल दर साल श्री सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया और साथ ही बढ़ता गया यहाँ आने वाला चढ़ावा। आपको बता दें कि इसी साल केवल अप्रैल महीने में ही यहाँ 41 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि अर्पित की गई। एक महीने में ही चढ़ावे की रकम का 41 करोड़ से अधिक का आंकड़ा

0: दिवाली के अवसर पर ही मंदिर में 51 करोड़ से ज्यादा की रकम के चढ़ावे का रिकॉर्ड है। मेवाड़ में भगवान श्री कृष्ण के श्री सांवलिया सेठ स्वरूप को व्यापार के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त अपने व्यवसाय में सांवलिया सेठ को साझेदार बनाता है, उसे कभी घाटा नहीं होता। यही वजह है कि किसान से लेकर बड़े उद्योगपति तक अपने व्यापार में मुनाफे का 10% से लेकर 50% तक का हिस्सा भगवान को समर्पित करते हैं।
1: अभी ये लगभग 1000 करोड़ के आसपास बैंकों में और इनमें संपत्ति मिला करके, संपत्ति तो और अलग से है पर इतना लगभग है।
0: ये मुनाफा होने पर मंदिर में आकर भगवान का हिस्सा चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। यही अनोखी आस्था इस मंदिर को विशिष्ट बनाती है। इसी वजह से समय के साथ मंदिर में चढ़ावे की ये राशि छोटी मोटी रकम नहीं रही बल्कि करोड़ों में पहुंच गई। आपको बता दें कि साल 91-92 में यहाँ 65 लाख रुपए की रकम दान के रूप में आई थी। यही वो साल था जब चढ़ावे का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था। ठीक एक दशक के भीतर यानी 10 साल बाद साल 2000 आते आते चढ़ावे की रकम करीब 4 करोड़ तक पहुंच गई। और इसके बाद के 5 सालों में इस रकम में और इजाफा हुआ। साल 2006 आते आते चढ़ावे की रकम बढ़कर 6 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तो वहीं साल 2010-11 में साल के चढ़ावे की रकम 22 करोड़ तक पहुंची। इसी तरह 2015-16 में मंदिर के खजाने में 51 करोड़ 36 लाख रुपए दान के रूप में आए, जबकि 2021-22 में चढ़ावे की ये रकम बढ़कर 86 करोड़ को पार कर गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 30 सालों में मंदिर का चढ़ावा 340 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इस तरह साल दर साल यहाँ चढ़ावे में बढ़ोतरी ही हो रही है। भक्त यहाँ सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में सोना चांदी भी अर्पित करते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के लिए बाकायदा खास सिस्टम बना हुआ है। मंदिर में 1992 से लेकर 2025 तक श्रद्धालुओं के सामने ही दान और चढ़ावे की रकम की काउंटिंग होती थी। पहले यहाँ आने वाले श्रद्धालु सांवलिया सेठ जी के दर्शन के साथ साथ दान की काउंटिंग भी देखते थे, लेकिन पिछले साल जुलाई के बाद से व्यवस्था में बदलाव किया गया ताकि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। नई व्यवस्था के तहत दान राशि की काउंटिंग अब सत्संग भवन में की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। हर महीने चतुर्दशी के दिन मंदिर के दान पात्र खुलते हैं। भगवान सांवलिया सेठ जी की राजभोग आरती के बाद चढ़ावे की काउंटिंग का काम शुरू होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए करीब 200 लोगों को लगाया जाता है। इनमें बैंकों के कर्मचारी और मंदिर प्रशासन के लोग शामिल होते हैं। काउंटिंग प्रक्रिया में पहले हाथों से पैसे गिने जाते हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 5 से 10 दिन का समय लगता है। सबसे पहले नोटों को और सिक्कों को अलग किया जाता है, इसके बाद 5 मशीनों से इनकी काउंटिंग होती है और अंत में चढ़ावे में आए गहनों का वजन किया जाता है। मंदिर में कैश के साथ साथ चेक, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावे की रकम आती है। विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण सांवलिया सेठ के खजाने में अब काफी विदेशी मुद्रा भी आ रही है, लिहाजा इस मंदिर की संपत्ति 1000 करोड़ के पार पहुँच चुकी है।
1: मंदिर का जो भी राशि आती, पहले तो मंदिर निर्माण में खर्च हो रही थी। मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ है, इसके बाद यहाँ की धर्मशालाएं हैं, मंदिर सांवलिया जी के आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, आसपास की सड़कें हैं, 16 गांव के विद्यालय हैं, यहाँ का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले में गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग हो या सांवलिया जी में हॉस्पिटल बनाना हो, और आसपास के गांवों के जितने भी विद्यालय हैं, छात्रों के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशाला बनाना, रोड बनाना और यात्रियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो भी अब खर्च होगा सारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही खर्च किया जाएगा।

0: भक्त केवल धन ही नहीं बल्कि अपनी मन्नतों के अनुसार अद्भुत और प्रतीकात्मक भेंट भी चढ़ाते हैं। अच्छी फसल होने पर किसान गेहूं की बालियां, लहसुन प्याज की चांदी की प्रतिकृतियां अर्पित करते हैं, तो अफीम के किसान चांदी के डोडे चढ़ाते हैं। वहीं झूठे मुकदमों से राहत मिलने पर भक्त चांदी की हथकड़ियां और बंदूकें चढ़ाते हैं, जो न्याय और मुक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। पिछले दिनों एक कारोबारी ने अपने पेट्रोल पंप के शुभारंभ की खुशी में यहाँ चांदी का फ्यूल डिस्पेंसर चढ़ाया, तो एक युवक ने अग्निवीर में चयन होने पर AK-47 की चांदी की प्रतिकृति अर्पित की। ऐसी अनोखी भेंट न केवल भगवान सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि भक्त कितनी शिद्दत से अपने जीवन की हर उपलब्धि और संघर्ष को अपने आराध्य को समर्पित करते हैं।
1: अपने अपने श्रद्धा है, यात्री जो श्रद्धालु आते हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस में रखता है, कोई अपनी खेतीबाड़ी करता है उसमें भी अपना सांवरिया सेठ का हिस्सा रखता है, कोई नौकरी करता है या कोई मजदूरी भी करता है वो भी अब सांवरिया सेठ का अपना हिस्सा अलग से रखता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई 1% रखता है, कोई 5%, कोई 10%, वो कोई हमारे सामने कोई फिक्स नहीं है।
0: अनोखा है चित्तौड़गढ़ का ये कृष्ण धाम, जो आस्था, विश्वास और ईश्वर को भागीदार मानने की अनूठी परंपरा का जीवंत उदाहरण बन चुका है, जहां हर चढ़ावे की एक कहानी है, हर भेंट के पीछे अलग भावना है, और उसी भाव से अर्पित चढ़ावे में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। फिलहाल मंदिर के चढ़ावे में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में श्री सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को चर्चा का केंद्र बना दिया है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मथुरा हो या द्वारका, पुरी हो या उडुपी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत भूमि के हृदय में बसे हैं श्री कृष्ण। अलग अलग रूपों में भगवान कृष्ण की पूजा देश भर में की जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के नाम से क्यों पूजे जाते हैं श्याम, इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक ऐतिहासिक गाथा है। दूर दूर से लोग साल भर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि भगवान की वही प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है जिनकी पूजा स्वयं संत मीराबाई किया करती थी।

मेवाड़ जिसकी धरा में जन्मे वीर शिरोमणि, जिसकी माटी को सींचा है शूरवीरों के रक्त ने, जहां आज भी खिलते हैं शौर्य और स्वाभिमान के फूल। शौर्य तीर्थ मेवाड़ की उसी माटी में कभी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का ऐसा बीज पड़ा था जो आज भी आस्था का विशाल वट वृक्ष बनकर चित्तौड़ की धरा पर लहलहा रहा है और सुना रहा है किस्से प्रेम के, भक्ति के, मीरा और उनके गिरिधर गोपाल के।

0: अनोखा धाम है चित्तौड़ का श्री सांवलिया सेठ मंदिर। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस मंदिर की बात निराली है, क्योंकि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सांवलिया सेठ के रूप में होती है। सांवलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सांवलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे सदियों पुरानी कहानी है, जो खुद में समेटे है भारत के इस भूभाग का रोचक इतिहास। असल में भगवान सांवलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा सहित चार मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई। दरअसल संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई वर्षों तक वहीं दबी रही। 1840 में मंडफिया गांव के एक नौजवान भोला राम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गईं। सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के निर्देशन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित कर दिया गया, जबकि तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोला राम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित कर लिया, और चौथी मूर्ति खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और इसी स्थान पर उसे वापस दबा दिया गया।
1: ठाकुर जी की स्थापना का 200 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, महिमा कब से ही चली आ रही है। आज 200 वर्षों से पहले ठाकुर जी पंक्ति से उत्पन्न हुए थे, यहाँ पे 7 की मूर्ति, तो अब तो पुजारी परिवार के वंशज थे और उनके ऊपर एक भोलेराम जी थे, उनके जो सपना में आए थे और उनके साथ में स्थापना हुई 200 वर्षों से। चमत्कार के रूप में देखा जाए तो सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, लोग यहाँ पार्टनरशिप साझेदारी उसके लिए भी ठाकुर जी विख्यात है।
0: यहीं से शुरू हुई सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक रूप से पूजा। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों सहित तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सांवलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी कहानी अनोखी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहाँ आकर सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे भागों के व्यापारी भी यहाँ आकर सांवलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती के रूप में कभी शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान किया करते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपनी दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सांवलिया सेठ के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सांवलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आकर लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। शौर्य तीर्थ मेवाड़ में शान से खड़ा ये मंदिर आज भी जिंदा रखे है मीराबाई और उनके गिरिधर गोपाल की आस्था में पगी कहानियों को, और उन्हीं कहानियों की डोर थामे इस दिव्य धाम को देखने दुनिया भर के भक्त यहां आते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
3: The best summer moments happen after dark. So let Cirilla's give your evening routine the attention it deserves. Whether it's self-care or connection, they have everything you need to keep things hot. Lotions and massage oils, flirty couples games, and right now, 20% off Cal Exotic Toys. Known for their quality and variety, they have something for absolutely everyone. So start exploring at your local Cirilla's or Cirilla's.com.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: सोचो जहां तक भी नजर जाए सिर्फ चमचमाती बर्फ की चादर हो, तापमान शून्य से नीचे हो, क्या ऐसी जगह है पर दौड़ना संभव है। भले ही आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, आपको ये भी लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे जुनूनी लोगों की कमी नहीं है जो बर्फीले महासागर पर आयोजित मैराथन में हिस्सा लेते हैं। आपको दिखाते हैं।
6: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के समंदर में खड़ा जहाज, एक एक का जहाज से उतरते प्रतिभागी, माइनस डिग्री में तापमान, चारों तरफ जमा देने वाली बर्फीली हवाएं। नॉर्थ पोल पर कुछ ऐसा ही नजारा था जब दुनिया की सबसे अनोखी नॉर्थ पोल मैराथन का आगाज हुआ। ले कमांडर शार्को जहाज पर सवार होकर 7 देशों के 22 जांबाज एथलीट नॉर्थ पोल मैराथन में शामिल होने पहुंचे। आलम यह था कि मैराथन का ट्रैक भी तैरती बर्फ की परत पर तैयार किया गया। ट्रैक 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा तैयार किया गया, जहां प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए पोलर बियर पेट्रोलिंग टीम भी तैनात रही ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे ये कोई आम मैराथन नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जहां सड़क नहीं बल्कि तैरती हुई बर्फ की चादर ट्रैक बनती है और कुछ ही घंटों बाद वही ट्रैक आर्कटिक महासागर में गायब हो जाता है। यहाँ तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, इसलिए धावकों को लाइफ जैकेट और थर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य था और मैराथन पूरी करने के लिए उन्हें इस ट्रैक के 40 चक्कर लगाने पड़े। इस अनोखे मैराथन में चीन के शंगशियान वांग ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, वही महिलाओं के वर्ग में डेनमार्क की रिक्के डैम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी अपने नाम की। कुल मिलाकर बर्फ, उबर खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और हर कदम पर चुनौती, लेकिन इन धावकों ने साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो दुनिया का आखिरी छोर भी मंजिल बनने से नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip. The next home renovation. Or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
9: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। वायरल वीडियो की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो, जहां बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया, महिला उसमें गिर गई। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, एक वकील और पुलिसकर्मी के बीच सड़क पर हो रही हाथापाई का ये पूरा वीडियो। दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
10: देश की सर्वोच्च अदालत में 10 जून को एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। प्रबल प्रताप नाम के एक याचिकाकर्ता ने बेंच को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। प्रताप ने अपनी फाइल हवा में उछाली और भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहे। अब एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में बवाल किया था। वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि वकील प्रबल प्रताप का वीडियो सामने आया है। वकील साहब एक पुलिस अधिकारी से मारपीट कर रहे हैं, जैसे गली मोहल्ले के लोकल गुंडे करते हैं। पुलिस अधिकारी को बीच चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारना कहां तक उचित है? कानून की पढ़ाई करने वाले ही कानून का उल्लंघन और शर्मसार करने वाली हरकत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था, और वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमने काला कोट पहने हुए शख्स के चेहरे को जूम के देखा। जब हमने इसे गौर से देखा तो यह साफ हो गया कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इन दो तस्वीरों को देख सकते हैं। एक तरफ वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाले व्यक्ति प्रबल प्रताप की तस्वीर है। वायरल वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसके बाल बड़े हैं और वो क्लीन शेवन है, जबकि प्रबल प्रताप की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें उसकी दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई हैं जबकि बाल छोटे हैं। मतलब ये है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई और है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए हर जगह पर सर्च भी किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करते कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई में ये सच होता तो फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहे शख्स की पहचान क्या है। देखिए रिपोर्ट।
10: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित तमाम न्यूज रिपोर्ट मिल गई। 11 जुलाई की एक वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां सिविल लाइन्स कचहरी के बाहर दो पुलिस वाले और एक वकील आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट के दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस में वकील का चेहरा साफ नजर आता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये प्रबल प्रताप नहीं बल्कि कोई और शख्स है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई और प्राथमिक जांच के बाद एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। एसीपी आनंद ओझा ने बताया कि दोनों पुलिस वालों में से एक काफी समय से निलंबित है और गैर हाजिर चल रहा है, वहीं दूसरे कांस्टेबल को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो यूपी के कानपुर का है, जो वकीलों पुलिस वालों के बीच हुए झगड़े को दिखाता है। इसमें दिख रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 9 जुलाई को हुई जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। अब इसी से जोड़ते हुए जलभराव में एक महिला के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो है, जहां पर बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया और महिला उसमें गिर गई। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
10: नोएडा में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद सेक्टर 58 में एक बेहद दुखद हादसा हुआ था, जहां जलभराव के कारण खुले पड़े एक नाले में गिरकर 27 वर्षीय युवक आर्यन की मौत हो गई थी। अब इसी संदर्भ में जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल जाती है। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के नोएडा का बताकर शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बारिश में नोएडा की सड़कों पर ध्यान से चले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक से सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल आती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि 9 जुलाई का ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में लड़की के पानी में गिरते ही कंक्रीट या फिर लोहे से बना भारी भरकम ढक्कन किसी हल्के प्लास्टिक या थर्मोकोल के टुकड़े की तरह पानी की सतह पर तैरने लगता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब युवती गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो हवा में ही हाथ घुमाकर किसी अदृश्य वस्तु को उठाती हुई नजर आ रही है, जबकि वहां वास्तव में कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये सब सामने आने के बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
10: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस वीडियो को नोएडा का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने पाया कि महिला के चलने और गिरने का तरीका काफी अटपटा है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 98.9% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिरती लड़की के वायरल वीडियो को हमने ट्रुथ स्कैन पर भी जांचा। इस टूल ने 75% स्कोर के साथ वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के साथ संभावित AI जनरेटेड बताया। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले और फिर इन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। चैनल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी जांच से साफ हो गया कि जलभराव में गिरती हुई महिला का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। AI से बने वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का वीडियो है। वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
10: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून को 1 मिनट के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। इसमें सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गई। भूकंप से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। अब इसी भूकंप से जोड़कर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंगों को आपस में टकरा कर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला बहुमंजिला इमारत नहीं जैसे तेज रफ्तार ट्रेन का डब्बा हो।
11: इतने ताकतवर भूकंप की मार कितनी देर झेलती, दोनों औंधे मुंह गिरी, लोग क्या पता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान का यह वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इसे लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि 24 जून 2026 को 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने पूरे वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया था। राजधानी कराकास और उसके आसपास की सड़कें, इमारतें ढहकर कंक्रीट और स्टील के मलबे में तब्दील हो गई। कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे दब गए, लेकिन यह वीडियो उसी भूकंप के दौरान का है, यह जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर दोनों इमारतों के टकराने पर इनकी खिड़कियों का आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा दोनों इमारतें एक ब्लॉक की तरह ही गिर रही हैं, न कि बिखर कर रही हैं या टूट रही हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो को सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें कहीं भी वायरल वीडियो से जुड़ी खबरें नहीं मिली। इसके बाद हमने वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। इसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों इमारतों के हिलने और टकराने के बावजूद उनमें मौजूद खिड़कियों की दशा में कोई बदलाव नहीं होता है। इनकी आकृतियों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें इस वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। इसलिए हमने सबसे पहले AI डिटेक्टर टूल detectvideo.ai की मदद ली। वायरल वीडियो को स्कैन करने पर इस टूल के नतीजों ने इसके AI के बने होने की 73% संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को एक और AI डिटेक्टर टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस में वीडियो के 97.8% AI से बने होने की संभावना की पुष्टि हुई। इसी तरह साइट इंजन के एनालिसिस ने भी वायरल वीडियो के 99% AI से बने होने की पुष्टि की। इस तरह हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। वेनेजुएला में भूकंप के नाम पर इमारतों के टकरा कर गिरने का वायरल वीडियो फेक है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: This is radio reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
4: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
3: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
5: जी खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: दो छोटे बच्चों का अपने पिता की शादी की पुरानी बारात का वीडियो देखकर किया गया मासूम डांस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में दो छोटे भाई बहन अपने कमरे में पूरी मस्ती के साथ डांस करते दिखाई देते हैं। दोनों को देखकर साफ महसूस होता है कि वो किसी बात की चिंता किए बगैर सिर्फ उस पल का आनंद ले रहे हैं। छोटी बच्ची के हाथ में एक गिलास और चम्मच है, वो उन्हें किसी संगीत वाद्य यंत्र की तरह बजा रही है और अपने ही अंदाज में ताल बना रही है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई भी पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहा है। दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान और बेफिक्र अंदाज देख किसी का भी दिल खुश हो जाए। पहले तो ऐसा लगता है शायद टीवी पर कोई फिल्मी गाना या बच्चों का पसंदीदा डांस वीडियो चल रहा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद असली बात पता चलती है। टीवी स्क्रीन पर उनके पापा की शादी का पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें बैंड बाजे के साथ बारात निकल रही है और शादी का पूरा माहौल नजर आ रहा है। बच्चे उसी वीडियो को देख ऐसे झूम रहे हैं जैसे वो खुद उस बारात का हिस्सा हों।

सबसे दिलचस्प बात यह कि दोनों बच्चों को शायद ये भी पूरी तरह समझ नहीं होगा कि स्क्रीन पर जो शादी दिख रही है वो उनके अपने पापा की है। फिर भी बैंड की धुन और बारात का माहौल उन्हें इतना रास आता है कि वो खुद को नाचने से रोक नहीं पाते।

गाजियाबाद की टीचर चांदनी भाटी अपने अनोखे टीचिंग स्टाइल से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वो बच्चों को डांस, गाने और मजेदार एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाती हैं, जिससे पढ़ाई आसान और रोचक बन जाती है। उनके वायरल वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं और लाखों लोग उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। चांदनी के क्लास में बच्चे सिर्फ कुर्सी पर बैठकर किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि डांस, एक्टिंग और मजेदार एक्सप्रेशन के जरिए नई नई चीजें सीखते हैं। यही वजह है कि उनके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में किसी बड़े स्टंटमैन या प्रोफेशनल खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक पिता और उसकी दो छोटी बेटियों का शानदार तालमेल नजर आता है। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उनकी मेहनत और अभ्यास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने घर के अंदर अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आता है। ऐसा लगता है वो काफी समय से उन्हें किसी खास तरह की ट्रेनिंग दे रहा है।

सबसे पहले वो एक टेबल पर एक बाल्टी को उल्टा रखता है। इसके बाद बाल्टी के ऊपर दो प्लास्टिक की बॉटल खड़ी कर देता है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो वो कुछ कदम पीछे हटता है और फिर एकदम सटीक निशाने के साथ दोनों बॉटल्स को एक ही किक में गिरा देता है। उसका बैलेंस और टाइमिंग देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इस कला का काफी अभ्यास किया है। इसके बाद वो चुनौती को थोड़ा और मुश्किल बना देता है। इस बार बाल्टी के ऊपर दो नहीं बल्कि तीन बॉटल रखी जाती हैं। फिर वो उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अपनी किक से तीनों बॉटल्स को एक साथ नीचे गिरा देता है। ये देख उसकी दोनों बेटियां भी काफी उत्साहित नजर आती हैं। अब बारी आती है उन दोनों बच्चियों की, तो पिता उन्हें भी वही स्टंट दोहराने के लिए कहता है। पहले एक बेटी आगे आती है और कुछ पल अपने निशाने पर ध्यान देती है, फिर बिल्कुल अपने पिता की तरह किक मारकर बॉटल्स को गिरा देती है। उसके बाद दूसरी बेटी भी अपनी बारी में वही कमाल करके दिखाती है। दोनों बच्चियों का आत्मविश्वास, संतुलन और सटीक निशाना देख ये साफ समझ आता है कि उन्होंने नियमित अभ्यास किया है। यही बात इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क पर पंचर साइकिल के साथ परेशान खड़ी एक छोटी बच्ची की मदद के लिए पुलिसकर्मी ने जो किया उसे देख हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज धूप में छोटी बच्ची अपनी पंचर साइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ी थी, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी वहां से गुजर रहे पुलिसकर्मी संतोष सरोज की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और उससे बात की। पहले उन्होंने उसे पानी पिलाया, फिर खुद अपनी बाइक पर बैठाकर पंचर की दुकान से उसकी साइकिल बनवाई।

साइकिल जब ठीक हो गई तो बच्ची ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पुलिसकर्मी को देने की कोशिश की। संतोष सरोज ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बच्ची से कहा, तुमने मुझे भैया बोला है तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा। ये चंद शब्दों की बात नहीं थी, ये एक रक्षक के भाव थे। उस पुलिसकर्मी ने न केवल एक पंचर ठीक किया बल्कि उस बच्ची के चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जिसे वो शायद उम्र भर याद रखेगी। इंसानियत से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे लाखों लोग देख चुके हैं और जमकर सराहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है। इसी दौरान एक महिला अपनी स्कूटी के साथ बीच सड़क पर फंसी हुई दिखाई देती है। पहली नजर में लगता है कि शायद स्कूटी बंद हो गई है, लेकिन जब सौरभ नाम का शख्स उसके पास पहुंचकर बात करता है तो पूरी स्थिति सामने आती है। महिला बताती है कि उसका पैर स्कूटी में कहीं बुरी तरह फंस गया है, इसी वजह से वो ना तो स्कूटी से उतर पा रही थी और ना ही उसे आगे बढ़ा पा रही थी। पानी से भरी सड़क के बीच खड़े रहना उसके लिए काफी परेशानी भरा हो गया था। महिला की बात सुनते ही सौरभ ने बगैर समय गंवाए अपनी बाइक एक तरफ खड़ी कर दी। उन्होंने सबसे पहले महिला को घबराने से मना किया और भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने ध्यान से देखा कि आखिर पैर किस जगह फंसा है। काफी सावधानी के साथ उन्होंने इस हिस्से को हटाया जिसकी वजह से महिला का पैर अटक गया था। कुछ ही देर की कोशिश के बाद महिला का पैर बाहर निकल गया और उसे राहत मिली। इसके बाद भी सौरभ वहीं नहीं रुके, उन्होंने महिला से पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और वो ठीक महसूस कर रही है या नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि महिला सुरक्षित है तब उन्होंने स्कूटी को भी सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर खड़ा करने में मदद की। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

0: सोशल मीडिया पर ये इमोशनल वीडियो खूब वायरल है। वीडियो में रात के समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक जवान अपने परिवार से विदा ले रहा है। जवान सिविल ड्रेस में नजर आता है और ट्रेन में सवार होने से पहले अपनी छोटी बेटी को गले लगाता है। बेटी अपने पिता से अलग होने को तैयार नहीं होती, वो उन्हें जाता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है, लेकिन मासूम बेटी लगातार अपने पिता की तरफ हाथ बढ़ाती रहती है। उसकी माँ उसे संभालने और पीछे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेटी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये पूरी तस्वीर इतनी भावुक है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: Summer's too good to run on empty. Save 30% on more than 4,000 vitamin and body care items at Fresh Time Market from July 22nd through July 28th. Stock up on your wellness essentials like Mary Ruth's multivitamins, Truvani plant-based protein powder, Brownie's facial patches, and Sunbum sunscreen. Because feeling your best should be part of every summer adventure. See you and your friends July 22nd through the 28th. Fresh Time Market, rooted in your well-being.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है
3: जहां पर इन दिनों गर्मी लोगों की परीक्षा से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

0: ये धुंध नहीं बल्कि गर्मी से राहत की उम्मीद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सूरज की तपश बढ़ी है, ऐसे में हर शख्स ठंडी हवा, पानी की फुहार और छांव की तलाश में नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स में मिस्ट फैन चल रहे हैं तो शहर के फव्वारे लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गए हैं। ग्रीस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, ऐसे में कोई पानी की बोतल से खुद को हाइड्रेट रख रहा है तो कोई बैग और छाते को ही धूप से बचने की ढाल बना चुका है। गर्म हवाओं के बीच भी ग्रीस का इतिहास जानने आए सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि गर्मी चाहे जितनी हो, ग्रीस के एथेंस की रौनक अभी भी बरकरार है। रेस्टोरेंट से लेकर चौक चौराहों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। पर्यटकों को गर्मी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब जरा इस रेस्टोरेंट का नजारा देखिए, किस कदर यहाँ मिस्ट फैन लगातार लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। इसलिए तो दुनिया भर से आए पर्यटक गर्मी में भी एथेंस की प्राचीन विरासत का दीदार कर रहे हैं। रोमन अगोरा जैसी प्राचीन धरोहरों पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी पेड़ों की छांव और छातों के नीचे अपना काम मुस्तैदी से करते दिखे। ग्रीस में हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर में एयर कंडीशनड राहत केंद्र खोले गए हैं, इसके साथ ही लोगों को हाइड्रेटेड रहने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action...
6: One-hand jam by LeBron on the break!
7: That's another three, Steph Curry!
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। असम में बाढ़ के बीच रात बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नगद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस छप्पड़ फाड़ चढ़ावे की जो दिया गया है उनके द्वार पर, जो खुद दुनिया को सब कुछ देते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भगवान के खजाने में जमकर धन बरसा है। एक महीने के भीतर भक्तों ने भगवान के दर पर इतना चढ़ावा अर्पित किया कि ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई। आपको ये बता दें कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण के सांवलिया सेठ स्वरूप की पूजा की जाती है। सांवलिया सेठ को श्रद्धालु अपने कारोबार का साझेदार मानते हैं और अपने व्यापार के हानि लाभ का भागीदार मानकर न केवल उनकी पूजा करते हैं बल्कि अपने मुनाफे का भाग भी उन्हें अर्पित कर देते हैं। भगवान को भक्त न केवल कैश बल्कि सोने चांदी और दूसरे रूपों में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं और यही वजह है कि साल दर साल भगवान श्री सांवलिया सेठ जी का खजाना भरता ही जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं आपकी बार सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने कितना और क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया है।

0: जिनसे पाया उन्हीं को दिया, भेजने वाले भी वो और पाने वाले भी वो। यूं तो भक्त और भगवान के बीच भाव के सिवा किसी और पूंजी का कोई मोल नहीं, लेकिन फिर भी आस्था में अभिभूत भक्त अपने आराध्य के दर पर खाली हाथ कहां जाते हैं। और फिर सावलिया जी को तो भक्त बेहद प्यार और मनुहार से बुलाते ही हैं। सावलिया सेठ वो दाता जो हमेशा भक्तों की झोली भरते हैं। सो अब की बार आस्थावान भक्तों ने उन्हीं सेठ के मंदिर का खजाना भर दिया है। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ धाम में हमेशा की तरह ही इस बार भी भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाया है। एक महीने में भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 38 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया है, जिसमें 29 करोड़ 77 लाख रुपए के करीब नकद राशि दान पेटी से निकली है, जबकि लगभग 8 करोड़ 45 लाख रुपए मनी ऑर्डर के जरिए और ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भक्तों ने सावलिया सेठ के दरबार में 1 किलो 48 ग्राम सोना और 103 किलो 497 ग्राम चांदी भी अर्पित की है। चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी, उसके बाद से 7 चरण में गणना का काम पूरा हुआ है।
1: 7 चक्रों में गणना हुई है 7 दिन तक लगातार, उसमें 38 करोड़ 23 लाख 13 हजार रुपया और 1 क्विंटल 3 किलो चांदी और 1 किलो 147 ग्राम सोना, 1 किलो 148 ग्राम और कुछ मिलीग्राम सोना है। ये भेंट कक्ष और भंडार दोनों से को मिला करके ये दान राशि प्राप्त हुई है।
0: सोने के आभूषणों के अलावा सावरिया सेठ को एक श्रद्धालु ने 20 लाख रुपए की सोने की बांसुरी भी अर्पित की है। आपको बता दें कि पिछले साल भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 337 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। 34 साल पहले सावलिया सेठ मंदिर के ट्रस्ट का गठन हुआ था, उसके बाद से यानी पिछले 34 सालों से चढ़ावे की रकम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और पिछले 34 साल में ये एक साल में आए चढ़ावे का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि बीते लगभग 4 दशक में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मंदिर के चढ़ावे में कमी आई हो। हर साल चढ़ावे की रकम बढ़ती ही जा रही है, खास तौर पर पिछले 5 सालों में यहां पर चढ़ावे और दान की रकम का आंकड़ा करोड़ों से बढ़कर अरबों में दर्ज किया गया है। साल 2021-22 में यहां 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा अर्पित किया गया, तो वहीं साल 2022-23 में ये रकम बढ़कर 130 करोड़ 51 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह साल 2023-24 में चढ़ावे का आंकड़ा 166 करोड़ 65 लाख रुपए तक रहा, तो वहीं 2024-25 यानी पिछले साल इस मंदिर में 235 करोड़ 96 लाख की रकम चढ़ावे के रूप में आई, और इस साल यही रकम बढ़कर 337 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
1: मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि सावलिया जी नगरी में जन्म लिया और मैं बड़ा हुआ हूं। जब मैं रुपए पैसे में समझने लगा उस समय 1000 रुपए पूरे नहीं निकलते थे, और हर बार जब 1000 कम थे, 900 थे, वो 1000 हुए, 1000 से 10000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, और आज करोड़ों में रुपया भंडार से निकलता है। तो भंडार सावलिया सेठ का हमेशा बड़ा ही है, घटा कभी नहीं है। सावलिया सेठ के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्योत्यो बड़े बिन खर्चे घटी जात, पर हमने घटता हुआ देखा नहीं है, हमेशा बढ़ता हुआ ही देखा है।
0: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये भगवान श्री कृष्ण का अनोखा धाम है, जहां आकर न केवल बिगड़े काम बन जाते हैं बल्कि कारोबार भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से सावलिया सेठ से मनोकामना मांगे तो वे किस्मत बदल देते हैं, व्यापार में उन्नति कराते हैं और जीवन के संकट दूर कर देते हैं।
1: श्री सावलिया सेठ हर व्यक्ति का, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, जो अच्छी श्रद्धा से श्रद्धा भाव से भगवान के यहाँ आकर के जो कुछ मांगता है, वो श्री सावलिया सेठ सबकी मनोकामना पूरी करता है।
0: मान्यता है कि ठाकुर जी यहाँ सेठ जी के रूप में विराजमान हैं। एक बार अगर उन्हें अपने व्यापार में पार्टनर बना लिया तो बिजनेस बढ़ता ही जाता है। इसलिए खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के कई श्रद्धालुओं ने सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना रखा है। हर बार व्यापार में होने वाले मुनाफे की तय रकम वो बेहद श्रद्धा के साथ सांवलिया सेठ मंदिर में अर्पित कर देते हैं। भक्त यहाँ बाकायदा स्टाम्प और अमाउंट लिखवा कर लाते हैं। मन्नत पूरी होने पर अपनी कंपनी के लेटर हेड पर लिखकर लाखों की राशि यहाँ चढ़ावे के रूप में अर्पित कर जाते हैं।
2: भगवान सांवरिया सेठ मेवाड़ के ही नहीं अपितु पूरे देश भर में और देश के बाहर भी सांवरिया सेठ की महिमा दिनों दिन बढ़ रही है। और जैसे कि नाम से सांवरिया सेठ हैं, तो जो भी भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो भगवान को अपने आजीविका में से कामकाज में व्यापार में श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर भागीदार बनाते हैं।
0: इसी आस्था की वजह से साल दर साल श्री सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया और साथ ही बढ़ता गया यहाँ आने वाला चढ़ावा। आपको बता दें कि इसी साल केवल अप्रैल महीने में ही यहाँ 41 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि अर्पित की गई। एक महीने में ही चढ़ावे की रकम का 41 करोड़ से अधिक का आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है। यही नहीं, इस दौरान भक्तों ने अपने आराध्य को करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का सोना भी अर्पित किया, जबकि लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी भी उन्हें अर्पित की गई। इससे पहले साल 2025 में सिर्फ दिवाली के अवसर पर ही मंदिर में 51 करोड़ से ज्यादा की रकम के चढ़ावे का रिकॉर्ड है। मेवाड़ में भगवान श्री कृष्ण के श्री सांवलिया सेठ स्वरूप को व्यापार के

0: भगवान का हिस्सा चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। यही अनोखी आस्था इस मंदिर को विशिष्ट बनाती है। इसी वजह से समय के साथ मंदिर में चढ़ावे की ये राशि छोटी मोटी रकम नहीं रही बल्कि करोड़ों में पहुंच गई। आपको बता दें कि साल 91-92 में यहाँ 65 लाख रुपए की रकम दान के रूप में आई थी। यही वो साल था जब चढ़ावे का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था। ठीक एक दशक के भीतर यानी 10 साल बाद साल 2000 आते आते चढ़ावे की रकम करीब 4 करोड़ तक पहुंच गई। और इसके बाद के 5 सालों में इस रकम में और इजाफा हुआ। साल 2006 आते आते चढ़ावे की रकम बढ़कर 6 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तो वहीं साल 2010-11 में साल के चढ़ावे की रकम 22 करोड़ तक पहुंची। इसी तरह 2015-16 में मंदिर के खजाने में 51 करोड़ 36 लाख रुपए दान के रूप में आए, जबकि 2021-22 में चढ़ावे की ये रकम बढ़कर 86 करोड़ को पार कर गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 30 सालों में मंदिर का चढ़ावा 340 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इस तरह साल दर साल यहाँ चढ़ावे में बढ़ोतरी ही हो रही है। भक्त यहाँ सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में सोना चांदी भी अर्पित करते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के लिए बाकायदा खास सिस्टम बना हुआ है। मंदिर में 1992 से लेकर 2025 तक श्रद्धालुओं के सामने ही दान और चढ़ावे की रकम की काउंटिंग होती थी। पहले यहाँ आने वाले श्रद्धालु सांवलिया सेठ जी के दर्शन के साथ साथ दान की काउंटिंग भी देखते थे, लेकिन पिछले साल जुलाई के बाद से व्यवस्था में बदलाव किया गया ताकि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। नई व्यवस्था के तहत दान राशि की काउंटिंग अब सत्संग भवन में की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। हर महीने चतुर्दशी के दिन मंदिर के दान पात्र खुलते हैं। भगवान सांवलिया सेठ जी की राजभोग आरती के बाद चढ़ावे की काउंटिंग का काम शुरू होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए करीब 200 लोगों को लगाया जाता है। इनमें बैंकों के कर्मचारी और मंदिर प्रशासन के लोग शामिल होते हैं। काउंटिंग प्रक्रिया में पहले हाथों से पैसे गिने जाते हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 5 से 10 दिन का समय लगता है। सबसे पहले नोटों को और सिक्कों को अलग किया जाता है। इसके बाद 5 मशीनों से इनकी काउंटिंग होती है और अंत में चढ़ावे में आए गहनों का वजन किया जाता है। मंदिर में कैश के साथ साथ चेक, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावे की रकम आती है। विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण सांवलिया सेठ के खजाने में अब काफी विदेशी मुद्रा भी आ रही है, लिहाजा इस मंदिर की संपत्ति 1000 करोड़ के पार पहुँच चुकी है।
1: मंदिर का जो भी राशि आती, पहले तो मंदिर निर्माण में खर्च हो रही थी। मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ है, इसके बाद यहाँ की धर्मशालाएं हैं, मंदिर सांवले जी के आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, आसपास की सड़कें हैं, 16 गांव के विद्यालय हैं, यहाँ का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले में गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग हो या सांवलिया जी में हॉस्पिटल बनाना हो, और आसपास के गांवों के जितने भी विद्यालय हैं, छात्रों के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशाला बनाना, रोड बनाना और यात्रियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो भी अब खर्च होगा सारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही खर्च किया जाएगा।

इस मंदिर में भक्त केवल धन ही नहीं बल्कि अपनी मन्नतों के अनुसार अद्भुत और प्रतीकात्मक भेंट भी चढ़ाते हैं। अच्छी फसल होने पर किसान गेहूं की बालियां, लहसुन प्याज की चांदी की प्रतिकृतियां अर्पित करते हैं, तो अफीम के किसान चांदी के डोडे चढ़ाते हैं। वहीं झूठे मुकदमों से राहत मिलने पर भक्त चांदी की हथकड़ियां और बंदूकें चढ़ाते हैं, जो न्याय और मुक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। पिछले दिनों एक कारोबारी ने अपने पेट्रोल पंप के शुभारंभ की खुशी में यहाँ चांदी का फ्यूल डिस्पेंसर चढ़ाया, तो एक युवक ने अग्निवीर में चयन होने पर AK-47 की चांदी की प्रतिकृति अर्पित की। ऐसी अनोखी भेंट न केवल भगवान सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि भक्त कितनी शिद्दत से अपने

0: जीवन की हर उपलब्धि और संघर्ष को अपने आराध्य को समर्पित करते हैं।
1: अपने अपने श्रद्धा है, यात्री जो श्रद्धालु आते हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस में रखता है, कोई अपनी खेतीबाड़ी करता है उसमें भी अपना सावरे एसेट का हिस्सा रखता है, कोई नौकरी करता है या कोई मजदूरी भी करता है वो भी अब सावरे एसेट का अपना हिस्सा अलग से रखता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई 1% रखता है, कोई 5%, कोई 10%, वो कोई हमारे सामने कोई फिक्स नहीं है।
0: अनोखा है चित्तौड़गढ़ का ये कृष्ण धाम, जो आस्था, विश्वास और ईश्वर को भागीदार मानने की अनूठी परंपरा का जीवंत उदाहरण बन चुका है, जहां हर चढ़ावे की एक कहानी है, हर भेंट के पीछे अलग भावना है और उसी भाव से अर्पित चढ़ावे में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। फिलहाल मंदिर के चढ़ावे में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में श्री सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को चर्चा का केंद्र बना दिया है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मथुरा हो या द्वारका, पुरी हो या उडुपी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत भूमि के हृदय में बसे हैं श्री कृष्ण। अलग अलग रूपों में भगवान कृष्ण की पूजा देश भर में की जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के नाम से क्यों पूजे जाते हैं श्याम, इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक ऐतिहासिक गाथा है। दूर दूर से लोग साल भर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि भगवान की वही प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है जिनकी पूजा स्वयं संत मीराबाई किया करती थी।

मेवाड़ जिसकी धरा में जन्मे वीर शिरोमणि, जिसकी माटी को सींचा है शूरवीरों के रक्त ने, जहां आज भी खिलते हैं शौर्य और स्वाभिमान के फूल। शौर्य तीर्थ मेवाड़ की उसी माटी में कभी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का ऐसा बीज पड़ा था जो आज भी आस्था का विशाल वट वृक्ष बनकर चित्तौड़ की धरा पर लहला रहा है और सुना रहा है किससे, प्रेम के, भक्ति के, मीरा और उनके गिरिधर गोपाल के।

0: अनोखा धाम है चित्तौड़ का श्री सांवलिया सेठ मंदिर। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस मंदिर की बात निराली है, क्योंकि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सांवलिया सेठ के रूप में होती है। सांवलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सांवलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे सदियों पुरानी कहानी है, जो खुद में समेटे है भारत के इस भूभाग का रोचक इतिहास। असल में भगवान सांवलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा सहित चार मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई। दरअसल संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई वर्षों तक वहीं दबी रही। 1840 में मंडफिया गांव के एक नौजवान भोला राम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गईं। सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के निर्देशन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित कर दिया गया, जबकि तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोला राम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित कर लिया, और चौथी मूर्ति खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और इसी स्थान पर उसे वापस दबा दिया गया।
1: ठाकुर जी की स्थापना का 200 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, महिमा तब से ही चली आ रही है। आज 200 वर्षों से पहले ठाकुर जी भक्ति से उत्पन्न हुए थे, यहाँ पे सात की मूर्ति, तो अब तो पुजारी परिवार के वंशज थे और उनके ऊपर एक भोलेराम जी थे, तो उनके जो स्वप्न में आए थे और उनके साथ में स्थापना हुई 200 वर्षों से। चमत्कार के रूप में देखा जाए तो सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, लोग यहाँ पार्टनरशिप साझेदारी उसके लिए भी ठाकुर जी विख्यात है।
0: यहीं से शुरू हुई सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक रूप से पूजा। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों सहित तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सांवलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी कहानी अनोखी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहाँ आकर सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे भागों के व्यापारी भी यहाँ आकर सांवलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती के रूप में कभी शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान किया करते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपनी दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सांवलिया सेठ के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सांवलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आकर लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। शौर्य तीर्थ मेवाड़ में शान से खड़ा ये मंदिर आज भी जिंदा रखे है मीराबाई और उनके गिरिधर गोपाल की आस्था में पगी कहानियों को, और उन्हीं कहानियों की डोर थामे इस दिव्य धाम को देखने दुनिया भर के भक्त यहां आते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: सोचो जहां जहां तक भी नजर जाए सिर्फ चमचमाती बर्फ की चादर हो, तापमान शून्य से नीचे हो, क्या ऐसी जगह है पर दौड़ना संभव है। भले ही आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, आपको ये भी लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे जुनूनी लोगों की कमी नहीं है जो बर्फीले महासागर पर आयोजित मैराथन में हिस्सा लेते हैं। आपको दिखाते हैं।
6: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के समंदर में खड़ा जहाज, एक एक का जहाज से उतरते प्रतिभागी, माइनस डिग्री में तापमान, चारों तरफ जमा देने वाली बर्फीली हवाएं। नॉर्थ पोल पर कुछ ऐसा ही नजारा था जब दुनिया की सबसे अनोखी नॉर्थ पोल मैराथन का आगाज हुआ। ले कमांडर शार्को जहाज पर सवार होकर 7 देशों के 22 जांबाज एथलीट नॉर्थ पोल मैराथन में शामिल होने पहुंचे। आलम यह था कि मैराथन का ट्रैक भी तैरती बर्फ की परत पर तैयार किया गया। ट्रैक 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा तैयार किया गया, जहां प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए पोलर बियर पेट्रोलिंग टीम भी तैनात रही ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे ये कोई आम मैराथन नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जहां सड़क नहीं बल्कि तैरती हुई बर्फ की चादर ट्रैक बनती है और कुछ ही घंटों बाद वही ट्रैक आर्कटिक महासागर में गायब हो जाता है। यहाँ तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, इसलिए धावकों को लाइफ जैकेट और थर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य था और मैराथन पूरी करने के लिए उन्हें इस ट्रैक के 40 चक्कर लगाने पड़े। इस अनोखी मैराथन में चीन के शंगशियान वांग ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, वही महिलाओं के वर्ग में डेनमार्क की रिक्के डैम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी अपने नाम की। कुल मिलाकर बर्फ, उबर खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और हर कदम पर चुनौती, लेकिन इन धावकों ने साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो दुनिया का आखिरी छोर भी मंजिल बनने से नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू। स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज। सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ। अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा। मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान। नगद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ। जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता। खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। वायरल वीडियो की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो, जहां बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया, महिला उसमें गिर गई। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, एक वकील और पुलिस कर्मी के बीच सड़क पर हो रही हाथापाई का ये पूरा वीडियो। दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
10: देश की सर्वोच्च अदालत में 10 जून को एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। प्रबल प्रताप नाम के एक याचिकाकर्ता ने बेंच को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। प्रताप ने अपनी फाइल हवा में उछाली और भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहे। अब एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में बवाल किया था। वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि वकील प्रबल प्रताप का वीडियो सामने आया है। वकील साहब एक पुलिस अधिकारी से मारपीट कर रहे हैं, जैसे गली मोहल्ले के लोकल गुंडे करते हैं। पुलिस अधिकारी को बीच चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारना कहां तक उचित है? कानून की पढ़ाई करने वाले ही कानून का उल्लंघन और शर्मसार करने वाली हरकत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था, और वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमने काला कोट पहने हुए शख्स के चेहरे को जूम के देखा। जब हमने इसे गौर से देखा तो यह साफ हो गया कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इन दो तस्वीरों को देख सकते हैं। एक तरफ वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाले व्यक्ति प्रबल प्रताप की तस्वीर है। वायरल वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसके बाल बड़े हैं और वो क्लीन शेवन है, जबकि प्रबल प्रताप की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें उसकी दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई हैं जबकि बाल छोटे हैं। मतलब ये है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई और है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए हर जगह पर सर्च भी किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करते कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई में ये सच होता तो फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहे शख्स की पहचान क्या है। देखिए रिपोर्ट।
10: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित तमाम न्यूज रिपोर्ट मिल गई। 11 जुलाई की एक वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां सिविल लाइन्स कचहरी के बाहर दो पुलिस वाले और एक वकील आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट के दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस में वकील का चेहरा साफ नजर आता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये प्रबल प्रताप नहीं बल्कि कोई और शख्स है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई और प्राथमिक जांच के बाद एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। एसीपी आनंद ओझा ने बताया कि दोनों पुलिस वालों में से एक काफी समय से निलंबित है और गैर हाजिर चल रहा है, वहीं दूसरे कांस्टेबल को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो यूपी के कानपुर का है, जो वकील और पुलिस वालों के बीच हुए झगड़े को दिखाता है। इसमें दिख रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 9 जुलाई को हुई जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। अब इसी से जोड़ते हुए जलभराव में एक महिला के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो है, जहां पर बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया और महिला उसमें गिर गई। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
10: नोएडा में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद सेक्टर 58 में एक बेहद दुखद हादसा हुआ था, जहां जलभराव के कारण खुले पड़े एक नाले में गिरकर 27 वर्षीय युवक आर्यन की मौत हो गई थी। अब इसी संदर्भ में जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल जाती है। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के नोएडा का बताकर शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बारिश में नोएडा की सड़कों पर ध्यान से चले। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक से सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल आती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि 9 जुलाई का ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में लड़की के पानी में गिरते ही कंक्रीट या फिर लोहे से बना भारी भरकम ढक्कन किसी हल्के प्लास्टिक या थर्मोकोल के टुकड़े की तरह पानी की सतह पर तैरने लगता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब युवती गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो हवा में ही हाथ घुमाकर किसी अदृश्य वस्तु को उठाती हुई नजर आ रही है, जबकि वहां वास्तव में कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये सब सामने आने के बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
10: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस वीडियो को नोएडा का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने पाया कि महिला के चलने और गिरने का तरीका काफी अटपटा है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 98.9% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिरती लड़की के वायरल वीडियो को हमने ट्रुथ स्कैन पर भी जांचा। इस टूल ने 75% स्कोर के साथ वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के साथ संभावित AI जनरेटेड बताया। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले और फिर इन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। चैनल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी जांच से साफ हो गया कि जलभराव में गिरती हुई महिला का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। AI से बने वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का वीडियो है। वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
10: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून को 1 मिनट के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। इसमें सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गई। भूकंप से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। अब इसी भूकंप से जोड़कर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंगों को आपस में टकरा कर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला बहुमंजिला इमारत नहीं जैसे तेज रफ्तार ट्रेन का डब्बा हो।
11: इतने ताकतवर भूकंप की मार कितनी देर झेलती, दोनों औंधे मुंह गिरी, लोग क्या पता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इसे लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि 24 जून 2026 को 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने पूरे वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया था। राजधानी कराकास और उसके आसपास की सड़कें, इमारतें ढहकर कंक्रीट और स्टील के मलबे में तब्दील हो गई। कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे दब गए, लेकिन यह वीडियो उसी भूकंप के दौरान का है, यह जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर दोनों इमारतों के टकराने पर इनकी खिड़कियों का आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा दोनों इमारतें एक ब्लॉक की तरह ही गिर रही हैं, न कि बिखर कर रही हैं या टूट रही हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो को सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें कहीं भी वायरल वीडियो से जुड़ी खबरें नहीं मिली। इसके बाद हमने वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। इसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों इमारतों के हिलने और टकराने के बावजूद उनमें मौजूद खिड़कियों की दशा में कोई बदलाव नहीं होता है, इनकी आकृतियों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें इस वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। इसलिए हमने सबसे पहले AI डिटेक्टर टूल detectvideo.ai की मदद ली। वायरल वीडियो को स्कैन करने पर इस टूल के नतीजों ने इसके AI के बने होने की 73% संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को एक और AI डिटेक्टर टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस में वीडियो के 97.8% AI से बने होने की संभावना की पुष्टि हुई। इसी तरह साइट इंजन के एनालिसिस ने भी वायरल वीडियो के 99% AI से बने होने की पुष्टि की। इस तरह हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। वेनेजुएला में भूकंप के नाम पर इमारतों के टकरा कर गिरने का वायरल वीडियो फेक है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं। भूल जाइए बुरी खबरें, देखिए सिर्फ अच्छी और सच्ची खबरें। जुड़िए GNT व्हाट्सएप चैनल के साथ।
2: जुड़ने के लिए अपने फोन में व्हाट्सएप खोलें, अपडेट्स में जाकर प्लस बटन पर टैप करें, फाइंड चैनल में जाकर गुड न्यूज टुडे टाइप करें, ज्वाइन करने के लिए फॉलो बटन पर टैप करें।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: दो छोटे बच्चों का अपने पिता की शादी की पुरानी बारात का वीडियो देखकर किया गया मासूम डांस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में दो छोटे भाई बहन अपने कमरे में पूरी मस्ती के साथ डांस करते दिखाई देते हैं। दोनों को देखकर साफ महसूस होता है कि वो किसी बात की चिंता किए बगैर सिर्फ उस पल का आनंद ले रहे हैं। छोटी बच्ची के हाथ में एक गिलास और चम्मच है, वो उन्हें किसी संगीत वाद्य यंत्र की तरह बजा रही है और अपने ही अंदाज में ताल बना रही है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई भी पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहा है। दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान और बेफिक्र अंदाज देख किसी का भी दिल खुश हो जाए। पहले तो ऐसा लगता है शायद टीवी पर कोई फिल्मी गाना या बच्चों का पसंदीदा डांस वीडियो चल रहा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद असली बात पता चलती है। टीवी स्क्रीन पर उनके पापा की शादी का पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें बैंड बाजे के साथ बारात निकल रही है और शादी का पूरा माहौल नजर आ रहा है। बच्चे उसी वीडियो को देख ऐसे झूम रहे हैं जैसे वो खुद उस बारात का हिस्सा हों।

सबसे दिलचस्प बात यह कि दोनों बच्चों को शायद ये भी पूरी तरह समझ नहीं होगा कि स्क्रीन पर जो शादी दिख रही है वो उनके अपने पापा की है। फिर भी बैंड की धुन और बारात का माहौल उन्हें इतना रास आता है कि वो खुद को नाचने से रोक नहीं पाते।

गाजियाबाद की टीचर चांदनी भाटी अपने अनोखे टीचिंग स्टाइल से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वो बच्चों को डांस, गाने और मजेदार एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाती हैं, जिससे पढ़ाई आसान और रोचक बन जाती है। उनके वायरल वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं और लाखों लोग उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। चांदनी के क्लास में बच्चे सिर्फ कुर्सी पर बैठकर किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि डांस, एक्टिंग और मजेदार एक्सप्रेशन के जरिए नई नई चीजें सीखते हैं। यही वजह है कि उनके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में किसी बड़े स्टंटमैन या प्रोफेशनल खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक पिता और उसकी दो छोटी बेटियों का शानदार तालमेल नजर आता है। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उनकी मेहनत और अभ्यास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने घर के अंदर अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आता है। ऐसा लगता है वो काफी समय से उन्हें किसी खास तरह की ट्रेनिंग दे रहा है।

सबसे पहले वो एक टेबल पर एक बाल्टी को उल्टा रखता है। इसके बाद बाल्टी के ऊपर दो प्लास्टिक की बॉटल खड़ी कर देता है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो वो कुछ कदम पीछे हटता है और फिर एकदम सटीक निशाने के साथ दोनों बॉटल्स को एक ही किक में गिरा देता है। उसका बैलेंस और टाइमिंग देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इस कला का काफी अभ्यास किया है। इसके बाद वो चुनौती को थोड़ा और मुश्किल बना देता है। इस बार बाल्टी के ऊपर दो नहीं बल्कि तीन बॉटल रखी जाती हैं। फिर वो उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अपनी किक से तीनों बॉटल्स को एक साथ नीचे गिरा देता है। ये देख उसकी दोनों बेटियां भी काफी उत्साहित नजर आती हैं। अब बारी आती है उन दोनों बच्चियों की, तो पिता उन्हें भी वही स्टंट दोहराने के लिए कहता है। पहले एक बेटी आगे आती है और कुछ पल अपने निशाने पर ध्यान देती है, फिर बिल्कुल अपने पिता की तरह किक मारकर बॉटल्स को गिरा देती है। उसके बाद दूसरी बेटी भी अपनी बारी में वही कमाल करके दिखाती है। दोनों बच्चियों का आत्मविश्वास, संतुलन और सटीक निशाना देख ये साफ समझ आता है कि उन्होंने नियमित अभ्यास किया है। यही बात इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क पर पंचर साइकिल के साथ परेशान खड़ी एक छोटी बच्ची की मदद के लिए पुलिसकर्मी ने जो किया उसे देख हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज धूप में छोटी बच्ची अपनी पंचर साइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ी थी, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी वहां से गुजर रही पुलिसकर्मी संतोष सरोज की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और उससे बात की। पहले उन्होंने उसे पानी पिलाया, फिर खुद अपनी बाइक पर बैठाकर पंचर की दुकान से उसकी साइकिल बनवाई।

साइकिल जब ठीक हो गई तो बच्ची ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पुलिसकर्मी को देने की कोशिश की। संतोष सरोज ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बच्ची से कहा, तुमने मुझे भैया बोला है तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा। ये चंद शब्दों की बात नहीं थी, ये एक रक्षक के भाव थे। उस पुलिसकर्मी ने न केवल एक पंचर ठीक किया बल्कि उस बच्ची के चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जिसे वो शायद उम्र भर याद रखेगी। इंसानियत से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे लाखों लोग देख चुके हैं और जमकर सराह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है। इसी दौरान एक महिला अपनी स्कूटी के साथ बीच सड़क पर फंसी हुई दिखाई देती है। पहली नजर में लगता है कि शायद स्कूटी बंद हो गई है, लेकिन जब सौरभ नाम का शख्स उसके पास पहुंचकर बात करता है तो पूरी स्थिति सामने आती है। महिला बताती है कि उसका पैर स्कूटी में कहीं बुरी तरह फंस गया है, इसी वजह से वो ना तो स्कूटी से उतर पा रही थी और ना ही उसे आगे बढ़ा पा रही थी। पानी से भरी सड़क के बीच खड़े रहना उसके लिए काफी परेशानी भरा हो गया था। महिला की बात सुनते ही सौरभ ने बगैर समय गंवाए अपनी बाइक एक तरफ खड़ी कर दी। उन्होंने सबसे पहले महिला को घबराने से मना किया और भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने ध्यान से देखा कि आखिर पैर किस जगह फंसा है। काफी सावधानी के साथ उन्होंने इस हिस्से को हटाया जिसकी वजह से महिला का पैर अटक गया था। कुछ ही देर की कोशिश के बाद महिला का पैर बाहर निकल गया और उसे राहत मिली। इसके बाद भी सौरभ वहीं नहीं रुके, उन्होंने महिला से पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और वो ठीक महसूस कर रही है या नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि महिला सुरक्षित है तब उन्होंने स्कूटी को भी सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर खड़ा करने में मदद की। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

0: सोशल मीडिया पर ये इमोशनल वीडियो खूब वायरल है। वीडियो में रात के समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक जवान अपने परिवार से विदा ले रहा है। जवान सिविल ड्रेस में नजर आता है और ट्रेन में सवार होने से पहले अपनी छोटी बेटी को गले लगाता है। बेटी अपने पिता से अलग होने को तैयार नहीं होती। वो उन्हें जाता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है, लेकिन मासूम बेटी लगातार अपने पिता की तरफ हाथ बढ़ाती रहती है। उसकी माँ उसे संभालने और पीछे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेटी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये पूरी तस्वीर इतनी भावुक है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाती है।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: बात यूरोप की करेंगे, जहां पर इन दिनों गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। ग्रीस में मौसम ने ऐसे तेवर दिखाए कि पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालात ऐसे हैं कि लोग धूप से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
5: ये धुंध नहीं बल्कि गर्मी से राहत की उम्मीद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सूरज की तपश बढ़ी है, ऐसे में हर शख्स ठंडी हवा, पानी की फुहार और छांव की तलाश में नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स में मिस्ट फैन चल रहे हैं, तो शहर के फव्वारे लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गए हैं। ग्रीस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, ऐसे में कोई पानी की बोतल से खुद को हाइड्रेट रख रहा है, तो कोई बैग और छाते को ही धूप से बचने की ढाल बना चुका है। गर्म हवाओं के बीच भी ग्रीस का इतिहास जानने आए सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि गर्मी चाहे जितनी हो, ग्रीस के एथेंस की रौनक अभी भी बरकरार है। रेस्टोरेंट से लेकर चौक चौराहों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। पर्यटकों को गर्मी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब जरा इस रेस्टोरेंट का नजारा देखिए, किस कदर यहाँ मिस्ट फैन लगातार लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। इसलिए तो दुनिया भर से आए पर्यटक गर्मी में भी एथेंस की प्राचीन विरासत का दीदार कर रहे हैं। रोमन अगोरा जैसी प्राचीन धरोहरों पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी पेड़ों की छांव और छातों के नीचे अपना काम मुस्तैदी से करते दिखे। ग्रीस में हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर में एयर कंडीशनड राहत केंद्र खोले गए हैं, इसके साथ ही लोगों को हाइड्रेटेड रहने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: कि भाग्य
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू। स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज। सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा। मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नगद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता। खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस छप्पड़ फाड़ चढ़ावे की जो दिया गया है उनके द्वार पर, जो खुद दुनिया को सब कुछ देते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भगवान के खजाने में जमकर धन बरसा है। एक महीने के भीतर भक्तों ने भगवान के दर पर इतना चढ़ावा अर्पित किया कि ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई। आपको ये बता दें कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण के सांवलिया सेठ स्वरूप की पूजा की जाती है। सांवलिया सेठ को श्रद्धालु अपने कारोबार का साझेदार मानते हैं और अपने व्यापार के हानि लाभ का भागीदार मानकर ना केवल उनकी पूजा करते हैं बल्कि अपने मुनाफे का भाग भी उन्हें अर्पित कर देते हैं। भगवान को भक्त ना केवल कैश बल्कि सोने चांदी और दूसरे रूपों में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं और यही वजह है कि साल दर साल भगवान श्री सांवलिया सेठ जी का खजाना भरता ही जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं आपकी बार सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने कितना और क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया है।

0: जिसे पाया उन्हीं को दिया, भेजने वाले भी वो और पाने वाले भी वो। यूं तो भक्त और भगवान के बीच भाव के सिवा किसी और पूंजी का कोई मोल नहीं, लेकिन फिर भी आस्था में अभिभूत भक्त अपने आराध्य के दर पर खाली हाथ कहा जाते हैं। और फिर सावलिया जी को तो भक्त बेहद प्यार और मनुहार से बुलाते ही हैं। सावलिया सेठ वो दाता जो हमेशा भक्तों की झोली भरते हैं। सो अब की बार आस्थावान भक्तों ने उन्हीं सेठ के मंदिर का खजाना भर दिया है। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ धाम में हमेशा की तरह ही इस बार भी भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाया है। एक महीने में भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 38 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया है, जिसमें 29 करोड़ 77 लाख रुपए के करीब नकद राशि दान पेटी से निकली है, जबकि लगभग 8 करोड़ 45 लाख रुपए मनी ऑर्डर के जरिए और ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भक्तों ने सावलिया सेठ के दरबार में 1 किलो 48 ग्राम सोना और 103 किलो 497 ग्राम चांदी भी अर्पित की है। चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी, उसके बाद से 7 चरण में गणना का काम पूरा हुआ है।
1: 7 चक्रों में गणना हुई है 7 दिन तक लगातार, उसमें 38 करोड़ 23 लाख 13 हजार रुपया और 1 क्विंटल 3 किलो चांदी और 1 किलो 147 ग्राम सोना, 1 किलो 148 ग्राम और कुछ मिलीग्राम सोना है। ये भेंट कक्ष और भंडार दोनों से को मिला करके ये दान राशि प्राप्त हुई है।
0: सोने के आभूषणों के अलावा सावरिया सेठ को एक श्रद्धालु ने 20 लाख रुपए की सोने की बांसुरी भी अर्पित की है। आपको बता दें कि पिछले साल भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 337 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। 34 साल पहले सावलिया सेठ मंदिर के ट्रस्ट का गठन हुआ था, उसके बाद से यानी पिछले 34 सालों से चढ़ावे की रकम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और पिछले 34 साल में ये एक साल में आए चढ़ावे का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि बीते लगभग 4 दशक में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मंदिर के चढ़ावे में कमी आई हो। हर साल चढ़ावे की रकम बढ़ती ही जा रही है, खास तौर पर पिछले 5 सालों में यहां पर चढ़ावे और दान की रकम का आंकड़ा करोड़ों से बढ़कर अरबों में दर्ज किया गया है। साल 2021-22 में यहां 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा अर्पित किया गया, तो वहीं साल 2022-23 में ये रकम बढ़कर 130 करोड़ 51 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह साल 2023-24 में चढ़ावे का आंकड़ा 166 करोड़ 65 लाख रुपए तक रहा, तो वहीं 2024-25 यानी पिछले साल इस मंदिर में 235 करोड़ 96 लाख की रकम चढ़ावे के रूप में आई, और इस साल यही रकम बढ़कर 337 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
1: मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि सावलिया जी नगरी में जन्म लिया और मैं बड़ा हुआ हूं। जब मैं रुपए पैसे में समझने लगा उस समय 1000 रुपए पूरे नहीं निकलते थे, और हर बार जब 1000 कम थे 900 थे वो 1000 हुए, 1000 से 10000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, और आज करोड़ों में रुपया भंडार से निकलता है। तो भंडार सावलिया सेठ का हमेशा बड़ा ही है, घटा कभी नहीं है। सावलिया सेठ के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घटी जात, पर हमने घटता हुआ देखा नहीं, हमेशा बढ़ता हुआ ही देखा है।
0: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये भगवान श्री कृष्ण का अनोखा धाम है, जहां आकर न केवल बिगड़े काम बन जाते हैं बल्कि कारोबार भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से सावलिया सेठ से मनोकामना मांगे तो वे किस्मत बदल देते हैं, व्यापार में उन्नति कराते हैं और जीवन के संकट दूर कर देते हैं।
1: श्री सावलिया सेठ हर व्यक्ति का, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, जो अच्छी श्रद्धा से, श्रद्धा भाव से भगवान के यहाँ आकर के जो कुछ मांगता है वो श्री सावलिया सेठ सबकी मनोकामना पूरी करता है।
0: मान्यता है कि ठाकुर जी यहाँ सेठ जी के रूप में विराजमान हैं। एक बार अगर उन्हें अपने व्यापार में पार्टनर बना लिया तो बिजनेस बढ़ता ही जाता है। इसलिए खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के कई श्रद्धालुओं ने सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना रखा है। हर बार व्यापार में होने वाले मुनाफे की तय रकम वो बेहद श्रद्धा के साथ सांवलिया सेठ मंदिर में अर्पित कर देते हैं। भक्त यहाँ बाकायदा स्टाम्प और अमाउंट लिखवा कर लाते हैं। मन्नत पूरी होने पर अपनी कंपनी के लेटर हेड पर लिखकर लाखों की राशि यहाँ चढ़ावे के रूप में अर्पित कर जाते हैं।
2: भगवान सांवरिया सेठ मेवाड़ के ही नहीं अपितु पूरे देश भर में और देश के बाहर भी सांवरिया सेठ की महिमा दिनों दिन बढ़ रही है। और जैसे कि नाम से सांवरिया सेठ हैं, तो जो भी भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो भगवान को अपने आजीविका में से कामकाज में व्यापार में श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर भागीदार बनाते हैं।
0: इसी आस्था की वजह से साल दर साल श्री सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया और साथ ही बढ़ता गया यहाँ आने वाला चढ़ावा। आपको बता दें कि इसी साल केवल अप्रैल महीने में ही यहाँ 41 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि अर्पित की गई। एक महीने में ही चढ़ावे की रकम का 41 करोड़ से अधिक का आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है। यही नहीं, इस दौरान भक्तों ने अपने आराध्य को करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का सोना भी अर्पित किया, जबकि लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी भी उन्हें अर्पित की गई। इससे पहले साल 2025 में सिर्फ दिवाली के अवसर पर ही मंदिर में 51 करोड़ से ज्यादा की रकम के चढ़ावे का रिकॉर्ड है। मेवाड़ में भगवान श्री कृष्ण के श्री सांवलिया सेठ स्वरूप को व्यापार के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त अपने व्यवसाय में सांवलिया सेठ को साझेदार बनाता है उसे कभी घाटा नहीं होता। यही वजह है कि किसान से लेकर बड़े उद्योगपति तक अपने व्यापार में मुनाफे का 10% से लेकर 50% तक का हिस्सा भगवान को समर्पित करते हैं।
1: अभी लगभग 1000 करोड़ के आसपास बैंकों में और इनमें संपत्ति मिला करके, संपत्ति तो और अलग से है पर इतना लगभग
0: है। मुनाफा होने पर मंदिर में आकर भगवान का हिस्सा चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। यही अनोखी आस्था इस मंदिर को विशिष्ट बनाती है। इसी वजह से समय के साथ मंदिर में चढ़ावे की ये राशि छोटी मोटी रकम नहीं रही बल्कि करोड़ों में पहुँच गयी।

0: रकम दान के रूप में आई थी। यही वो साल था जब चढ़ावे का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था। ठीक एक दशक के भीतर यानी 10 साल बाद साल 2000 आते आते चढ़ावे की रकम करीब 4 करोड़ तक पहुंच गई। और इसके बाद के 5 सालों में इस रकम में और इजाफा हुआ। साल 2006 आते आते चढ़ावे की रकम बढ़कर 6 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तो वहीं साल 2010-11 में साल के चढ़ावे की रकम 22 करोड़ तक पहुंची। इसी तरह 2015-16 में मंदिर के खजाने में 51 करोड़ 36 लाख रुपए दान के रूप में आए, जबकि 2021-22 में चढ़ावे की ये रकम बढ़कर 86 करोड़ को पार कर गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 30 सालों में मंदिर का चढ़ावा 340 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इस तरह साल दर साल यहाँ चढ़ावे में बढ़ोतरी ही हो रही है। भक्त यहाँ सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में सोना चांदी भी अर्पित करते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के लिए बाकायदा खास सिस्टम बना हुआ है। मंदिर में 1992 से लेकर 2025 तक श्रद्धालुओं के सामने ही दान और चढ़ावे की रकम की काउंटिंग होती थी। पहले यहाँ आने वाले श्रद्धालु सांवलिया सेठ जी के दर्शन के साथ साथ दान की काउंटिंग भी देखते थे, लेकिन पिछले साल जुलाई के बाद से व्यवस्था में बदलाव किया गया ताकि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। नई व्यवस्था के तहत दान राशि की काउंटिंग अब सत्संग भवन में की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। हर महीने चतुर्दशी के दिन मंदिर के दान पात्र खुलते हैं। भगवान सांवलिया सेठ जी की राजभोग आरती के बाद चढ़ावे की काउंटिंग का काम शुरू होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए करीब 200 लोगों को लगाया जाता है। इनमें बैंकों के कर्मचारी और मंदिर प्रशासन के लोग शामिल होते हैं। काउंटिंग प्रक्रिया में पहले हाथों से पैसे गिने जाते हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 5 से 10 दिन का समय लगता है। सबसे पहले नोटों को और सिक्कों को अलग किया जाता है। इसके बाद 5 मशीनों से इनकी काउंटिंग होती है और अंत में चढ़ावे में आए गहनों का वजन किया जाता है। मंदिर में कैश के साथ साथ चेक, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावे की रकम आती है। विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण सांवलिया सेठ के खजाने में अब काफी विदेशी मुद्रा भी आ रही है, लिहाजा इस मंदिर की संपत्ति 1000 करोड़ के पार पहुँच चुकी है।
1: मंदिर का जो भी राशि आती, पहले तो मंदिर निर्माण में खर्च हो रही थी। मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ है, इसके बाद यहाँ की धर्मशालाएं हैं, मंदिर सांवलिया जी के आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, आसपास की सड़कें हैं, 16 गांव के विद्यालय हैं, यहाँ का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले में गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग हो या सांवलिया जी में हॉस्पिटल बनाना हो, और आसपास के गांवों के जितने भी विद्यालय हैं, छात्रों के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशाला बनाना, रोड बनाना और यात्रियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो भी अब खर्च होगा सारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही खर्च किया जाएगा।

0: इस मंदिर में भक्त केवल धन ही नहीं बल्कि अपनी मन्नतों के अनुसार अद्भुत और प्रतीकात्मक भेंट भी चढ़ाते हैं। अच्छी फसल होने पर किसान गेहूं की बालियां, लहसुन प्याज की चांदी की प्रतिकृतियां अर्पित करते हैं, तो अफीम के किसान चांदी के डोडे चढ़ाते हैं। वहीं झूठे मुकदमों से राहत मिलने पर भक्त चांदी की हथकड़ियां और बंदूकें चढ़ाते हैं, जो न्याय और मुक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। पिछले दिनों एक कारोबारी ने अपने पेट्रोल पंप के शुभारंभ की खुशी में यहाँ चांदी का फ्यूल डिस्पेंसर चढ़ाया, तो एक युवक ने अग्निवीर में चयन होने पर AK-47 की चांदी की प्रतिकृति अर्पित की। ऐसी अनोखी भेंट न केवल भगवान सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि भक्त कितनी शिद्दत से अपने जीवन की हर उपलब्धि और संघर्ष को अपने आराध्य को समर्पित करते हैं।
1: अपने अपने श्रद्धा है, यात्री जो श्रद्धालु आते हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस में रखता है, कोई अपनी खेतीबाड़ी करता है उसमें भी अप,

0: अपना सावरे एसेट का हिस्सा रखता है, कोई नौकरी करता है या कोई मजदूरी भी करता है वो भी अब सावरे एसेट का अपना हिस्सा अलग से रखता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई 1% रखता है, कोई 5%, कोई 10%, वो कोई हमारे सामने कोई फिक्स नहीं है।
1: अनोखा है चित्तौड़गढ़ का ये कृष्ण धाम, जो आस्था, विश्वास और ईश्वर को भागीदार मानने की अनूठी परंपरा का जीवंत उदाहरण बन चुका है, जहां हर चढ़ावे की एक कहानी है, हर भेंट के पीछे अलग भावना है और उसी भाव से अर्पित चढ़ावे में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। फिलहाल मंदिर के चढ़ावे में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में श्री सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को चर्चा का केंद्र बना दिया है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मथुरा हो या द्वारका, पुरी हो या उडुपी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत भूमि के हृदय में बसे हैं श्री कृष्ण। अलग अलग रूपों में भगवान कृष्ण की पूजा देश भर में की जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के नाम से क्यों पूजे जाते हैं श्याम, इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक ऐतिहासिक गाथा है। दूर दूर से लोग साल भर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि भगवान की वही प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है जिनकी पूजा स्वयं संत मीराबाई किया करती थी।

मेवाड़ जिसकी धरा में जन्मे वीर शिरोमणि, जिसकी माटी को सींचा है शूरवीरों के रक्त ने, जहां आज भी खिलते हैं शौर्य और स्वाभिमान के फूल। शौर्य तीर्थ मेवाड़ की उसी माटी में कभी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का ऐसा बीज पड़ा था जो आज भी आस्था का विशाल वट वृक्ष बनकर चित्तौड़ की धरा पर लहला रहा है और सुना रहा है किस्से प्रेम के, भक्ति के, मीरा और उनके गिरिधर गोपाल के।

0: अनोखा धाम है चित्तौड़ का श्री सांवलिया सेठ मंदिर। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस मंदिर की बात निराली है, क्योंकि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सांवलिया सेठ के रूप में होती है। सांवलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सांवलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे सदियों पुरानी कहानी है, जो खुद में समेटे है भारत के इस भूभाग का रोचक इतिहास। असल में भगवान सांवलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा सहित चार मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई। दरअसल संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई वर्षों तक वहीं दबी रही। 1840 में मंडफिया गांव के एक नौजवान भोला राम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गईं। सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के निर्देशन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित कर दिया गया, जबकि तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोला राम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित कर लिया, और चौथी मूर्ति खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और इसी स्थान पर उसे वापस दबा दिया गया।
1: ठाकुर जी की स्थापना का 200 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, महिमा कब से ही चली आ रही है। लाख 200 वर्षों से पहले ठाकुर जी कौती से उत्पन्न हुए थे, यहाँ पे 7 की बड़ी थी, तो अब तो पुजारी परिवार के वंशज थे और उनके ऊपर एक भोलेराम जी थे, उनके जो सपना में आए थे और उनके साथ में स्थापना हुई 200 वर्षों से। चमत्कार के रूप में देखा जाए तो सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, लोग यहाँ पार्टनरशिप साझेदारी उसके लिए भी ठाकुर जी विख्यात है।
0: यहीं से शुरू हुई सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक रूप से पूजा। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों सहित तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सांवलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी कहानी अनोखी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहाँ आकर सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे भागों के व्यापारी भी यहाँ आकर सांवलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती के रूप में कभी शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान किया करते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपनी दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सांवलिया सेठ के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सांवलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आकर लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। शौर्य तीर्थ मेवाड़ में शान से खड़ा ये मंदिर आज भी जिंदा रखे है मीराबाई और उनके गिरिधर गोपाल की आस्था में पगी कहानियों को, और उन्हीं कहानियों की डोर थामे इस दिव्य धाम को देखने दुनिया भर के भक्त यहां आते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
3: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
4: Where did you see all this?
3: Online at apge.com.
4: Watson, you're always so plugged in.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सोचो जहां जहां तक भी नजर जाए सिर्फ चमचमाती बर्फ की चादर हो, तापमान शून्य से नीचे हो, क्या ऐसी जगह है पर दौड़ना संभव है। भले ही आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, आपको ये भी लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे जुनूनी लोगों की कमी नहीं है जो बर्फीले महासागर पर आयोजित मैराथन में हिस्सा लेते हैं। आपको दिखाते हैं।
7: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के समंदर में खड़ा जहाज, एक एक कर जहाज से उतरते प्रतिभागी, माइनस डिग्री में तापमान, चारों तरफ जमा देने वाली बर्फीली हवाएं। नॉर्थ पोल पर कुछ ऐसा ही नजारा था जब दुनिया की सबसे अनोखी नॉर्थ पोल मैराथन का आगाज हुआ। ले कमांडर शार्को जहाज पर सवार होकर 7 देशों के 22 जांबाज एथलीट नॉर्थ पोल मैराथन में शामिल होने पहुंचे। आलम यह था कि मैराथन का ट्रैक भी तैरती बर्फ की परत पर तैयार किया गया। ट्रैक 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा तैयार किया गया, जहां प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए पोलर बियर पेट्रोलिंग टीम भी तैनात रही ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे ये कोई आम मैराथन नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जहां सड़क नहीं बल्कि तैरती हुई बर्फ की चादर ट्रैक बनती है और कुछ ही घंटों बाद वही ट्रैक आर्कटिक महासागर में गायब हो जाता है। यहाँ तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, इसलिए धावकों को लाइफ जैकेट और थर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य था और मैराथन पूरी करने के लिए उन्हें इस ट्रैक के 40 चक्कर लगाने पड़े। इस अनोखे मैराथन में चीन के शंगशियान वांग ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, वही महिलाओं के वर्ग में डेनमार्क की रिक्के डैम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी अपने नाम की। कुल मिलाकर बर्फ, उबर खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और हर कदम पर चुनौती, लेकिन इन धावकों ने साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो दुनिया का आखिरी छोर भी मंजिल बनने से नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: क्या नवमांस कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांस कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांस कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांस कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, बल्कि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। वायरल वीडियो की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो, जहां बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया, महिला उसमें गिर गई, क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, एक वकील और पुलिस कर्मी के बीच सड़क पर हो रही हाथापाई का ये पूरा वीडियो। दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
12: देश की सर्वोच्च अदालत में 10 जून को एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। प्रबल प्रताप नाम के एक याचिकाकर्ता ने बेंच को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। प्रताप ने अपनी फाइल हवा में उछाली और भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहे। अब एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में बवाल किया था। वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि वकील प्रबल प्रताप का वीडियो सामने आया है। वकील साहब एक पुलिस अधिकारी से मारपीट कर रहे हैं जैसे गली मोहल्ले के लोकल गुंडे करते हैं। पुलिस अधिकारी को बीच चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारना कहां तक उचित है? कानून की पढ़ाई करने वाले ही कानून का उल्लंघन और शर्मसार करने वाली हरकत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल एक पुलिस वाले और वकील के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ मारपीट कर रहा शख्स वही प्रबल प्रताप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हंगामा किया था और वीडियो में एक पुलिसकर्मी और वकील आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमने काला कोट पहने हुए शख्स के चेहरे को जूम करके देखा। जब हमने इसे गौर से देखा तो ये साफ हो गया कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इन दो तस्वीरों को देख सकते हैं। एक तरफ वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाले व्यक्ति प्रबल प्रताप की तस्वीर है। वायरल वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसके बाल बड़े हैं और वो क्लीन शेवन है, जबकि प्रबल प्रताप की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें उसकी दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई हैं जबकि बाल छोटे हैं। मतलब ये है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई और है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए हर जगह पर सर्च भी किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करते कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई में ये सच होता तो फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहे शख्स की पहचान क्या है। देखिए रिपोर्ट।
12: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित तमाम न्यूज रिपोर्ट मिल गई। 11 जुलाई की एक वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां सिविल लाइन्स कचहरी के बाहर दो पुलिस वाले और एक वकील आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट के दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस में वकील का चेहरा साफ नजर आता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये प्रबल प्रताप नहीं बल्कि कोई और शख्स है। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई और प्राथमिक जांच के बाद एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। एसीपी आनंद ओझा ने बताया कि दोनों पुलिस वालों में से एक काफी समय से निलंबित है और गैर हाजिर चल रहा है, वहीं दूसरे कांस्टेबल को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो यूपी के कानपुर का है, जो वकीलों पुलिस वालों के बीच हुए झगड़े को दिखाता है। इसमें दिख रहा शख्स प्रबल प्रताप नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 9 जुलाई को हुई जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। अब इसी से जोड़ते हुए जलभराव में एक महिला के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई घटना का वीडियो है, जहां पर बारिश के बाद रोड पर गड्ढा हो गया और महिला उसमें गिर गई। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
13: ये
12: नोएडा में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद सेक्टर 58 में एक बेहद दुखद हादसा हुआ था, जहां जलभराव के कारण खुले पड़े एक नाले में गिरकर 27 वर्षीय युवक आर्यन की मौत हो गई थी। अब इसी संदर्भ में जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल जाती है। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के नोएडा का बताकर शेयर किया जा रहा है। एक एक्स्यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बारिश में नोएडा की सड़कों पर ध्यान से चलें। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में युवती मोबाइल देखते हुए सड़क पर पानी से भरे एक सामान्य से दिखने वाले हिस्से पर कदम रखती है और अचानक से सीधे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। इसके तुरंत बाद पानी के नीचे से एक भारी ढक्कन ऊपर तैरने लगता है और युवती गड्ढे से बाहर निकल आती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि 9 जुलाई का ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में लड़की के पानी में गिरते ही कंक्रीट या फिर लोहे से बना भारी भरकम ढक्कन किसी हल्के प्लास्टिक या थर्मोकोल के टुकड़े की तरह पानी की सतह पर तैरने लगता है। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब युवती गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो हवा में ही हाथ घुमाकर किसी अदृश्य वस्तु को उठाती हुई नजर आ रही है, जबकि वहां वास्तव में कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये सब सामने आने के बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
12: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस वीडियो को नोएडा का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई खामियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो को गौर से देखने पर हमने पाया कि महिला के चलने और गिरने का तरीका काफी अटपटा है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 98.9% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिरती लड़की के वायरल वीडियो को हमने ट्रुथ स्कैन पर भी जांचा। इस टूल ने 75% स्कोर के साथ वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के साथ संभावित AI जनरेटेड बताया। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले और फिर इन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें यह वायरल वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला। इस वीडियो को 9 जून 2026 को शेयर किया गया था। चैनल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यहाँ AI की मदद से बनाए गए इसी तरह के वीडियो शेयर किए जाते हैं। इस तरह हमारी जांच से साफ हो गया कि जलभराव में गिरती हुई महिला का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। AI से बने वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का वीडियो है। वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
12: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून को एक मिनट के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। इसमें सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गई। भूकंप से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। अब इसी भूकंप से जोड़कर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंगों को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला बहुमंजिला इमारत नहीं जैसे तेज रफ्तार ट्रेन का डब्बा हो। इतने ताकतवर भूकंप की मार कितनी देर झेलती, दोनों औंधे मुंह गिरी, लोग क्या पता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। यूजर्स उस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान का यह वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इसे लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि 24 जून 2026 को 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने पूरे वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया था। राजधानी कराकास और उसके आसपास की सड़कें, इमारतें ढहकर कंक्रीट और स्टील के मलबे में तब्दील हो गई। कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे दब गए, लेकिन यह वीडियो उसी भूकंप के दौरान का है, यह जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर दोनों इमारतों के टकराने पर इनकी खिड़कियों का आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा दोनों इमारतें एक ब्लॉक की तरह ही गिर रही हैं, न कि बिखर कर रही हैं या टूट रही हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो को सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें कहीं भी वायरल वीडियो से जुड़ी खबरें नहीं मिली। इसके बाद हमने वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। इसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों इमारतों के हिलने और टकराने के बावजूद उनमें मौजूद खिड़कियों की दशा में कोई बदलाव नहीं होता है, इनकी आकृतियों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें इस वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। इसलिए हमने सबसे पहले AI डिटेक्टर टूल detectvideo.ai की मदद ली। वायरल वीडियो को स्कैन करने पर इस टूल के नतीजों ने इसके AI के बने होने की 73% संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को एक और AI डिटेक्टर टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस में वीडियो के 97.8% AI से बने होने की संभावना की पुष्टि हुई। इसी तरह साइट इंजन के एनालिसिस ने भी वायरल वीडियो के 99% AI से बने होने की पुष्टि की। इस तरह हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। वेनेजुएला में भूकंप के नाम पर इमारतों के टकरा कर गिरने का वायरल वीडियो फेक है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: दो छोटे बच्चों का अपने पिता की शादी की पुरानी बारात का वीडियो देखकर किया गया मासूम डांस सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में दो छोटे भाई बहन अपने कमरे में पूरी मस्ती के साथ डांस करते दिखाई देते हैं। दोनों को देखकर साफ महसूस होता है कि वो किसी बात की चिंता किए बगैर सिर्फ उस पल का आनंद ले रहे हैं। छोटी बच्ची के हाथ में एक गिलास और चम्मच है, वो उन्हें किसी संगीत वाद्य यंत्र की तरह बजा रही है और अपने ही अंदाज में ताल बना रही है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई भी पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहा है। दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान और बेफिक्र अंदाज देख किसी का भी दिल खुश हो जाए। पहले तो ऐसा लगता है शायद टीवी पर कोई फिल्मी गाना या बच्चों का पसंदीदा डांस वीडियो चल रहा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद असली बात पता चलती है। टीवी स्क्रीन पर उनके पापा की शादी का पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें बैंड बाजे के साथ बारात निकल रही है और शादी का पूरा माहौल नजर आ रहा है। बच्चे उसी वीडियो को देख ऐसे झूम रहे हैं जैसे वो खुद उस बारात का हिस्सा हों।

सबसे दिलचस्प बात यह कि दोनों बच्चों को शायद ये भी पूरी तरह समझ नहीं होगा कि स्क्रीन पर जो शादी दिख रही है वो उनके अपने पापा की है। फिर भी बैंड की धुन और बारात का माहौल उन्हें इतना रास आता है कि वो खुद को नाचने से रोक नहीं पाते।

गाजियाबाद की टीचर चांदनी भाटी अपने अनोखे टीचिंग स्टाइल से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वो बच्चों को डांस, गाने और मजेदार एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाती हैं, जिससे पढ़ाई आसान और रोचक बन जाती है। उनके वायरल वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं और लाखों लोग उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। चांदनी के क्लास में बच्चे सिर्फ कुर्सी पर बैठकर किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि डांस, एक्टिंग और मजेदार एक्सप्रेशन के जरिए नई नई चीजें सीखते हैं। यही वजह है कि उनके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में किसी बड़े स्टंटमैन या प्रोफेशनल खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक पिता और उसकी दो छोटी बेटियों का शानदार तालमेल नजर आता है। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उनकी मेहनत और अभ्यास की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने घर के अंदर अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आता है। ऐसा लगता है वो काफी समय से उन्हें किसी खास तरह की ट्रेनिंग दे रहा है।

सबसे पहले वो एक टेबल पर एक बाल्टी को उल्टा रखता है। इसके बाद बाल्टी के ऊपर दो प्लास्टिक की बॉटल खड़ी कर देता है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो वो कुछ कदम पीछे हटता है और फिर एकदम सटीक निशाने के साथ दोनों बॉटल्स को एक ही किक में गिरा देता है। उसका बैलेंस और टाइमिंग देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इस कला का काफी अभ्यास किया है। इसके बाद वो चुनौती को थोड़ा और मुश्किल बना देता है। इस बार बाल्टी के ऊपर दो नहीं बल्कि तीन बॉटल रखी जाती है। फिर वो उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अपनी किक से तीनों बॉटल्स को एक साथ नीचे गिरा देता है। ये देख उसकी दोनों बेटियां भी काफी उत्साहित नजर आती हैं। अब बारी आती है उन दोनों बच्चियों की, तो पिता उन्हें भी वही स्टंट दोहराने के लिए कहता है। पहले एक बेटी आगे आती है और कुछ पल अपने निशाने पर ध्यान देती है, फिर बिल्कुल अपने पिता की तरह किक मारकर बॉटल्स को गिरा देती है। उसके बाद दूसरी बेटी भी अपनी बारी में वही कमाल करके दिखाती है। दोनों बच्चियों का आत्मविश्वास, संतुलन और सटीक निशाना देख ये साफ समझ आता है कि उन्होंने नियमित अभ्यास किया है। यही बात इस वीडियो को खास बना रही है। सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। सड़क पर पंचर साइकिल के साथ परेशान खड़ी एक छोटी बच्ची की मदद के लिए पुलिसकर्मी ने जो किया उसे देख हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज धूप में छोटी बच्ची अपनी पंचर साइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ी थी, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी वहां से गुजर रहे पुलिसकर्मी संतोष सरोज की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और उससे बात की। पहले उन्होंने उसे पानी पिलाया, फिर खुद अपनी बाइक पर बैठाकर पंचर की दुकान से उसकी साइकिल बनवाई।

साइकिल जब ठीक हो गई तो बच्ची ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पुलिसकर्मी को देने की कोशिश की। संतोष सरोज ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बच्ची से कहा, तुमने मुझे भैया बोला है तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा। ये चंद शब्दों की बात नहीं थी, ये एक रक्षक के भाव थे। उस पुलिसकर्मी ने न केवल एक पंचर ठीक किया बल्कि उस बच्ची के चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जिसे वो शायद उम्र भर याद रखेगी। इंसानियत से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे लाखों लोग देख चुके हैं और जमकर सराहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है। इसी दौरान एक महिला अपनी स्कूटी के साथ बीच सड़क पर फंसी हुई दिखाई देती है। पहली नजर में लगता है कि शायद स्कूटी बंद हो गई है, लेकिन जब सौरभ नाम का शख्स उसके पास पहुंचकर बात करता है तो पूरी स्थिति सामने आती है। महिला बताती है कि उसका पैर स्कूटी में कहीं बुरी तरह फंस गया है, इसी वजह से वो ना तो स्कूटी से उतर पा रही थी और ना ही उसे आगे बढ़ा पा रही थी। पानी से भरी सड़क के बीच खड़े रहना उसके लिए काफी परेशानी भरा हो गया था। महिला की बात सुनते ही सौरभ ने बगैर समय में गंवाए अपनी बाइक एक तरफ खड़ी कर दी। उन्होंने सबसे पहले महिला को घबराने से मना किया और भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने ध्यान से देखा कि आखिर पैर किस जगह फंसा है। काफी सावधानी के साथ उन्होंने इस हिस्से को हटाया जिसकी वजह से महिला का पैर अटक गया था। कुछ ही देर की कोशिश के बाद महिला का पैर बाहर निकल गया और उसे राहत मिली। इसके बाद भी सौरभ वहीं नहीं रुके, उन्होंने महिला से पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और वो ठीक महसूस कर रही है या नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि महिला सुरक्षित है तब उन्होंने स्कूटी को भी सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर खड़ा करने में मदद की। यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार जता रहे हैं।

0: सोशल मीडिया पर ये इमोशनल वीडियो खूब वायरल है। वीडियो में रात के समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक जवान अपने परिवार से विदा ले रहा है। जवान सिविल ड्रेस में नजर आता है और ट्रेन में सवार होने से पहले अपनी छोटी बेटी को गले लगाता है। बेटी अपने पिता से अलग होने को तैयार नहीं होती। वो उन्हें जाता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है, लेकिन मासूम बेटी लगातार अपने पिता की तरफ हाथ बढ़ाती रहती है। उसकी माँ उसे संभालने और पीछे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेटी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये पूरी तस्वीर इतनी भावुक है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
3: continue to face political pressure to reach a peace deal,
2: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: बात यूरोप की करेंगे, जहां पर इन दिनों गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। ग्रीस में मौसम ने ऐसे तेवर दिखाए कि पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालात ऐसे हैं कि लोग धूप से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

0: ये धुंध नहीं बल्कि गर्मी से राहत की उम्मीद है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सूरज की तपश बढ़ी है, ऐसे में हर शख्स ठंडी हवा, पानी की फुहार और छांव की तलाश में नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट्स में मिस्ट फैन चल रहे हैं तो शहर के फव्वारे लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गए हैं। ग्रीस में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, ऐसे में कोई पानी की बोतल से खुद को हाइड्रेट रख रहा है तो कोई बैग और छाते को ही धूप से बचने की ढाल बना चुका है। गर्म हवाओं के बीच भी ग्रीस का इतिहास जानने आए सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि गर्मी चाहे जितनी हो, ग्रीस के एथेंस की रौनक अभी भी बरकरार है। रेस्टोरेंट से लेकर चौक चौराहों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। पर्यटकों को गर्मी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब जरा इस रेस्टोरेंट्स का नजारा देखिए, किस कदर यहाँ मिस्ट फैन लगातार लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। इसलिए तो दुनिया भर से आए पर्यटक गर्मी में भी एथेंस की प्राचीन विरासत का दीदार कर रहे हैं। रोमन अगोरा जैसी प्राचीन धरोहरों पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी पेड़ों की छांव और छातों के नीचे अपना काम मुस्तैदी से करते दिखे। ग्रीस में हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर में एयर कंडीशनड राहत केंद्र खोले गए हैं, इसके साथ ही लोगों को हाइड्रेटेड रहने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: And aapko samjhayenge.
1: Good news today isliye acha lagta hai, iske andar na उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हाई टाइड की भी चेतावनी। आसाम में बाढ़ के बीच राहत बचाव मिशन तेज, सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब तक 571 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, मासिक गणना में 38.25 करोड़ से ज्यादा का दान, नकद के अलावा सोना चांदी की भेंट। दक्षिण पश्चिम चीन में नजर आया दुर्लभ हिम तेंदुआ, जीव के संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, खड़ी चट्टान पर टहलता तेंदुआ कैमरे में कैद।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस छप्पड़ फाड़ चढ़ावे की जो दिया गया है उनके द्वार पर, जो खुद दुनिया को सब कुछ देते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भगवान के खजाने में जमकर धन बरसा है। एक महीने के भीतर भक्तों ने भगवान के दर पर इतना चढ़ावा अर्पित किया कि ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई। आपको ये बता दें कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण के सांवलिया सेठ स्वरूप की पूजा की जाती है। सांवलिया सेठ को श्रद्धालु अपने कारोबार का साझेदार मानते हैं और अपने व्यापार के हानि लाभ का भागीदार मानकर ना केवल उनकी पूजा करते हैं बल्कि अपने मुनाफे का भाग भी उन्हें अर्पित कर देते हैं। भगवान को भक्त ना केवल कैश बल्कि सोने चांदी और दूसरे रूपों में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं और यही वजह है कि साल दर साल भगवान श्री सांवलिया सेठ जी का खजाना भरता ही जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं आपकी बार सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने कितना और क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया है।

0: जिनसे पाया उन्हीं को दिया, भेजने वाले भी वो और पाने वाले भी वो। यूं तो भक्त और भगवान के बीच भाव के सिवा किसी और पूंजी का कोई मोल नहीं, लेकिन फिर भी आस्था में अभिभूत भक्त अपने आराध्य के दर पर खाली हाथ कहां जाते हैं। और फिर सावलिया जी को तो भक्त बेहद प्यार और मनुहार से बुलाते ही हैं। सावलिया सेठ वो दाता जो हमेशा भक्तों की झोली भरते हैं। सो अब की बार आस्थावान भक्तों ने उन्हीं सेठ के मंदिर का खजाना भर दिया है। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ धाम में हमेशा की तरह ही इस बार भी भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाया है। एक महीने में भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 38 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया है, जिसमें 29 करोड़ 77 लाख रुपए के करीब नकद राशि दान पेटी से निकली है, जबकि लगभग 8 करोड़ 45 लाख रुपए मनी ऑर्डर के जरिए और ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भक्तों ने सावलिया सेठ के दरबार में 1 किलो 48 ग्राम सोना और 103 किलो 497 ग्राम चांदी भी अर्पित की है। चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी, उसके बाद से 7 चरण में गणना का काम पूरा हुआ है।
1: 7 चक्रों में गणना हुई है 7 दिन तक लगातार, उसमें 38 करोड़ 23 लाख 13 हजार रुपया और 1 क्विंटल 3 किलो चांदी और 1 किलो 147 ग्राम सोना, 1 किलो 148 ग्राम और कुछ मिलीग्राम सोना है। ये भेंट कक्ष और भंडार दोनों से को मिला करके ये दान राशि प्राप्त हुई है।
0: सोने के आभूषणों के अलावा सावरिया सेठ को एक श्रद्धालु ने 20 लाख रुपए की सोने की बांसुरी भी अर्पित की है। आपको बता दें कि पिछले साल भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में 337 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। 34 साल पहले सावलिया सेठ मंदिर के ट्रस्ट का गठन हुआ था, उसके बाद से यानी पिछले 34 सालों से चढ़ावे की रकम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और पिछले 34 साल में ये एक साल में आए चढ़ावे का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि बीते लगभग 4 दशक में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मंदिर के चढ़ावे में कमी आई हो। हर साल चढ़ावे की रकम बढ़ती ही जा रही है, खास तौर पर पिछले 5 सालों में यहां पर चढ़ावे और दान की रकम का आंकड़ा करोड़ों से बढ़कर अरबों में दर्ज किया गया है। साल 2021-22 में यहां 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा अर्पित किया गया, तो वहीं साल 2022-23 में ये रकम बढ़कर 130 करोड़ 51 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह साल 2023-24 में चढ़ावे का आंकड़ा 166 करोड़ 65 लाख रुपए तक रहा, तो वहीं 2024-25 यानी पिछले साल इस मंदिर में 235 करोड़ 96 लाख की रकम चढ़ावे के रूप में आई, और इस साल यही रकम बढ़कर 337 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
1: मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि सावलिया जी नगरी में जन्म लिया और मैं बड़ा हुआ हूं। जब मैं रुपए पैसे में समझने लगा उस समय 1000 रुपए पूरे नहीं निकलते थे, और हर बार जब 1000 कम थे 900 थे वो 1000 हुए, 1000 से 10000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, और आज करोड़ों में रुपया भंडार से निकलता है। तो भंडार सावलिया सेठ का हमेशा बड़ा ही है, घटा कभी नहीं है। सावलिया सेठ के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घटी जात, पर हमने घटता हुआ देखा नहीं है, हमेशा बढ़ता हुआ ही देखा है।
0: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये भगवान श्री कृष्ण का अनोखा धाम है, जहां आकर न केवल बिगड़े काम बन जाते हैं बल्कि कारोबार भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से सावलिया सेठ से मनोकामना मांगे तो वे किस्मत बदल देते हैं, व्यापार में उन्नति कराते हैं और जीवन के संकट दूर कर देते हैं।
1: श्री सावलिया सेठ हर व्यक्ति का, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, जो अच्छी श्रद्धा से श्रद्धा भाव से भगवान के यहाँ आकर के जो कुछ मांगता है वो श्री सावलिया सेठ सबकी मनोकामना पूरी करता है।
0: मान्यता है कि ठाकुर जी यहाँ सेठ जी के रूप में विराजमान हैं। एक बार अगर उन्हें अपने व्यापार में पार्टनर बना लिया तो बिजनेस बढ़ता ही जाता है। इसलिए खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के कई श्रद्धालुओं ने सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना रखा है। हर बार व्यापार में होने वाले मुनाफे की तय रकम वो बेहद श्रद्धा के साथ सांवलिया सेठ मंदिर में अर्पित कर देते हैं। भक्त यहाँ बाकायदा स्टाम्प और अमाउंट लिखवा कर लाते हैं। मन्नत पूरी होने पर अपनी कंपनी के लेटर हेड पर लिखकर लाखों की राशि यहाँ चढ़ावे के रूप में अर्पित कर जाते हैं।
2: भगवान सांवलिया सेठ मेवाड़ के ही नहीं अपितु पूरे देश भर में और देश के बाहर भी सांवरिया सेठ की महिमा दिनों दिन बढ़ रही है। और जैसे कि नाम से सांवरिया सेठ हैं, तो जो भी भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो भगवान को अपने आजीविका में से, कामकाज में, व्यापार में श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर भागीदार बनाते हैं।
0: इसी आस्था की वजह से साल दर साल श्री सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया और साथ ही बढ़ता गया यहाँ आने वाला चढ़ावा। आपको बता दें कि इसी साल केवल अप्रैल महीने में ही यहाँ 41 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि अर्पित की गई। एक महीने में ही चढ़ावे की रकम का 41 करोड़ से अधिक का आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है। यही नहीं, इस दौरान भक्तों ने अपने आराध्य को करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का सोना भी अर्पित किया, जबकि लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी भी उन्हें अर्पित की गई। इससे पहले साल 2025 में सिर्फ दिवाली के अवसर पर ही मंदिर में 51 करोड़ से ज्यादा की रकम के चढ़ावे का रिकॉर्ड है। मेवाड़ में भगवान श्री कृष्ण के श्री सांवलिया सेठ स्वरूप को व्यापार के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त अपने व्यवसाय में सांवलिया सेठ को साझेदार बनाता है उसे कभी घाटा नहीं होता। यही वजह है कि किसान से लेकर बड़े उद्योगपति तक अपने व्यापार में मुनाफे का 10% से लेकर 50% तक का हिस्सा भगवान को समर्पित करते हैं।
1: अभी लगभग 1000 करोड़ के आसपास बैंकों में और इनमें संपत्ति मिला करके, संपत्ति तो और अलग से है पर इतना लगभग है।
0: तो मुनाफा होने पर मंदिर में आकर भगवान का हिस्सा चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। यही अनोखी आस्था इस मंदिर को विशिष्ट बनाती है। इसी वजह से समय के साथ मंदिर में चढ़ावे की ये राशि छोटी मोटी रकम नहीं रही बल्कि करोड़ों में पहुँच गयी। आपको बता दें कि साल 91-92 में यहाँ 65 लाख रुपए की रकम दान के रूप में आई थी। यही वो साल था जब चढ़ावे का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था। ठीक एक दशक के भीतर यानी 10 साल बाद साल 2000 आते आते चढ़ावे की रकम करीब 4 करोड़ तक पहुँच गई। और इसके बाद के 5 सालों में इस रकम में और इजाफा हुआ। साल 2006 आते

0: का चढ़ावा 340 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इस तरह साल दर साल यहाँ चढ़ावे में बढ़ोतरी ही हो रही है। भक्त यहाँ सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में सोना चांदी भी अर्पित करते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के लिए बाकायदा खास सिस्टम बना हुआ है। मंदिर में 1992 से लेकर 2025 तक श्रद्धालुओं के सामने ही दान और चढ़ावे की रकम की काउंटिंग होती थी। पहले यहाँ आने वाले श्रद्धालु सांवलिया सेठ जी के दर्शन के साथ साथ दान की काउंटिंग भी देखते थे, लेकिन पिछले साल जुलाई के बाद से व्यवस्था में बदलाव किया गया ताकि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। नई व्यवस्था के तहत दान राशि की काउंटिंग अब सत्संग भवन में की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। हर महीने चतुर्दशी के दिन मंदिर के दान पात्र खुलते हैं। भगवान सांवलिया सेठ जी की राजभोग आरती के बाद चढ़ावे की काउंटिंग का काम शुरू होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए करीब 200 लोगों को लगाया जाता है। इनमें बैंकों के कर्मचारी और मंदिर प्रशासन के लोग शामिल होते हैं। काउंटिंग प्रक्रिया में पहले हाथों से पैसे गिने जाते हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 5 से 10 दिन का समय लगता है। सबसे पहले नोटों को और सिक्कों को अलग किया जाता है, इसके बाद 5 मशीनों से इनकी काउंटिंग होती है और अंत में चढ़ावे में आए गहनों का वजन किया जाता है। मंदिर में कैश के साथ साथ चेक, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावे की रकम आती है। विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण सांवलिया सेठ के खजाने में अब काफी विदेशी मुद्रा भी आ रही है, लिहाजा इस मंदिर की संपत्ति 1000 करोड़ के पार पहुँच चुकी है।
1: मंदिर का जो भी राशि आती, पहले तो मंदिर निर्माण में खर्च हो रही थी। मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ है, इसके बाद यहाँ की धर्मशालाएं हैं, मंदिर सांवलिया जी के आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, आसपास की सड़कें हैं, 16 गांव के विद्यालय हैं, यहाँ का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले का अस्पताल है, चित्तौड़ जिले में गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग हो या सांवलिया जी में हॉस्पिटल बनाना हो, और आसपास के गांवों के जितने भी विद्यालय हैं, छात्रों के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशाला बनाना, रोड बनाना और यात्रियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो भी अब खर्च होगा सारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही खर्च किया जाएगा।

0: मंदिर में भक्त केवल धन ही नहीं बल्कि अपनी मन्नतों के अनुसार अद्भुत और प्रतीकात्मक भेंट भी चढ़ाते हैं। अच्छी फसल होने पर किसान गेहूं की बालियां, लहसुन प्याज की चांदी की प्रतिकृतियां अर्पित करते हैं, तो अफीम के किसान चांदी के डोडे चढ़ाते हैं। वहीं झूठे मुकदमों से राहत मिलने पर भक्त चांदी की हथकड़ियां और बंदूकें चढ़ाते हैं, जो न्याय और मुक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। पिछले दिनों एक कारोबारी ने अपने पेट्रोल पंप के शुभारंभ की खुशी में यहाँ चांदी का फ्यूल डिस्पेंसर चढ़ाया, तो एक युवक ने अग्निवीर में चयन होने पर AK-47 की चांदी की प्रतिकृति अर्पित की। ऐसी अनोखी भेंट न केवल भगवान सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि भक्त कितनी शिद्दत से अपने जीवन की हर उपलब्धि और संघर्ष को अपने आराध्य को समर्पित करते हैं।
1: अपने अपने श्रद्धा है, यात्री जो श्रद्धालु आते हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस में रखता है, कोई अपनी खेतीबाड़ी करता है उसमें भी अपना सांवरिया सेठ का हिस्सा रखता है, कोई नौकरी करता है या कोई मजदूरी भी करता है वो भी अब सांवरिया सेठ का अपना हिस्सा अलग से रखता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई 1% रखता है, कोई 5%, कोई 10%, वो कोई हमारे सामने कोई फिक्स नहीं है।
0: अनोखा है चित्तौड़गढ़ का ये कृष्ण धाम, जो आस्था, विश्वास और ईश्वर को भागीदार मानने की अनूठी परंपरा का जीवंत उदाहरण बन चुका है, जहां हर चढ़ावे की एक कहानी है, हर भेंट के पीछे अलग भावना है, और उसी भाव से अर्पित चढ़ावे में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। फिलहाल मंदिर के चढ़ावे में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने न केवल राजस्थान बल्कि देश

0: में श्री सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को चर्चा का केंद्र बना दिया है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मथुरा हो या द्वारका, पुरी हो या उडुपी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत भूमि के हृदय में बसे हैं श्री कृष्ण। अलग अलग रूपों में भगवान कृष्ण की पूजा देश भर में की जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के नाम से क्यों पूजे जाते हैं श्याम, इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक ऐतिहासिक गाथा है। दूर दूर से लोग साल भर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि भगवान की वही प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है जिनकी पूजा स्वयं संत मीराबाई किया करती थी।

मेवाड़ जिसकी धरा में जन्मे वीर शिरोमणि, जिसकी माटी को सींचा है शूरवीरों के रक्त ने, जहां आज भी खिलते हैं शौर्य और स्वाभिमान के फूल। शौर्य तीर्थ मेवाड़ की उसी माटी में कभी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का ऐसा बीज पड़ा था जो आज भी आस्था का विशाल वट वृक्ष बनकर चित्तौड़ की धरा पर लहलहा रहा है और सुना रहा है किस्से प्रेम के, भक्ति के, मीरा और उनके गिरिधर गोपाल के।

0: अनोखा धाम है चित्तौड़ का श्री सांवलिया सेठ मंदिर। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस मंदिर की बात निराली है, क्योंकि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सांवलिया सेठ के रूप में होती है। सांवलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सांवलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे सदियों पुरानी कहानी है, जो खुद में समेटे है भारत के इस भूभाग का रोचक इतिहास। असल में भगवान सांवलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा सहित चार मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई। दरअसल संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई वर्षों तक वहीं दबी रही। 1840 में मंडफिया गांव के एक नौजवान भोलाराम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गई। सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के निर्देशन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित कर दिया गया, जबकि तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोलाराम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित कर लिया, और चौथी मूर्ति खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और इसी स्थान पर उसे वापस दबा दिया गया।
1: ठाकुर जी की स्थापना का 200 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, महिमा तब से ही चली आ रही है। लाख 200 वर्षों से पहले ठाकुर जी पति से उत्पन्न हुए थे, यहाँ से 7 की उम्र थी, तो अब तो पुजारी परिवार के वंशज थे और उनके ऊपर एक भोलेराम जी थे, उनके जो सपना में आए थे और उनके साथ में स्थापना हुई 200 वर्षों से। चमत्कार के रूप में देखा जाए तो सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। लोग यहाँ पार्टनरशिप साझेदारी उसके लिए भी ठाकुर जी क्या थे।
0: यहीं से शुरू हुई सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक रूप से पूजा। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों सहित तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सांवलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी कहानी अनोखी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहाँ आकर सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे भागों के व्यापारी भी यहाँ आकर सांवलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती के रूप में कभी शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान किया करते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपनी दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सांवलिया सेठ के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सांवलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आकर लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। शौर्य तीर्थ मेवाड़ में शान से खड़ा ये मंदिर आज भी जिंदा रखे है मीराबाई और उनके गिरिधर गोपाल की आस्था में पगी कहानियों को, और उन्हीं कहानियों की डोर थामे इस दिव्य धाम को देखने दुनिया भर के भक्त यहां आते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जी एनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए जी एनटी।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: Ji khabar.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सोचो जहां जहां तक भी नजर जाए सिर्फ चमचमाती बर्फ की चादर हो, तापमान शून्य से नीचे हो, क्या ऐसी जगह है पर दौड़ना संभव है। भले ही आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, आपको ये भी लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे जुनूनी लोगों की कमी नहीं है जो बर्फीले महासागर पर आयोजित मैराथन में हिस्सा लेते हैं। आपको दिखाते हैं।